0: उखाड़ सके, तब उन्होंने विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी की बस प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनते श्री नारायण और ब्रह्मा जी ने शेषनाग को मंदराचल उखाड़ने के लिए प्रेरित किया। महाबली शेषनाग ने वन और वनवासियों के साथ मंदराचल को उखाड़ लिया। अब मंदराचल के साथ देवगण समुद्र तट पर पहुंचे और समुद्र से कहा कि हम लोग अमृत के लिए तुम्हारा जल मथेंगे। समुद्र ने कहा यदि आप लोग अमृत में मेरा भी हिस्सा रखे तो मैं मंदराचल को घुमाने से जो कष्ट होगा वह सह लूंगा। देवता और असुरों ने समुद्र की बात स्वीकार करके कच्छप राज से कहा आप इस पर्वत के आधार बनिए। कच्छप राज ने कहा ठीक है, कहकर मंदराचल को अपनी पीठ पर ले लिया। अब यंत्र के समान यंत्र के द्वारा मंदराचल को घुमाने लगे। इस प्रकार देवताओं और असुरों ने मंदराचल की मथानी वासुकी नाग की डोरी बनाकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया। वासुकी नाग के मुंह से मुंह की ओर असुर और पूंछ की ओर देवता लगे थे। बार बार खींचे जाने के कारण वासुकी नाग के मुख से धुएं और अग्नि ज्वाला के साथ सांस निकलने लगी। सांस थोड़ी देर में मेघ बन जाती और मेघ थके मांदे देवताओं पर जल बरसाने लगते। पर्वत के शिखर से पुष्पों की झड़ी लग गई। पहाड़ पर वृक्ष आपस में टकरा कर उनकी रगड़ से आग लग गई। इंद्र ने मेघों द्वारा जल बरसा कर उसे शांत किया। वृक्षों के दूध और औषधियों के रस चू चू कर समुद्र में आने लगे। औषधियों के अमृत के समान प्रभावशाली रस और दूध सुवर्ण में मंदराचल की अनेक दिव्य प्रभावशाली मणियों को से चूने वाली जल के स्पर्श से ही देवता अमरत्व को प्राप्त होने लगे। उन उत्तम रसों के सम्मिश्रण से समुद्र का जल दूध बन गया और दूध से घी बनने लगा। देवताओं ने मरते मरते थक कर ब्रह्मा जी से कहा भगवान नारायण के अतिरिक्त सभी देवता और असुर थक गए हैं। समुद्र मरते मरते इतना समय बीत गया परंतु अभी तक अमृत ही निकला। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा भगवान आप इन्हें बल दीजिए। विष्णु भगवान ने कहा जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं मैं उन्हें बल दे रहा हूँ। सब लोग पूरी शक्ति लगाकर मंदराचल को घुमाएं, समुद्र को शुद्ध कर दें। भगवान के इतना कहते ही देवता और असुरों का बल बढ़ गया। वे बड़े वेग से मचने लगे। सारा समुद्र शुद्ध हो गया। इसी समय समुद्र से अनगिनत किरणों वाला शीतल प्रकाश से युक्त श्वेत वर्ण का चंद्रमा प्रकट हुआ। चंद्रमा के बाद भगवती लक्ष्मी और सुरा देवी निकली। इसी समय श्वेत वर्ण का उच्च शवा घोरा भी पैदा हुआ। भगवान नारायण के वक्ष स्थल पर सुशोभित होने वाली दिव्य किरणों से उज्ज्वल कौस्तुभ मणि कल्प वृक्ष कामधेनु भी उसी समय निकले। लक्ष्मी सुरा चंद्रमा उच्चवा ये सब आकाश मार्ग के देवताओं के लोक में चले गए। उसके बाद दिव्य शरीरधारी धन्वंतरी देव प्रकट हुए। वे अपने हाथ में अमृत से भरा श्वेत कमंडल लिए हुए थे। ये अद्भुत चमत्कार देखकर दानवों में ये मेरा है मेरा है ऐसा कोलाहल मच गया। तदनंतर चार श्वेत दांतों से युक्त विशाल इरावत हाथी निकला। उसे इंद्र ने ले लिया। तब समुद्र का मंथन किया गया। तब उसमें कालकूट विष निकला। उसकी गंध से ही लोगों की चेतना जाती गई। ब्रह्मा की प्रार्थना से भगवान शंकर जी ने कंठ में धारण कर लिया। तभी से वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये सब देखकर दानवों की आशा टूट गई। अमृत और लक्ष्मी के लिए उन्होंने बड़ा बैर विरोध और फूट हो गया। इसी समय भगवान विष्णु मोहिनी श्री अवेश धारण करके दानवों के पास गए। मूर्खों ने उनकी माया न जानकर मोहिनी रूपधारी भगवान को अमृत का पात्र दे दिया। उस समय वे सभी मोहिनी के रूप पर लट्टू हो रहे थे। इस प्रकार विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके दैत्य और दानवों से अमृत छीन लिया और देवताओं ने उनके पास जाके उसे पी लिया। इसी समय राहु दानव भी देवताओं का रूप धारण करके अमृत पीने लगा। अभी अमृत उसके कंठ तक ही पहुंचा था कि चंद्रमा और सूर्य ने उसका भेद बतला दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत ही चक्र से उसका सिर काट डाला और राहु का पर्वत शिखर के समान सिर आकाश में उड़कर गरजने लगा और उसका धड़ पृथ्वी पर गिरकर सबको कपाता हुआ तड़फड़ाने लगा। तभी से राहु के साथ चंद्रमा और सूर्य का पैर हो गया। विष्णु भगवान ने अमृत लाने के बाद अपनी मोहिनी रूप त्याग दिया और तरह तरह के घरावने अस्त्र शस्त्र से असुरों को डराने लगे। खारे समुद्र के तट पर देवता और असुरों का भयंकर संग्राम छिड़ गया। देवासुर संग्राम कहा जाता है इसमें। भांति भांति के अस्त्र शस्त्र बरसने लगे। भगवान के चक्र से कट कट कर कोई कोई असुर खून उगलने लगा। कोई कोई देवताओं के खड़क शक्ति और गदा से घायल होकर धरती पर लौटने लगे। चारों ओर से यही आवाज सुनाई पड़ती, मारो काटो दौड़ो गिरा दो पीछा करो। इस प्रकार भयंकर युद्ध हो ही रहा था कि विष्णु भगवान ने दो रूप नर और नारायण युद्ध भूमि दिखाए। नर का दिव्य धनुष देखकर नारायण ने अपने चक्र का स्मरण किया। भगवान नारायण के चलाने पर चक्र शत्रु दल में घूम घूम कर कालाग्नि के समान सहस्र सहस्र अस्त्रों का सहार करने लगे। देव शिरोमणि नर ने बाणों के द्वारा पर्वतों की चोटियां काट काट कर उन्हें आकाश मार्ग में बिछा दिया। सुदर्शन चक्र घास फूस की तरह दैत्यों को काटने लगे। इससे भयभीत होकर असुरगण पृथ्वी और समुद्र में छिप गए। देवताओं की जीत हुई। मंदराचल को सम्मान पूर्वक यथास्थान पहुंचा दिया गया।
1: जी तो श्रोताओं बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहे हैं और समुद्र मंथन की कथा अभी रागलेखा दासी जी से हमने जानी कि किस तरह से देवताओं को अमृत मिला और ये सारी कथाएं बहुत सुंदर जो है इस महाभारत के अंतर्गत हम जान रहे हैं। आगे और भी कथाएं प्रसंग हैं जो हम जानेंगे रागलेखा दासी जी से, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कथाएं प्रसंग जानते हैं। जी
0: उच्च सवा घोड़े को देखकर कद्रू ने वनिता से कहा, बहन जल्दी से बताओ इस घोड़े का किस रंग का है। वनिता ने कहा, बहन ये अश्वराज श्वेत वर्ण का है, तुम इसे किस रंग का समझती हो। कद्रू ने कहा, अवश्य ही इस घोड़े का रंग सफेद है परंतु पूछ काली है, आओ हम दोनों इस विषय में बाजी लगाए। यदि तुम्हारी बात ठीक हो तो मैं तुम्हारी दासी रहूं और मेरी बात ठीक हो तो तुम मेरी दासी रहना। इस प्रकार दोनों बहनें आपस में बाजी लगाकर दूसरे दिन घोड़े देखने का निश्चय करके घर चली गई। कद्रू ने वनिता को धोखा देने के विचार से अपने हजार पुत्रों को आज्ञा दी, पुत्रों तुम लोग शीघ्र ही काले बाल बनकर उच्च सभा की पूछ ढक लो, इससे मुझे दासी ना बनना पड़े। जिन सर्पों ने उसकी आज्ञा न मानी उसने उन्हें श्राप दिया कि जाओ तुम लोग अग्नि जलने दे के सर्प अग्नि जलकर भस्म हो जाओगे। कद्रू और वनिता ने दासी बनने की बाजी लगाकर बड़े रोष और आवेश में रात बिताई। उसी दिन प्रातःकाल होते ही निकट से घोड़े को देखने के लिए दोनों चल पड़े। सर्पों ने परस्पर विचार करके निश्चय किया कि हमें माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, इसलिए चलो हम लोग घोड़े की पूछ को काली कर दें। ऐसा निश्चय करके उच्च सभा की पूछ से बाल बनकर लिपट गए और जिसे काली जान पड़ने लगी। वे कद्रू और नीता बाजी लगाकर आकाश मार्ग से समुद्र को देखते देखते दूसरे पार जाने लगे। दोनों ही दूसरे पार पहुँच कर नीचे उतर पड़े। उन्होंने देखा कि घोड़े का सारा शरीर तो चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल है परंतु पूछ काली है। ये देखकर वनिता उदास हो गई। कद्रू ने उसे अपनी दासी बना लिया। समय पूरा होने पर माँ तेजस्वी गरुड़ माता की सहायता के बिना ही अंडा फोड़े ही उसमें से बाहर निकल आए। जनते ही आकाश में ऊपर उड़ने लगे। उस समय वैसे जान पड़ते थे माना दूसरा बड़वा नर ही हो। अग्नि के साथ जाकर देवता और ऋषियों ने गरुड़ की स्तुति की। ऋषियों की स्तुति सुनकर गरुड़ जी ने कहा, मेरे भयंकर शरीर को देखकर जो लोग घबरा गए थे अब वे भयभीत ना हो, मैं अपने शरीर को छोटा और तेज को कम कर लेता हूँ। सब लोग प्रसन्नता पूर्वक लौट गए। एक दिन विनीता ने अपने पुत्र को पास बिठाया और कद्रू ने उसे बुलाकर कहा, मुझे समुद्र के भीतर नागों का एक दर्शनीय स्थान देखना है, वहाँ तू मुझे ले चल। और वनिता ने कद्रू को और गरुड़ जी ने माता की आज्ञा से सर्पों को अपने कंधों पर बिठा लिया। उनके अभी स्थान को चले। तीक्ष्ण गर्मी के कारण सर्प बेहोश हो गए। कद्रू ने इंद्र की प्रार्थना करके सारे आकाश को मेघ मंडल से आच्छादित कर दिया। वर्षा हुई, सब सर्प सुखी हो गए। मनोहर वन आदि उधर देखकर यथेष्ट उन्होंने विहार किया और खूब खेल कूद कर गरुड़ से कहा, तुमने तो आकाश में उड़ते उड़ते बहुत से सुंदर सुंदर द्वीप देखे होंगे, अब हमें किसी द्वीप ले चलो। गरुड़ कुछ चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोच विचार कर अपनी माता से पूछा, माँ मुझे सर्पों की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए। विनीता ने कहा, बेटा इन सर्पों के छल से मैं बाजी हार गई और दुर्भाग्यवश अपनी सौत कद्रू की दासी हो गई। अपनी माता के दुख से गरुड़ भी बड़े दुखी हो गए। उन्होंने सर्पों से कहा, सर्पगण ठीक ठीक बताओ मैं तुम्हें कौन सी वस्तु ला दूं, किस बात का पता लगा दूं, अथवा तुम लोगों का कौन सा उपकार कर दूं जिससे मैं और मेरी माता दासत्व से मुक्त हो जाएं। सर्पों ने कहा, गरुड़ यदि तुम अपने पराक्रम से हमारे लिए अमृत ला दो तो हम तुम्हें और तुम्हारी माता को दासत्व से मुक्त कर देंगे। सर्पों की बात सुनकर गरुड़ जी माता विनीता से कहा, माता मैं अमृत लेने के लिए जा रहा हूँ, इसके पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ खाऊंगा क्या। विनीता ने कहा, बेटा समुद्र में निषादों की एक बस्ती है, उसे खाकर तुम अमृत ले आओ। स्मरण रखना, ब्राह्मण का वध कभी ना करना, ये सबके लिए अवध्य है। करुण जी माता की आज्ञा के अनुसार उस जीत के निषादों को खाकर आगे बढ़े। गलती से एक ब्राह्मण उनके मुंह में आ गया, जिससे उनका तालू जलने लगा। उसे छोड़कर वे कश्यप जी के पास गए। कश्यप जी ने पूछा, बेटा तुम लोग सकुशल तो हो, आवश्यकता अनुसार भोजन तो मिल जाता है ना? करुण जी ने कहा, मेरी माता सकुशल है, हम भी आनंद है। यथेष भोजन न मिलने से कुछ दुख रहता है। मैं अपनी माता को दासीपन से छुड़ाने के लिए सर्पों के कहने से अमृत लाने के लिए जा रहा हूँ। अब आप कोई ऐसे खाने की वस्तु बताइए जिसे खाकर मैं अमृत ला सकूँ। कश्यप जी ने कहा, बेटा यहाँ पर थोड़ी दूर पर एक विश्व विख्यात सरोवर है, उसमें एक हाथी और कछुआ रहता है। वे दोनों पूर्व जन्म में भाई थे, परंतु एक दूसरे के शत्रु है। अब वे दोनों एक दूसरे से उलझे रहते हैं। अच्छा, उनके पूर्व जन्म की कथा सुनो। प्राचीन काल में विभावसु नामक एक बड़े क्रोधी ऋषि थे। उनका छोटा भाई था तपस्वी सुप्रतीक अपने धन को बड़े भाई के साथ नहीं रखना चाहता था, वह जितने बंटवारे के लिए कहा करता। विभावसु ने अपने छोटे भाई से कहा, सुप्रतीक धन के मोह के कारण लोग उसका बंटवारा चाहते हैं, और बंटवारा हो जाने पर एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं, और शत्रु भी उनके अलग अलग मित्र बन जाते हैं, और भाई भाई में भेद डाल देते हैं। तू भेदभाव के कारण धन अलग अलग करना चाहता है, तुझे हाथी की योनि प्राप्त होगी। सुप्रतीक ने कहा, मैं हाथी होऊंगा तो तुम कछुआ होगे। वरुण इस प्रकार दोनों भाई धन के लालच में एक दूसरे को शाप देकर हाथी और कछुआ हो गए। तुम जाकर उन दोनों भयंकर जंतुओं को खा जाओ और अमृत ले आओ। कश्यप जी की आज्ञा प्राप्त कर करुण जी सरोवर पे गए। उन्होंने एक नख से हाथी को और दूसरे से कछुए को पकड़ लिया, और आकाश में ऊंचे उड़कर अलम्ब तीर्थ से जा पहुंचे। वहां सुवन गिरी पर बहुत से देव वृक्ष लहलहा रहे थे। करुण को देखते हुए भय से कांपने लगे, और कहीं उनके धक्के से हम टूट ना जाए। उनको भयभीत देखकर करुण जी दूसरी ओर निकल गए। उधर एक बड़ा सा वट वृक्ष था। वट वृक्ष ने करुण जी को मन के वेग से उठते देख कर कहा, तुम मेरी 100 योजन लंबी शाखा पर बैठकर हाथी और कछुए को खा लो। जो ही गरुड़ जी ने उसकी शाखा पर बैठे तो ही वे चढ़ाकर टूट गई और गिरने लगी। गरुड़ जी ने गिरते गिरते उस शाखा को पकड़ लिया और बड़े आश्चर्य से देखा, उसमें नीचे की ओर सिर करके बालखिल्ले नामक ऋषिगण लटक रहे थे। गरुड़ जी ने सोचा, यदि शाखा गिर गई तो तपस्वी ब्रह्म ऋषि मर जाएंगे। अब उन्होंने झपट कर अपनी चोट से वृक्ष शाखा पकड़ ली और हाथी और कछुए को पंजे में दबाया, आकाश में उड़ने लगे। कहीं भी बैठने का स्थान न पाकर वे आकाश में उड़ते ही रहे। इस समय उनके पंखों की हवा से पहाड़ भी कांप उठते थे। बालखिल्ले ऋषियों के ऊपर दया भाव होने के कारण वे कहीं बैठ ना सके। उड़ते उड़ते गंधमादन पर्वत पर गए। कश्यप जी ने उन्हें इस अवस्था में देख कर कहा, बेटा कहीं साहस का काम न करना, घर बैठना। सूर्य की किरण पीकर तपस्या करने वाले बालखिल्ले ऋषि ने क्रोध होकर कहीं तुम्हें भस्म न कर दे। पुत्र से इस प्रकार कहकर उन्होंने तप शुद्ध बालखिल्ले ऋषियों से प्रार्थना की। तप धनो, जरूर प्रजा के हित के लिए एक महान कार्य करना चाहते हैं, आप लोग इसे आज्ञा दीजिए। बालखिल्ले ऋषियों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर वट वृक्ष शाखा छोड़ दिया, तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। गरुड़ जी ने वह शाखा फेंक दिया, पर्वत की चोटी पर बैठकर हाथी और कछुए को खाया। गरुण जी खा पी कर उस पर्वत की चोटी से ही ऊपर की ओर उड़े। उस समय देवताओं ने देखा कि उनके यहाँ भयंकर उत्पात हो रहे हैं। देवराज इंद्र ने बृहस्पति से पूछा, भगवान एकाएक बहुत से उत्पात क्यों होने लगे? इंद्र, तुम्हारे अपराध और प्रमाद से महाप्रमाद के लिए ऋषियों के तपोबल से वनिता नंदन गरुड़ अमृत देने के लिए यहाँ आ रहे हैं। वे अपनी शक्ति से असाध्य कार्य को साध सकते हैं। इंद्र ने अमृत की रक्षकों को सावधान करके कहा कि देखो, परम पराक्रमी बक्षीराज गरुड़ यहाँ से अमृत ले जाने के लिए आ रहे हैं, सचेत रहो, वे बलपूर्वक अमृत ना ले जाने पाए। सभी देवताओं और स्वयं इंद्र अभी अमृत को घेर कर उसकी रक्षा के लिए डट गए। गरुड़ जी वहाँ पहुँचते ही पंखों की हवा से इतनी धूल उड़ाई कि देवता अंधे से हो गए और वे धूल से ढककर मूर से मन गए। सभी रक्षक की आंखें खराब होने के डर हो गए। वे एक क्षण तक गरुड़ को देख भी नहीं सके। सारा स्वर्ग शुद्ध हो गया। चोर पंखों की चोट से देवताओं के शरीर जर्जरित हो गए। इंद्र ने वायु को आज्ञा दी, तुम इस धूल का पर्दा फाड़ दो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। वायु ने वैसे ही किया, चारों ओर उजाला हो गया। देवता उनका प्रहार करने लगे। उड़ते उड़ते गरज कर उनके प्रहार फैलिए और आकाश से भी ऊंचे पहुंच गए। कीर्तन शस्त्रों के पहाड़ से करूँ तो निगमी विचलती है, उनके आक्रमण को विफल देकर गरुड़ की पंखों और चोंचों की चोट से देवताओं की चमड़ी उधर गई और शरीर खून से लथपथ हो गया। वे घबरा कर स्वयं ही तितर बितर हो गए। उसके बाद गरुड़ आगे बढ़े, उन्होंने देखा अमृत के चारों ओर आग की लाल लाल लपटें उठ रही हैं। अब गरुड़ ने अपने शरीर को 8,100 मुंह बनाए और बहुत सी नदियों का जल पीकर उसे दहकती हुई आग पर उड़ेल दिया। अग्नि शांत होने पर छोटा सा शरीर धारण करके वे आगे बढ़े। सूर्य की किरणों के समान उज्जवल और सुनहरा शरीर धारण करके गरुड़ ने बड़े वेग से अमृत के स्थान में प्रवेश किया। उन्होंने वहां देखा अमृत के पास एक लोहे का चक्र निरंतर घूम रहा है, उसकी धार तीखी है, उसमें सहसों अस्त्र लगे हुए हैं। वह भयंकर चक्र सूर्य और अग्नि के समान जान पड़ता था। उसका काम ही था अमृत की रक्षा। गरुड़ जी चक्र के भीतर घुसने का मार्ग देखते रहे। एक क्षण में ही उन्होंने अपने शरीर को संकुचित किया, चक्र के आरों के बीच में से भीतर घुस गए। अब उन्होंने देखा कि अमृत की रक्षा के लिए दो भयंकर सर्प नियुक्त है। उनकी दृष्टि से विष का संचार होता था। गरुड़ जी ने भूल झोंक कर उनकी आंखें बंद कर दी, चूचों और पंजों से मार मार कर उन्हें कुचल दिया, चक्र को तोड़ डाला और बड़े वेग से अमृत पात्र को लेकर वे उड़ चले। उन्होंने स्वयं अमृत नहीं पिया, बस आकाश में उड़कर सर्पों के पास चल दिए। आकाश में उन्हें विष्णु भगवान के दर्शन हुए। गरुड़ जी ने मन में अमृत पीने का लोभ नहीं है ये जानकर भगवान उन पर प्रसन्न हो गए और बोले, गरुड़ मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, मन चाहे वस्तु मांग लो। गरुड़ जी ने कहा, भगवान एक तो आप मुझे अपनी ध्वजा में रखिए, दूसरा मैं अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊँ। भगवान ने कहा, तथास्तु, मैं भी आपको वर देना चाहता हूँ। गरुड़ जी ने कहा, मुझसे कुछ मांग लीजिए। भगवान ने कहा, तुम मेरे वाहन बन जाओ। गरुड़ जी ने कहा, ऐसे ही होगा, और कहकर उनकी अनुमति से अमृत लेकर यात्रा की। अब तक इंद्र की आंखें खुल चुकी थी, उन्होंने गरुड़ को अमृत पी जाते देखकर क्रोध में भरकर बदल चलाया। गरुड़ ने मजा हाथ होकर भी हंसते हुए कोमल वाणी से कहा, इंद्र इनकी हड्डी से ये वज्र बना है, इनके सम्मान के लिए मैं अपना एक पंख छोड़ देता हूँ, तुम कभी अंत नहीं पा सकोगे, मुझे कभी भी पीड़ा नहीं है। गरुड़ ने अपना एक पंख गिरा दिया। उसे देखकर लोगों को बड़ा आनंद हुआ। सबने कहा, जिसका यह पंख है उस पक्षी का नाम सुकर्ण है। पक्षी राज, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें कितना बल है, साथ ही तुम्हारी मित्रता भी चाहता हूँ। गरुड़ ने कहा, देवराज आप अपनी इच्छा अनुसार हमारी मित्रता रहे, मैं मित्र के समान ही बतलाता हूँ। पर्वत वन समुद्र जल सहित सारी पृथ्वी को और इसके ऊपर रहने वाले आप लोगों को आपने एक पंख पर उठाकर मैं बिना परिश्रम के उड़ सकता हूँ। अब मेरी घनिष्ठ मित्रता स्वीकार कीजिए, यदि आपको अमृत की आवश्यकता ना हो तो मुझे दे दीजिए। आप ये ले जाकर जिन्हें देंगे वे हमें बहुत दुख देंगे। गरुड़ जी ने कहा, देवराज अमृत को ले जाने का एक कारण है, मैं इसे किसी को पिलाना नहीं चाहता हूँ, मैं इसे जहाँ रखूँ वहाँ से आप उठा ले जाइए। इंद्र ने संतुष्ट होकर कहा, गरुड़ उससे मुँह मांगा वर मांग लो। गरुड़ जी ने सर्पों की दुष्टता और उसके छल के कारण होने वाले माता के दुख का स्मरण हो आया। उन्होंने वर मांगा, ये बलवान सर्प ही मेरे भोजन की सामग्री हो। देवराज इंद्र ने कहा, तथास्तु। इंद्र से विदा लेने के बाद गरुड़ सर्पों के स्थान पर आए, वहीं उनकी माता भी थी। उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, सर्पों से कहा, ये लो मैं अमृत ले आया, परंतु पीने में जल्दी मत करो, मैं इसे कुशों पर रखता हूँ, स्नान करके पवित्र हो लो फिर इसे पीना, स्नान करके पवित्र हो लो फिर इसे पीना। अब तुम लोगों के कथा अनुसार मेरी माता दासीपन से छूट गई क्योंकि मैंने तुम्हारी बात पूरी कर दी है। सर्पों ने स्वीकार कर लिया। जब सर्पों को सुनता से भर कर स्नान करने गए तब इंद्र अमृत कलश को लेकर स्वर्ग में चले गए। मंगल कृत्य से लौट कर सर्पों ने देखा अमृत उस पर नहीं था स्थान पर। उन्होंने समझ लिया कि हमारी विनीता को दासी बनाने के लिए जो कपट किया था उसी का फल है। फिर ये समझ कर अमृत रखा गया था इसलिए संभव है इसमें कुछ अंश लगा हो। सर्पों ने कुशों को चाटना शुरू कर दिया। ऐसे करते ही उनके जीभ के दो टुकड़े हो गए। अमृत का स्पर्श होने से कुश पवित्र माना जाने लगा। अब गरुड़ कृत्य कृत्य होकर आनंद से अपनी माता के साथ रहने लगे। वे पक्षी राज हुए और उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई और माता सुखी हो गई।
1: जी श्रोताओं, बहुत ही सुंदर कथा हमने जानेंगे किस तरह से अपनी माता के लिए गरुड़ जो है अमृत का कलश लेने गए और उसमें वो सफल भी हुए और किस तरह से वो भगवान जी का वाहन बने ये भी हमने जाना और ये पूरी कथा जो है हमने जानी इस महाभारत काव्य के अंतर्गत। तो श्रोताओं, इसमें ऐसी बहुत सारी कथाएं प्रसंग हैं जो हम जानते रहेंगे रागले खदासी जी से, लेकिन अभी जो वक्त है आपसे इजाजत लेने का हो चुका है। तो रागले खदासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी, तो श्रोताओं, आज के लिए कार्यक्रम आत्मदर्शन में बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी कथाएं प्रसंग हम जानेंगे, लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, मैं हूँ आपकी कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला और मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ शिव पुराण, जिससे कि आप सबका कल्याण हो सके। तो दोस्तों, शिव पुराण का सुनवाने के लिए हमने अपने स्टूडियो में लीना जी को आमंत्रित किया हुआ है। लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: दोस्तों, शिव का अर्थ ही है कल्याण स्वरूप और कल्याण प्रदाता। परम ब्रह्म के इस कल्याण रूप की उपासना उच्च कोटि के सिद्धों, आत्म कल्याण कामी साधकों एवं सर्वसाधारण आस्तिक जनों सभी के लिए मंगलमय एवं सर्व सिद्धिदायक हैं। तो श्रोताओं, हम भी क्यों ना इस तरह से अपने जीवन की सारी सिद्धियां प्राप्त करें। क्यों, कैसे कि शिव पुराण की व्याख्या सुनकर। तो लीना जी, आपने जो पिछली एपिसोड में जो आपने वर्णन सुनाया था हमारे श्रोताओं को, कि ब्रह्मा जी ने कहा कि हिमालय सब सुनकर अपने परिवार वालों से कहने लगे कि सुमेरों, अब परिवार कौन था, सारे पर्वत, सुमेरों पर्वत राजों सुनो, मुझे क्या करना चाहिए। पर्वत राजों ने कहा, अब क्या विचार करना है, इसका जन्म तो कल्याण के लिए ही हुआ है, इसे शिव जी को दे दीजिए। फिर हिमालय ने निर्णय लिया कि मैं अपनी कन्या शिव जी को ही दूंगा, सब कुछ मैंने सोच लिया है। तो आप सारे के सारे जो मंगल पर्वत राज थे और ऋषि मुनि थे, सबने कहा आप दाता हो और शिव जी भिक्षु। अब बताइए, इससे बड़ा आपका सम्मान और क्या हो सकता है। सप्त ऋषियों ने जब ऐसा कहा और विश्वास दिलाया तो गिरिराज और मैना ने अपनी कन्या भगवान शिव को देने की सोच ली। तो उसके बाद सबने मिलकर शिव जी के पास गए और उनको कहा कि आप सभी देवों को आमंत्रित कीजिए और हिमालय अपनी पुत्री आपको देने के लिए तैयार है। अब आगे लीला जी, कैसे ये कथा बढ़ती है, क्या होता है, तो जरा हमें बताइए।
1: बिल्कुल, एक रोचक कहानी हम लोग सुन रहे हैं।
0: हाँ।
1: और इस रोचक कहानी में पार्वती और शिव के विवाह प्रस्ताव की चर्चा है।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: अब शिव पुराण के रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 37वां अध्याय शुरू हो रहा है और इस 37वें अध्याय में देखिए क्या होता है।
0: जी।
1: नारद उवाच, तात प्राज्ञ बदेद इदानीम सत्तर शिशु गतेषु च किम आकर्षीद धम किम आकर्षित धर्मगिरी तन्मे कृत्वा कृपां प्रभो। कहते हैं, हे प्राज्ञ, उन सात मुनियों के चले जाने पर हिमालय ने क्या किया। जो सप्तर्षि थे वो तो प्रस्ताव लेकर के गए थे हिमालय के पास, पार्वती के विवाह का प्रस्ताव लेकर के। तो अब वो लोग जब चले गए तब हिमालय ने क्या किया, कृपा करके कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अब ब्रह्मा जी सुना रहे हैं उस बात को, कहते हैं, गतेषु तेषु मुनिषु सप्तसु अपि मुनीश्वर सारुन्धतीषु हिमवान यद आकर्षीद ब्रवीमि ते तत आमंत्रिय स्वभ्रातृन मेवार्दिन ससुत प्रिय महामना स मुमुदे हिमवान पर्वतेश्वर। कहते हैं ब्रह्मा जी की, हे मुनिवर, अरुंधति सहित तो उन सप्तर्षियों के चले जाने पर हिमालय ने जो किया वह मैं तुमसे कह रहा हूँ। उसके बाद पुत्रों सहित मेरु आदि अपने भाइयों को आमंत्रित कर वह पर्वतराज हिमालय प्रसन्न हुआ। उसने प्रसन्न होकर अपने पुरोहित गर्गाचार्य से लग्न पत्री लिखवा कर शिव जी के पास उसे भिजवा दिया। देखिए, उस समय लग्न पत्री भी चलती थी और लोग उसे मानते भी थे, आज भी चलती है लेकिन बहुत कम लोग उसे मानते हैं। लेकिन लग्न पत्री आवश्यक है क्योंकि इससे क्या होता है, ये वर और वधु जो भी बनने वाले हैं भविष्य में उनके साथ क्या क्या हो सकता है और अगर नहीं मिलान होता है तो वो हर समय दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं भोग सकते। इसलिए ये जो है लग्न पत्री आवश्यक होती है कि दाम्पत्य जीवन का वो सुख भोग पाए, ऐसे उचित वर या वधु से विवाह हो सके। इसलिए
0: जैसे लीना जी, आजकल ये देखने को मिल रहा है

0: बहत तो नहीं रह जाता है, चाहे माने या नहीं माने। हाँ। अगर हम शास्त्र वचन मानते हैं तो शास्त्र को नेत्र कहा गया है। अगर शास्त्र वचन नहीं मानते हैं तो समझिए हमारे हम अपनी आंखें ही बंद किए हुए हैं, और आंखें बंद करके जब आप रास्ते पर चलेंगे तो कहाँ गड्ढा है, कहाँ खाई है, कहाँ पर्वत है, कहाँ नदियां है, हम नहीं जान पाएंगे।
1: हाँ।
0: और हम कहीं भी गिर सकते हैं। इसलिए आज के युग में आप देखेंगे कि दाम्पत्य संबंधों में वह मधुरता नहीं रह गई है जो होनी चाहिए।
1: हाँ।
0: एक ही छत के नीचे पति पत्नी रहते हैं लेकिन वह प्रेम नहीं दिखता, वह संगीत मधुर नहीं दिखता जो दाम्पत्य संबंधों में होना चाहिए।
1: हाँ।
0: और जो कोर्ट मैरिज करें या कोई भी मैरिज करें, लेकिन वो मधुरता तभी होगी जब हम एक दूसरे का मिला के स्वभाव का मिलान करेंगे। वास्तव में तमोगुणी लड़की है और सतोगुणी लड़का है तो फिर मिलान नहीं होगा।
1: हाँ।
0: अगर सतोगुणी लड़की है तमोगुणी लड़का है तब भी मिलान नहीं होगा, क्योंकि तमोगुणी लड़का मांस मदिरा खाएगा, सतोगुणी मांस मदिरा से परहेज करेगी, दोनों में लड़ाई झगड़े होंगे। ठीक उसी तरह लड़के और लड़की दोनों में सेम बातें हैं। तो इसलिए जो लग्न पत्री होती है उसमें गुणों का मिलान होता है।
1: तो अब ये भी देखने को मिल रहा है लीना जी समाज में कि सारे गुण भी मिले, लग्न पत्रिका भी लिखवाई, उसके बाद भी एक साल बाद ही उनका डिवोर्स भी हो गया, उनका तलाक भी हो गया। उसमें ना वर ने सोचा कुछ आगे के बारे में, ना वधू ने सोचा, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने।
0: इसका भी कारण ये है कि विवेक का अभाव रहता है।
1: हाँ।
0: दंपत्ति के बीच में विवेक बहुत आवश्यक है, एक दूसरे पर विश्वास भी आवश्यक है, और एक दूसरे के हितों के विषय में सोचकर आगे बढ़ना भी आवश्यक है। आप देखिएगा अधिकांश घरों में क्या होता है, शादी तो हो जाती है, लड़की लड़के के ससुराल को लड़के के परिवार वालों को स्वीकार भी कर लेती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन लड़की के परिवार वालों को स्वीकार नहीं जब ससुराल करता है तो लड़की पर क्या बीतती है ये कोई नहीं सोचता
1: नहीं।
0: तो लड़की भी चाहती है कि उसके परिवार वालों को भी वही आदर वही सम्मान मिले जो वह अपने ससुराल के में सबको देती है।
1: हाँ।
0: चाहे वो ससुर हो ननद हो सभी जगह। हाँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी लड़कियाँ ऐसी होती हैं, सभी लड़के ऐसे ही होते हैं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन प्रायः आप देखिएगा कि बच्चियाँ जो भी होती हैं जिनकी भी शादी होती है वो स्वीकार कर लेती हैं और जैसे भी हो आदर करती हैं। लेकिन वहीं पर अगर बच्चियां चाहेंगी कि हम अपने मायके जाएं तो 10 बातें बताई जाती हैं कि अभी क्या करोगी, अभी तो आई थी, अभी तो ऐसा हुआ था। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और ना ही लड़की की तरफ से होना चाहिए कि हर समय मायके मायके मायके करते रहें और मोबाइल फोन से चिपके रहें, तो ये भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमेशा विवेक से काम लेना होता है कि जितना आपको दिया जा रहा है उतना ही आप वापस भी दीजिए, तो दोनों के हृदय का मिलन होगा। हृदय से हृदय का जब तक मिलन नहीं होगा तब तक हृदय से हृदय का स्पंदन नहीं होगा, और उसमें पुलकन नहीं उठेगी। जब पुलकन नहीं उठेगी, रोम रोम पुलकित ही नहीं होंगे, तो घर में आनंद कैसे होगा। तो इसलिए विवेक आवश्यक है। ठीक है, प्रेम हृदय का हृदय से प्रेम होना चाहिए। तो जब शिव और पार्वती की हम लोग बातें कर रहे हैं तो शिव और पार्वती में हृदय का हृदय से प्रेम है, और ऐसा प्रेम अद्वितीय प्रेम है जो कि हमें कहीं देखने को नहीं मिलता। लेकिन ये ध्यान देना होगा कि पार्वती ही हम लोगों के हृदय में बसी हुई है, शिव ही हम लोगों के हृदय में बसे हुए हैं। तो शिव और पार्वती का जो प्रेम है वो आत्मा और परमात्मा का प्रेम है, और ये एक उदाहरण है हम लोगों के लिए कि हम भी पार्वती बत प्रेम करें, हम भी शिव बत प्रेम करें। लेकिन जब प्रेम नहीं मिलता है एक दूसरे से तो फिर हम
1: संबंध नहीं बन पाते,
0: अच्छे संबंध नहीं बना पाते। अब देखिए यहाँ कहते हैं कि लग्न पत्री बना करके शिव जी के पास उसे भिजवा दिया, और प्रसन्न चित्त होकर अनेक प्रकार के फल पकवान तथा मिठाइयाँ भी भिजवाई, तथा उन लोगों ने कैलाश में शिव जी के पास जाकर फल आदि सहित वह लग्न पत्रिका दी और शिव जी को तिलक किया। शिव जी ने भी उन सब का यथोचित सम्मान किया। उसके बाद वे हिमालय के पास लौट आए। अब कौन लौट आए, जो सप्त मुनि थे वो लौट आए, और दूसरी बात कि हिमालय ने अपने पुत्रों सहित मेरु आदि अपने भाइयों को आमंत्रित किया था, और गर्गाचार्य से जनपत्री लिखवा कर उसे भिजवाया था अपने पुत्रों से, तो फिर वो सब दिए वहाँ जा करके, और शिव जी ने उन्हें ग्रहण किया। अब देखिए क्या होता है कि अपने लोगों का शिव जी ने विशेष प्रकार से सम्मान किया, ये बड़ी बात है। यह जानकर हिमालय मन में प्रसन्न हुआ।

0: उसने प्रसन्न होकर अनेक देशों में स्थित अपने बंधुजनों को सुखद निमंत्रण भेजा। तब उसने आदर से विवाहोचित अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री का संग्रह करवाया, क्योंकि शादी ब्याह में तो समय लगता ही है और बहुत सारी चीजें देनी होती हैं। तो उसने संग्रह करवाया, हिमालय ने चावल तथा चूरों के पहाड़ लगा दिए, उसी प्रकार गुड़ चीनी नमक के ढेर लगा दिए, दूध दही तथा घी की बावड़ियां बना डाली। देखिए, बावड़ी बना डालना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शिव पार्वती का विवाह था तो पूरे संसार से लोग आने वाले थे, तो अब किसी को वो मना तो कर नहीं सकते थे, तो इसलिए उसने बावड़ी बना दी। जौ गेहूं के आटे का संग्रह करा दिया, लड्डुओं पूड़ियों स्वस्तिकों चीनी के ढेर लगा दिए, अमृत तथा ईख के रसों से बावरियां भर गईं, मक्खन आसव तथा अनेक प्रकार के पकवान तथा स्वादयुक्त रसों के ढेर लग गए, अनेक प्रकार के व्यंजन जो देवताओं तथा शिव जी के गणों के लिए बनाए गए थे, बहुमूल्य अनेक प्रकार के शुद्ध वस्त्र, अनेक प्रकार के मणि रत्न सोने चांदी से बने हुए आभूषण तथा पात्रों को विधि पूर्वक संग्रह करके शुभ मुहूर्त में हिमालय ने मंगलाचार आरम्भ कर दिया और पर्वत की स्त्रियाँ पार्वती का श्रृंगार करने लगी। देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, और इसमें अतिशयोक्ति हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि युग पुरुष का युग स्त्री से विवाह हुआ था, काल पुरुष का काल स्त्री से विवाह हुआ था, तो होगा तो ऐसा ही। विवाह कोई साधारण मनुष्य का तो था नहीं, साधारण नर और नारी का था नहीं, ये प्रकृति का पुरुष के साथ संयोग था। और प्रकृति यानी संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण जगत, संपूर्ण माया के साथ, सौंदर्य के साथ विराजमान थी, और उन माया के मायापति उनसे मिलन के लिए आ रहे थे। उनका विवाह होने वाला था, प्रकृति का पुरुष से परमेश्वर से विवाह होने वाला था, तो ऐसा अचंभा, ऐसा अद्वितीय तो होना ही था। कहते हैं कि मंगलम कर्तुम आरभे गिरिर्मंगल कृद्दिने संस्कारम कार्यामासु पार्वत्या पर्वत स्त्रिय ता मंगलम मुदा चक्रुर्भूषिता भूषण स्वयं पुरद्विज स्त्रियो हृष्टा लोकाचारम प्रचक्रिरे सोत्सवम विविधम तत्र सुमंगलपुर सरम हिमालयो अपि हृष्टात्मा कृत्वाचारम सुमंगलम। अब कहते हैं मंगल ही मंगल था हर तरफ, क्योंकि मंगल पुरुष का मंगल स्त्री से विवाह हो रहा था, तो फिर मंगल ही मंगल क्यों नहीं होता। अब देखिए, कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में हिमालय ने मंगलाचार आरंभ कर दिया और पर्वत की स्त्रियां पार्वती का श्रृंगार करने लगी। वे स्वयं अनेक आभूषणों से सुशोभित होकर मंगलाचार करने लगी और ब्राह्मणों की स्त्रियां भी उस लोकाचार में सम्मिलित हो वहां मंगलाचार के साथ हिमालय भी लोकाचार करने लगे। बंधुओं के आने से वह प्रसन्न हुआ। इसी बीच उसने दूसरे बंधु बांधवों को भी निमंत्रित किया। वे सब अपने स्त्री पुत्र नौकर चाकरों के साथ आए। हे देवर्षि, उन पहाड़ों के आने की चर्चा आदर से सुनो, मैं संक्षेप से शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कह रहा हूँ। देखिए, अब पहाड़ों की चर्चा है। कवि जो है, कौन है लेखक इसके? वेद व्यास है। वेद व्यास, जो व्यास यानी कि व्यापक, और व्यापक रूप से वो वर्णन कर रहे हैं। और पुराण का वर्णन कब किया गया है वेद व्यास के द्वारा? जब वो महाभारत लिख करके बहुत ज्यादा उद्विग्न हो गए थे, क्योंकि महाभारत में युद्ध की चर्चा थी और रक्तपात की चर्चा थी, हत्या मारकाट की चर्चा थी, तो वे बड़े उद्विग्न हो गए थे। तो उन उद्विग्न वेद व्यास को नारद जी ने कहा कि आप भक्ति का की गंगा बहाइए तो आपको आनंद आएगा। तो भक्ति की गंगा बहाने में भक्त को भी उतना ही आनंद आता है जितना कि पाठकों को, श्रोताओं को आनंद आता है। जैसे कि हमको, आपको आनंद आ रहा है भक्ति रस में अवगाहन करने पर, अब श्रोता गण सुनेंगे तो उनको भी आनंद आएगा। हम भाव विभोर होकर के इसे पढ़ रहे हैं, भाव विभोर होकर के इसे सुन भी रहे हैं, और हमें लग रहा है कि वास्तव में शिव पुराण है तो क्या।
1: लीना जी, यह जो जिस प्रकार से यहाँ वर्णन किया जा रहा है पार्वती और शिव के विवाह का और तैयारियों का, तो ऐसा लग रहा है कि हम बैठे हैं और सामने ये सारा कुछ हो रहा है, सारा विवाह का वर्णन हो रहा है, विवाह की तैयारियाँ हो रही हैं, और सारे सीन ऐसा लग रहा है कि हम लोग भी देख रहे हैं, हम भी शामिल हो रहे हैं, तो वो जो आनंद हम महसूस कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगी अपने श्रोताओं से कि हर व्यक्ति, हर श्रोता उस आनंद को महसूस करे, क्योंकि
0: ये अपूर्व दृश्य है,
1: अपूर्व दृश्य,
0: अभूतपूर्व दृश्य है, रोमांचक दृश्य है।
1: जी जी,
0: तो इस दृश्य का वर्णन वेदव्यास जी किस तरह से भाव विभोर होकर कर रहे हैं, यह हमें सुनना चाहिए। अब देखिए, पर्वतों के विषय में वो वर्णन कर रहे हैं। हम लोग कितने पर्वत का नाम जानते हैं, हिमालय है, अरावली है, सतपुरा है, सतपुरा के घने जंगल, अरावली के पर्वत है, सतपुरा के घने जंगल,
1: देखा तो सबने एक दो को ही
0: है, आल्प्स है,
1: नाम है,
0: तो बहुत सारे पर्वत, अगर हम नाम लेना चाहें तो बस गिन करके 10-15 पर्वत के नाम लेंगे। अब यहाँ वेदव्यास जी कितने पर्वतों का नाम ले रहे हैं, और हर पर्वत एक से एक बढ़कर, जिनके नाम हम जानते भी नहीं है, लेकिन उस समय ये पर्वत तो अवश्य होंगे, तभी उन्होंने नाम लिया है। अब देखते हैं किन किन पर्वतों का इन्होंने नाम लिया है। वो कहते हैं वेदव्यास जी कि आजगमु स स्त्रियो हिष्टा स सुता स परिच्छदा तदेव शृणु देवर से गिरिया गमन आद्रिता वर्णयामी समासेन शिव प्रीति विवृधय देवालय गृढ़ ही दिव्य रूप धरो महान। अब वो देवालय पर्वत के विषय में बताते हैं। हाँ। हिमालय तो है ही।
1: हाँ।
0: अब देवालय पर्वत है। हाँ। कहते हैं देवालय नाम के महान पर्वत दिव्य रूप धारण कर, अनेक रत्नों को धारण कर अपने समाज तथा परिवार के साथ आए। वे अपने साथ अनेक मणि तथा रत्न लेकर पहुंचे। अब देवालय पर्वत का वर्णन करने के बाद वो किसका वर्णन कर रहे हैं, मंदराचल, जिनका नाम हमने हमेशा सुना है, मंदराचल। वो कहते हैं कि सुवेशा अलंकृता श्रीमान जगाम च हिमालयम नाना रत्न परिभ्राजत समाज सपरिच्छद नाना मणि महारत्न सारन आदाय यत्नतः। सुवेशा अलंकृतः श्रीमान जगाम च हिमालयम मंदर सर्वसौभाग्य स नारी तनयो गिरो। अब वो कहते हैं कि श्रीमान मंदराचल सुंदर वेश धारण कर, अनेक रत्नों को धारण कर अपने समाज तथा परिवार के साथ आए। वे अपने साथ अनेक मणि तथा रत्न लेकर पहुंचे। श्रीमान मंदराचल सुंदर वेश धारण कर स्त्री पुरुष सहित हिमालय के घर पधारे। अब आम व्यक्ति में जिज्ञासा हो सकती है कि ये पर्वत थे तो आए कैसे, सुंदर वेश धारण कर कैसे आए, तो ये जिज्ञासा भी यही शांत हो जानी चाहिए कि वास्तव में ये पर्वत, ये नदियाँ, ये सभी आत्मावान थे, वो जो चाहे रूप धारण कर सकते थे। अब जैसे अगस्त्य मुनि की पत्नी है लोपामुद्रा, आज वो नदी के रूप में है दक्षिण भारत में, तो नदी क्यों बनी, क्योंकि उस जगह पानी नहीं था, कहीं भी पानी नहीं था, और अगस्त्य मुनि बड़े परोपकारी थे, मुनि थे, ऋषि थे, बहुत परोपकारी थे, उन्होंने अपनी पत्नी को नदी बना दिया। गंगा नदी बन गई, यमुना नदी बन गई, कोशी नदी बन गई,
1: आज भी लीना जी इनको माता की गंगा माता, यमुना मैया, माँ कहकर ही पुकारते हैं इनको।
0: जी, जी।
1: तो और ये जब हमारा महाभारत हम देखते हैं तो भीष्म अपनी माँ गंगा को सामने ही जब प्रार्थना करते थे वो आती थी,
0: बिल्कुल,
1: तो साक्षात अभी भी अगर कोई बिल्कुल सात्विक मन से माँ गंगा को पुकारे, माँ यमुना को पुकारे, वो अपना उसी रूप में दर्शन देती हैं।
0: जी।
1: तो यह सत्य ही है कि पर्वत राज भी उस समय अपने अपने
0: रूप में
1: सब पधारे होंगे,
0: पधारे
1: जी।
0: तो सबसे पहले उन्होंने देवालय का वर्णन किया, फिर मंदराचल का वर्णन किया। अब कहते हैं कि दिव्यात्मा तथा बुद्धि वाले, उदार बुद्धि वाले, अस्ताचल भी एक पर्वत है, देवालय, मंदराचल, अस्ताचल, अनेक प्रकार के उत्तम उपहारों को अपने साथ लेकर वहाँ गए। अत्यंत शोभा वाले उदयाचल, देखिए हमें नाम भी याद हो रहा है कि उदयाचल, अस्ताचल, देवालय, मंदराचल, तो प्रसन्नता पूर्वक उत्तम प्रकार के रत्नों तथा मणियों को लेकर वहाँ आए। महान सुखी उत्तम परिवार वाले मलय गिरिराज भी आदर पूर्वक आए। मलय पर्वत का तो नाम सभी जानते हैं, क्योंकि वहाँ से मलयालिन यानी कि मलय पर्वत से जो हवा, सुगंधित हवा बहती है, वो कहा जाता है कि मलय पर्वत से आई होगी। तो सुगंधित, क्योंकि वहाँ चंदन के वृक्ष हैं और चंदन के वृक्षों से टकरा करके जब हवा चलती है तो वो क्या होता है, सुगंधित हो जाता है। तो कहते हैं मलय पर्वत भी आए, भली भांति सज धज कर बहुत सी सेना को लेकर स्त्री सहित प्रसन्न चित दर्दुन नामक पर्वत शीघ्र वहां आए। मंदरा चलाए, अस्ता चलाए, उदया चलाए, देवालय आए, मलय पर्वत आए, दर्दुन आए। फिर हे तात, अनेक प्रकार से सुसज्जित प्रसन्न चित विशत पर्वत भी सपरिवार हिमालय के घर आए। भाग्यवान गंधमादन पर्वत भी स्त्री पुत्रों सहित प्रेम से हिमालय के घर आए। कहते हैं महेंद्र पर्वत श्रेष्ठ आजगाम हिमालयम सगण ससुत स्त्री को बहुशोभा समन्वित परियात्रो ही हृष्टात्मा मणि रत्ना करैर युतः सगण सपरिवार आययो हिम भूधरम। क्रौंच पर्वतराजो ही महाबल परिच्छद आजगाम गिरिश्रेष्ठ समुपायन आदृत। अब देखिए अनेक प्रकार की संपत्ति को लेकर करवीर पर्वत भी वहां पहुंचे और पर्वतराज महेंद्र भी हिमालय के घर निमंत्रण में पधारे। अपनी स्त्री पुत्र तथा सेवकों को तथा मणिरत्नों को साथ लेकर प्रसन्नचित पारयात्रे भी आए। पर्वतराज क्रौंच भी अपने परिवार सेवक तथा सेना के साथ हिमालय के घर पहुंचे। पुरुषोत्तम नामक शैल भी अनेक प्रकार के उपहारों को लेकर अपने समाज सहित आदर पूर्वक हिमालय के द्वार पर आए। नील पर्वत आनंद के साथ पुत्र पुत्री स्त्री तथा बहुत सा धन लेकर हिमालय के घर आए। त्रिकूट चित्रकूट वेंकट श्रीगिरी गोकामुख, गोकामुख कहा गया भारतवर्ष में स्थित ये एक विशेष पर्वत है, तो गोकामुख तथा नारद ये पर्वत भी हिमालय के घर पहुंच गए। पर्वतराज विंध्याचल भी स्त्री पुत्रों को साथ लेकर तथा अनेक प्रकार की उपहार की वस्तुओं को लेकर प्रसन्न होकर वहां आए। कालंजर नामक महापर्वत अत्यंत प्रसन्न होकर अपने अनेक गणों के साथ हिमालय के घर आए। गिरिराज कैलाश भी, कैलाश जहां शिवजी वास करते हैं, क्योंकि शिवजी तो उस समय हिमालय पर वास कर रहे थे, तो गिरिराज कैलाश भी अत्यंत प्रसन्न होकर सबके ऊपर कृपा करते हुए वहां आए। ये सभी उन पर्वतों के अधिष्ठात्री देवता थे। हे नारद, दूसरे द्वीपों में भी जो जो पर्वत थे और इनके अतिरिक्त जो भारतवर्ष में पर्वत थे वे सभी हिमालय के घर आए। अभी तो पर्वतों का वर्णन चल रहा है और कितने पर्वतों का वर्णन उन्होंने कर दिया। ये सारे पर्वत आए और जिन पर्वतों का वर्णन नहीं किया है वो भी हिमालय के घर आए। कैसे? कहते हैं कि दूसरे द्वीपों में भी जो जो पर्वत थे और इनके अतिरिक्त जो भारतवर्ष में पर्वत थे वे सभी हिमालय के घर आए। हे मुनि, हिमालय द्वारा निमंत्रित सभी पर्वत प्रसन्नता पूर्वक शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए वहाँ आए। अब यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगी कि एक बार मैं गई थी यहाँ केदारनाथ। केदारनाथ से लौटते हुए एक जगह पड़ी जहाँ पर शिव पार्वती का विवाह हुआ था। अच्छा। सतयुग में विवाह हुआ था उनका, लेकिन आज तक वहाँ अग्नि जल रही है ऐसा उन लोगों का कहना है। अच्छा। और अग्नि जल रही थी, बहुत बड़ा यज्ञ कुंड था और उसमें जो भी जाते हैं एक लकड़ी डाल करके आते हैं। अच्छा। तो हम लोगों ने भी डाला एक एक लकड़ी और वो सच में अग्नि वहाँ जल ही रही है। क्या सच है नहीं है ये तो जो ज्योतिषी हैं वो सब बताएंगे, लेकिन चूंकि हम लोग भक्ति करते हैं तो जो देख रहे हैं वही सत्य है। हम ऐसा सोचते हैं कि जो शंकराचार्य आदि ने वर्णन किया है वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि शंकराचार्य के विषय में कहा गया है कि जब सारे मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गए थे और पता भी नहीं था, और ये बौद्ध धर्म जैन धर्म का प्रभाव अपने देश में था और वैदिक धर्म बिल्कुल ही समाप्त प्राय सा हो गया था, तो उस समय शंकराचार्य ने सब कुछ पुनर्जीवित किया, पुनरोद्धार किया। उसी पुनरोद्धार प्रकरण में उन्होंने देखा जहाँ महिष मर्दिनी ने महिषासुर का वध किया था वो जगह भी उन्होंने देखी अपने ज्ञान चक्षु से और फिर उसका भी पुनरोद्धार किया। तो केदारनाथ से नीचे आने पर बहुत सारे ऐसे मंदिर आपको मिल जाएंगे जिनका शंकराचार्य जी ने उद्धार किया है, आदि गुरु शंकराचार्य ने, और उसी में ये मंदिर भी पड़ा था रास्ते में। जहाँ पर हम लोगों ने भी यज्ञ किया।
1: ये भी हमारे श्रोताओं को ज्ञान मिल गया। तो लीना जी, क्योंकि एपिसोड्स को समाप्त होने का समय हो चला है, तो दोस्तों हम सब अपनी तरफ से और आपकी तरफ से मैं लीना जी का धन्यवाद करती हूँ। तो लीना जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद,
0: धन्यवाद
1: कि आपने इतना अमूल्य रत्नों से, अमूल्य ज्ञान से हम सबको कृतार्थ किया। अब मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, क्योंकि अगले एपिसोड में पुनः हम लीना जी के साथ यहीं पर मिलेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइव।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मबोध। और हर बार की तरह हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। चलिए इनसे इनका हाल चाल जानते हैं। गुड मॉर्निंग।
1: ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
2: ओम शांति। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे।
0: आप भी अपनी शुभकामनाओं के लिए हमें मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट करें। नंबर है 8010781078। हर हफ्ते हम चले आते हैं गीता के ज्ञान को लेकर के, जहां हम बहुत सारी बातें आप लोगों से करते हैं। गीता के ज्ञान में इतना सब कुछ है ना कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कई लोग जिन्हें हम देखते हैं वो ये कहते हैं कि गीता के ज्ञान ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो चलिए अब अपनी जिंदगी को बदलते हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, इतने बिजी हैं कि क्या बताएं। उनसे कुछ पूछो तो यही कि यार हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम कैसे कुछ नया करें। तो रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर हमने शुरू किया गीता का ज्ञान प्रोग्राम है आत्मबोध, और इसमें आपको गीता के ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और इन सब के जानकारी के लिए हमारे साथ बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी होती हैं। दूसरे अध्याय पर हैं हम लोग, जिसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में काफी सारी डिटेल में बातें बताई बीके प्रिया जी और ज्योति जी ने, लेकिन इसमें एक और है लेसन जिसका नाम है आप आत्मा हैं। आत्मा के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम ज्योति जी और प्रिया जी से जानते हैं और बढ़ते हैं ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी, ये जो है इसमें लिखा है आप आत्मा है, ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह से, मतलब किस तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है, आप अपने तरीके से समझाएं सभी लिसनर्स को।
2: जैसा कि दूसरा अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, और अर्जुन क्योंकि विषाद में है तो सबसे पहले खुद का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को भूल जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है वो पूरा ही अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पर ही फोकस कर रहा है कि हम कौन हैं और हम क्या बन करके चल रहे हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा भी कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूये अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हरन्ते हन्यामाने शरीरे। अर्थात है कि यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है, बल्कि यह अजन्मी नित्य सनातन और पुरातन है। मन शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अमर अमर अविनाशी है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है, और प्रथम अध्याय में भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। और उसका जो स्वधर्म है, उसका स्वधर्म क्या है, वो श्री कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात हम सब आत्माओं को बता रहे हैं कि किसी भी, अगर हम स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात आत्मिक धर्म में टिक जाएं, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। तो वहां उनको वो क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं आता। तो इसमें ये बताया गया कि स्वतंत्र आत्मा किसी भी तरह के बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो फ्री है, वो अपने डिसीजन ले सकती है, क्योंकि वो राजा है और ये शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं वो उसकी प्रजा है, उससे उसे कार्य करना है और उसके वशीभूत ना हो जाए। आज हम क्या हो गए हैं, बाहर की जगत की बात बाद में करें, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं।
0: बिल्कुल,
2: हमारी ही इंद्रियां, हमारी आंख जो चीज देखती है, जो चीज पसंद करती है, बस मन वही भाग रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो हमारे कान जिन बातों को सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कहीं प्रवचन होंगे या कोई आपकी गली के अंदर भी आप देखें कि कोई कहीं कथा हो रही है, तो लोग पूछेंगे कि क्या वहां से इनविटेशन आया है, बुलाया गया है, तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते हैं। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे पहुंचे चले जाते हैं
0: बिन बुलाए मेहमान।
2: जबकि हर कोई चाहता नहीं है कि कोई वो चीजें सुने। तो माना कहीं ना कहीं हमारी कान की इंद्रियों को रस मिलने लगा है उस नेगेटिव बातों में। तो हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं और मन भी उसी में रमने लगा है। तो यहाँ पर इस अध्याय में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। आत्मा इस शरीर में राजा है और आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन के ये तीन तो शक्तियां हैं, लेकिन आत्मा अपने स्वधर्म कौन कौन से गुण हैं उसके, मूलभूत गुण अगर कहें, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे डे बाय डे में आत्मा तमोगुणी बन गई है। तो सतोगुणी क्यों कहा गया, क्योंकि आत्मा के सात गुण हैं। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में ले तो कहा जाता है K P square L H B P अर्थात K फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, P फॉर प्योरिटी, जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर P फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, P फॉर पीस, L फॉर लव, H फॉर हैप्पीनेस, B फॉर ब्लिस और लास्ट P पावर। तो ये सात गुण आत्मा में निहित है। इन जब सातों गुणों को आत्मा महसूस करती है, उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा सतोगुणी कहलाती है। अब हम सब देखें अगर तो मनुष्य के मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्या, कहीं ना कहीं इसी धुरी में जाकर के टिक जाते हैं। आज इस ज्ञान की भी अज्ञानता हो गई है। ज्ञान को हम सब सोचते हैं शायद किताबी ज्ञान, लेकिन अपने प्रकृति का ज्ञान, खुद का ज्ञान होना, मानव वही संपूर्ण ज्ञान है, खुद के बारे में जानना। आज हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता है,
3: खुद के मन में क्या है
2: वो नहीं पता है, नहीं ना पता। उससे हम दूर हैं। तो मन की अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान। प्योरिटी अर्थात पवित्रता, जो पवित्रता हमारे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना ना आए, उसको कहा गया प्योरिटी। और शांति, शांति की अगर बात करते हैं तो शांति जो है वो क्या चीज है, शांति के लिए लोग सोचते हैं शायद चुप बैठ जाना है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक राज्य के अंदर ऐलान किया गया कि चित्र बनाना है शांति के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें से दो चित्र डिसाइड किए गए, दो चित्र चुनाव करके आए। एक चित्र था जिसके अंदर बहुत सारी प्रकृति थी, ग्रीनरी थी, और एक चित्र था, अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं शांति के रूप में, अगर आपको कहा जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
3: मैं अगर बोलूं तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, यही होता है।
2: जी बिल्कुल, उन्होंने भी एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति, नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो ऑफिस से कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं, क्या वो नेचर वाला या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा भवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
3: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है और वो शांति से अपने बच्चों को खिला रही
2: है। तो यही चीज जो है वहाँ पे उसी चित्र को ही वहाँ पर भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया, और उस चित्र में से यही तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियां आती है तब भी हम स्टेबल रहे, उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है, जबकि प्रेम कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो, माना हर एक आत्मा से, हर एक प्रकृति की जीवों से, पंछियों से, हम पेड़ पौधों से समान भाव से प्यार करें, उसको कहा गया प्रेम। फिर आती है बात सुख की, तो जीवन में जब शांति आती है, प्रेम आता है, तो सुख की अनुभूति होने लग जाती है। और फिर लास्ट आनंद है, और आनंद का कोई विपरीत अर्थ शब्द नहीं है, आनंद अपने आप में ही बहुत परफेक्शन के साथ है, उसको ब्लिस कहा गया, और इसका कोई विलोम शब्द नहीं, क्योंकि पवित्रता का फिर भी अपवित्रता है, शांति का अशांति है, प्रेम का क्रोध है, लेकिन आनंद माना जो परमानंद की अनुभूति कराए। और लास्ट है, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में परफेक्ट हो जाती है। और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं। ये मैं और मेरा, मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम अपनी परफेक्शन में आ जाएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे।
3: बिल्कुल, और ये जितनी भी सात चीजें आपने बताई हैं, इसको कहीं बाहर से कमाना नहीं है या किसी से अर्जित नहीं करना है, ये सारी अपने अंदर है, बस इसको जानना है, इसको समझना है, बाकी भगवान ने ये इन बिल्ड हमारे लिए रखी है। बिल्कुल सही कहा, हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते, और वही आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर आप खुद को जान लेते हैं, बस वही एक आत्मा का पाठ है, वही जो है पूरा परफेक्ट है आप खुद में। बहुत सही बात बोली। गीता के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और अध्याय दो है, नाम है ज्ञान योग, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक आत्मा है के बारे में। ज्योति जी ने बहुत खूबसूरती से बताया, और अब हम प्रिया जी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में आगे क्या है। प्रिया जी बताइए।
4: आगे जैसा कि हम देखते हैं कि अर्जुन को वो बार बार याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा कि तुम्हें युद्ध करना ही है, जिसके लिए वो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थात पार्थ, अर्थात जो उनका स्टूडेंट अर्थात अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम चाहे मरकर के स्वर्ग पहुंचो या फिर जीवित रहकर युद्ध करके इस पूरी सृष्टि पर जीत प्राप्त कर सुख को भोगो, तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट यही है कि तुम युद्ध करो। तो क्योंकि सिंपल कुछ किए बिना जाना और कुछ करके जाना, उसमें बहुत फर्क होता है। तो यहाँ उनको वो बार बार याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध करना है, और युद्ध करने में हम कॉन्शियस ये नहीं हुए कि कौन जीतेगा या हारेगा, हमें कॉन्शियस होना है कि हमारी फाइट अच्छे से हो। तो फिर बात यहाँ आती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि क्या हमें फिजिकल फाइट के लिए परमात्मा प्रेर रहा है, हमें वो गाइडलाइंस दे रहा है कि शुड वी गेट द वेपन्स, कि हमें हथियार उठाने हैं। पर यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे गुणों के हथियारों की बात करता है कि जहाँ मेरा मेंटल फाइट है, जहाँ द्वंद है, जहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, जहाँ डिलेमा स्टार्ट होते हैं, वहाँ मैं अपने फोकस करूं इंटरनल शक्तियों पर, जैसा कि ज्योति जी ने बताया कि ये सब चीजें मेरे पास, मुझे परमात्मा से आपने कहा इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो उस पर अगर मैं फोकस करता हूं तो मेरी ये फाइट मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है
3: जी।
4: और फाइट मुझे करनी ही है, बिना फाइट किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इसी योग को जो आपने कहा ज्ञान योग, अध्याय का नाम है, तो यहाँ पर परमात्मा हमको संपूर्ण ज्ञान का परिभाषा, डेफिनेशन, वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। मीन्स अगर मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, तो मैं अगर पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान भी अर्जित कर लेता हूँ तो भी मैं इनकम्प्लीट हूँ। और दैट्स वाई देखा ये गया है कि जब हम हायर लेवल पर किसी बुलंदी पर किसी को देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है, और वो क्या रह गया है कि खुद को जाना और खुद के बाद खुदा को पाना। ये चीज जो हमारी जिंदगी में रह जाती है, उसी के लिए हमारे को परमात्मा या कृष्ण रूप में हमारे को बता रहे हैं। उसके बाद वो हमारे को याद दिलाते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि संस्कार, जैसे कि ज्योति जी ने कहा, तो मन जो है वो कई तरह के थॉट्स को क्रिएट करने की एक फैक्ट्री है। बस इस फैक्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो कर रहा है, यानी थॉट्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा माल आर का माल है, मीन्स रिजेक्टेड है। तो जिसमें बुद्धि हमको हेल्प करती है कि क्या रिजेक्टेड है, क्या सही है, क्या गलत है। जैसे मन नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी, वेस्ट, टॉक्सिक, एलिवेटेड, राइट थॉट्स, बहुत तरह के थॉट्स करता है और हमारे को बुद्धि गाइड करती है कि एलिवेटेड मीन्स ऐसे थॉट्स जिसमें हम सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है। जबकि उसी के बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहां हम सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान की बातें सोचते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, यानी वो व्यक्ति कितना ही टॉक्सिक थॉट्स में भरा हुआ होगा तो इसीलिए उसे टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आता है संस्कार। संस्कार एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है, जैसे कि प्लेन्स में भी एक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सब कुछ, उसी प्रकार से आत्मा में अपने आप एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे हैं सबका हिसाब करने पर, नहीं, ये इंटरनली ही हम सोल के साथ ही फीड है, बिल्ट है, कि जो हमारा बुद्धि है, अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है, वो धर्मराज का फॉर्म है, और जो हमारे संस्कार्स हैं, जो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट है, वो चित्रगुप्त है। और चित्रगुप्त को अगर हम उल्टा कर देते हैं दोनों शब्दों को तो वो बनता है गुप्त चित्र, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गुप्त रीति हर चीज सेकंड बाय सेकंड रिकॉर्ड हो रही है
3: जी।
4: और जब एंड ऑफ द डे यानी जब मृत्यु आती है तो व्यक्ति को ऊपर जाके नहीं, उस लास्ट मोमेंट्स में ही बुद्धि और संस्कार का, जो यहाँ पर धर्मराज और जो मैंने कहा चित्रगुप्त का फॉर्म है, वही वहाँ अंदर ही अंदर सब कुछ डिसाइड होता है और फिर उसको नेक्स्ट बर्थ जो है मिलता है। और कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति इसीलिए डेफ, डम्ब और ब्लाइंड हो जाता है, उसको बाहर के दुनिया से कट जाता है। उसके बाद उन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे आप कर्म करते हो तो कर्म करना है तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करना है। और उन्होंने विशेष ये कहा कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संलुप्ते दुतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं तो उस ग्लास की समुद्र के आगे खड़े होने पर कोई वैल्यू नहीं रहती।
3: बिल्कुल।
4: तो उसी प्रकार से परमात्मा को अगर मैंने पा लिया है तो वो शास्त्रों का वहां पर वैल्यू उस ग्लास के लेवल पे ही होता है कि जब शास्त्रों का ज्ञाता सागर मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर परमात्मा अर्जुन को ये याद दिलाते हैं, जैसे कहा कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इस क्षेत्र में आना, कुरुक्षेत्र जैसे बताया कि कर्म क्षेत्र, आप चाहे किचन में हैं या बेड पे सो रहे हैं, देन टू आप कुछ तो कर ही रहे हैं। अगर आप सिर्फ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो भले वो एक्शंस नहीं है, कर्म नहीं है, पर वहीं कर्म को कराने का एक हिस्सा जरूर है। तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं। तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है। इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भुर्माते संगोऽस्त्व अकर्मणे, अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है, एफर्ट्स, वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि हम डर चुके होते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम फुल्ली उसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से भी, शेकिंग रहने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। और फिर लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कर्म जो करना है वो एकदम ऐसे, जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कहा कि ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को कहा कि कर्म कैसे, मतलब उन्होंने पूछा कि कर्म कैसे करें, तो उन्होंने कहा कल जब आना तो कटहल लाना, चाकू लाना और तेल लेके आना। व्यक्ति नहीं समझ पाया कि क्यों। तो फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचा तो बोला कि अब तुम कटहल को काटो। तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है, वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता, अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं कि कर्म हमको अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोल दें, लगा लें, तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
3: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई समझाने के लिए, बहुत मजा भी आया और काफी कुछ हमें समझ में आया। और साथ ही हम तो प्रिया जी और ज्योति जी से जुड़े ही हैं, साथ ही आपसे भी जुड़े हैं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं ज्योति जी या प्रिया जी से, हमारा नंबर है 8010781078। गीता का ज्ञान चल रहा है, अध्याय 2 है जिसका नाम है ज्ञान योग। हम एक आत्मा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और काफी सारी नॉलेज, काफी अच्छी बातें हमें ज्योति जी और प्रिया जी से जानने को मिल रही है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और उस वक्त अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातें हैं, वो हम ज्योति जी से जानते हैं।
2: कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम तैव कवता मनीषिण, जन्म बंध विनर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात इसका भावार्थ कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनकी बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर, माना कर्मों से अतीत होकर, कर्म की चिंता ना करके, निर्विकार ही परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ यह है कि कर्मों के फल की आसक्ति स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। इसमें दूसरा जो श्लोक कहा गया उसमें स्थित प्रगस्य का शब्द का यूज किया गया है। तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, परमात्मा से कहते हैं कि हे केशव, ये बताओ कि स्थिर प्रग, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण है, किसको कहेंगे हम जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो एक रस स्थिति वाले हैं, जिनकी कर्मातीत अवस्था पहुंच गई है जिनकी, तो उनकी क्या क्या विचारधारा होगी। तो वहां श्री भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, सभी कामनाओं का त्याग कर, जो व्यक्ति त्याग कर देता है और आत्मा से, माना आत्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञा है। तो वहां पे माना, क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं है, जहां कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं, तो वहां ना तो, और मनुष्य जो स्थित प्रज्ञ होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी पदार्थ की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत, अर्थात मन में लगाएं आइस फैक्ट्री, मुख में लगाएं शुगर फैक्ट्री, अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री, अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा, माना संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती हैं। हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है उसका किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम शरीर से जुड़े हुए होते हैं तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है तो हमारी खुद की स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से ली, आपने पहनी भी, लेकिन वो आपको कंफर्ट नहीं हो रही है तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी है। इसी विधि से जब हम कोई चीज आकर्षण में तो आकर्षित हो जाते हैं, देह को देख रही है चीजें उसमें आकर्षित, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है तो वो हमारे दुख का कारण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मन की स्थिति, एक बार एक व्यापारी थे और उनको, हीरो के व्यापारी थे, तो उनके एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप जो है एक बहुत अमूल्य हीरा खो गया है। तो बैठे थे अपने सभी, कई साथ में साथी बैठे थे, वो दो मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है। उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए, अगर शायद हम वहां हों प्रैक्टिकली सोच के देखें तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला देंगे, हम फटाफट किया अरे इतना अमूल्य हीरा खो गया कहाँ खो गया। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहां पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी, व्यापारी से भी जब पूछा तो वहां पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं हिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थिर प्रज्ञ स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं, वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है। आज कई चीजों का भय लोगों को सता रहा है, अंधकार का भय है, चीजों को खोने का भय है, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों से व्यक्ति भयभीत है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। और फिर क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी मन को स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो अपने आप में थोड़े समय के लिए आया हुआ कहा जाता है पागलपन है जो बहुत कुछ विनाश कर देता है। तो यहाँ पर कहा भी गया, एक बार एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी थे और उनका एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र थे, उस शास्त्रार्थ के अंदर उनकी ही पत्नी निर्णायक के रूप में बैठी थी मंडन मिश्र की, और उस चीज में बहुत देर से शास्त्रार्थ चल रहा था और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि जीता कौन है। तो कुछ समय के लिए उनकी पत्नी को वहां से उठ के जाना पड़ा और उन्होंने उनके गले में, दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी, और फूलों की माला डाली तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक ये फूल, ये जो मालाएं हैं, ये मेरी जगह लेकर के कार्य करेंगे। तो जब वो आई काफी देर के बाद और पूरी शास्त्रार्थ कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज, फिर उन्होंने निर्णय भी दिया, उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य विजयी हैं। तो सबने पूछा उसकी, आपने तो इस बीच में आप थे भी नहीं तो आपने कैसे निर्णय ले लिया, तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं उनको क्रोध आया है और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध कभी भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो उन्होंने जिस चीज की बात कही कि उन्होंने जैसा निर्णय दिया कि जो व्यक्ति कोई भी चीज का ज्ञान रखता है, मन की स्थिरता रखता है, तो उसके अंदर किसी भी राग भय या क्रोध से वो मुक्त होता है। उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है, और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे।
3: बिल्कुल।
2: इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे, जब मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा जिस कार्य को करना चाहूं उस समय ही मैं एक्टिव मोड में हूं, अदरवाइज मैं अपनी शांत स्थिति में, अपनी संपूर्ण स्थिति में अपने अंदर आनंद का अनुभव करें। और यही चीजें आप देखते जाएंगे, जो जो लोग ज्ञान को समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां देखी भी हैं लेकिन बहुत बखूबी उनको निभाया है, तो वो धीरे धीरे बहुत काम डाउन हो जाते हैं और उनकी स्थिति एकदम शांत हो जाती है। और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए और स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए, अर्थात अपने मन को स्थिर रखने के लिए, इन सारी चीजों से हमें पहले जरूरत है खुद खुद को रियलाइज करने की।
3: जी, और वही ना, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो उससे पहले जो आप हैं
2: जी
3: आपको बदलना पड़ेगा
2: जी।
3: आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा, आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी आप उस आगे बढ़ते हुए ज्ञान को समझ पाएंगे, आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली हैं, और अध्याय दूसरा है ज्ञान योग है, इसमें बहुत सारे श्लोक और उसके जो भावार्थ प्रिया जी और ज्योति जी ने बताए हैं ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हम तक पहुंचाए। और ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, अब आप जल्दी से इसके आगे के बारे में बताएं।
2: जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि जब हम किसी एक चीज को बार बार फोकस्ड करते हैं तो उसी आधार पे हमारी बुद्धि वैसे ही चलने लगती है। तो अगला जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नावम इवम भस्सी माना। अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नाव तैरती है और नाव के प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है अगर बहुत तेज वायु चल रही है, तो इसी प्रकार जब विचारशील व्यक्ति होता है तो उसकी इंद्रियों पर, मतलब जो इंद्रियां हैं, अगर वो किसी एक चीज पर फोकस्ड हो गई है, बार बार उसी चीज को देख रही है, वही इंद्री एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसको कहा जाएगा कि वो स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि यहाँ इस पूरे ही इसमें आत्मा का और स्थिति की ही बात की जा रही है। माना कहने का अभिप्राय अगर हम इसको देखें, सिंपल वे में देखें, तो जो राजा की पोजीशन है वो राजा की पोजीशन एक है कि आपने पहन लिया, मुकुट पहन लिया, ड्रेस पहन ली और वो सारी चीजें आप रेडी होकर के सिंहासन पर बैठ गए, वो राजा नहीं है। राजा माना जिसके अंदर वो राजापन की क्वालिटीज हो, जो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वो पोशाक ही पहननी है, जरूरी नहीं है हमें सर पर ताज ही लेना है, लेकिन वो राजा वाली जो डिसीजन वाली क्वालिटीज है वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज वही राजा जो आत्मा इस शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी हैं, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली। इसीलिए आज हम जो राज्य जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं। और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस्ड करें। कहा जाता है, इसमें बहुत अच्छी एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज 3 बजे से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, पूरी रात वो जागते रहते हैं, 3 बजे से उनकी नींद का समय शुरू होता है। और जो ज्ञानी होगा, आत्म संयमी होगा, वो उसके जागने का समय है। यहाँ रात्रि की बात उस 3 बजे के समय से कही गई है, 3:30 के टाइम से कही गई, 4 बजे जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया। तो अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अपनी आत्मा, अपनी आत्म स्वरूप में टिकना है और अपनी स्थिति को भरपूर बनाना, उसके लिए सबसे अच्छा समय दिया गया अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है और हम डिसीजन देख सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में, हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं, हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट

0: جی بہت خوب کہا جوتی جی نے, اور اسی کے ساتھ اب جو ہمارا ادھیائے ہے وہ ختم ہو چکا ہے, یعنی کہ جو سیکنڈ ادھیائے ہے وہ ختم ہو گیا ہے, اور اب ہم بڑھیں گے تھرڈ ادھیائے کی طرف جس کا نام ہے کرم یوگ. تو اس سے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کرم کے بارے میں بات ہوگی, اور یہ ساری ہم باتیں کرنے کے لیے اگلے ہفتے آئیں گے. تو ابھی فی الحال دیجیے ہمیں اجازت, ہم جاتے ہیں, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ باقی پروگرامز کو انجوائے کریں اور بنے رہیے ویڈیو مانوریش 107.8 ایف ایم پر. نمسکار.
1: ढेर सारी मस्ती, खूब सारा फन, क्योंकि ये है फरीदाबाद का रेडियो नंबर वन.
2: मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग फरीदाबाद वासियों, ढेर सारी बातों के साथ मैं यानी कि आरजे साक्षी आज आती हूँ आपके पास लेके अपने प्रोग्राम जिसमें बहुत सारी बातें करती हूँ. सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन. और देखिए बहुत सारी जानकारी लेकर के आती हूँ, और आज ना मैं आपके लिए कमाल की टेस्टी रेसिपी लेकर के आती हूँ. भाई सैटरडे वाले दिन ना सुबह सुबह आपको कुछ कमाल की टेस्टी रेसिपी के बारे में जरूर बताती हूँ. और आज भाई बहुत टेस्टी एक ऐसी रेसिपी जो मतलब ऐसा नहीं है कि आप उससे डिनर कर सकें या ब्रेकफास्ट आप उससे कंप्लीट कर सके, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, ये सबको ना कॉम्प्लीमेंट जरूर करता है. जी हाँ, और रात के टाइम अगर थोड़ी से गर्मा गर्म दाल चावल हुए दिन में हुए या खिचड़ी भी है ना, अगर आपकी प्लेट में कोई भी भाई आपकी प्लेट में ना जो भी सब्जी है या रोटी है या चावल है उनके साथ ही कॉम्प्लीमेंट कर ही जाता है और बहुत टेस्टी लगता है. तो देखिए अगर उधर दाल का एक पापड़ हो जाए, दाल का जो बहुत टेस्टी सा क्रिस्पी पापड़ होता है ना, वो मतलब मज़ा ही आ जाता है. वो जो कर कर की आवाज़ आती है ना खाते खाते, मज़ा ही आ जाता है भाई. दिमाग की बत्ती जलाने के लिए ना किसी अलार्म क्लॉक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. अगर हमारे इंडिया में ना ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना जो कि इतनी मज़ेदार है, खाने का टेस्ट डबल दुगना कर देती है. और आज एक ऐसी ही स्पेशल रेसिपी के बारे में आपको बताने वाली हूँ, पापड़. भाई पापड़ जो है हमारी थाली का वो छोटा सा मेंबर है जो सबसे ज़्यादा शोर मचाता है और सबसे ज़्यादा खुशी देता है. ये फीलिंग सीधा दिल को छू जाती है. और आज का हमारा जो प्रोग्राम है ना इसमें आज मैं पापड़ के बारे में बात करने वाली हूँ. तो चलिए फिलहाल कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम. फील गुड, फील लाइव.

भी काम है चलते रहना, मौका है तकदीर बना लो

बड़ा जूठ सन है महाराज पधारे, चिमटा चरस चिलम और चेले साथ साथ है।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं। सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और पापड़ के बारे में मेरी बातें चल रही है आज, खास ये जो टेस्टी रेसिपी नहीं लेकर के आई हूँ। तो क्या आप जानते हैं ये पापड़ का इतिहास कितना पुराना है भाई? पापड़ कोई आजकल की ये रेसिपी नहीं है, कोई आजकल का स्नैक नहीं है ये बिल्कुल भी। इसका जिक्र हमारे सदियों पुराने संस्कृत ग्रंथों में मिलता है, जहाँ इसे जो है वो बहुत ही अलग नाम से, यानी कि इसको जो है वो परपता के नाम से जो है वो जाना जाता था, इसे कहा जाता था परपता नाम से। बुद्धिस्ट और जैन जो लोग थे, अगर हम पहले की बात करें तो उनके साहित्य की अगर बात करें तो उसमें इसका जिक्र मिलता है। और देखिए कैसे दालों को जो है उससे ये बनाया जाता था, दालों को पीस कर उन्हें धूप में सुखाकर साल भर के लिए प्रिजर्व किया जाता था। और राजस्थान और गुजरात के सूखे इलाकों में जब ये ताज़ी सब्जियों की कमी देखिए वहाँ पर हो जाती थी, तब ये पापड़ घर की सबसे बड़ी ताकत बनता था। एक सिंपल दाल से बना ये सूखा वैसे तो पापड़, लेकिन देखिए सन ड्राई एक क्रैकर के रूप में इसे जो है वो खाया जाता था। आज पूरी दुनिया जो है इसे अलग नाम से, पापड़ के नाम से इसे जानती है, लेकिन इसका इतिहास भी बड़ा मशहूर है। चलिए इसके बारे में थोड़ी और बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी लेती हूँ छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, feel live.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें। और आज है सैटरडे का दिन, आपके पास बहुत ही कमाल टेस्टी रेसिपी लेकर के आ गई हूँ। और भाई आपको बता रही हूँ पापड़ के बारे में। जी हाँ, पापड़ जो है बड़ा टेस्टी, ये जो है ना खाने को बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है, बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। और देखिए मतलब होता है ना, वो जो ऊपर से मतलब एक अलग ही स्वाद जो मिल जाता है, वो पूरे खाने का स्वाद

जो है वो बदल के रख देता है। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने जमाने में बिना किसी केमिकल प्रिजर्वेशन के पापड़ साल भर खराब क्यों नहीं होते थे? भाई इसके पीछे दो बड़ी साइंस है। पहली ये कि पापड़ खार यानी कि प्लांट एश अल्कलाइन सॉल्ट जो डो के पीएच को बढ़ाता है और साथ ही दाल को पापड़ जैसा खस्ता टेक्सचर देता है। और साथ ही दूसरी साइंस ये है कि हमारी जो देसी धूप है ना, ये जो हमारी टेक्निक है देसी धूप में सुखाने की, वो सूरज की धूप पापड़ के मॉइस्चर को बिल्कुल निकाल देती है जिससे फंगल ग्रोथ नहीं होती है। और ये जो खास रेसिपी है ना, ये जो खास टेक्निक है ना, ये जो हमारी दादी है, हमारी जो नानियाँ है ना भाई, उन्होंने ये बनाई है। ये जो प्रिजर्वेशन मेथड है ना, ये किसी मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग लैब से ना कई गुना ज्यादा आगे था। उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ। साथ ही पापड़ की बात हो और हम उस क्रांति को याद ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? 1959 में मुंबई के एक टेरेस पर 7 गुजराती महिलाओं ने सिर्फ 80 रुपए जो है वो उधार लेकर एक छोटी सी शुरुआत की थी। और आज इस जो शुरुआत है ना, मतलब जो तब हुई थी 1959 में, आज इसको आप हर कोई जानता है। चलिए इसके बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले लेती हुई एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूं साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें. आज है सैटरडे का दिन, सुबह सुबह आपके लिए कमाल की टेस्टी रेसिपी लेकर के आ जाती हूँ. और आज की हमारी रेसिपी है पापड़ की. जी हाँ, पापड़ के बारे में बता रही हूँ और अब उस क्रांति के बारे में बात करती हूँ जो आई थी 1959 में. वो जो एक पहली बार देखिए मुंबई के एक टेरेस पर 7 गुजराती महिलाओं ने सिर्फ 80 रुपए उधार लेकर एक छोटी सी शुरुआत की थी और वहां से जन्म हुआ लिज्जत पापड़ का. आज भी जब हम पापड़ का नाम लेते हैं तो सिर्फ हम पापड़ नहीं कहते हैं, हम ये कहते हैं कि लिज्जत पापड़ दे दीजिए. कोई कोई चीजें ऐसी होती है ना जो हम मतलब उस चीज को उसी नाम से जानते हैं और लिज्जत पापड़ उनमें से एक है. और पापड़ की अगर मैं बात करूँ, चाहे हम दुकानदार के पास जाके बोले कि हमें लिज्जत पापड़ दे दीजिए, उसमें अलग अलग वेराइटी जो है ना वो दे दीजिए, लेकिन लिज्जत पापड़ सिर्फ एक ही है मैं आपको बता दूँ. तो देखिए ये जो है ना, तब उस तरीके से नाम जो है ना वो सबके जबान पर आ गया था और आज वही ब्रांड जो है हजारों महिलाओं को आत्मनिर्भर बना चुका है और देश विदेश में एक्सपोर्ट होता है. एक छोटा सा पापड़ सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि नारी शक्ति और आत्मनिर्भरता का एक सबसे बड़ा प्रतीक बन गया है. ये बात सच में दिल को छू जाती है. चलिए इसी के साथ एक छोटा सा मैं ब्रेक लेती हूँ जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें. तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड फील.

वेलकम बैक रेडियो मैनेव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं. सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन. बहुत सारी होती है बातें, और आज कमाल की टेस्टी रेसिपी तो लेकर के आई हूँ. और ये रेसिपी है पापड़ की. जी हाँ, पापड़ जो सदियों पुराना है, इतना पुराना है, लेकिन आज भी हर कोई इसे खाना पसंद करता है. खाने का जो एक स्वाद है ना, वो दुगना कर देता है, कॉम्प्लीमेंट करता है हर एक फूड को. मतलब मजा ही आ जाता है. और अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में छत पर सफेद साड़ी या जो चादर है वो बिछाई जाती थी, और नानी दादी के ना साथ पूरा जो मोहल्ला है ना, मिलकर आलू के या चावल के पापड़ वहां फैलाता था. और हम बच्चों की ड्यूटी होती थी कि चिड़िया, कौए, इन सबको उड़ाना. भाई मेरी भाई एक मेमोरी है जिसमें मुझे याद है, हल्का हल्का बहुत बचपन की मैं बात आपको बता रही हूँ. टेरेस पर ना ये होता था कि बड़ी बड़ी जो शीट्स है, जब देखिए आटा आता था या चावल आते थे ना, तो वो जो बोरियां होती हैं, वो जो थोड़ा हो जाता, वो जो प्लास्टिक वाले होते हैं, अच्छा उनको साफ करके अच्छे से, नानी दादी का होता था इस तरीके से, उनको साफ करके या तो बड़ी उस पर डाली जाती थी, मूंग दाल की जो बड़ी होती है वो लगाई जाती है, या फिर दूसरी चीज़ होती है कि पापड़ जो है वो आलू के, आलू को बिल्कुल मैश करके उस पर जो है वो लगाया जाता था, बिल्कुल पतला पतला, और उसको अच्छे से धूप में सुखाया जाता था, और उसके बाद आसानी से वो निकल आते थे, पापड़ जो है वो निकल आते थे. या फिर सूती धोती पे जो सफ़ेद धोती होती थी, वो जो बिल्कुल सफ़ेद कॉटन का कपड़ा, मलमल का कपड़ा होता है, उस पर वो पूरा बिछाया जाता था, और उसके बाद वो उड़ ना जाए तो कोने कोने पे ना उस पर ईंटें रखी जाती थी ताकि वो उड़ ना जाए. ये ट्रेडिशनल तरीका है इन पापड़ों को घर में बनाने का, और कितनी सारी जो महिलाएं हैं वो इन्हें बनाती हैं और आज भी बना रही हैं, और आज भी लोगों का स्वाद ये बढ़ाते चले जा रहे हैं. हालांकि अब देखिए, अब घर पे बनाना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, तो लोग जो हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो ऑफिस गोइंग फीमेल्स हैं उनकी अगर हम बात करें या फिर हम किसी बात करें, तो ज़्यादातर होता है कि अब बाहर से चीज़ें आ जाती है, लेकिन वो पहले वाली बात ना वो अब नहीं है, लेकिन वो पहले का मज़ा ही कुछ और था. और घर पे बने चावल के अगर हम पापड़ की बात करें, और या फिर हम आलू के पापड़ की बात करें, बहुत टेस्टी, बहुत कमाल, मज़ा ही आ जाता था. तो चलिए, अगर आपकी भी कोई ऐसी मेमोरी है तो ज़रूर मुझे बताइएगा. नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078. फिलहाल कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए, ओनली ऑन रेडियो मैनेव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लव.

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ. सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन. बहुत सारी होती हैं बातें. मैं आपके लिए टेस्टी कमाल रेसिपी लेकर के आई हूँ. लेकिन उससे पहले देखिए, मैंने आपको बताया है कि देखिए आज हम पापड़ की बात करेंगे. तो इस पर ना एक सवाल आया है हमारे पास मेघा जी का, सेक्टर 14 फरीदाबाद से. और ये पूछती है, साक्षी रेस्टोरेंट में डिनर शुरू होने से पहले जो क्रंची मसाला पापड़ मिलता है वो घर पर बनाते ही 2 मिनट में गीला सौगी क्यों हो जाता है? भाई क्रिस्पी रेस्टोरेंट स्टाइल मसाला पापड़ आपको अगर बनाना है मेगा ड्री, तो चलिए मैं आपको ना ये रेसिपी जरूर बताऊंगी. होटल स्टाइल अल्ट्रा क्रंची और बिना सौगी हुए स्ट्रीट स्टाइल मसाला पापड़ कैसे आप बना सकती हैं घर पर ही. क्योंकि देखिए रेस्टोरेंट में ढाबों का जो सिग्नेचर एपेटाइजर होता है ना, वो यही होता है. जो ट्रेडिशनल रोस्टेड उड़द दाल पापड़ है ना, ये बहुत अच्छा और टेस्टी बनता है. और देखिए इसमें जो है भाई कमाल के जो है फ्लेवर्स होते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये. तो ये बनता कैसे है ये आज आप सभी को बताऊंगी. लेकिन उससे पहले अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक. इस ब्रेक के बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें. और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दूं, अपना नोटपैड और अपना पेन बिल्कुल तैयार रखिए. आने के बाद आपको बताऊंगी क्या है इंग्रेडिएंट्स और कैसे होगी ये स्टेप बाय स्टेप रेसिपी. फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड फील लाइव.
1: ज्वाला समुंदर की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूँ कि आओ हमारे कंधों पे बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें. और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ 2 दिन और. बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे.
2: और मैं ये कह रही हूँ, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है. हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके.
1: ज्वाला हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं.
2: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते. वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी.
1: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता.
2: तो फिर एक वादा करो.
1: मेरी जान मांग लो, जान मेरी.
2: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे. इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए.
1: ज्वाला ये मेरा वादा है.

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 7.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही टेस्टी कमाल की रेसिपी आज, और आज की रेसिपी है पापड़ की। जी हाँ, देखिए ये पापड़ को आप कैसे घर पर बना सकते हैं इसके बारे में मैं बात कर रही थी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए। उड़द दाल आपको लेनी है। उड़द दाल जो है इसके पापड़ हम बनाएंगे, तो उड़द दाल काली मिर्च या जीरा फ्लेवर वाले जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं। प्याज लेनी है एक मीडियम, बिल्कुल बारीक कटी होनी चाहिए। टमाटर लेने हैं एक मीडियम जो, और टमाटर के बीज सारे निकाल दीजिएगा, बिल्कुल बारीक कटा होना चाहिए। हरी मिर्च फाइनली चॉप होनी चाहिए। इसी के साथ साथ हरा धनिया और चाट जो है वो आपको लेना है, कश्मीरी लाल मिर्च। और साथ ही साथ देखिए ये जो पापड़ है ना, इसकी मतलब इसको आप बनाने का जो तरीका है ना वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। और साथ ही साथ देखिए पापड़ की तो हम मैं आपको रेसिपी बताऊंगी, यानी कि पापड़ के बारे में आपको बताऊंगी, इसके इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी, लेकिन अभी ना आपको जैसे जो ऊपर चाट बनती है उसकी, उसके कुछ आपको इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ। तो भुना जीरा आपको चाहिए होगा, काला नमक, नींबू, और फाइनली जो जो एक एक चॉप अगर मैं बात करूँ अच्छे से कटा हुआ जो है हरा धनिया होना चाहिए। और साथ ही साथ जो नायलन जो सेव होती है वो आपको चाहिए, घी और या फिर आप ऑयल ले सकते हैं हल्का सा ब्रश करने के लिए, ताकि उसके ऊपर एक अलग सॉफ्टनेस जो है वो तो आएगी, लेकिन वो करारा और जो है वो अच्छे से हो जाएगा पापड़। तो इसी के साथ साथ देखिए अब पापड़ के बारे में आपको बताऊंगी कि पापड़ के लिए आपको क्या क्या रेसिपी जो है वो चाहिए, यानी कि क्या क्या इंग्रीडियंट्स चाहिए, रेसिपी इसके बाद आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइव।
1: रात अकेली है, बुझ गए दिए।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ. मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें. लेकर के आई हूँ आपके लिए कमाल की टेस्टी उड़द दाल के पापड़ की रेसिपी. तो इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले उड़द दाल जो है वो लेनी है, और उसका जो आटा जो है मार्केट में मिल जाता है 2 कप ले लीजिए, या फिर आप खुद भी घर पर पीस सकते हैं. इसके बाद पापड़ का जो है वो पापड़ खार लेना है 2 छोटी चम्मच, और दरदरी कुटी हुई काली मिर्च लेनी है 1.5 छोटी चम्मच, जीरा लेना है 1 छोटा चम्मच, नमक लेना है स्वाद अनुसार लगभग 3/4 छोटी चम्मच, हींग लेनी है आपको 1/2 छोटी चम्मच, हल्का गर्म पानी 3/4 जो है वो आपको कप लेना है, और साथ ही साथ तेल लेना है. अब जो है वो आवश्यकता अनुसार होना चाहिए आटा गूंदने के लिए और बेलने के लिए. इसी के साथ साथ अब आपको क्या करना है, घोल तैयार करना है. एक बर्तन में आपको हल्का गर्म पानी लेना है, और इसमें नमक और पापड़ खार डालकर अच्छी तरह से मिला लें, और ताकि ये पानी में जो है अच्छे से घुल जाए. इसके बाद एक बड़े बर्तन में उड़द दाल का जो आटा है वो लेना है, उसको छान लेना है, और इसमें दरदरी कुटी जो काली मिर्च है, जीरा है, हींग है, और थोड़ा सा तेल है वो मिलाना है. इसके बाद ये जो तैयार पापड़ जो है हम तैयार करेंगे, इसका खार जो है बिल्कुल तैयार हो गया है, तो इसके इसका जो पानी है इसको थोड़ा थोड़ा डालकर पूरी तरह से आटे को जो है वो एक सख्त आटा, जिस तरह से पूड़ी का आटा गूंदा जाता है उस तरह से आप गूंद लीजिए. अब इसके बाद कड़े आटे को ढककर 2 घंटे के लिए आपको रख देना है, और इसके बाद आटे को बेलन और मुसल से आपको जो है वो 15 से 20 मिनट तक के लिए कूटना है, और हाथों से मसल कर बिल्कुल नरम कर देना है, चिकना कर देना है. इसके बाद आटे को लंबे रोल के आपको जो है वो रोल बनाना है, और चाकू से एक जैसे आकार की छोटी छोटी लोइयां काट लेनी है. लोइयां जो है जब आप इसे काट लेंगे, थोड़ा सा तेल लगाकर ढक कर आपको रख देना है. इसके बाद चकले या पट्टे पर आपको जो है थोड़ा सा तेल लगाना है, और एक लोई रखनी है, और बेलन की मदद से आपको जितना हो सके इसे पतला गोल बना लेना है. आपको अगर मुश्किल हो रही है थोड़ी, तो आप एक क्या काम कीजिए, जो बहुत ही पुराना ये भी स्टाइल है, आप एक पॉलिथीन ले सकते हैं, उसके ऊपर जो है आप आटे की लोई को रखिए, और उसके ऊपर दूसरी पॉलिथीन रख लीजिए, और उसके बाद उसको बेलिए, तो वो जो है बिल्कुल शेप लेती जाएगी, और वो आपके जो बेलन है उससे चिपकेगा नहीं. इसके बाद बेले हुए पापड़ को आपको कुछ देर के लिए पंखे की हवा में रखना है, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए आप इसे धूप में सुखा लीजिए, जब तक पापड़ अच्छे से सूख नहीं जाता है. और बस आपका उड़द दाल का पापड़ जो है, जैसे ही धूप में अच्छे से सूख जाएगा, बस वो बिल्कुल तैयार है. इसे आप रख भी सकते हैं, और उसके बाद आप एक कढ़ाई लीजिए, इसमें आप जो है थोड़ा सा आपको तेल जो है वो ब्रश करना है, आप एक तवा ले सकते हैं, और उसके बाद इसे रोस्ट कर लीजिए. आपको तलना है इसे तल लीजिए, जैसा आपको मन करे आप वैसा कर सकते हैं. बिल्कुल टेस्टी घर पर आप जो है वो पापड़ बना लेंगे, और बहुत ही टेस्टी ये पापड़ जो है वो बन के रेडी हो जाएगा. चलिए इसी के साथ पापड़ हमारे बन गए हैं, और देखिए अब जो हमें रेस्टोरेंट में मिलते हैं ना ऊपर, अब बड़े मसाला पापड़ जिसे हम कहते हैं, तो ऊपर बस फाइनली चॉप टमाटर अनियन ये सारी चीज़ें डालनी है, नींबू डालना है, हरा धनिया डालना है, नायलन सेव डालनी है, और बस ये आपका पापड़ जो है वो बन के तैयार है. रेस्टोरेंट स्टाइल मसाला पापड़ बन के तैयार है. इसे खाइए, बच्चों को खिलाइए, खुद खाइए और मज़े लीजिए. अच्छा लगेगा आपको, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पापड़ कैसा लगा. नंबर बहुत ही आसान है 8010781078. फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइक.

वेलकम बैक रेडियो मैनु रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें. और इसी के साथ कमाल की टेस्टी रेसिपी आज आपके लिए लेकर के आई मैं. और देखिए, अगर आपको फरीदाबाद से आप बाहर जा रहे हो और ये सोच रहे हैं कि रेडियो मैनु रचना के साथ कैसे जुड़ना है, तो बस आपको क्या करना, हमारा इंटरनेट ऐप डाउनलोड करना है. आप डाउनलोड करने के लिए आप सबसे पहले अपना एंड्रॉइड या आईओएस मोबाइल फोन लेना है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे जाना है, सर्च बॉक्स में लिखना है रेडियो मानव रचना और साथ ही ऐप को डाउनलोड कर लेना है. उसके बाद पॉडकास्ट सेक्शन में जाके ढेर सारे पॉडकास्ट, एक्सपर्ट की एडवाइस और बहुत ही कमाल के सुपर डुपर हिट गाने आप सुन सकते हैं वर्ल्ड में कभी भी कहीं से भी. तो बस देरी किस बात की, जल्दी से डाउनलोड कीजिए ऐप और आप हमें सोशल मीडिया के थ्रू भी आप हमें जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं. हम आप जो है बहुत सारी जानकारी आपको जो है वो मिल सकती है, आप प्राप्त कर सकते हैं. तो बस आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब चैनल पर आपको जाना है और वहां पर जाके आपको सर्च बॉक्स में लिखना है रेडियो मानव रचना, ऐप आपको दिख जाएगी. जल्दी से कीजिए, आप इस ऐप को आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके साथ साथ जुड़ सकते हैं हमारे साथ. लेती हूँ अब इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रेस्टोरेंट 107.8 FM. फील गुड फील लाइक.

दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे, बता दो उस वक्त मैं कहां था, बता दो उस वक्त तू कहां थी।

तुम्हारी लौ को पकड़ के जलने की आरजू में जब अपने ही आप से लिपट के सुलग रहा था, पता तो उस वक्त मैं कहां था, पता तो उस वक्त तू कहां थी।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें. और इसी के साथ वक्त जो है ये हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत और होगी आपसे मुलाकात कुछ ही देर में. लेकर के आ रही हूँ अपना प्रोग्राम सफरनामा और इसमें कहीं हम घूमने के लिए जाते हैं. जी हाँ, प्रोग्राम लेकर के आती हूँ सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और होती है बहुत सारी बातें. तो आप कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ. बाय बाय, टेक केयर.

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 और मैं हूं दीक्षा आपके साथ। और आज है 10 अक्टूबर, एक ऐसी तारीख जिसको पूरे विश्व भर में मनाया जाता है मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में, जिसकी शुरुआत सन 1992 में विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ द्वारा की गई थी। मकसद केवल यही था कि लोगों को जागरूक करें मानसिक स्वास्थ्य के प्रति। बहुत सारे लोगों के मन में

0: मानसिक स्वास्थ्य। कार्यक्रम है हर यानी हौसला एहसास रोशनी, जिसे रेडियो मानव रचना 107.8 लेकर आ रहा है आज से ही यानी विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर। आप जानते हैं कि WHO के अनुसार दुनिया भर में लगभग 8 में से एक व्यक्ति किसी ना किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा है। मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। लगातार तनाव, चिंता, अकेलापन, नींद की कमी और भावनात्मक थकान को नजरअंदाज करना हमारी सेहत को प्रभावित करता है। और याद रखिए, हर समय मजबूत बने रहना जरूरी नहीं है। कभी कभी अपनी परेशानी स्वीकार करना और मदद मांगना ही सबसे बड़ी हिम्मत होती है। इसी सोच के साथ रेडियो मानव रचना 107.8 लेकर आए हैं एक विशेष श्रृंखला हर हौसला एहसास रोशनी। और इस सीरीज में हम विभिन्न विशेषज्ञों से बात करेंगे, महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े अहम मुद्दों को आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में इन चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है। हमारी कोशिश है कि हर महिला को अपनी बात कहने का मौका मिले, और ये सफर सिर्फ हमारा नहीं है, आपका भी है। इस कार्यक्रम में आज के इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं फरीदाबाद शहर की जानी मानी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर गीतांजलि केसरी से, और साथ ही एक लघु नाटिका के माध्यम से आपको बताएंगे कि महिलाएं अपनी रोजमर्रा के जीवन में कितनी ज्यादा उधेड़ बुन में है, कितनी थक जाती हैं, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम हौसला एहसास रोशनी यानी हर।
1: कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में सुबह होती ही नहीं, बस एक दिन खत्म होता है और दूसरा शुरू हो जाता है। सुबह उठते ही घर का खर्च, बच्चे की फीस, मम्मी की दवाई और ऑफिस की डेडलाइन, सबकी जरूरतें मेरे दिमाग में पहले से चल रही होती हैं। और मजेदार बात पता है, इन सबके बीच अगर मुझसे कोई पूछ ले, मीरा तुम्हें क्या चाहिए, तो शायद मैं उसका जवाब भी ना दे पाऊं, क्योंकि मैंने बहुत पहले ही सीख लिया था कि अपनी जरूरतों को बाद में रखना है, पहले घर, फिर परिवार, फिर ऑफिस और सबसे आखिर में मैं। शायद इसी को सब मेरी स्ट्रेंथ कहते हैं। सब कहते हैं मीरा बहुत स्ट्रांग है, लेकिन किसी ने ये कभी नहीं पूछा कि तुम्हें स्ट्रांग रहने की जरूरत क्यों पड़ रही है।
2: मीरा की जिंदगी में सब कुछ था, नौकरी, परिवार, अपनी कमाई और जिम्मेदारियां। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य लगती थी, लेकिन कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती, और जब दिखाई देती हैं तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है।
3: मीरा, इस महीने स्कूल फीस मैंने नहीं भरी है, तुम कर देना। पापा की दवाइयों का खर्च भी तुम्हें ही देखना पड़ेगा। मेरा अकाउंट इस महीने थोड़ा टाइट है।
1: ठीक है।
3: और अगले महीने हमें लोन की EMI मैनेज करनी है, तो तुम अपने सैलरी अकाउंट से कर देना, बाद में मैं देख लूंगा।
1: ठीक है अमित।
3: क्या हुआ?
1: कुछ नहीं।
3: तुम आजकल बहुत चुप रहने लगी हो।
1: चुप नहीं हूँ, बस बोलने के लिए अब कुछ बचा नहीं है मेरे पास।
3: क्या मतलब?
1: कुछ नहीं।
3: देखो मीरा, हम सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं। तुम इतना सब संभाल लेती हो तो ये भी संभाल लोगी।
1: यही तो प्रॉब्लम है अमित, तुम सबको लगता है कि मैं संभाल लूंगी, मम्मी को लगता है, पापा को लगता है, और तुम्हें भी तो यही लगता है ना कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और धीरे धीरे मुझे भी अब लगने लगा है कि मुझे सब संभालना ही पड़ेगा, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि मीरा भी कभी कभी संभाली जाने की जरूरत महसूस कर सकती है।
3: तुम कहना क्या चाहती हो?
1: कुछ खास नहीं, जाने दो। बस आज पहली बार मन हुआ कि घर आकर कोई मुझसे पूछे, मीरा आज तुम्हारा दिन कैसा था, और फिर मेरे जवाब को वो सुने बिना कोई सलूशन दिए, बिना ये कहे कि सब ठीक हो जाएगा, बस सुने।
3: तुम बहुत सोच रही हो, पता है?
1: शायद, या शायद मैं बहुत समय से कुछ महसूस ही नहीं कर पा रही थी।
2: कई बार परेशानी किसी एक बड़ी घटना से नहीं बनती, वो बनती है हर दिन की छोटी छोटी अनसुनी बातों से। एक जिम्मेदारी,

0: एक समझौता, एक दबा हुआ सवाल, एक बार अपनी बात ना कह पाना और फिर वही सब धीरे धीरे मन के अंदर जमा होता जाता है।
1: दीदी, आप किसी से बात क्यों नहीं करती? किसी काउंसलर से, किसी ऐसे इंसान से जो आपकी बात समझ सके?
2: पता नहीं अनन्या, मुझे खुद नहीं पता कि मेरी परेशानी है क्या। कभी लगता है मैं बस थकी हुई हूँ, कभी लगता है मुझे थोड़ा आराम चाहिए, कभी लगता है कि घर में किसी से बात कर लूं, और कभी लगता है कि बात करके भी क्या बदल जाएगा।
1: लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा ना दीदी।
2: हाँ, लेकिन क्या? मुझे यही तो समझ नहीं आ रहा है अनन्या। मेरी जिंदगी में हर मुश्किल का मैंने कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाला है। पैसे की परेशानी आई, काम किया, घर में दिक्कतें आई, मैंने संभाला, किसी को मेरी जरूरत पड़ी मैं खड़ी थी वहां पर। लेकिन आज जब मुझे खुद किसी की जरूरत है तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां, किससे कहूं कि मैं ठीक नहीं हूं, किससे पूछूं कि मुझे क्या करना चाहिए। अनन्या, मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं पता मैं कितने दिन और ऐसे कब तक चल पाऊंगी। कभी लगता है मैं बस चल रही हूँ, जी नहीं रही।
1: दीदी,
2: नहीं अनन्या, आज मुझे कोई जवाब मत देना, बस थोड़ी देर मेरे साथ रहना, क्योंकि आज मुझे सच में नहीं पता कि मुझे अपने लिए रास्ता कहां से शुरू करना है।
0: शायद मीरा की कहानी में आपको अपने आसपास की कोई महिला दिखाई दे, शायद वो आपकी माँ हो, आपकी बहन, आपकी पत्नी, आपका दोस्त, या शायद खुद आप, क्योंकि हर महिला की परेशानी एक जैसी नहीं होती। लेकिन अपनी बात कहने की जरूरत हर किसी को हो सकती है।
3: ये थी मीरा, जो निभा रही हैं बहुत सी जिम्मेदारियां, घर, परिवार, फाइनेंसेस, नौकरी, सब कुछ, लेकिन परेशानी किसी से साझा नहीं कर पा रही हैं। ऐसी परेशानी बहुत सी महिलाओं के मन में होती हैं और तभी बनती हैं वो डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस का शिकार। इसी से जुड़ी कुछ खास जानकारी देने के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर गीतांजलि केसरी, सीनियर कंसल्टेंट साइकियाट्री, यथार्थ हॉस्पिटल्स। तो आइए करते हैं इनसे बातचीत और जानते हैं ऐसे ही कुछ मेंटल हेल्थ से जुड़े सवालों के जवाब। डॉक्टर गीतांजलि, मैं आपसे पहला सवाल ये जानना चाहती हूँ, हम महिलाओं की मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर मेंटल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स महिलाओं को ही जल्दी क्यों पकड़ लेती हैं?
4: देखिए, हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का इमोशनल कोशेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इस वजह से जो भी दिक्कत होती है, पारिवारिक दिक्कत हो गई, तो उन सब चीज़ों को ज़्यादा अफेक्ट जो है फीमेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करती है ये सब चीज़ें।
3: हमने देखा है महिलाएं बहुत जल्दी जो है स्ट्रेस ले लेती हैं चीज़ों का, ज़रा सी घर में बात हो गई तो एकदम परेशान हो जाती हैं, ऑफिस में कुछ हो गया तो परेशान हो जाती हैं, और ज़्यादातर आजकल कामकाजी महिलाएं हैं, लेकिन इसके साथ साथ घर की भी पूरी जिम्मेदारी है। तो क्या एक बड़ा रीजन होता है मल्टीपल टास्किंग करना?
4: ये बिल्कुल सही है कि मल्टीटास्किंग डेफिनेटली प्रेशर तो डालता ही है फीमेल्स के ऊपर। ये मैं मौका लेके आपको थोड़ा सा स्ट्रेस के बारे में बताना चाहूँगी कि स्ट्रेस एग्जैक्टली होता क्या है। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स होते हैं उन्हें स्ट्रेस बोलते हैं। कि मल्टीटास्किंग से ये होता है क्या? डेफिनेटली होता है, बट इसका भी सोल्यूशन ये है कि हर फीमेल या मैं कहूँगी हर इंडिविजुअल को पता होता है कि उनकी कमियाँ क्या हैं, कितना वो अपने आप को पुश कर सकती हैं, कहाँ तक वो अपने आप को खींच सकती हैं। उससे ज़्यादा जब हो जाता है तो महिलाओं को ना बोलना नहीं आता है, दे आर नॉट असर्टिव, वो अपनी बात मन की बता नहीं पाती है। ये रीज़न है कि महिलाओं को ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन फील होता है।
3: सो डॉक्टर गीतांजलि, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की अगर हम बात करें, मेंटल हेल्थ में ये तीन शब्द बहुत कॉमनली यूज होते हैं। जरा सी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम कह देते हैं अरे बहुत स्ट्रेस है, तो मैं चाहूंगी आप कुछ शब्दों में बताएं कि ये तीनों में डिफरेंस क्या है, हम पहचाने कैसे कि हमें स्ट्रेस हो गया है, या एंजाइटी अटैक्स की बात जब हम करते हैं तो वो हम पहचाने कैसे कि एंजाइटी अटैक है, और डिप्रेशन के फेज में जब हम गुजरते हैं तो उसको कैसे पहचाना जाए?
4: देखिए, शुरुआत अगर करते हैं तो स्ट्रेस तो मैं बोलना चाहूँगी कि फीमेल्स को घर का काम करना है, सुबह उठ के घर का काम करना है, सुबह उठ के बच्चे को भेजना है, तो ये भी स्ट्रेस होता है। जब तक बच्चा स्कूल नहीं चला जाता, काम नहीं सिमटते, तो रोज़मर्रा के जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं वो स्ट्रेस होता है। बट हाँ, जब ये परेशान करने लगे कि आपको घबराहट हो, अगर वो काम आप जैसा चाहते हैं वैसा ना हो, पैल्पिटेशंस हो रोज़मर्रा के काम में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं उसमें पैल्पिटेशंस हो, हाथ पैर फूल जाएं, जैसे मेरे पास कई सारी फीमेल्स आती है कि वैसे तो ठीक रहते हैं बट जैसे ही कोई घर में कोई आने वाला होता है, कोई रिश्तेदार आने वाला होता है, तो हाथ पैर फूल जाते हैं, नींद गायब हो जाती है। तो अब हमें देखना चाहिए कि एंजाइटी तो नहीं है कहीं, और जब ये थोड़ा सिवियर फॉर्म में हो जाता है तब डिप्रेशन होता है। इस मौके पे मैं बताना चाहूँगी कि डिप्रेशन ऐसा नहीं होता कि जो पर्सन डिप्रेस्ड है वो एक कोने में बैठ के रोता रहेगा या कोई भी काम में उसका मन नहीं लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। डिप्रेशन वाला पर्सन सारे काम करता है बट उसको खुशी किसी चीज़ में महसूस नहीं होती, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ाहट होती है, सर दर्द, बदन दर्द, बॉडीली सिम्टम्स आने लगते हैं, पेट में दर्द रहना, सर दर्द रहना, हाथ पैरों में दर्द रहना, दुनिया भर के टेस्ट करवा लेंगे सब नॉर्मल आएगा, फिर भी वो डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। तो ये सब डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं।
5: सो डॉक्टर गीतांजलि, मैं आपसे चाहूंगी आप बताएं महिलाओं को कि इतने सारे काम जो वो करती हैं, इसमें वो अपने आप के लिए वक्त कैसे निकाले ताकि वो मेंटली स्ट्रांग रह सके।
4: सबसे पहले प्रायोरिटाइज करिए, फिर डिवाइड करिए कि क्या काम आप कैसे कर सकते हैं एफिशिएंटली भी हो। और मैं हर महिला को ये सलाह दूंगी कि अपने लिए शुरुआत में आप 15 मिनट निकालिए, 15 मिनट्स नॉट मच, आप 15 मिनट से शुरू करिए जो सिर्फ आपके हों, और उस टाइम पे आप अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दीजिए। वो आप ब्रिस्क वॉकिंग के फॉर्म में कर सकते हैं, योगा के फॉर्म में कर सकते हैं, मेडिटेशन के फॉर्म में कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आपको इसमें आपको लगेगा कि आप ये कर सकते हैं तो धीरे धीरे आफ्टर 1 वीक मैं सलाह देती हूँ कि आप धीरे धीरे टाइम को बाय 5 मिनट्स बढ़ाइए। तो आप 15 मिनट निकालिए जो कि सिर्फ आपके हो, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए हो, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए हो।
5: तो डॉक्टर गीतांजलि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की शुरुआत कैसे होती है, इसके लक्षण क्या हैं और ये कितनी गंभीर समस्या बन सकती है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।
4: धन्यवाद।
3: तो दोस्तों, आज आपने रेडियो मानव रचना 107.8 के कार्यक्रम हर हौसला एहसास रोशनी में डॉक्टर गीतांजलि को सुना, जो कि शहर की जानी मानी साइकियाट्रिस्ट हैं और एक लघु नाटिका के माध्यम से और एक महिला के जीवन में सुबह से लेकर रात तक हो रही उठापटक को भी जाना। मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हम सभी का जागरूक होना आवश्यक है, क्योंकि फिजिकल हेल्थ ही सब कुछ नहीं होती, मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो फिर फिजिकली यानी शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे। अगले एपिसोड में हम कुछ ऐसे ही विषय पर और भी बातें करने वाले हैं और जानेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य का ठीक ना होना किस तरीके से हमारे कॉन्फिडेंस को खराब कर सकता है। ऐसी बहुत सी बातें हर हफ्ते कार्यक्रम हर में हम आपके साथ साझा करेंगे, हर शनिवार सुबह 9 बजे। अपने विचार हमारे साथ साझा करने ना भूलें 8010781078 पर। फिलहाल कार्यक्रम हर यानी हौसला एहसास रोशनी में इतना ही। मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8। फील गुड, फील लाइव।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM में हूँ दीक्षा आपके साथ, और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा कार्यक्रम जो जुड़ा हुआ है हम सभी की जिंदगियों से। ईश्वर ने हमें जीवन दिया, लेकिन इस जीवन में कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं जब हमारे शरीर के कुछ अंग सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं, और तब हमें जरूरत पड़ती है उस ऐसे एक डोनर की जो हमारी मदद करता है स्वयं ईश्वरी रूप बन के। ऐसे ही खास कार्यक्रम को आपके बीच लेकर आता है ऑर्गन इंडिया और रेडियो मानव रचना 107.8। और इस कार्यक्रम का नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। आइए जानते हैं कुछ बहुमूल्य बातें अंग दान से जुड़ी हुई।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: आप सभी सुनने वालों को ऑर्गन इंडिया की तरफ से नमस्कार। मेरा नाम पायल है और हम सब यही आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। आज हम आपका स्वागत करते हैं ऑर्गन इंडिया के इस बेहद खास कार्यक्रम में, जीवन एक अनमोल उपहार, जिसमें हम अंग दान के बारे में बात करेंगे। ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क यानी ऑर्गन इंडिया की पहल साल 2013 में पराशर फाउंडेशन ने की थी, जो कि दिल्ली की एक गैर सरकारी सामाजिक संस्था है। अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम अंगदान, देहदान और उत्तक दान के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम ऑर्गन फेलियर या अंगों के खराब होने की गंभीर समस्या से पीड़ित मरीजों को, जिनके पास ऑर्गन ट्रांसप्लांट या अंग प्रत्यारोपण के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, उन्हें ये सारी जानकारी देते हैं और वो अपने उत्तम इलाज के लिए क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, ये भी सारा कुछ हम बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गीतिका वशिष्ठ, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर ऑर्गन इंडिया। तो कहीं मत जाइएगा और सुनते रहिएगा ये कार्यक्रम, जीवन एक अनमोल उपहार।
2: नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर गीतिका वशिष्ठ। मैं ऑर्गन इंडिया के साथ सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह काम कर रही हूँ और मैं आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ।
3: कहा जाता है कि आंखें मन का दर्पण होती है और संसार की सुंदरता को देखने में हमें सक्षम बनाती है। आज हम इन्हीं खूबसूरत और अनमोल नेत्रों के बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ है एक खास मेहमान डॉक्टर अनीता सेठी, जो कि डायरेक्टर है फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव के नेत्र रोग विभाग में। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: नमस्कार गीतिका जी, मुझे बहुत प्रसन्नता है आपके इस कार्यक्रम का हिस्सा बन के।
3: डॉक्टर अनीता, आंकड़ों के अनुसार विश्व में कम से कम 28 से 30 करोड़ लोग जो हैं वो आंखों की किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और उनमें से 90% लोग प्रगतिशील देशों में ही पाए जाते हैं। आपके 20 साल से अधिक अनुभव के अनुसार ऐसी कौन सी बीमारियां होती हैं?
4: तो आपने तो विश्व के आंकड़े दिए हैं, हमारे देश में भी बहुत सारे लोग हैं जो आंखों के कई बीमारियों से पीड़ित हैं और उसके वजह से उनके काम करने में, आमदनी में बहुत मुश्किल

0: के।
1: ऐसी कौन सी नेत्रों की बीमारियां हैं जो आमतौर पर देखकर जाती हैं?
0: नेत्रों की बीमारियां तो बहुत सारे हैं। आंखों के नंबर जिसको हम रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं, बहुत सारे लोगों को चश्मे की जरूरत है और कईयों को पता भी नहीं चलता है, खासकर बच्चों को, कि उनको चश्मे की जरूरत है और वो बहुत कम दृष्टि और कम नजर से अपना काम चलाने की कोशिश करते हैं। फिर इन्फेक्शंस हैं या आंखों में एलर्जीज हैं, काला मोतियाबिंद है, शुगर की वजह से बीमारियां हैं, सामने का जो पर्दा है कॉर्निया उसमें इन्फेक्शन की वजह से उसमें सफेदी आती है, उससे भी नजर में दिक्कत होती है, चोट की वजह से पीछे का पर्दा जो रेटिना है वो अपनी जगह से हिल जाता है या उसमें खून आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो आंखों को प्रॉब्लम कर सकते हैं।
1: बच्चों में ऐसी कोई खास नेत्रों की बीमारी रहती है जिसमें उनको ध्यान रखना चाहिए?
0: हाँ, बच्चों का के आंखों का ध्यान तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बचपन में हम पकड़ सकते हैं, हम उसका इलाज जो करते हैं तो वो जिंदगी भर के लिए बच्चे की आंखें मजबूत और अच्छे रहते हैं। खासकर के जो चश्मे का नंबर है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं वो बता नहीं पाते हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि इससे अच्छा दिखाई दे सकता है, तो इसमें जो माता पिता, अध्यापक, उनके बड़े भाई बहन, जो भी उनके आसपास है, दादा दादी, नाना नानी, सबको देखना चाहिए कि क्या ये बच्चा बहुत पास जाके चीजों को, टीवी को या अपने किताबों को बहुत पास से देखता है, या क्या वो ठोकर खाता है चलते चलते, या बहुत अजीब से सिर को टेढ़ा करके देखता है, या कोई तिरछापन है इनकी आंखों में। ये सब साइंस है कि इनके आंखों में कोई प्रॉब्लम है और इन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए।
1: ये तो हमने बात की बच्चों की। देखा गया है कि कभी जैसे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं या कोई गिर गया, आंखों में चोट लग गई, उसके कारण भी आंखों पर प्रभाव पड़ जाता है।
0: तो आजकल हम देख रहे हैं कि इंजरी या चोट की वजह से जो आंखों के परेशानियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। शहरों में अब गाड़ियां ज्यादा हो गई हैं, लोग तेजी से चलाते हैं, सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, हेलमेट नहीं पहनते हैं। ये इतने असाधारण तरीके हैं बचाव के, मगर लोग बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं इस पे। जैसे गांवों में जो खेती करते हैं उससे चोट लग सकता है, तिनके चले जाते हैं आंख में, लोग उनको मलते हैं, देसी दवाइयां डालते हैं, इन सब से आंखों के बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो जब भी कोई चोट लगे तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कोई देसी इलाज नहीं करना चाहिए। आंखों को बिल्कुल मलना नहीं चाहिए, जैसे लगता है कि आंख के अंदर कोई चीज गिर गया है, कीड़ा चला गया है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि वो उसका इलाज सही वक्त पे करे।
1: भारत जो है वो विश्व का डायबिटीज कैपिटल कहलाता है, तो क्या उसका कोई नेत्र रोग से लेना देना है या उसका कोई प्रभाव पड़ता है?
0: शुगर का की बीमारी का तो बहुत बड़ा असर पड़ता है आंखों पर, और हमारे पास मतलब शुगर की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस या जो प्रभाव पड़ता है उससे दृष्टि बिल्कुल खत्म भी हो सकती है। बहुत ही जरूरी है कि शुगर वाले मरीजों को पता होना चाहिए कि शुगर का प्रभाव आंखों में पड़ता है, दिल पे भी पड़ता है, किडनी पे भी पड़ता है, मगर आंखों में हम लोग जब देखते हैं हमें अच्छे से पता चलता है कि ये प्रभाव कितना गंभीर है और इसका कितनी जल्दी हमें इलाज करना चाहिए। आंखों पे एक तो सफेद मोतिया जल्दी आता है शुगर वाले पेशेंट्स में, काला मोतिया के भी संभव बहुत बढ़ जाता है, और रेटिना या पर्दे पे चेंजेस जिसको हम रेटिनोपैथी कहते हैं वो बहुत ही गंभीर है। उसमें आंखों में खून आ जाता है, आंखों का पर्दा सिकुड़ जाता है, और अगर सही समय पे इलाज ना करे तो बिल्कुल अंधापन या ब्लाइंडनेस हो सकता है।
1: डॉक्टर साहब, आपने हमें नेत्र रोग के बारे में बताया, पर इन रोग के लक्षण क्या होते हैं?
0: सबसे महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि कम दिखना। अगर हमें कम दिखाई दे तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आंख में लाली होना, आंख से पानी आना, आंख में दर्द होना, खुजली होना, लाइट के आसपास थोड़े रंगीन गोले दिखना, या कभी कभी काली मक्खी सी उड़ना, आंख के अंदर बिजली सी चमकना, ये सब कुछ कुछ बीमारियों के लक्षण हैं। कुछ ऐसे लक्षण हैं जिसमें आपने तुरंत जाना है, तो वो है अगर आंख में बहुत तेज लाली, पानी आए, बहुत तेज दर्द हो, या बिल्कुल अचानक दिखना बंद हो जाए, तो ये बहुत जरूरी है। ऐसे अगर लक्षण हो तो आप तुरंत आंख के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ही जाएंगे।
1: हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अनीता सेठी से, जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। इलाज की जब बात आती है, नेत्र रोगों का इलाज कैसे किया जा सकता है?
0: तो नेत्र रोगों का इलाज सिंपल, जो सबसे सिंपल इलाज है वो चश्मे का इलाज है, मतलब चश्मे

0: दिया जाता है जिससे पेशेंट को अच्छी तरह से दिखाई दे। खासकर बच्चों में ज़रूरी है कि चश्मे का नंबर जो है साल में एक बार ज़रूर चेक हो, क्योंकि नंबर जो है वो बच्चों के उम्र के साथ बढ़ सकता है 18 वर्ष के उम्र तक। दूसरा, जो बाकी बीमारियां हैं, कुछ का तो दवाइयों से इलाज होता है, जैसे आई ड्रॉप्स, आई जेल्स, कभी कभी टैबलेट्स की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, जैसे इन्फेक्शंस हैं उनका इलाज आई ड्रॉप से होता है, मगर ज़रूरी है कि जो आई ड्रॉप्स बताए जाते हैं आप उसी तरीके से उनको यूज़ करें, ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए। और केमिस्ट के पास जाके बिना डॉक्टर से मिलके आपको आई ड्रॉप्स नहीं यूज़ करने चाहिए, क्योंकि हर दवाई का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है।
1: और ये आमतौर पे बहुत देखा जाता है,
0: कुछ अगर लुब्रिकेटिंग हो या जैसे रिफ्रेश टीयर्स टाइप के जो टीयर्स सप्लीमेंट्स होते हैं वो सेफ़ होते हैं, बट स्टेरॉयड, अगर कोई आपको स्टेरॉयड आई ड्रॉप्स दे दे तो उनके बहुत सारे बुरे प्रभाव हो सकता है। बिना डॉक्टर को दिखाए आप लॉन्ग टर्म दवाइयाँ तो बिल्कुल ही मत लें। जो दवाइयों से नहीं ठीक होते हैं उनके लिए हमें सर्जरी या ऑपरेशन करना पड़ता है, जैसे सफ़ेद मोतियाबिंद है, काला मोतियाबिंद है, अगर आपका पर्दा अचानक रेटिनल डिटैचमेंट पर्दा उखड़ जाए, या शुगर की कुछ बीमारियां हैं तो वो उनके लिए हमें सर्जरी करनी पड़ती हैं। कुछ बीमारियां हम लेज़र से भी ठीक करते हैं, जैसे डायबिटीज़ के रेटिनोपैथी, पर्दे पे जब खून जम जाता है। अलग अलग बीमारी पे डिपेंड करता है कि हम अलग अलग बीमारियों का किस तरह से इलाज होता है।
1: पर अधिकतर नेत्र रोगों का इलाज संभव है।
0: अधिकतर नेत्र रोगों का इलाज संभव है, मगर जो पैदाइशी रोग होते हैं, कई पैदाइशी रोग, उनका कोई इलाज नहीं है। जैसे कि एक रोग है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, जिसमें पेशेंट को दिन में तो दिखाई देता है, रात को बिल्कुल नहीं दिखाई देता है।
1: डॉक्टर अनीता, हम ये जानना चाहेंगे कि वातावरण का हमारे नेत्रों से पर कोई प्रभाव पड़ता है?
0: हाँ, वातावरण का नेत्र रोग पे प्रभाव पड़ता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो हमारे नेत्रों पे काफ़ी बुरा प्रभाव कर सकता है। एक हमने देखा है कि मोतियाबिंद या सफ़ेद मोतियाबिंद कैटरैक्ट का जो इंसिडेंस है वो उन जगहों में ज़्यादा है जहाँ पे हमें लगता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज़्यादा पाया जाता है, जैसे पहाड़ों पर, समुंदर पर, या जहाँ बर्फ़ है वहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है। इन सब जगहों पे हमें हमेशा सनग्लासेस जिसमें अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन है वो ज़रूर पहनना चाहिए। ऑल्सो जो प्रदूषण है, प्रदूषण का भी बहुत बुरा असर पड़ता है हमारी आँखों पर, कई लोगों को, और ये हम शहर में ज़्यादा देखते हैं, खास करके हमारे शहर में दिल्ली गुड़गांव में, कि आँखों में जलन, आँखों से पानी आना, खारिश, खुजली, रड़क, तो ये सब प्रदूषण के ही लक्षण हैं, और इनसे बचना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप हवा से आप कहाँ कहाँ तक बचोगे। मगर जितना भी आप कर सकते हैं, सनग्लासेस पहनेंगे आप, धूल मिट्टी से थोड़ा अपने आप को बचा के रखेंगे, एयर कंडीशन वातावरण में ना रहें।
1: अब सबसे बड़ा प्रश्न, हम नेत्र रोग से बच कैसे सकते हैं?
0: ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम बीमारियों को रोके, जो हम कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं, जो हम बढ़ा के बीमारी जो हम देखते हैं, हम नहीं देखना चाहते हैं। जो प्रिवेंशन है या बचने का है, जैसे चश्मे जो है, चश्मे का नंबर, उसको हम कैसे रोकें? कुछ तो इनबॉर्न, मतलब आपको पैदाइशी ही है कि आपको नंबर होगा, मगर जो बढ़ावा देता है ये जो हम स्क्रीन, बहुत ज़्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल, जैसे स्मार्टफोन्स हैं, टेलीविज़न है, ये जो हम बहुत ज़्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, या उससे जो है आँखों क्या वीक नंबर जो है वो बढ़ सकता है, आँखों में वीकनेस आ सकता है, आँखों में थकावट भी रहता है, तो हमें ये जो स्क्रीन का जो प्रयोग है हमें कम करना है। और कई लोग पूरे दिन कंप्यूटर पे काम करते हैं, वो उनका ऑफिस है, ऑफिस को छोड़ के इमिडिएटली वो अपने फोन्स पे आ जाते हैं, तो ये आपने कम करना है। और जैसे आप कंप्यूटर पे काम कर रहे, बीच बीच में जान के आपने पलक को झपकाना है, आपने किसी खिड़की के बाहर किसी दूर वाली चीज को, पेड़ को देखा, घड़ी को देखा, ताकि आंख के जो मसल्स हैं वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। और बिना डॉक्टर के बताए कोई भी चीज़, जैसे कुछ लोग कभी मधु आंख के अंदर डालना चाहते हैं या बहुत ज़्यादा छींटे मारते हैं, तो अगर आपकी आंख में कोई इरिटेशन हो या कोई रड़क हो तो ज़्यादा पानी डालने से वो ठीक नहीं होने वाला। आपको इसका इलाज करवाना है, डॉक्टर से दवाई लेके आप दवाई डालिए, वो उससे ठीक हो जाएगा। और जैसे शुगर की बीमारी है, आप उसको कंट्रोल करिए ताकि शुगर के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हम नेत्र पे देखते हैं वो नहीं होंगे। शरीर जो है वो एक ही है, एक बीमारी का असर कहीं पे भी आ सकता है। ये नहीं है कि ब्लड प्रेशर है तो वो खाली ब्लड प्रेशर है, वो आंखों पे भी बुरा असर कर सकता है। तो जो भी आपकी बीमारियां है, थायराइड है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उन सबको कंट्रोल करिए ताकि आपकी आईज भी हेल्दी रहेंगे। और लोग मेरे से पूछते हैं आंखों का कोई अलग से एक्सरसाइज होता है? आंखों का कोई ऐसा खास अलग से एक्सरसाइज नहीं है, पूरे बॉडी को अगर स्वस्थ रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, भागेंगे, बच्चों को खासकर मैं हमेशा कहती हूँ कि आप बाहर का गेम खेलिए, फुटबॉल क्रिकेट खेलिए, ये गेम जो कंप्यूटर पे होता है वो मत खेलिए, क्योंकि पूरा बॉडी अगर स्वस्थ रहेगा तो आंख भी स्वस्थ रहेंगे। खास करके बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि वो विटामिन ए युक्त भोजन करें, मतलब गाजर, हरी पत्ती वाली सब्जियां, फ्रूट, ये आंखों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और जंक फूड, खुद माता पिता को भी जंक अवॉइड करना है ताकि बच्चे अवॉइड करें, तो वो बहुत ही बढ़िया है। पूरे फैमिली को हेल्दी ही खाना चाहिए।
1: और आपने ये बहुत ही बेहतर सुझाव दिया और बताया है हमारे श्रोताओं को। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनीता।
0: धन्यवाद गीतिका जी।
2: मैं आप सभी श्रोताओं को बता दूं कि अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org विजिट कर सकते हैं या हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स 1800-120-3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंगदान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर एक फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और सर्टिफिकेट भेजा जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार के लोगों को जरूर बताइएगा और अपने आसपास सभी को प्रेरणा भी दीजिएगा। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।
3: तो आज के इस कार्यक्रम में हमने बहुत सी बातें जानी अंगदान से जुड़ी हुई। ऑर्गन इंडिया के सौजन्य से कार्यक्रम हम आपके बीच लाए। रेडियो मानव रचना 107.8 की इस कोशिश में अगर आप भी हमारा साथ देना चाहते हैं और अपनी राय और अपने कुछ खास विचार हमारे समक्ष रखना चाहते हैं तो हमें मैसेज या कॉल करें 8010781078 या फिर हमारे इंटरनेट रेडियो रेडियो मानव रचना के माध्यम से आप ऐप डाउनलोड करके भी इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं। और जिस भी व्यक्ति के साथ आप शेयर करना चाहें, दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी शेयर कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जीवन एक अनमोल उपहार, इसकी अहमियत को समझिए और अपना ख्याल रखिए। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जो लेकर आता है आपके लिए कुछ खास कहानियां, कुछ खास जर्नी जो आपको मोटिवेट करती है, आपको इंस्पायर करती है अपनी लाइफ से, अपनी जर्नी से, ताकि आप भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकें। और दोस्तों, सक्सेस की स्टोरी अक्सर हमें एक चीज जरूर बताती है कि हर सक्सेसफुल इंसान की जर्नी एक परफेक्ट प्लान के साथ स्टार्ट नहीं होती है। कभी कभी बस एक छोटा सा टैलेंट होता है, एक ड्रीम होता है, और उस ड्रीम को सीरियसली लेने की हिम्मत होती है। और आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही इंसान की है जिन्होंने लोगों को सिर्फ एंटरटेन ही नहीं किया है, बल्कि आम जिंदगी के छोटे छोटे मोमेंट्स में भी हुनर ढूंढने की कोशिश की है और हुनर ढूंढना सिखाया है। जी हाँ, जिनका नाम है राजू श्रीवास्तव। राजू श्रीवास्तव का असली जो नाम है वो है सत्य प्रकाश श्रीवास्तव, और उनका जन्म 25 दिसंबर 1963 को कानपुर में उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके फादर रमेश चंद्र श्रीवास्तव एक पोइट भी थे और बलाई काका के नाम से जाने जाते थे। राजू श्रीवास्तव को बचपन से ही मिमिक्री और स्टेज परफॉर्मेंस का काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। वो सोशल गैदरिंग और स्कूल फंक्शंस में परफॉर्म करा करते थे। और दोस्तों, यहीं से उनकी कहानी का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि वो सामने आता है, और वो ये है कि आज जब हम किसी भी बच्चे को मिमिक्री करते हुए देखते हैं या जोक सुनाते हुए, एक्टिंग करते हुए देखते हैं, तो शायद हम उसे बस एक फन या फिर एक्टिविटी समझकर इग्नोर कर देते होंगे। लेकिन राजू जी ने अपने टैलेंट को सिर्फ टाइम पास नहीं समझा, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उनके अंदर लोगों को एंटरटेन करने की एबिलिटी है, और उन्हें बॉलीवुड में खास इंटरेस्ट भी था। और जैसे कि अमिताभ बच्चन जी उनके फेवरेट स्टार में से एक रहे हैं, और राजू जी उनके डायलॉग्स और सॉन्ग्स की मिमिक्री करते थे, और धीरे धीरे इसी वजह से उन्हें स्टेज पर पहचान मिलने लगी। एक स्टेज परफॉर्मेंस में उन्हें अमिताभ बच्चन के डायलॉग्स बोलने के 50 रुपए तक पहली पेमेंट मिली थी। सो जी दोस्तों, सिर्फ 50 रुपए, वो अर्निंग जो आज बहुत ज्यादा छोटी लग सकती है कि यार 50 रुपए क्या होते हैं, लेकिन किसी आर्टिस्ट के लिए पहली बार अपनी टैलेंट के पैसे कमाना बहुत बड़ी बात होती है। और यहीं से आज का एपिसोड का पहला सक्सेस मंत्र भी मिलता है कि टैलेंट छोटा हो या बड़ा, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने टैलेंट को पहचानते कितना है और उस पर काम कितना करते हैं। तो राजू श्रीवास्तव की जर्नी अभी बस शुरू हुई थी। कानपुर के स्टेज से लेकर मुंबई की दुनिया तक का सफर अभी उनका इंतजार कर रहा था। तो जानेंगे इस जर्नी को, लेकिन अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे आर्टिस्ट की जिन्होंने अपनी कॉमेडी से जनरेशन को एंटरटेन किया है, और उनका नाम है राजू श्रीवास्तवा। जी हाँ, पिछले सेगमेंट में जैसे कि हमने जाना कि कैसे बचपन से ही राजू जी को मिमिक्री और स्टेज परफॉर्मेंस का कितना शौक था। लेकिन दोस्तों, टैलेंट होना एक बात होती है और उस टैलेंट को करियर बनाना बिल्कुल अलग बात होती है। राजू जी के लिए ये जर्नी इजी तो नहीं थी, लेकिन उनका ड्रीम था कि वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाए, और इस ड्रीम को परस्यू करने के लिए वो मुंबई आए। मुंबई एक ऐसा शहर जहां पर हर दिन हजारों लोग अपने सपने लेकर आते हैं, लेकिन हर किसी को तुरंत सक्सेस नहीं मिलती। जी हाँ, राजू जी ने भी इनिशियली छोटे रोल्स और स्टेज परफॉर्मेंस किए। फिल्म्स में उन्हें सपोर्टिंग और कॉमिक रोल्स मिलते रहे, मैंने प्यार किया, बाजीगर, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया जैसे प्रोजेक्ट्स में उनकी एप्रिसिएशन रही है। लेकिन उनकी असली आइडेंटिटी अभी ऑडियंस के सामने आनी बाकी थी। और यहीं पर एक इंटरेस्टिंग चीज भी हुई कि शुरुआत में राजू जी को अमिताभ जी की मिमिक्री के लिए जाना जाता था, उन्हें जूनियर बच्चन भी कहा गया था इसके बाद। लेकिन राजू जी इस चीज को समझ गए थे कि अगर उन्हें लॉन्ग टर्म करियर बनाना है इस फील्ड में, तो वो सिर्फ किसी और की कॉपी बनकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उन्हें राजू श्रीवास्तवा बनना है। उन्होंने कॉमन लोगों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, उत्तर प्रदेश के लोगों का एक्सेंट, उनका बिहेवियर, फैमिली कॉन्वर्सेशंस, शादी के फंक्शंस हो, मोहल्ला हो, बॉलीवुड को देखने की देसी स्टाइल हो, ये सब उनकी कॉमेडी का पार्ट बनने लगे धीरे धीरे। और यही ऑब्जर्वेशन आगे चलकर उनकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ भी बन गई। दोस्तों, लाइफ में ना हम भी अक्सर किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखकर सोचते हैं कि मुझे भी उनकी तरह बनना है। इंस्पिरेशन लेना गलत नहीं है, लेकिन किसी की जर्नी का डुप्लीकेट बनना जरूरी भी नहीं है। अगर आपको किसी और के फुटस्टेप फॉलो करने के बजाय इवेंचुअली अपने फुटप्रिंट्स को क्रिएट करना होता है, तभी आप अपना नाम बना सकते हैं। राजू श्रीवास्तवा जी ने भी वही किया, मिमिक्री से शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे अपनी स्टोरी टेलिंग

अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपना देसी ह्यूमर डेवलप किया और यही से बना उनका अगला स्टेप टूवर्ड्स सक्सेस। और आज का सक्सेस मंत्र, इंस्पिरेशन किसी से भी लो लेकिन अपनी आइडेंटिटी को खुद बनाओ। तो चलिए, वक्त हो गया है इसी के साथ एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। सुनिए बहुत ही प्यार सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड फील नाइस।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा की इस जर्नी में हम चल रहे हैं राजू श्रीवास्तव जी के साथ। जी हाँ, कॉमेडी से जिनकी शुरुआत हुई, फिर उसके बाद धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और फिर अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए बहुत सारे सपने देखे और उसे पूरा भी किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी जर्नी में। और मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी ना आपने नोटिस किया होगा कि कॉमेडी एक्चुअली सिर्फ जोक सुनाने का नाम नहीं होती है। जी हाँ, कभी कभी हमारी डेली लाइफ में ही इतने फनी सिचुएशंस होते हैं कि अगर कोई उन्हें थोड़ा सा डिफरेंटली ऑब्जर्व करे तो वही एक अमेजिंग स्टोरी बन सकती है। और राजू श्रीवास्तव उसी ऑब्जर्वेशन के मास्टर थे। उनकी कॉमेडी का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था कॉमन मैन की लाइफ। जी हाँ, उन्होंने देखा कि लोग कैसे बात करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं और कैसे मूवीज देखते हैं, फैमिली में क्या कॉन्वर्जेशन होती है, मोहल्ले का एनवायरनमेंट कैसा होता है और ऑर्डिनरी सिचुएशन को फनी एंगल से कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बॉलीवुड मूवीज उनकी कॉमेडी का एक रिक्योरिंग पार्ट रही है। अमिताभ बच्चन और शोले से उनकी फैसिनेशन ने उनके अर्ली एक्ट को इन्फ्लुएंस किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सिर्फ सेलिब्रिटीज की मिमिक्री से आगे बढ़कर एवरीडे कैरेक्टर्स भी क्रिएट किए हैं। यही उनकी ओरिजिनलिटी थी और वो एक ऑर्डिनरी सिचुएशन को लेकर उसमें एक फनी पर्सपेक्टिव ढूंढ लेते थे। और दोस्तों, ये क्वालिटी सिर्फ कॉमेडियन के लिए यूजफुल नहीं होती है बल्कि लाइफ में भी ऑब्जर्वेशन एक पावरफुल स्किल हो सकती है। आप जर्नलिस्ट हैं, टीचर हैं, बिजनेस करते हैं या फिर कंटेंट क्रिएट करते हैं या फिर रेडियो में काम क्यों ना करते हो, अगर आप लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उनकी नीड्स को नोटिस करते हैं तो आप बेटर काम क्रिएट कर सकते हैं। राजू श्रीवास्तव ने भी ऑडियंस को ऑब्जर्व किया। उन्हें पता था कि ऑडियंस किस टाइप की है और उनकी सिचुएशन से रिलेट कर सकती है। उनका ह्यूमर लार्जली एवरीडे एक्सपीरियंस से कनेक्टेड था, इसी वजह से उनकी कॉमेडी में ऑडियंस को अपनी लाइफ के कैरेक्टर्स और सिचुएशंस नजर आने लगे। और फिर क्या, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को और ज्यादा स्ट्रांग बना लिया। इसी में एक तरफ मिमिक्री थी और दूसरी तरफ था स्टोरी टेलिंग। एक तरफ बॉलीवुड रेफरेंस थे तो दूसरी तरफ थे देसी कैरेक्टर्स, और इन सब को कंबाइन करके राजू जी ने अपना एक डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस स्टाइल डेवलप किया। दोस्तों, सक्सेस के लिए सिर्फ टैलेंट ही इनफ नहीं होता है बल्कि आपको ये समझना पड़ता है कि आपकी ऑडियंस क्या चाहती है आपसे और आप उस तक अपनी बात को किस यूनिक वे में पहुंचा सकते हैं। राजू जी ने ये समझा और फिर साल आया 2005, एक ऐसा शो जो इंडियन कॉमेडी लैंडस्केप के लिए भी इम्पोर्टेंट था और राजू श्रीवास्तव के करियर के लिए भी। नाम था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज और इसी स्टेज पर दुनिया को मिला एक ऐसा इंसान जिसका नाम था गजोदर भैया। याद तो आ गया होगा। तो चलिए, इसी के साथ हमारा दूसरा सक्सेस मंत्रा है कि ऑब्जर्व करिए, लर्न करिए और ऑर्डिनरी चीजों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉसिबिलिटी को ढूंढिए। तो चलिए, वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का और जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ आरजे स्नेहा और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। तो दोस्तों, सक्सेस मंत्रा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं जिसमें हम बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों की, उनकी पर्सनैलिटी की, जिन्होंने अपनी लाइफ से, अपनी कहानियों से हमें मोटिवेट किया है, हमें इंस्पायर किया है कि हम भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमारे पास सब कुछ होगा तभी हम कुछ कर पाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता पर वो जीरो से स्टार्ट करके अपना नाम आसमान तक पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों, आज जिनकी हम बात कर रहे हैं उनका नाम है राजू श्रीवास्तव। जी हाँ, राजू श्रीवास्तव की बात कर रहे हैं, कॉमेडी किंग की बात कर रहे हैं आज, और उनके कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, उनकी जर्नी की बात कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हमने जानी और लास्ट जो सेगमेंट था उसमें मैंने आपको बताया था एक नाम की उनकी पहचान बनी गजोदर भैया के नाम से। जी हाँ, राजू जी की पहचान जिसने बदल दी वो था ये कैरेक्टर। दोस्तों, कुछ कैरेक्टर ना सिर्फ कैरेक्टर ही नहीं होते हैं, वो आर्टिस्ट की ना आइडेंटिटी, एक परमानेंट पार्ट बन जाते हैं। राजू श्रीवास्तव के लिए एक ऐसा ही कैरेक्टर था गजोदर भैया। 2005 में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के फर्स्ट सीजन में राजू श्रीवास्तव नेशनल ऑडियंस के सामने आए। शो ने उन्हें एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया और यहीं उनका गजोदर भैया कैरेक्टर ऑडियंस के बीच एक्सट्रीमली पॉपुलर हुआ। गजोदर भैया का स्टाइल बिल्कुल अलग था, देसी एक्सेंट, सिंपल बॉडी लैंग्वेज, हाथ को सर के पीछे रखने का सिग्नेचर पोस्चर और एवरीडे एक्सपीरियंस को अपने यूनिक अंदाज में नरेट करना, ये सब मिलकर गजोदर को मेमोरेबल बनाते थे। इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि गजोदर भैया का कैरेक्टर एक बार्बर से इंस्पायर्ड था जिसे राजू जी अपने होम टाउन में जानते थे। उस बार्बर की स्टोरी टेलिंग और एनिमेटेड वे में नरेटिंग इंसिडेंट्स ने राजू जी को इंस्पायर किया है। और दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग है। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि सक्सेसफुल आइडिया के लिए कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेंट करना पड़ेगा, लेकिन राजू जी की जर्नी हमें बताती है कि इंस्पिरेशन आपके आसपास भी हो सकती है। एक लोकल बार्बर हो सकता है, एक मोहल्ला हो सकता है, एक फैमिली कॉन्वर्जेशन हो सकती है, एक चाय की दुकान हो सकती है, एक बस की जर्नी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया दे सकता है अगर आप ऑब्जर्व करना जानते हैं। तो राजू द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में सेकंड रनर अप रहे हैं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी बहुत स्ट्रांग थी। बाद में शो के स्पिन ऑफ द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज चैंपियन में उन्हें किंग ऑफ कॉमेडी का टाइटल भी मिला था। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि हर बार फर्स्ट पोजीशन मिलना ही सक्सेस का प्रूफ नहीं होता है। जी हाँ, कभी कभी आप कंपटीशन में टॉप पोजीशन पर नहीं होते हैं लेकिन आप ऑडियंस के दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही राजू श्रीवास्तव की स्टोरी में भी रिकग्नाइजेशन सिर्फ ट्रॉफी या फिर रैंकिंग से ही डिफाइन नहीं हुई। उनकी रियल अचीवमेंट थी एक ऐसी आइडेंटिटी को क्रिएट करना जिसे लोग नाम से नहीं कैरेक्टर से पहचानने लगे। गजोदर भैया एक कैरेक्टर था लेकिन उस कैरेक्टर ने राजू श्रीवास्तव को एक परमानेंट पॉप कल्चर आइडेंटिटी दे दी थी। और इसके बाद हमें क्या सक्सेस मंत्र मिलता है कि कंपटीशन में पोजीशन इम्पोर्टेंट हो सकता है लेकिन आपकी यूनिक आइडेंटिटी बनना उससे भी ज्यादा वैल्यूएबल है। तो इसी के साथ अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, जहां पर आप सुनते हैं अलग अलग जर्नी को, अलग अलग कहानियों को, जिससे आप मोटिवेट होते हैं, आप इंस्पायर होते हैं उनकी जर्नी से। और कहते हैं ना कि जब हम किसी की कहानी सुनते हैं, किसी की बातें सुनते हैं, तो हमें भी अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि यार जब सामने वाला इंसान कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। लाइफ में वैसे भी सक्सेस किसको नहीं चाहिए, हर किसी को चाहिए कि वो सक्सेस हो जाए, अपना नाम बना ले, अपने घर वालों के लिए, अपने देश के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ बड़ा करके दिखाए। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और इस जर्नी में हम चल रहे हैं आज राजू श्रीवास्तव की, और राजू श्रीवास्तव जी की जर्नी के साथ आज हम चल रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि उन्होंने सक्सेस मिलने के बाद भी खुद को एक फॉर्मेट तक रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। जी हाँ, कॉमेडी उनकी कोर आइडेंटिटी थी, लेकिन उन्होंने फिल्म, टेलीविजन और स्टेज मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर भी काम किया है। आपने उन्हें मैंने प्यार किया, बाजीगर, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया जैसे फिल्म्स में देखा होगा। टेलीविजन पर भी उनकी जर्नी काफ़ी एक्टिव रही है, बिग बॉस 3 और कॉमेडी का महामुकाबला, नच बलिए और मजाक मजाक में, और दूसरे शो में भी हिस्सा रहे हैं, और उनका खुद का अपना शो भी था, राजू हाजिर हो भी आया था। और यहाँ एक सिंपल सी बात भी समझिए कि सक्सेस मिलना एक अचीवमेंट है, लेकिन सक्सेस को मेंटेन करना एक कंटिन्यूस प्रोसेस भी है। आप सोचिए, अगर आपकी कोई एक वीडियो वायरल हो गई, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप हमेशा ही रेलिवेंट रहे, क्योंकि ट्रेंडिंग चीज़ का कभी ना कभी टाइम आता है नीचे जाने का। पर आप क्या कर सकते हैं, आपको कंटिन्यूसली लर्न करना होता है, नई चीज़ों को, नए प्लेटफॉर्म को समझना होता है, ऑडियंस को, चेंजिंग टेस्ट को, वो जो चाहते हैं उसे समझना होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने कोर आइडेंटिटी को लूज किए बिना इवॉल्व करना होता है। राजू श्रीवास्तव ने भी टेलीविजन के डिफरेंट फॉर्मेट को एक्सप्लोर किया है, स्टैंड अप कॉमेडी के साथ रियलिटी शो, कॉमेडी शो और एक्टिंग प्रोजेक्ट्स का भी एक्सपीरियंस लिया है। उनकी जर्नी एक और इंटरेस्टिंग चीज बताती है कि एक अपॉर्चुनिटी कभी कभी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का डोर खोल देती है। स्टेज ने उन्हें ऑडियंस दी, मिमिक्री ने उन्हें रिकॉग्नाइजेशन दी, गजोदर भैया ने उन्हें आइडेंटिटी दी, टेलीविजन ने उन्हें मास रीच दी, और फिल्म ने उन्हें एक वाइडर एंटरटेनमेंट करियर का एक्सपीरियंस दिया। यानी सक्सेस एक सिंगल इवेंट नहीं थी, ये एक चेन थी, एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक की, और एक एक्सपीरियंस से नेक्स्ट एक्सपीरियंस तक के। और दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में बिना कुछ बिल्ड कर रहे हैं तो हर अपॉर्चुनिटी को फाइनल डेस्टिनेशन मत समझिए, किसी इंटर्नशिप को सिर्फ इंटर्नशिप मत समझिए, किसी छोटे से प्रोजेक्ट को सिर्फ छोटा सा प्रोजेक्ट ही मत समझिए, और किसी स्टेज परफॉर्मेंस को सिर्फ एक परफॉर्मेंस की तरह मत समझिए। हो सकता है वही एक्सपीरियंस आपको नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाए। राजू जी की जर्नी में भी छोटे स्टेज परफॉर्मेंस से लेकर नेशनल टेलीविजन तक का सफर एकदम से नहीं हुआ था, बहुत मेहनत लगती है उसके लिए, बहुत काम करना पड़ता है। तो इसलिए एक अपॉर्चुनिटी को एंड पॉइंट मत समझिए, उसे आप अपनी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की बिगनिंग बनाइए। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइव।

स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूँ आपकी होस्ट आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा में हम चल रहे हैं राजू श्रीवास्तवा जी की जर्नी के साथ। और अब तक हमने राजू श्रीवास्तवा को एक चाइल्ड परफॉर्मर, मिमिक्री आर्टिस्ट, स्ट्रगलिंग एक्टर और सक्सेसफुल कॉमेडियन के रूप में जाना, लेकिन उनकी लाइफ का एक और चैप्टर भी रहा है, वो है पब्लिक लाइफ और पॉलिटिक्स। जी हाँ, 2014 में राजू श्रीवास्तवा को समाजवादी पार्टी ने कानपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से कैंडिडेट बनाया था। बाद में उन्होंने टिकट वापस कर दिया और मार्च 2014 में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। 2019 में उन्होंने उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन अपॉइंट किया गया। उन्होंने पब्लिक कैंपेन में भी पार्टिसिपेशन किया, इंक्लूडिंग स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड रोल भी प्ले किया है। अब दोस्तों, हम इस पार्ट को पॉलिटिक्स के एंगल से नहीं बल्कि करियर जर्नी के एंगल से देखेंगे कि एक आर्टिस्ट के लिए अपनी फैमिलियर फील्ड से बाहर जाना एक बड़ा डिसीजन हो सकता है, लेकिन लाइफ में कभी कभी नया रोल हमें नया एक्सपीरियंस देता है, तो इसलिए कुछ नया ट्राई करना तो ज़रूरी है। राजू जी की जर्नी भी यहाँ हमें ये बताती है कि करियर एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, बल्कि आपको लाइफ में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। कभी आप एक लर्नर हो सकते हो, कभी आप एक परफॉर्मर हो सकते हो, कभी लीडर तो कभी मेंटोर, और हर स्टेज पर आपको अपनी स्किल्स को नए एनवायरनमेंट में अप्लाई करना पड़ता है। राजू श्रीवास्तवा के कलीग्स और फेलो कॉमेडियंस ने भी उनके कंट्रीब्यूशन को याद किया। कॉमेडियन सुनील पाल ने उन्हें मेंटर बताया है और कहा है कि राजू जूनियर्स को अपॉर्चुनिटीज और गाइडेंस देने के लिए भी रेडी रहते हैं हमेशा। और ये पॉइंट मुझे पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट लगता है कि सक्सेस का मतलब सिर्फ खुद आगे बढ़ना नहीं होता है, कभी कभी सक्सेस का एक ब्यूटीफुल पार्ट ये भी होता है कि आप अपने एक्सपीरियंस से दूसरों का रास्ता थोड़ा सा ईजी कर देते हैं, कभी किसी जूनियर को गाइड करके, कभी किसी बिगनर को अपॉर्चुनिटी देकर, और कभी किसी को कॉन्फिडेंस देकर, तो कभी किसी को बस इतना कह दें कि कीप गोइंग। क्योंकि जब आप खुद स्ट्रगल से एक पोजीशन तक पहुंचते हैं ना, तो आपको पता होता है कि एक छोटी सी हेल्प भी किसी के लिए कितनी बड़ी हो सकती है। और राजू श्रीवास्तवा की जर्नी का ये चैप्टर हमें इसी ब्रॉडर आइडिया से कनेक्ट करता है। और इसका सक्सेस मंत्र आपको क्या समझ आया, मैं बताती हूँ आपको कि ग्रो इतना करो कि आपकी जर्नी सिर्फ आपकी ना रहे, वो दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन और अपॉर्चुनिटी बन सके। तो चलिए, वक्त हो गया है इसी के साथ एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं आपकी होस्ट आपकी दोस्त आरजे स्नेहा और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा में हम चल रहे हैं राजू श्रीवास्तव जी की जर्नी के साथ, उनके बारे में, उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में बहुत सारी बातें जानी। लेकिन अब इस लास्ट सेगमेंट में हम आ गए हैं जहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी समरी दूंगी इस पूरे एपिसोड की, जहाँ पर आप समझ पाएंगे कि आज हमारा इनकी जर्नी के बारे में बात करने का क्या मोटिव था। तो दोस्तों, हर आर्टिस्ट की जर्नी का एक फाइनल चैप्टर भी होता है, लेकिन कुछ आर्टिस्ट जो होते हैं वो चले जाते हैं, फिर भी उनका काम उन्हें ऑडियंस के बीच जिंदा रखता है। राजू श्रीवास्तव जी उन्हीं आर्टिस्ट में से एक रहे। 10 अगस्त 2022 को वर्कआउट के दौरान कार्डियक अरेस्ट के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में एडमिट किया गया। 40 दिन तक ट्रीटमेंट के बाद 21 सितंबर 2022 को उनकी 58 ईयर्स की उम्र में ही उनका निधन हो गया। लेकिन दोस्तों, उनकी स्टोरी को सिर्फ उनके निधन की डेट पर एंड कर देना उनकी जर्नी को बहुत छोटा कर देना होगा। उन्होंने एक ऐसे टाइम में कॉमेडी को पॉपुलर बनाया जब इंडिया में स्टैंड अप कॉमेडी आज की तरह मेन स्ट्रीम रिकग्नाइजेशन नहीं मिला था। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के बाद उनकी पॉपुलैरिटी ने भी ये दिखाया है कि कॉमन मैन की स्टोरीज, देसी कैरेक्टर्स और एवरीडे लाइफ का ह्यूमर एक ह्यूज ऑडियंस को कनेक्ट कर सकता है। उनकी कॉमेडी की सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी थी वो थी रिलेटेबिलिटी। जी हाँ, आप उनकी परफॉर्मेंस देखते हुए कभी किसी अंकल को याद कर सकते हैं, कभी किसी नेबर को, तो कभी अपने घर में ही किसी कैरेक्टर को। और शायद इसी वजह से राजू श्रीवास्तव सिर्फ कॉमेडियन ही नहीं रहे, वो एक जनरेशन के मेमोरीज के पार्ट बन गए। उन्होंने हमें ये भी दिखाया कि एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन को स्टोरी टेलिंग में बदला जा सकता है, एक लोकल कैरेक्टर को नेशनल आइडेंटिटी भी दी जा सकती है और एक ऑर्डिनरी सिचुएशन को लाफ्टर में कन्वर्ट किया जा सकता है। और एक स्ट्रगलिंग परफॉर्मर अपनी इंडिविजुअलिटी के दम पर अपनी जगह बना सकता है। तो दोस्तों, अगर आज की पूरी कहानी को एक लाइन में अगर समझे तो राजू श्रीवास्तव जी का सक्सेस मंत्रा शायद ये होगा कि अपने टैलेंट को पहचानो, प्रैक्टिस को अपनी हैबिट बनाओ और अपनी आइडेंटिटी को क्रिएट करो और लाइफ के ऑर्डिनरी मोमेंट को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि कभी कभी आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ वही होती है जिसे दुनिया शुरुआत में सिर्फ एक छोटा सा टैलेंट समझ रही होती है। राजू श्रीवास्तव जी ने लोगों को हंसाया, लेकिन उनकी जर्नी हमें एक सीरियस लेसन देकर जाती है कि सक्सेस सिर्फ फेमस होने का नाम नहीं है, बल्कि सक्सेस है अपनी पहचान बनाना और अपने काम से लोगों की जिंदगी में एक याद छोड़ जाना। मैं हूं आपकी होस्ट आपकी दोस्त आरजे स्नेहा और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। तो चलिए, वक्त हो गया है मेरा इसी के साथ आप सभी से इजाजत लेने का। मिलते हैं एक और इंस्पायरिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और अपनी कहानी खुद लिखते रहिए और मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइट।

0: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन्ज मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8, फील गुड फील लाइफ।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, और बहुत सारी होती है बातें। और आज भी आपको ना कहीं घूमने के लिए लेकर के जाने वाली हूँ एक बड़ी खूबसूरत सी जगह। जी हाँ, जहाँ आकर आपको टाइम का ना मतलब पता ही नहीं चलेगा, समय जो है वो थम जाता है। और ऐसी जगह पर ना मतलब बहुत सुकून मिलता है। ये जगह जो है बहुत ही कमाल की है, और श्रद्धा के दो जो बूंद है आंसू हर आत्मा को मुक्ति दिला देते हैं, ये जगह वही बताती है। और आज ना इस जगह के बारे में मैं बात आपसे करने वाली हूँ। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, इसे मुक्ति धाम कहा जाता है। इसे कहा जाता है कि यहाँ आपको जो है वो मुक्ति मिलती है। और साथ ही साथ आपको बता दूं मैं कि आज का हमारा सफर हमें लेकर के जा रहा है बिहार, और बिहार के सबसे प्राचीन शांत और आत्मिक जो केंद्र है यहाँ लेकर के आए हैं, जिसे हम और आप गया जी कहते हैं। ध्यान रहे, आज हम बोध गया के ध्यान मार्ग से थोड़ा अलग जो है वो जाएंगे। गया शहर के उन सदियों पुराने वैदिक आंगन में कदम रखेंगे, और साथ ही साथ वो जहाँ उन हर गली हर गली जो है घाट पर जो पत्थर है, सृष्टि की शुरुआत की कहानी जो कहते हैं, आज उनसे रूबरू होंगे। इमेजिन कीजिए, सुबह के 5 बजे हैं, हवा में ठंडक है, और साथ ही फल्गु नदी के किनारे मंत्रोच्चारण की गूंज है। और देखिए, शास्त्रों की अगर हम बात करें, शास्त्र वास्त्रों में जो पंडित जी पितरों का आह्वान कर रहे हैं, और हर तरफ मिट्टी के जो कटोरों में

चलिए एक छोटा सा मैं ब्रेक लेती हूँ, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें. आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती है बातें। जी हाँ, आज आपको एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह लेकर के आई हूँ। ये जगह और कोई नहीं बल्कि है गया जी। जी हाँ, और आज का हमारा ये सफ़र हमें आज गया जी लेकर के आया है। तो आज गया जी की बहुत सारी मैं बातें करने वाली हूँ। देखिए, शहर का नाम गया कैसे पड़ा, इसके पीछे वायु पुराण की एक बहुत जो भावुक दास्ता है। कहते हैं कि गयासुर नाम का एक असुर था, पर उसके कर्म किसी देवता से भी ज्यादा पवित्र थे। उसने किसी देखिए ऐसी कठिन तपस्या ऐसी की थी कि भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि जो भी उसे देखेगा वो सीधा मुक्ति उसको मिल जाएगी। पर देखिए, इससे संसार का जो संतुलन है वो बिगड़ने लगा और हर कोई पाप करके भाई सीधे स्वर्ग जाने लगा। तब देवताओं ने जो है वो यज्ञ के लिए उसके विशाल शरीर की मांग करी और गयासुर ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना शरीर धरती पर बिछा दिया। जब यज्ञ के बाद भी उसका शरीर हिला तो भगवान विष्णु ने अपना जो दाहिना पैर है उसकी छाती पर रख कर उसे जो है वो स्थिर किया। गयासुर ने अंतिम इच्छा मांगी कि ये जगह उसके नाम से जानी जाए और जो यहाँ पर पितरों का पिंड दान करके उसे जो है वो करे तो उसे पुरखों को हमेशा के लिए उनके जो है वो मोक्ष मिल जाए। गयासुर के ये जो त्याग उन्होंने किया हमें ये सिखाता है कि बड़प्पन हमेशा परोपकार में होता है। और आजकल देखिए, हम अपने पुरखों का तो पिंड दान करते ही हैं। कई बार ये भी हमने सुना है या कई बार ये भी हमने जाना है कि लोग जो हैं पहले से पहले खुद का पिंड दान भी करके आते हैं। लेकिन जो मान्यता ये है कि जो आपके पितृ हैं उनका, यानी कि जो आपके पूर्वज हैं, आपके जो जो आगे जो पहले की जनरेशन है, आपके दादा बाबा जो अब नहीं रहे हैं, उनका पितृदान किया जाता है ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। चलिए, इसी के साथ अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रेस्ट 107.8 FM। फील गुड, फील राइट।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। आज आपको लेकर आई हूँ मोक्षधाम, जिसे कहते हैं गया जी। जी हाँ, हम गया जी इनको कहते हैं। साथ ही साथ देखिए, मैं आपको बता दूँ, गया शहर का सबसे बड़ा और यहाँ का सबसे शक्तिशाली केंद्र है विष्णुपड़ टेम्पल। और विष्णुपड़ टेम्पल जो है, ये फल्गु नदी के पश्चिमी तट पर स्थित ये मंदिर 1787 में इंदौर की महान और निष्प्रिय रानी जो है, उन्होंने जो है बनवाया था, महारानी अहिल्याबाई होलकर ने ये मंदिर बनवाया था। मंदिर का आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बेहद विशाल है और प्रभावी है। पूरा मंदिर सॉलिड ग्रे ग्रेनाइट के ब्लॉक्स को आयरन क्लैम्प्स से जोड़कर बनाया गया है। मंदिर के 30 मीटर ऊंचे ऑक्टोगोनल जो शिखर है, वो शिखरा जो है, इसके नीचे गर्भगृह है और इसके नीचे गर्भगृह स्थित है जिसे धर्मशिला, जहाँ भगवान विष्णु के 40 सेंटीमीटर लंबे चरण चिन्ह जो है वो उकेरे हुए हैं। और इन चरणों पर 9 अलग अलग प्रतीक जैसे कि शंख, चक्र और गदा बने हुए हैं। जब पंडित जी सुबह सुबह इस चरण पर चंदन, तुलसी और तुलसी पात्र जो है और साथ ही गुलाब अर्पित करते हैं, तो वहाँ की जो ऊर्जा है वो इतनी शांत हो जाती है कि आपके मन का सारा जो भटकाव है, जो भटक रहा है, वो एक पल में शांत हो जाता है और सारा स्ट्रेस बस यूं ही खत्म हो जाता है। विष्णुपड़ मंदिर के आंगन से निकलकर अगर आप जाते हैं फल्गु नदी के तट पर, इसे जो है वो देखिए अंदर ही अंदर बहने वाली नदी कहा जाता है। और जो मैं आपको बता दूं कि ये जो नदी है बड़ी खूबसूरत दिखने में है, ऊपर से दिखने पर ये पूरी तरह से सूखी रेत दिखती है, पर जैसे ही आप रेत में थोड़ा सा गड्ढा खोदेंगे तो कांच जैसी साफ और मीठा पानी जो है वो छलक उठता है। इसके पीछे वाल्मीकि रामायण का एक किस्सा जुड़ा हुआ है। ये किस्सा क्या है आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा. सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें. जी हाँ, गया आज आपको लेकर के आई हूँ और गया जी की बहुत सारी बातें आपको बता रही हूँ. और देखिए, एक वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक किस्सा आपको बताने वाली हूँ. लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ, अगर आप फरीदाबाद से बाहर जा रहे हो और ये सोच रहे हैं कि रेडियो मानव रचना के साथ कैसे जुड़ना है, तो बस आपको क्या करना है, हमारा इंटरनेट ऐप डाउनलोड करना है. ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले अपना एंड्रॉइड या आईओएस मोबाइल फोन लेना है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे जाना है, सर्च बॉक्स में लिखना है रेडियो मानव रचना, जिसके बाद ऐप आपको दिख जाएगी, आपको कीजिए डाउनलोड. और ढेर सारे पॉडकास्ट, एक्सपर्ट की एडवाइस और बहुत ही कमाल के सुपर डुपर हिट गाने आप सुन सकते हैं वर्ल्ड में कभी भी कहीं से भी. तो बस देरी किस बात की, जल्दी से डाउनलोड कीजिए ऐप. और आप हमें सोशल मीडिया के थ्रू भी आप हमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं. तो बस जल्दी से आप हमारे साथ जुड़ जाइए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.

वेलकम बैक रेडियो मैनेव रचना 107.8 एफएम सुन रहे आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। आज लेकर के आई हूँ एक बहुत ही खास खूबसूरत जगह के बारे में बात आपसे कर रही हूँ। ये जगह है गया। जी हाँ, गया जी के बारे में आपको बता रही हूँ। तो यहाँ की एक और बात मैं आपको बताऊँ कि देखिए, एक ना वाल्मीकि रामायण का किस्सा जो है वो जुड़ा हुआ है जगह से। कहते हैं कि वनवास के दौरान जब भगवान राम और लक्ष्मण जी पिंडदान की सामग्री लेने गए थे, तब राजा दशरथ की आत्मा ने जो है या प्रकट होकर माता सीता से भोजन मांगा। सीता जी ने फल्गु नदी गया जो है फल्गु नदी गया में, यानी कि गाय, तुलसी और बरगद के पेड़ के गवाह बनाकर फल्गु के रेत का पिंड अर्पित किया। पर जब राम जी आए तो फल्गु नदी ने शर्म और डर से झूठ बोल दिया कि सीता जी ने कोई पिंड नहीं दिया। अब देखिए, माता सीता ने गुस्से में आकर फल्गु को श्राप दिया कि वो हमेशा सूखी रहेगी और उसका पानी सिर्फ जमीन के नीचे बहेगा। आज देखिए, रबर डैम बनने के बाद जो है वो घाटों पर पानी टिका रहता है, पर इस नदी का जो कुदरती जो रहस्य है आज भी वही है।

तो कई सारी चीज़ें हैं जो देखिए ऐसी जुड़ी हुई हैं, पुरानी चीज़ें हैं जो हमारे हमने सुनी है, लोक कथाओं के द्वारा हमने सुनी है, या चीज़ें जो हैं ये मानी जाती हैं, और आज भी जो है कई सारी चीज़ें मुमकिन हैं या चीज़ें जो है ये होती हैं। तो चलिए इसी के साथ तभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रेस्ट 107.8 FM। फील गुड।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। और इस सफरनामा में बहुत ही खूबसूरत जगह आज आपको लेकर के आई हूँ, आज मैं लेकर के आई हूँ आपको गया। जी हाँ, आम लोगों को लगता है कि गया में सिर्फ एक जगह पिंड दान होता है, पर वास्तव में प्राचीन परंपरा के अनुसार गया में कुछ 45 अलग अलग वैदिक स्थान है जहाँ पिंड दान किया जाता है। पुराने जमाने में लगभग कुछ 360 जो है वो वैद्य हुआ करती थी। लेकिन देखिए, ये वैद्य अलग अलग कुंडों, तालाबों, पहाड़ों और मंदिरों में फैली हुई है। जैसे यहाँ पर जो है ब्रह्म सरोवर हो गया, या फिर उत्तर मानसरोवर, रुक्मणी कुंड और साथ ही साथ प्रेतशिला। यात्री एक दिन, तीन दिन या पूरे 17 दिन जो है वो पंचक्रोशी यात्रा करके इन सभी स्थानों पर जौ के आटे की, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, और काले तिल का पिंड जो है वो अर्पित करते हैं। हर एक वैदी के का जो है वो अलग इतिहास है, शास्त्र विधि है, और इन रास्तों पर चलते हुए आपको एहसास होता है कि हमारे पुरखों ने कितनी बारीकी से हमारी संस्कृति और आत्मिक शांति के नियम बनाए थे। चलिए इसी के साथ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुनरा। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। और इस सफरनामा ये जो प्रोग्राम लेकर के आती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, और बहुत सारी होती हैं बातें। आज आपको लेकर के आई हूँ गया। गया शहर से लगभग 8 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में खड़ी है एक पथरीली ऊंची पहाड़ी प्रेतशिला, द हिल ऑफ घोस्ट, जिसकी ऊंचाई लगभग 870 फुट है। यहां तक पहुंचने के लिए लगभग कुछ 676 सीढ़ियां स्टेयर्स जो है वो चढ़नी पड़ती है। लोकल विश्वास और गरुड़ पुराण के अनुसार देखिए, जिन आत्माओं की अकाल मृत्यु यानी कि अननेचुरल डेथ हो जाती है, या जो है वो अशांत रहती हैं, उनकी शांति के लिए प्रेतशिला पर पिंड दान करना अनिवार्य माना जाता है। चोटी पर भगवान यामा और लॉर्ड शिवा यानी कि भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है। वहाँ एक चट्टान के जो छेदों से होकर हवा जो है जब सरसराती है तो अजीब सा एक सन्नाटा बनता है। प्रेतशिला की चोटी पर खड़े होकर जब आप चारों तरफ फैली जो घाटियां और पहाड़ों को देखते हैं तो मन एक विशाल शांति और विनम्रता से भर जाता है। तो ये जगह ही कुछ इस तरीके से है, और आप अगर जाना चाहते हैं तो ज़रूर जा सकते हैं उस जगह को, आप और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अभी फ़िलहाल एक छोटा सा ब्रेक लूँगे, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत से प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। आज आपको लेकर के आई हूँ गया। गया के सदर्न हिस्से में स्थित है यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी ब्रह्मयोनी हिल, जो लगभग 450 मीटर ऊंची है और 400 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़कर जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो दो नेचुरल नैरो केव्स गुफाएं जो है ये मिलती हैं, जिन्हें ब्रह्मयोनी और साथ ही मृत्युयोनी कहते हैं। इसी के साथ साथ देखिए, पुरानी मान्यताओं के अनुसार ये भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन सक्रिय गुफाओं के बीच से निकल जाता है वो पुनर्जन्म के चक्रव्यूह और साथ ही गर्भस्था के जो दुखों से मुक्त हो जाता है। और इसी पहाड़ी पर गौतम बुद्ध ने अपने 1000 शिष्यों को अपना मशहूर फायर सेमन, यानी कि जो देखिए उनका तरीका था वो उनको दिया था, जहां उन्होंने बताया था कि ये संसार रागा या फिर द्वेषा और मोह की आग में जल रहा है और ऊपर से पूरे गया शहर और फल्गु नदी के एरियल व्यू जो है ये भी जब आप देखेंगे उस चोटी से तो वो भी बहुत खूबसूरत और शानदार दिखाई देता है। तो देखिए, ये जगह जो है वो मान्यताओं से जुड़ी हुई है, ये जगह जो है स्पिरिचुअल है, ये जगह जो है यहाँ पर आपको शांति मिलेगी, ये जगह जो है यहाँ पर आपको बुद्ध का ज्ञान भी मिलेगा, ये जगह है गया जी। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा मैं ब्रेक लेती हूँ, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। आप कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ सफरनामा. और ये सफरनामा में देखिए आज हम एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह आए हैं, गया जी हम आए हैं. हर सैटरडे आपके लिए प्रोग्राम लेकर के आती हूँ, सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ. आज हम गया जी आए हैं, तो चलिए अब आए हैं तो थोड़ी पेट पूजा भी की जाए, गया के उस स्वाद की बात करें जिसे बिना या देखिए ये जो सफर है इस स्वाद के वो बिल्कुल अधूरा है. गया का तिलकुट, जी हाँ. देखिए रामना रोड और यहाँ के टकारी रोड के गलियों में घुसते ही हवा में जो है वो भुने हुए तिल और गरम गुड़ की महक घूमने लगती है. तिलकुट बनाने की कला कोई आम बात नहीं है. सफेद तिल को कोयले की आंच पर भुना जाता है, फिर पिघले हुए गुड़ या चीनी के साथ मिलाकर गरम गरम उसे जो है वो हालत में ही उसे जो है लोहे के भारी कूटना जो है जो होता है जिसे कूटा जाता है उसे कूटा जाता है. और जो है वो दो लोग मिलकर लगातार पीटते रहते हैं. और इसकी खासियत ये है कि ये इतना खस्ता और पतला बनता है कि मुंह में रखते ही बिना चबाए घुल जाता है. और ठंड के मौसम में खोया और गुड़ वाला जो तिलकुट है वो खाने का ना एक अलग ही मज़ा है, एक लुफ्त है. इसके साथ चावल के आटे के और मेवे से बना हुआ जो अनारसा है और साथ ही मखाने की लाई खाना जो है मत आप बिल्कुल भूलिएगा. ये स्वाद जो है वो सदियों की मेहनत और परंपरा का एक तोहफा है. इसी के साथ साथ देखिए आज हम एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह तो आए हैं, गया जी की आज हम बात कर रहे हैं. फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और लेती हूँ, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें. कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.

वेलकम बैक रेडियो मैनेव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत से प्रोग्राम लेकर के आती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। आज लेकर के आई हूँ आपको गया। जी हाँ, देखिए गया की मैं बात करूँ तो भस्मकूट पहाड़ी पर स्थित है कुछ, देखिए एक बहुत ही खूबसूरत सी एक जो कहूँगी मैं एक जगह जो है ये है और 51 पवित्र शक्ति पीठों में से एक है माँ मंगला गौरी टेंपल। पौराणिक कथाओं के मुताबिक यहाँ माता सती का स्तन यानी कि ब्रेस्ट गिरा था, इसीलिए इसे स्तन पीठ का रूप जो है इसमें पूजा की जाती है। 15 सेंचुरी का ये मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर है जहाँ तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मंदिर का आंगन जो है, इस आंगन में प्राचीन यज्ञ कुंड और अखंड दीपक जलता रहता है। श्रावण के महीने में यहाँ मंगला गौरी व्रत करने के लिए हजारों महिलाएं आती हैं। मंदिर के माहौल इतना ज्यादा यहाँ पर शांत और पवित्र है कि यहाँ आकर भक्त अपने परिवार की सुरक्षा और मंगल कामना के लिए माथा टेकते हैं। गया की इस स्पिरिचुअल यात्रा में माता का ये दरबार एक अलग ही विश्वास और ऊर्जा से भर आपको देता है। तो देखिए अगर आप गया जाएं तो ये जो माँ मंगला गौरी टेंपल है यहाँ आप जरूर से भी जरूर जाएगा क्योंकि ये टेंपल बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ धार्मिक जो है ये से जुड़ा हुआ है, मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। चलिए इसी के साथ अब लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा एक खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ। बहुत सारी होती हैं बातें, और इसी के साथ देखिए आज बातें जो हैं वो तो हमने करी हैं, और आज लेकर के आई हूँ बड़ी खूबसूरत सी जगह आपको। आज मैं लेकर के आई हूँ आपको गया जी। जी हाँ, देखिए गया जी की आज हमने बात करी है। गया आने का प्लान अगर आप कर रहे हैं, तो अगर आप जाने का घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 2 दिन का एक सिंपल और परफेक्ट आइटनरी आप बना सकते हैं। Day 1 आप सुबह गया जंक्शन या पटना के रास्ते गया पहुंच जाइए। फल्गु नदी के घाट पर आपको स्नान करना है, विष्णुपद टेंपल के दर्शन कीजिए, और उसके साथ साथ आपको जो है अक्षयवट जाकर प्रणाम करना है। दोपहर को रामना रोड जाकर आपको ताजा तिलकुट खरीदना है और लोकल कचौड़ी या नाश्ता आप कर लीजिए। शाम को बोध गया स्थित जो है आपको जो है यहाँ पर जो है शिफ्ट हो जाइए, आप बोध गया थोड़ा सा घूम लीजिए, और यहाँ पर आपको महाबोधि टेंपल जो है वो आपको जाना है, और शाम की आरती और ध्यान में आपको शामिल हो जाना है। Day 2 की अगर बात करें तो सुबह जल्दी बोधि ट्री के नीचे आपको बैठकर मेडिटेशन करनी है, द ग्रेट बुद्धा स्टैचू वहां पर देखिए। इसके बाद दोपहर को आपको थाई जापानीज या जो भुटनीज मॉनेस्ट्रीज है यहाँ पर जो है वो एक्सप्लोर कीजिए। शाम को जो है वो आपको जो है निरंजना नदी क्रॉस करके यहाँ पर सुजाता स्तूपा आप उसके बाद जाना है। इसके बाद लोकल हैंडीक्राफ्ट मार्केट से आपको अलग अलग जो भी चीज़ें आप खरीदना चाहते हैं वो आप खरीद लीजिए, और इस पवित्र सफर को पूरा कीजिए। चलिए अब गया तो हम आ गए और इतनी सारी बातें भी की हैं। अगर आप भी कोई जगह ऐसी जानते हैं जो कि एक्सप्लोर करनी ज़रूर चाहिए सभी को, और आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं हमारे थ्रू, ज़रूर हमें बता सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078। फिलहाल अब वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का, तो मुझे दीजिए इजाज़त। कल होगी आपसे मुलाकात, होंगी बहुत सारी बातें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ। बाय बाय, टेक केयर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम ये मेरी लाइफ में और मैं हूं प्रांका आपके साथ और ये प्रोग्राम जहां मैं आप लोगों के पास रहती हूं 1 बजे से 3 बजे तक जी हां और ये वक्त होता है जहां हम ढेर सारी बातें करते हैं और आज आपके लिए भाई बहुत कुछ लेकर के आई हूँ क्योंकि आज कुछ ऐसा होने वाला है जिसको सुनकर आपको हैरानी भी होगी लेकिन कई सारे काम आपके आसान भी हो जाएंगे। अब वो कैसे और क्या लाई हूँ ये आपको मैं बताऊँगी थोड़ी सी देर में। फिलहाल आप मुझे बताइए कैसे हैं आप, क्या हालचाल, और मैसेज आप कीजिए हमें 8010781078 हमारा नंबर है। इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कोई बात आपको शेयर करनी है या कोई मैसेज आप बाकी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं या कोई गाना आपको सुनना है, कोई सॉन्ग आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए पहले एक गाना इंजॉय करते हैं, उसके बाद आपको बताऊँगी कि आज के प्रोग्राम में क्या है।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ. और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ कुछ बेहद इंटरेस्टिंग हैक्स एंड फैक्ट्स. जी हाँ, जिसको सुनकर आपको मज़ा भी बहुत आएगा और साथ ही आपके कामों में हेल्प आपको मिल जाएगी. जी हाँ, क्योंकि आजकल हम हैक्स से काफ़ी हैक्स होते हैं जिनको हम अपने घर में ट्राई करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में ट्राई करते हैं, अपने काम की जगह पर ट्राई करते हैं, जिस वजह से काम हमारा काफ़ी आसान हो जाता है. और आप सभी जानते हैं कि मैं ये आप लोगों के लिए बड़े चुन चुन कर हैक्स को लेकर के आती हूँ, फैक्ट्स को आपको बताती हूँ. तो चलिए आज के प्रोग्राम में भी कुछ ऐसा ही हम करने वाले हैं. और उससे पहले आपका मैं दोबारा चाहूँगी कि साथ जो है वो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप जब हमें मैसेज करते हो, अपनी बातें जब हम तक पहुँचाते हो, तो एक तो हमें बड़ा अच्छा लगता है और दूसरा ये कहूँगी कि आपकी बातें कई बार बहुत ज़्यादा एक आइडिया या मोटिवेशन दे जाती हैं और ये बहुत अच्छा लगता है हमें देख करके. और कितने मैसेज ऐसे होते हैं जो हम बाकी लोगों को भी आपके मैसेज बताते हैं. तो बस यही साथ आप बनाए रखें रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ. नंबर है हमारा 8010781078. तो चलिए, हैक्स तो आपको बताऊँगी लेकिन अभी क्योंकि वक्त हो गया है एक और बहुत ही छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, तो आपको सुनाती हूँ दो बहुत ही प्यारे प्यारे से गाने. रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रियंका आपकी

रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूं प्रांका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। और चलिए मैं आपको बताती हूँ कुछ बेहद इंटरेस्टिंग हैक्स। अच्छा, आजकल ना घबराहट हमें ज़्यादा होने लगती है ना, क्योंकि इतना काम का प्रेशर और उस प्रेशर के चलते जब हम चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हैं या समझ नहीं आता कि इस काम को फिक्स कैसे करना है या उसे हैंडल कैसे करना है, तो अक्सर घबराहट का सामना हमें करना पड़ता है ना। और घबराहट किसी भी काम में हो सकती है। कई बार हमें किसी की बात नहीं अच्छी लगी, हमें घबराहट शुरू हो गई, या कोई काम हम उसे कर सकते हैं, कैपेबल है, बट इतना काम के प्रेशर के चलते अगर वो चीज़ नहीं हो पा रही है तब घबराहट हो जाती है, या कोई हमें कुछ कह दे तब घबराहट हो जाती है। घबराहट का कोई एक रीज़न नहीं है, कई सारी चीज़ों पर हम रिएक्ट कर जाते हैं और उस वजह से एक घबराहट का हमें सामना करना पड़ता है। और ख़ास तौर से उन लोगों के साथ में होता है जो अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं कि हाँ हम ये चीज़ कर सकते हैं, हाँ हम इस चीज़ के लिए कैपेबल हैं, या और भी बहुत कुछ। ऐसे लोग जो बोल नहीं पाते हैं, अपनी बातें रख नहीं पाते हैं, उनके साथ घबराहट का जो ये मामला है वो और ज़्यादा देखने में आता है। तो मैं तो आपसे कहूँगी कि आप घबराइए नहीं, क्योंकि घबरा करके आप अपना काम खुद खराब कर रहे हैं और आप अपने आप को कहीं ना कहीं आप डाउन समझ रहे हैं, इस वजह से घबरा रहे हैं। नहीं, आप घबराहट का रीज़न खुद को समझिए ही नहीं, आप बल्कि ये सोचिए कि इस काम को मैं कर सकती हूँ, और बोलने के बजाय उस काम को आप करके दिखाइए। तो देखिए, किसी भी तरह से घबराहट हो सकती है, लेकिन अब अगर आप चाहकर भी, मतलब बहुत चाहते हो कि घबराहट ना हो या कम हो जाए, उसके बाद भी अगर घबराहट कम नहीं हो पाती है, तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ जिससे आपकी जो घबराहट है ना उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। अच्छा, किसी काम को करने से आपको घबराहट हो रही है तो उस काम को करते वक्त च्युइंगम चबाए, जी हाँ, घबराहट कम हो जाएगी। और पता है ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब हम घबरा रहे होते हैं या किसी चीज़ को लेके परेशान होते हैं और अचानक से हमारा ध्यान भटक जाए, यानी किसी दूसरे काम में लग जाए, तो हमारा पूरा ध्यान उस दूसरे काम पर चला जाता है ना। और यही चीज़ इस केस में आपको लागू करनी है कि आपको अपना ध्यान च्युइंगम चबाने में भटकाना है, और जब आप ऐसे करोगे तो घबराहट जो है वो चली जाएगी, कम हो जाएगी। और इसको आप करके देखिएगा, आप च्युइंगम अपने पास में रखें और ये जब भी आप करें उसके बाद आपको कैसा महसूस हुआ, आप क्या फील कर रहे हैं, या अगर आप नर्वस हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो कितना हो रहे हैं, कितना परसेंट आप फील कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आप मुझसे ज़रूर बात करना इस पर। और नंबर हमारा है 8010781078। आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए, अब आपको कुछ और भी फैक्ट्स हैं जो मैं बताऊंगी और साथ के साथ सुना रही हूँ गाने, तो चलिए अगला गाना एंजॉय करते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ।

0: मैं हूं प्रियंका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ. और ये मेरी लाइफ में आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग हैक्स बता रही हूं जिसका काम जो है जब हम कहीं फंसे होते हैं ना तब बड़ा देखने में आता है. और आज मैं खुद को मजबूत कैसे बनाना है खुद के लिए जो चीज़ें होती हैं ना वो मैं बता रही हूँ आपको. उसके लिए हो सकता है आप सोचें कि ऐसा हम कैसे कर सकते हैं भाई. तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस चीज़ पर बात कर रही हूँ. बहुत से लोग होते हैं जो अपने आप को मजबूत नहीं समझते हैं या अपने आप को बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रेजेंट करना वो नहीं समझ पाते हैं, उनको नहीं आता है. और घबराहट, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रही थी कि घबराहट लोगों को ज़्यादा होने लगती है, अपने ऊपर बिलीव नहीं कर पाते हैं, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाते हैं. अगर आप भी उनमें से हैं जो ये करते करते थक चुके हैं, बहुत सारे जिसने जैसा बोला कि आप ऐसे करो वैसे करो, आप वही चीज़ें कर रहे हैं लेकिन आपको कोई भी 1% भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है. मतलब आप जैसे पहले घबराते थे, जैसे पहले अपने आप को आप बिलीव नहीं कर पाते थे, ऐसे ही आज भी अगर आपके साथ में चल रहा है तो मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज बताती हूँ जिससे आप कुछ ही दिन में मेंटली स्ट्रांग हो पाएंगे और अपने आप पर बिलीव कर पाएंगे. और सच में इस चीज़ पर आप बिलीव करो, ये वाकई में काम करती है. तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है. आपको शीशे के सामने खड़े हो जाना है और खड़े होकर खुद से बात करनी है. जितना हो सकता है आप बात कीजिए कुछ अच्छी चीज़ों पर, और जो कमियां हैं उसको आप अपने से शेयर करें, मतलब आप बोलें, लेकिन उसको फिक्स मत कीजिए. उसको ठीक कैसे करना है उस पर बात करें, यानी कि अपने आप से अच्छी बातें करनी है. अपने अंदर किसी भी तरह की कोई कमी मत निकालिए, ना ही ढूंढने की कोशिश कीजिए. बट हाँ, अगर आपको लगता है कि भाई ये चीज़ मुझे लगता है ठीक करने की ज़रूरत है, तो वो भी आईने के सामने रखिए. मतलब आप ही समझ लीजिए आईने के उस तरफ भी आप हैं और इस तरफ भी आप हैं, और इस तरफ जो है जिसमें काफ़ी सारी कमियाँ भी हैं, लेकिन उस तरफ जो खड़ा है जो आप ही हैं और आप बहुत स्ट्रांग हैं. पता है आप ये रोज़ करोगे ना, आप यकीन मानिए कि आप कुछ ही दिन में मेंटली स्ट्रांग हो पाएंगे, वो मजबूत आप हो पाएंगे. और फिर एक प्रेजेंटेशन जो होती है ना वो बहुत ऑसम होती है. आपको लोग ना केवल पसंद करेंगे बल्कि बात करना चाहेंगे. और इस बारे में तो मैं अक्सर बात करती भी हूँ आपसे कि शीशे के सामने खड़े होकर बात कीजिए, आईने को अपना बनाइए, आप शीशे से प्यार कीजिए क्योंकि वही आपको मजबूत बनाएगा. तो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. जी हाँ, तो ये आप करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा. तो ये जब भी आप करें और कोई अगर चेंज आया है आपकी लाइफ में तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं. नंबर हमारा है 8010781078. आप सुनाती हूँ आपको एक गाना जो कि आईना से ही जुड़ा है. तो आइए इंजॉय करते हैं उस गाने को. रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ प्रियंका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ.
1: घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

मैं हूं प्रियंका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर. प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ. और आज के प्रोग्राम में ना केवल आपको हैक्स बता रही हूं बल्कि फैक्ट्स पर भी आज बात कर रही हूं. और अगला जो फैक्ट मैं आपको बता रही हूं ना, ये आप वाकिफ होंगे. अच्छा, कभी ऐसे होता है कि आपको सिर्फ जागने का मन करता है और आप मन ही मन खुश हैं, आप जाग रहे हैं, आपको नींद नहीं आएगी. पता है ये सच्ची में होता है. जब हम खुश होते हैं ना तो नींद कम हो जाती है, यानी कि कम नींद में भी काम चल जाता है. और अगर आप मन से खुश हो, मान लीजिए कोई चीज़ हुई या फिर आपको कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिली या कुछ ऐसा जिसका आप बहुत टाइम से, बहुत सालों से वेट कर रहे थे और वो आपकी लाइफ में हो गया. अब देखो, खुशियों के तो कई सारे ज़रिए हो सकते हैं ना, तो हर किसी के लाइफ में एक ना एक कुछ ना कुछ ऐसा ज़रिया होता है जिससे हमें खुशी मिलती है, राइट. तो ऐसा जब होता है ना तो कम नींद आती है, और जब उसके बाद उठते हैं सो करके तब भी हम बहुत रिफ्रेश होते हैं. इसीलिए कहते हैं कि छोटी छोटी सी चीज़ों में खुशियां देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये खुशियां आपको एक तो लंबा जीवन देगी और दूसरा आप ताज़ा रहेंगे, फ्रेश रहेंगे, आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, आप फिजिकली बहुत स्ट्रांग रहेंगे, आपका शरीर अच्छा रहेगा, आप अच्छे गुड लुकिंग दिखाई देंगे. क्योंकि जिसका चेहरा खिलखिलाता हुआ होता है या बहुत ज़्यादा कोई व्यक्ति खुश होता है ना, तो उसका चेहरा ही बता देता है कि अंदर से कितना खुश है. इसलिए खुशियाँ आप बाहर मत ढूंढिए बल्कि अंदर खुशियाँ ढूंढिए. और अगर खुश होना है तो बाहर लोगों को देख करके या उनकी बातों से खुश मत होइए बल्कि अंदर की जो खुशी है उसको महसूस कीजिए. तो इसलिए आप ये भूल जाइए कि अगर कोई मेरी तारीफ़ करेगा तो मैं खुश होंगी, अगर कोई मेरे को अच्छा बोलेगा तो मैं खुश होंगी. नहीं, अंदर जो हमारे खुशियां हैं जिसको हम बहुत ज़्यादा प्रेज भी करते हैं और उसको हम मानते हैं, तो उस चीज़ से ही आप आगे बढ़ें और उसको लेकर के खुश रहें, ना कि दूसरों की बातों से, राइट. तो ये वाली चीज़ जो कि वाकई में बड़ी काम की, और ये तो हम सभी जानते भी हैं और मानते भी हैं कि हाँ ऐसा होता है. तो अगर आप भी इसे फील करना चाहते हो ना, तो फील करने के लिए आप पहले खुद को फील करना सीखें, आप अपनी खुशियों को फील करना सीखें, फिर देखें क्या कमाल लगेगा आपको. और मैं तो कहूँगी कि ये दिन आपकी लाइफ में जल्द से जल्द आए. तो बस आप फील कीजिए, खुश रहिए, रेडियो मानव रचना को सुनिए, गानों को एंजॉय कीजिए. और हाँ, मैसेज करना ना भूलिएगा. रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ प्रियंका आपके साथ, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ.

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गे मेरी लाइफ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और मैं हूं प्रांका आपके साथ। और आज मैं आपको कुछ हैक्स बता रही हूं, कुछ फैक्ट्स पे बातें कर रहे हैं और अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताती हूं जिससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। जी हां, बिल्कुल कह रही हूं कि आपको फ़ायदा होगा क्योंकि चलो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि वो बात क्या है। देखो हम जब क्रेविंग को शांत करने की कोशिश करते हैं तो क्रेविंग उतनी ज़्यादा होती है। जैसे मान लो आपको पिज्ज़ा खाने का मन है और आप अपने आप को शांत करो कि नहीं, मुझे पिज्ज़ा नहीं खाना है, इसमें इतनी कैलोरीज है और ये मेरे लिए हेल्दी नहीं है। बट जितना आप खुद को रोकोगे उतनी ही क्रेविंग बढ़ती जाएगी और एक टाइम ऐसा आता है जब एकदम से बस मिल जाए तो बस हम इंजॉय कर लें उसे, वो वाली चीज़ हो जाती है। तो यहाँ आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको फ़ोन नहीं लेना है क्योंकि फ़ोन आप लेंगे तो ऑनलाइन ऑर्डर के लिए आप ज़रूर अपने फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए फ़ोन को आप अपने पास नहीं रखेंगे। अब आप जाइए किचन में और कुछ बनाना नहीं है बल्कि आपको पीना है 2 गिलास पानी। जी हाँ, पानी पिए और अपने आप को थोड़ा सा होल्ड करें और अपने आप से ये कहें कि पानी पीने के 10 मिनट बाद मैं डिसाइड करूँगा या करूँगी कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है या नहीं। पता है क्या होगा इससे, इससे आपकी क्रेविंग शांत हो जाएगी। जी हाँ, और ये बिल्कुल सही कह रही हूँ, आप करके देखिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। आप कितने सारे ऐसे अनहेल्दी खाने से बच जाएंगे। पता है क्या होता है, कई बार ना ये जो भूख होती है ये खाने की नहीं पानी की भी होती है। इस वजह से और ज़्यादातर लोग जो हैं, कितने सारे लोग हैं जो इस वक्त मुझे सुन रहे होंगे जो यही सोच रहे होंगे कि हाँ पानी तो हम भी ज़्यादा नहीं पी पाते हैं, लेकिन खाना जो है वो हम टाइम टू टाइम लेते हैं, बट बॉडी को पानी भी तो चाहिए होता है ना। तो उसकी नीड जब उसे जो होती है तो हम पानी की भूख को खाने की भूख समझ लेते हैं और बहुत सारा खाना हम खा लेते हैं तो पेट तो भर जाता है लेकिन पानी की कमी तो हम पूरी कर ही नहीं पाए क्योंकि हमने पानी ही नहीं पिया उतना, है ना। और फिर हम खाने के ऊपर से पानी पी करके अपने पेट को कर लेते हैं ख़राब। तो ये वाली चीज़ आपको नहीं करनी है, बल्कि जब भी आपको कुछ बाहर का उल्टा सीधा या कुछ ऐसा खाने का मन करे तो आप पहले अपने आप से पूछो कि ठीक है, अगर मैं पहले पानी पीता हूँ या पीती हूँ उसके 10 मिनट बाद भी अगर मुझे क्रेविंग होती है देन आई विल डिसाइड कि मुझे क्या करना है। ठीक है, ये आप करोगे ना, पता है इसका एक फ़ायदा क्या होगा, 10 मिनट बाद आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है या नहीं क्योंकि आपको क्रेविंग होगी ही नहीं, आपका पेट पूरी तरह से फुल हो चुका होगा और सिर्फ 2 गिलास पानी आपको पीना है, जो मीडियम साइज़ के गिलास होते हैं वो आपको पीना है। तो ये बहुत इफेक्टिव, आप इसे एक्सरसाइज कह लो या आप अपने माइंड को मैसेज देना कह लो, जो भी आप कहें, जो भी इसको आप नाम दें, लेकिन हाँ ये एक सच बात है कि इसका फ़ायदा हर एक एक को मिलेगा। तो ये करके देखिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है ये। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ प्रांका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ।

0: ज्वाला, समुंदर की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
1: और मैं ये कह रही हूं, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
0: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
1: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
0: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
1: तो फिर एक वादा करो।
0: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
1: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
0: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूं प्रियंका आपके साथ. और ये गाना आपने सुना ऐसे ही और बहुत ही प्यारे प्यारे से गाने जो मैं आपको इस प्रोग्राम में सुना रही हूं. तो आपका कोई पसंदीदा गाना है जिसे आप सुनना चाहते हैं रेडियो पर तो आप मैसेज कर सकते हैं. नंबर हमारा है 8010781078. आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं. आज के प्रोग्राम में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता रही हूँ, कुछ हैक्स पर हम बात कर रहे हैं और अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जिससे आपकी स्किन फ्लॉलेस हो जाएगी. जी हाँ, आपकी स्किन जो है बहुत ही चमकदार और खूबसूरत दिखने वाली है. अच्छा, एलोवेरा जेल जो है वो मुझे लगता है कि सभी के घर में मौजूद होगा ना. अब जिनके पेड़ हैं, जिन्होंने पेड़ लगा रखे एलोवेरा के, भाई वो तो बहुत ही कमाल है क्योंकि जितना ताज़ा एलोवेरा आप इस्तेमाल करोगे उतना ही फ़ायदा हमें मिलता है. लेकिन अगर आपके पास एलोवेरा का पेड़ नहीं है, उसका पौधा नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप मार्केट से ले लीजिए. बस ध्यान रखिएगा कि एलोवेरा जेल अच्छी कंपनी का होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई कलर नहीं होना चाहिए, राइट. तो अब मैं यहाँ एलोवेरा की क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाली हूँ हैक वो इसी से ही जुड़ा है. अच्छा, हफ्ते में दो बार हम, जैसे क्या होता है एलोवेरा जेल को यूं ही हम अपने चेहरे पर लगा लेते हैं, है ना, और लगा करके कुछ लोग पूरी रात लगे रहने देते हैं तो कुछ लोग एक घंटा लगाया और उसके बाद में वॉश कर लेते हैं. लेकिन अब जो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ ये शायद आपको ना पता हो. हफ्ते में दो बार अगर गर्म पानी आप करते हैं और उसमें एलोवेरा जेल डालकर चेहरे पर भाप लेते हैं तो स्किन हेल्दी और ग्लोइंग होती है और चेहरे के दाग धब्बे भी धीरे धीरे जाने लगते हैं. जी हाँ, है ना, कितना इंटरेस्टिंग. क्या आपको पता था इससे पहले कि इस तरह से अगर भाप लेते हैं तो स्किन में निखार आता है? अगर नहीं पता था तो ये कई सारे लोगों को वाकई में नहीं पता था, क्योंकि ये तरीका जो है हम लोग नहीं जानते हैं. हम एलोवेरा जेल को सीधा अपने चेहरे पर अप्लाई करते हैं, है ना. लेकिन आप इस तरह से करके देखें और गर्म पानी में आपको एलोवेरा डालना है और उसके बाद में आप भाप लीजिए और फिर जो असर है वो मुझे लगता है कि कुछ ही दिन में दिखाई दे जाएगा. तो ये जब भी आप इसको अप्लाई करें या जब भी आप इसको यूज़ करें तो उसका फीडबैक, मतलब मुझे अच्छा लगता है जब कोई फीडबैक देता है ना, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है ये देख करके सुन करके. तो आप ज़रूर बताना कि कैसा लगा. नंबर हमारा है 8010781078. मैं हूँ प्रियंका, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ.

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और मैं हूं प्रांका आपके साथ। कुछ फैक्ट्स कुछ हैक्स आपको बता रही हूं आज के प्रोग्राम में। अच्छा, कई बार ना बिजी होना काफ़ी अच्छा भी लगता है। कभी ऐसा महसूस किया आपने, कभी ये चीज़ फील की है? वैसे तो हम सब परेशान रहते कि इतना काम है कि टाइम ही नहीं मिल पाता है, और इस काम के चलते हम तो समय ही नहीं निकाल पाते हैं बात करने का या फिर समय स्पेंड करने का, है ना। देखिए, अगर ऐसी वाली चीज़ है तो कभी कभी तो आपको वक्त निकालना ही चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिज़ी होना भी एक अच्छी चीज़ है हमारे लिए? जी हाँ, दरअसल जो ज़्यादा बिज़ी लोग होते हैं वो उन लोगों के मुकाबले जो कम बिज़ी होते हैं उससे ज़्यादा खुश होते हैं। पता है इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है क्योंकि ये लोग जब काम में बिज़ी होते हैं तो जो भी नेगेटिव चीज़ें दिमाग में आती है कि इसने हमें ऐसे बोला, मेरे साथ एक साल पहले ऐसे किसी ने मुझे गलत बोला था और मुझे अच्छा नहीं लगा था, उसने मेरे से माफ़ी क्यों नहीं मांगी, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, जो भी ऐसी चीज़ें जो हमें पसंद नहीं आई या हमारे कहीं ना कहीं वो खिलाफ थी चीज़ें, वो चाहे जितनी पुरानी हो बट हमें याद आता रहता है। और जो लोग ज़्यादा बिज़ी होते हैं उनको ये सब सोच की जरूरत, क्योंकि उनके पास वक्त ही नहीं होता है कि वो ये सारी चीजें सोच भी पाए। एक के बाद एक काम जो है वो उसमें बिजी होते हैं, इसीलिए वो लोग अपने प्रेजेंट में जीते हैं और ज्यादा सोच नहीं पाते क्योंकि वक्त ही नहीं मिल पाता है। इसीलिए जो मैंने आपको बताया ना कि जो ज्यादा बिजी लोग होते हैं वो ज्यादा खुश होते हैं उन लोगों के, जो लोग ज्यादा बिजी नहीं होते हैं क्योंकि वो नेगेटिव चीजों को सोच ही नहीं पाते हैं और उनके पास टाइम ही नहीं होता है सब सोचने का। इसलिए कहते हैं कि काम करते रहो, कुछ कुछ चीज़ें लाइफ में आप करते रहो जिससे आप बिजी रहो। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लाइफ में एनी टाइम बिजी रहो कि आप अपनों को या अपने ख़ास रिश्तों को समय ही नहीं दे पा रहे हैं। ये भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे चीज़ें कमज़ोर होती हैं, रिश्ते कमज़ोर होते हैं। हाँ, समय ज़रूर दीजिए, लेकिन जब बात अपनी आती है तो अपने आप को नेगेटिव विचारों को सोचने से बचाने के लिए हमेशा बिजी आप रहें, तो इससे आप प्रेजेंट को जिएंगे, प्रेजेंट को एंजॉय करेंगे, और जो काम करता है वो अपने लक्ष्य को पा पाता है, है ना। तो बस ये आप करके आगे बढ़िए और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए अब इंजॉय करते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा गाना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ प्रांका आपके साथ, और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर ये गाना आपने सुना और अब मैं सुनाने वाली हूँ आपको अगला गाना. मैं हूँ प्रांका और मेरे चलने का वक्त हो गया है. तो आज का प्रोग्राम यहीं तक. प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं. बताने के लिए आप मैसेज कीजिए. नंबर है हमारा 8010781078. तो चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त. आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए बाकी आगे आने वाले प्रोग्राम्स को इन्जॉय कीजिए और बने रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर. मैं हूँ प्रांका और फिर मिलेंगे. तब तक के लिए बाय.

0: ए सुन रुबिया, प्यार हो गया
1: सच,
0: प्यार हो गया क्या करें।
1: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से

हेलो एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पे। दोस्तों आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपके अपने फरीदाबाद के पहले चैनल पर। दोस्तों कैफे क्लासिक्स प्रोग्राम में मैं आपको सुनाती हूँ अच्छे अच्छे गाने, साथ ही देती हूँ उन गानों के पीछे जुड़े हुए उन लोगों के बारे में कुछ कुछ जानकारी जो शायद हमारी जिंदगी में कुछ एक नया चेंज ला सके, हमारी जिंदगी में कोई नई मोटिवेशन ला सके। दोस्तों आज का प्रोग्राम हम डेडिकेट करेंगे एक उस हस्ती को जिसकी आवाज़ हम सबके दिलों में बसी हुई है। मुझे पता है नाम लेते ही बहुत से जो श्रोता जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो दिल पर हाथ रख कर एक लंबी सांस लेंगे, क्योंकि वो नाम है मोहम्मद रफ़ी साहब का। दोस्तों एक ऐसा नाम जो बॉलीवुड की दुनिया में कई दशकों तक छाया रहा, एक ऐसा नाम जिन्हें शहनशाह तरन्नुम भी कहा गया है। तो दोस्तों आज का हमारा ये सफ़र मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम। लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, ब्रेक के बाद मैं तुरंत वापस आऊँगी, सुनाएंगे आपको ढेर सारे मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए हुए गाने, साथ ही झांकेंगे उनकी ज़िंदगी की किताब के अंदर, पलटेंगे कुछ किताब के पन्ने और सीखेंगे उनसे कुछ नई और ज़रूरी बातें। ले रही छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड।

वेलकम बैक रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम पे। दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स और आज हम इस शो में बात कर रहे हैं एक ऐसे प्लेबैक सिंगर जो हमारे दिलों में बसे हुए हैं, एक ऐसे प्लेबैक सिंगर जो कि हमारे दिल की तारों के झनकृत सा कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मोहम्मद रफ़ी साहब की। दोस्तों रफ़ी साहब जिनको हम प्यार से कहा करते थे, जिनको दुनिया इसी नाम से बुलाना पसंद करती है, वो श्रेष्ठतम से श्रेष्ठतम पार्श्व गायकों में से एक है। उनका जन्म 24 दिसंबर 1924 को हुआ और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इनको शहनशाह तरन्नुम भी कहा जाता था। इन्होंने आज की पीढ़ी के कई सिंगर्स को इन्होंने मोटिवेट किया है। कितनों के नाम तो मैं नहीं जानती, अनसंग हीरोज है, लेकिन कुछ खास हस्तियाँ जो कि आगे चल करके बताती हैं कि हमारी जो इंस्पिरेशनल हस्ती थी वो मोहम्मद रफ़ी साहब थे। उनमें से जो अग्रज नाम है वो हैं सोनू निगम साहब, मोहम्मद अजीज़ और उदित नारायण। आज भी हम लोग जब सोनू निगम जी के हम शो सुनते हैं, म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स, तो वो उनका गाना जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, 90% अपने शोज वो रफ़ी साहब के इसी गाने से शुरू करते हैं। मानते हैं वो उनको अपना सब कुछ, क्योंकि उनकी आवाज़ सुनकर वो बड़े हुए और उनकी आवाज़ ही उनके लिए प्रेरणा बनी। दोस्तों रफ़ी साहब ने केवल फिल्मी गीत ही नहीं गाए, उन्होंने गज़ल, भजन, देशभक्ति गीत, कव्वाली और अन्य भाषाओं के गीत भी गाए। यहाँ तक कि उन्होंने शब्द भी बहुत खूबसूरत तरीके से गाए हैं। बहुत से फिल्म अभिनेताओं पर उनकी आवाज़ को लगाया गया और बहुत ही सुंदर, मतलब फील होता था कि एक्टर खुद ही गा रहा है, जबकि हम सभी जानते हैं कि एक्टर सिर्फ लिप सिंक करते हैं, आवाज़ तो पीछे सिंगर की होती है। और जिन जिन अभिनेताओं पर रफ़ी साहब की आवाज़ बहुत ही खूबसूरत लगी, उनमें देवानंद, दिलीप कुमार, गुरुदत्त साहब, जॉनी वॉकर, जॉय मुखर्जी, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, ऋषि कपूर और मिथुन चक्रवर्ती और लेटेस्ट गोविंदा के लिए भी उन्होंने, उनकी बहुत शुरुआती पिक्चरों के अलावा उनके उसमें भी उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग करी है। और इसके अलावा एक नाम और आता है, किशोर कुमार का भी नाम शामिल है। ऑल्दो किशोर कुमार साहब खुद ही अपने लिए गाते थे, वो भी एक बहुत अच्छे लेवल के सिंगर थे, ये बात हम सभी जानते हैं, लेकिन कई गाने किशोर कुमार जी के लिए जब वो एक्टिंग कर रहे थे तो रफ़ी साहब ने भी उनके लिए गाया। और कितना कहूँ, सब बहुत कम है। एक ऐसी शख्सियत जिसके लिए बहुत सी तारीफ़ करें तो भी कम है, लेकिन आज के इस शो में हम क्योंकि उनकी ज़िंदगी के सफ़र पर उनके साथ साथ चल रहे हैं तो करूँगी आपसे भी ढेर सारी बातें और उनके जन्म के बारे में, उनका शिक्षा कैसे हुई, ये सब बातें अभी आपसे और करेंगे। तब तक के लिए ले रही हूँ यहाँ पर छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं रफ़ी साहब के गाए हुए कुछ और गाने। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो मानोरचना 107.8 पर। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं आज हम रफ़ी साहब की। रफ़ी साहब जिनको शहनशाह तरन्नुम भी कहा जाता था। दोस्तों आज का हमारा कैफे क्लासिक्स का ये एपिसोड हमने समर्पित किया है मशहूर श्रेष्ठतम पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी साहब को। दोस्तों मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह गाँव में हुआ। आरंभिक पढ़ाई उनकी कोटला सुल्तान सिंह में भी हुई। जब रफ़ी ऑलमोस्ट 7 ईयर्स के थे तो उनका परिवार रोजगार के सिलसिले में लाहौर आ गया, क्योंकि ये बात है अनडिवाइडेड इंडिया की, तो वो बिल्कुल साथ साथ ही अमृतसर, हम सब जानते हैं कि वहीं पे वाघा बॉर्डर और वहीं से पाकिस्तान शुरू होता है। खास बात यह है कि इनके पूरे परिवार को संगीत से कोई खास लगाव या सरोकार नहीं था। जब रफ़ी साहब छोटे थे तो इनके बड़े भाई की नाई की दुकान थी और रफ़ी साहब का बचपन का काफ़ी वक्त वहीं गुजरता था। जब रफ़ी साहब 7 साल के थे तो ये अपने बड़े भाई की दुकान से एक फ़कीर जो है वो गुजरा करते थे सामने से, और ये उस फ़कीर की उसके पीछे पीछे भागकर उसकी नकल किया करते थे। फ़कीर गाता हुआ जाता था और ये फ़कीर की आवाज़ की नकल करते हुए उसके पीछे पीछे जाया करते थे। इनकी आवाज़ सुनकर जो आसपास के लोग हैं, गली के लोग हैं, वो बहुत ही इम्प्रेस होते थे, लेकिन इससे उनको सिर्फ उस गली की ही ख्याति मिली, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक फ़ायदा ये हुआ कि इनकी संगीत के प्रति रुचि देखकर इनके बड़े भाई ने उनको संगीत शिक्षा के लिए डाल दिया। उस्ताद का नाम था उस्ताद अब्दुल वाहिद खान साहब। तो ये थे रफ़ी साहब के पहले गुरु। और इसके बाद एक वाक्य मुझे और याद है, मैंने ये बात आपसे पहले भी शेयर करी थी जब मैंने एक एपिसोड सहगल साहब का किया था, कि एक बार सहगल साहब का कहीं पर शो था और लाइट चली गई। अब जाहिर सी बात है, जब लाइट चली गई तो मेन सिंगर तो गाएंगे नहीं, तो लाइट चली गई तो सारी ऑडियंस चुप करके बैठी और रफ़ी साहब उसी ऑडियंस में बैठे थे। अब लाइट चली गई तो सब ऑडियंस को बिजी तो रखना है, तो ऐसे ही अनाउंस कर दिया गया कि अगर ऑडियंस से कोई गाना सुनाना चाहता है तो आ जाए। और रफ़ी साहब को तो ये मौका मिल गया स्टेज पर आने का। रफ़ी साहब स्टेज पर आए और उन्होंने बहुत ही एक सुंदर गीत गाया। उस वक्त रफ़ी साहब की उम्र थी 13 साल की। उसी जजमेंट पैनल में श्याम सुंदर नाम के प्रसिद्ध संगीतकार बैठे हुए थे। उन्होंने उनका गाना सुना, उनसे बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने वहीं पर रफ़ी साहब को गाना गाने का न्योता दे दिया। देखिए, जब किस्मत को रंग बदलना होता है, या फिर जिसे कहते हैं जिसकी किस्मत में लिखा ही होता है बहुत ज़्यादा फेमस होना, दुनिया के दिलों में राज करना, तो कहीं ना कहीं से उसकी शुरुआत तो हो ही जाती है, कहीं ना कहीं उसको गॉडफादर मिल ही जाता है। तो इस तरह से रफ़ी साहब का जो है उनके यहाँ पर जो सफलता का उड़ान की उनकी यहाँ पर पहला उनका कदम था। और इसी उड़ान के साथ आइए सुनते हैं उनके गाए हुए कुछ और गीत। ले रही हूँ यहाँ पे छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, ब्रेक के बाद मैं तुरंत वापस आऊँगी और फिर हम बात करेंगे रफ़ी साहब के फिल्मी करियर की। तब तक के लिए म्यूजिकल ब्रेक, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पे. दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है. प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स और मैं हूँ इस शो की होस्ट और आप सबकी प्यारी प्यारी दोस्त. जी हाँ दोस्तों, आज के सफर में हम सैल्यूट कर रहे हैं अपनी बातों और उनके गानों के द्वारा श्री मोहम्मद रफ़ी साहब को. मोहम्मद रफ़ी जो हम सभी जानते हैं, एक बहुत ही फेमस प्लेबैक सिंगर है हमारे बॉलीवुड के. इनके द्वारा गाए हुए गाने आज भी हमारे दिलों में बसते हैं. थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात करी थी रफ़ी साहब के जन्म की, उनके संगीत की शिक्षा की और किस तरह वो पहचाने गए एक गॉडफादर द्वारा और उनको पहला गाना गाने का मौका मिला. आइए चलते हैं अब उनके कुछ फिल्मी करियर पर. जब रफ़ी साहब का, मैंने आपको बताया कि उन्होंने शो में एक ऐसा गाना गाया और उनको श्याम सुंदर जी ने उनको गाने के लिए बुला लिया और उनका जो पहला गाना था वो एक पंजाबी फिल्म थी गुल बलोच, उसके लिए उन्होंने गाना गाया. श्याम सुंदर जी के ही निर्देशन में थी 1944 में. और 1946 में फिर रफ़ी साहब ने मुंबई आने का फैसला किया. यहाँ पर संगीतकार नौशाद ने पहले आप नाम की फिल्म में उनको गाने का मौका दिया. दोस्तों नौशाद द्वारा सुरबद्ध गीत तेरा खिलौना टूटा, ये फिल्म थी अनमोल घड़ी जो कि रिलीज हुई थी 1946 में. इस गीत से प्रथम बार हिंदी जगत में रफ़ी साहब को ख्याति मिली. इसके बाद शहीद, मेला तथा दुलारी फिल्मों में भी रफ़ी साहब ने गाना गाया और इन सभी के गाने बहुत प्रसिद्ध हुए. 1951 में नौशाद साहब ने फिल्म बैजू बावरा के लिए संगीत निर्देशन दिया और वो गाने बना रहे थे और उन्होंने सोचा कि वो अपने पसंदीदा गायक तलत महमूद से उसके गाने गवाएंगे. ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि एक बार तलत महमूद को उन्होंने धूम्रपान करते देख लिया. इससे नौशाद साहब का मन बदल गया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं रफ़ी साहब को इसमें गाना गाने का मौका दूं. बैजू बावरा के गाने बहुत फेमस हुए, ये बात हम सभी जानते हैं और रफ़ी साहब को उन्होंने मुख्य धारा के गायक के रूप में वहाँ पर स्थापित किया. इसके बाद नौशाद साहब ने रफ़ी साहब को अपने निर्देशन में जो गाने हैं उनको गाने का मौका दिया. उसी समय पर दोस्तों शंकर जयकिशन नाम के म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, वो भी काफ़ी ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे थे. शंकर जयकिशन दोस्तों राज कपूर साहब के बहुत ही फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर हुआ करते थे और राज कपूर साहब ऐसा सोचते थे कि उनके चरित्र पर जो पीछे प्लेबैक सिंगिंग हमेशा हमेशा मुकेश साहब करें, वो मुकेश को अपना वो मानते थे कि भाई इनकी आवाज़ जो है वो मेरे पर बहुत ज़्यादा सूट करती है. लेकिन जब इनका काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, शंकर जयकिशन का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो हर जगह फिर उन्होंने मुकेश साहब के साथ

रणवीर साहब का भी प्रयोग करा। राज कपूर साहब के लिए प्लेबैक भी रफ़ी साहब से कराया और ये आवाज़ जो है राज कपूर साहब को भी बहुत रास आ गई। और यहीं पर सचिन देव बर्मन जो कि म्यूज़िक डायरेक्टर थे फेमस, और ओपी नैयर साहब, यहाँ से ये दो म्यूज़िक डायरेक्टर्स भी रफ़ी साहब के साथ जुड़ गए और दिन प्रतिदिन इनकी जो जिसे कहते हैं ख्याति बढ़ती गई। एंड देन ही नेवर लुक बैक, आगे बढ़ते चले गए, गाने गाते चले गए। और इतने बढ़िया बढ़िया एक्टर्स जो मैंने आपको पहले भी बताया, दिलीप कुमार, भरत भूषण, देवानंद, शमी कपूर, राजेंद्र कुमार, इन सब के लिए इन्होंने ढेर सारे गाने गाए, सभी गाने बहुत ज़्यादा रिलीज़ हुए। और ऐसी एक मूवी आई कश्मीर की कली, हम सब जानते हैं कि इसमें ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आँखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा गाना, मैंने तो गुनगुना लिया है। आइए लेते हैं यहाँ पे छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, ब्रेक में सुनते हैं इनके गाए हुए कुछ खूबसूरत से गीत। मैं तो यहीं पर ही हूँ, आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, आप भी कहीं मत जाइए। Stay tuned to Radio Manav Rachna 107.8 FM. Feel good, feel live.

में हाथ डाल ए गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा, जा।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पे। दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स और इसमें आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा प्रोग्राम रफ़ी साहब के नाम। जी हाँ दोस्तों, रफ़ी साहब की ज़िंदगी, अभी तक जितने हमने उनके ज़िंदगी की किताब के पन्ने पलटे तो बहुत ही खूबसूरत रही। छोटे से थे, देखिए उनकी आवाज़ तो थी ही सुंदर, किस तरह से 7 साल की उम्र में फ़कीर के पीछे पीछे भाग भाग के गाए जाते थे। 13 साल की उम्र में ऐसे ही सार्वजनिक स्थान पर गाने को मिल गया तो एक म्यूज़िक डायरेक्टर ने उनको ब्रेक दे दिया और करते करते देखिए वो बॉलीवुड पहुंच गए और फिर दौर चला इनका एक से एक बैक टू बैक सुपरहिट गानों का। आइए सुनाते हैं आपको इनकी व्यक्तिगत जीवन की कुछ बातें। दोस्तों, रफ़ी साहब कहते हैं कि बहुत ही दरिया दिल इंसान थे, दिल के बहुत अच्छे थे, लोगों की मदद करते थे। आपको नहीं लगता कि इनकी आवाज़ में ऐसे झलकता है कि जिसकी आवाज़ इतनी सुंदर होगी उसका दिल और मन कितना सुंदर होगा? जी हाँ दोस्तों, व्यसनों से दूर रहते थे और आज़ादी के समय जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, इन्होंने भारत में ही रहना पसंद किया। इनकी बेगम का नाम था बिल्किस और इनकी 7 संतानें हुई जिसमें 4 बेटे और 3 बेटियाँ हैं। ये अपने परमार्थों के लिए भी जाना चाहते हैं, परमार्थ इन द सेंस के ये लोगों की बहुत मदद किया करते थे, कोई भी हेल्प कहता था फटाक से कर देते थे। साथ ही कुछ ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे जो इनको बहुत अच्छे से पे नहीं कर पाते थे, जिनमें एक नाम था शुरुआती जो दौर था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, जिसमें वो खुद ही थोड़े से उनका हार्ट टाइट रहता था, तो इन्होंने बहुत कम पैसों में भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए काम किया है। साथ ही रॉयल्टी को लेकर इनका लता मंगेशकर जी से कुछ मन मुटाव हुआ, वो भी देखिए दोस्तों लता जी गलत नहीं थी, लेकिन रफ़ी साहब का कैरेक्टर और उनका जो दरियादिल इसमें देखने को मिलता है। रफ़ी साहब का कहना था कि एक बार हमने गाना गा दिया, रिकॉर्ड निकल गया तो हमने अपनी फीस ले ली, हमारा काम ख़त्म हो गया। लेकिन लता जी कहती थी कि अगर उस रिकॉर्ड जो जिसने मल्टी मिलियन बिलियंस बना लिए, अगर वो बहुत ज़्यादा हिट हो जाती है तो उसका एक अंश, जिसको हम रॉयल्टी भी कहते हैं, वो जो है वो गायक या गायिका को मिलना चाहिए। तो ये था मत लता जी का और दूसरा मत था रफ़ी साहब का, और इसको लेकर इन दोनों में हो गया मतभेद। दोस्तों, मतभेद इतना बढ़ गया कि दोनों ने आपस में ना गाने का फैसला कर दिया। कई साल बीत गए, इन दोनों का कोई डुएट नहीं आया, लेकिन फिर अभिनेत्री नरगिस जी के कहने पर वापस इन दोनों ने कई साल बाद इकट्ठा गाना शुरू करा, डुएट सॉन्ग निकाला और वो गाना था ज्वेल थीफ का, दिल पुकारे अरे अरे अरे। बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग और ये गाना बहुत ही हिट हुआ। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही हिट हुआ और इनकी खुद की जो ज़िंदगी है वो भी सुपर हिट रही और इनको बहुत सारे अवार्ड्स से भी नवाजा गया, क्योंकि कॉन्टीन्यूस ही इनका इस तरह से चलता रहा करियर के एक के बाद ये एक हिट देते रहे। और अवार्ड्स की बात करूंगी मैं आपसे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। आ रही हूँ मैं फटाफट से, आप भी कहीं मत जाइए, सुनते हैं कुछ इनके गाए हुए गाने और मैं यूं गई और यूं आई। स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मनोरचना 107.8 एफएम पे दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का हमारा सफर रफी साहब के नाम, और ये सफर जो है अपने अंतिम चरण पर है, क्योंकि घड़ी देवी

टिक टिक करते हुए मुझे बता रही हैं कि मेरा जाने का समय हो रहा है, लेकिन जाते जाते दूंगी आपको कुछ और रफ़ी साहब के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। दोस्तों, रफ़ी साहब को कई बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला, चाहे वो फूल बरसाओं गाना उनका फेमस हुआ या फिर दिल के झरोके से तुझको बिठाकर, इसके लिए भी इनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला, बहुत से अवार्ड्स मिले। साथ ही भारत सरकार ने 1965 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया। दोस्तों, 31 जुलाई 1980 में हृदय की गति रुक जाने से रफ़ी साहब हमारे बीच से चले गए। रफ़ी साहब आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके गाए हुए गाने, उनका वो प्यारा सा चरित्र, उनका दरिया दिल, इन सब चीज़ों के वजह से वो हमारे दिल में रस्ते बसते हैं। मैं रेडियो मानव रचना के माध्यम से, प्लेटफॉर्म से रफ़ी साहब को हार्दिक श्रद्धांजलि देती हूँ और आप सभी श्रोतागणों से कहती हूँ कि आइए इनकी आवाज़ से हम हमेशा जुड़े रहें, सदा सदा हम इनको सुनते रहें। तो करती हूँ साइन आउट और अगले शो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड फील

0: अरे अरे, अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में। कूड़ेदान में
2: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।
3: वेल हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सर, श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, सलो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आरती सागर, आया हूं लेकर के शो सत्यमेव जयते, जय हिंद जय भारत। ये शो अपने आप में बहुत स्पेशल हो जाता है, रीजन बीइंग कि आपको लीगल चीजों के बारे में बहुत कुछ पता लगता है। हम लोग बात करते हैं लीगल फ्रेमवर्क की, हम लोग बात करते हैं समटाइम्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे राइट्स की, वो तमाम चीजें जो एक नागरिक को इस देश के पता होने चाहिए, भले वो आपके काम में आए या ना आए, बट एटलीस्ट यू शुड नो कि आपके अधिकार क्या हैं, क्या क्या चीजें हैं जो भारत की, जो आप कह सकते हो कि कानून की किताब है या संविधान की जो किताब है वो आपको देती है, वो उन अधिकारों के बारे में बात करते हैं। आज हमारे साथ यहाँ पर हैं डॉक्टर अस्मिता। डॉक्टर अस्मिता से हम बहुत सारी बातें करेंगे, हम लोग बात करेंगे एग्जैक्टली इलेक्शन के ऊपर थोड़ी सी बात की जाएगी, SIR के ऊपर थोड़ी सी बात की जाएगी, थोड़ा समझने की कोशिश की जाएगी कि ये जो हम बोलते हैं इलेक्शन होता है कैसे होता है, क्या है पूरा फंडामेंटल, कैसे काम करता है। विल टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स, बट सबसे पहले स्वागत करेंगे डॉक्टर अस्मिता का। हाय मैम, वेलकम टू आवर शो।
4: थैंक यू सागर।
3: सबसे पहला प्रश्न मेरा रहने वाला है अबाउट फेडरलिज्म। भारत को डिस्क्राइब किया जाता है एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, किसी भी एक आम इंसान के लिए मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर फेडरलिज्म जैसे टर्म्स की हम लोग बात करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे रेलिवेंट है, क्या मतलब है इसका एक्चुअली, एंड कैसे जो पावर्स हैं वो डिवाइड की जाती हैं सेंटर और स्टेट के बीच में।
4: जी, बहुत ही अच्छा सवाल है ये शुरुआत करने के लिए। जैसा कि आपने कहा, भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है।
3: बिल्कुल,
4: संघ मतलब संगठित। तो बेसिकली अगर बहुत शुरुआत से देखें तो जो हमारा गवर्नेंस सिस्टम है, राइट आफ्टर द इंडिपेंडेंस ये डिसाइड किया गया कि हमारी जो गवर्नमेंट होगी वो यूनिटरी नहीं होगी, मतलब जो सारा पावर है वो एक ही लेवल पे सारा जो है कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहेगा, हम डिवाइडेड रखेंगे, जिसकी वजह से एक जो यूनियन लेवल है और एक जो स्टेट लेवल है, दोनों के बीच में पावर्स डिवाइडेड हैं। तो हमारा जो ये सर्वोच्च कानून है जिसे हम संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेसिकली वो एक किताब है जो पूरे भारत को भारत बनाती है, पूरे भारत का जो सिस्टम है, चाहे वो न्याय का सिस्टम हो, चाहे वो न्याय बनाने का सिस्टम हो, चाहे वो कानून बनाने का सिस्टम हो, चाहे वो उस कानून को अप्लाई करने का सिस्टम हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारत को बनाता है। सो ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रस्तावना है जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं, वो प्रियम्बल हमारे लिए बेसिक गोल सेट करता है, जिसमें हमारा एक गोल है डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना। हमने इंडिया को एक डेमोक्रेटिक नेशन स्टैब्लिश किया है। सो डेमोक्रेसी का मतलब ही ये होता है कि लोग अपने लीडर का चुनाव खुद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी देश हैं जहाँ पे मोनार्की सिस्टम है, जहाँ पे अभी भी राजाओं का राज चलता है, ऐसे सिस्टम है जहाँ पे अभी भी फैमिली रूल्स करती हैं, बट हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है वो ये है कि हम लोग एक रिपब्लिक हैं जहाँ पे, जिसका ये मतलब होता है कि चुनाव करके जो है वो लीडर आएगा, वो लीडर इनहेरिट नहीं करेगा वो सीट, और हम डेमोक्रेसी हैं जहाँ पे लोगों का जो लोग जो सोचते हैं, लोग जो चाहते हैं वो मैटर करेगा। सो डेमोक्रेसी से आता है कि हमें लोगों को चुनना है, जहाँ से आता है इलेक्शन। अब जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ सरकार जो है वो दो लेवल्स पे है, एक सेंट्रल लेवल पे है और दूसरा स्टेट लेवल पे है। इसके बाद तीसरा लेवल भी है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, पर वो उसके लिए स्टेट्स लॉ बनाते हैं रिस्पेक्टिवली। तो जो यूनियन लेवल है वहाँ पे हमारे पास जो मेंबर्स हैं वो बेसिकली जो हमारे लॉ बना रहे हैं वो, उनको हम कहते हैं पार्लियामेंट, जो कि दो हाउसेज में डिवाइडेड है, लोकसभा और राज्यसभा, जो हम बहुत ही कॉमनली सुनते आते हैं। इनको हम अपर हाउस और लोअर हाउस भी कहते हैं, राज्यसभा इज अपर हाउस एंड लोकसभा इज लोअर हाउस। सिमिलरली स्टेट लेवल पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं। तो हम जो जनता है हम चुनते हैं डायरेक्टली लोकसभा के मेंबर्स को और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को, जिनको हम जनरल इलेक्शन और असेंबली इलेक्शंस भी कहते हैं कॉमन भाषा में, जो आपने सुना होगा बहुत बार। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं इन दो हाउसेस के मेंबर्स को, और फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन भी होते हैं जहां हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बट ये चुने हुए मेंबर्स उनको चुनते हैं। तो ये बहुत मतलब भारत का जो पूरा निर्वाचन की जो निर्वाचन प्रक्रिया है पूरे दुनिया में बहुत यूनिक है, क्योंकि इतना बड़ा देश होते हुए जहाँ पे सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री और उसके बाद हम डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करते हुए चुनाव करवा पाते हैं, ये अपने आप में बहुत ही बहुत बड़ा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इतनी जनता का आप सोच के देखिए, पहले उनका इलेक्टोरल रोल बनाना, कौन कौन एलिजिबल है ये डिसाइड करना, और फिर इतने सारी जगहों पे वोटिंग कराना, फिर उसको काउंट करना, फिर रिजल्ट डिक्लेयर करना, और ये सब हो रहा है सेंट्रली एक आयोग के द्वारा जिसको हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आप सोच के देखिए, इतने बड़े देश में जहाँ इतनी डाइवर्सिटी है, इतने स्टेट्स हैं, इतना कुछ एरियाज तो ऐसे भी है जहाँ तक पहुँच पाना मुश्किल है, बट हमारी सरकार जो है वो हर एक जगह में चुनाव कराती है। आप सोच के देखिए, ऐसा और किसी देश में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इट्स अ द डांस ऑफ डेमोक्रेसी जो हम कहते हैं, कि दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया, कि हम इतने बड़े लेवल पर चुनाव करा पाते हैं और सक्सेसफुली करा पाते हैं।
3: बिल्कुल, बहुत सुंदर। एक प्रश्न यहाँ पर ये भी उठता है कि अगर हम ये बात कर रहे हैं कि मैं अपना प्रतिनिधि चुन रहा हूँ, लेट्स से मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ का एक MLA का जब इलेक्शन हो रहा है, विधायक को मैं वोट डाल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जब ये तमाम प्रतिनिधि चुने जाएंगे तो मिला करके एक समूह बनेगा जिसके ऊपर एक मुख्य आदमी बैठेगा जिसको मुख्यमंत्री के नाम से जानते हैं, चीफ मिनिस्टर। बहुत बार ऐसा देखा गया है रिसेंट टाइम्स में कि जब

0: लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना पड़ता है. फिर जो जिस जैसे आप पॉलिटिकल पार्टी आप जानते हैं, पार्टी मतलब बेसिकली इट्स काइंड ऑफ अ टीम जो वो टिकट्स देती है अपने कैंडिडेट्स को. मतलब आप समझ लीजिए अलग अलग टीम से जो कम्पीट कर रही हैं, जिस टीम के पास सबसे ज़्यादा सीट्स आती हैं, यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी लगती है. कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि मिनिमम 50% ऑफ द सीट चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है. जिसके पास सबसे ज़्यादा सीट आई उस पार्टी का जो लीडर होगा वो ऑटोमेटिकली मुख्यमंत्री बन जाता है. तो बेसिकली आप और उस मुख्यमंत्री को भी चुनाव जीतना ज़रूरी है. सो भले ही आपके निर्वाचन आयोग से, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी से हो सकता है वो ना हो, बट किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने उन्हें ज़रूर इलेक्ट किया होगा, तभी वो पहले मेंबर बनेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के, और उसके बाद बिकॉज वो ऑलरेडी जो पार्टी जीत रही है उसके वो लीडर हैं तभी वो बनते हैं मुख्यमंत्री. और सिमिलरली सेंट्रल लेवल पे जो लीडर ऑफ द विनिंग पार्टी होते हैं उसके लीडर बनते हैं प्राइम मिनिस्टर. ये एक अनरिटन रूल है. लीडर बोलने का मतलब यही है कि वो पार्टी पहले से डिसाइड करके रखती है, फिर बाद में भी डिसाइड करती है कि अब जब हमारे पास इतनी सीट्स आ गई हैं वी कैन फॉर्म द गवर्नमेंट, तो अब गवर्नमेंट का फेस कौन होगा, हमारा लीडर कौन होगा. तो आप ने नहीं चुना हो सकता है, लेकिन किसी ना किसी ने तो उन्हें चुना ही है, तो वो बिना चुने तो नहीं बन रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, और चाहे हो चीफ मिनिस्टर हो. तो हो ये सकता है कि, और जो दूसरे आपके सवाल के दूसरे पार्ट में आते हैं कि अगर पसंद नहीं है तो बेसिकली फिर अब आगे जब एक बार तो वो बन गए मुख्यमंत्री, अगर उसके बाद भी अगर आप पब्लिक वॉइस अपना जो है वो कहीं पे डिस्प्ले कर सकते हैं, अगर आप अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी आवाज़ रख सकते हैं, या आप सिर्फ मुख्यमंत्री को पसंद ना करने की वजह से, हो सकता है अगली बार ये आपकी चॉइस है, हो सकता है आप उस पार्टी को वोट ना करना चाहें क्योंकि आपको पता है कि इस पार्टी का लीडर तो ये पर्टिकुलर पर्सन ही है और यही मुख्यमंत्री बनेंगे. बहुत बार पार्टीज पहले से डिक्लेयर कर देती हैं कि ये हमारे मुख्यमंत्री होने वाले हैं, बहुत बार पार्टीज नहीं कर पाती हैं क्योंकि आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट रहता है, फिर वो फैक्शंस बन जाते हैं, कई बार पार्टी टूट भी जाती है इस चक्कर में. तो वो सब पॉलिटिक्स तो चल रही होती है, लेकिन ये मैं आपको ज़रूर बता दूँ कि वो बिना चुना हुआ नहीं बन सकते हैं, वो किसी ने चुना ही है उन्हें.
1: बिल्कुल फेयर पॉइंट. इसमें अगला प्रश्न ये भी उठता है कि अगर मानकर चलिए एक पॉलिटिकल पार्टी ने चुनाव से पहले कुछ वादे किए थे कि हम लोग ये चीज़ें आपको करके देंगे, उसमें टाइम फ्रेम नहीं था लेकिन वो वादे पूरे अगर नहीं होते हैं अगले टेन्योर में उनके, तो क्या मेरे पास एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एज अ वोटर कुछ अधिकार है, मैं उसको चैलेंज कर सकता हूं कहीं किसी कोर्ट में जाकर के?
0: जी देखिए, इसको हम इलेक्शन मैनिफेस्टो कहते हैं. मैनिफेस्टो इज नॉट एसेंशियली इन लीगल टर्म्स अ प्रॉमिस. ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है पार्टी और आपके बीच में कि आप, लेट्स से आप एक कंज्यूमर हैं और आपने उनको कंसिडरेशन में वोट दिया है और उस वोट के बदले आपको ये मिलना ही चाहिए. ये आपका अनफॉर्चुनेटली अधिकार नहीं है. बट हाँ, अगर आपसे किसी ने कुछ वादा किया है, अब आम आदमी के नज़रों में ये वादा ही है, उन्हें नहीं पता मैनिफेस्टो और कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस. आम आदमी के लिए एक वादा ही होता है. अगर सरकार अपने किए हुए वादों से पलट जाती है या उस तरीके से पूरा नहीं कर पाती है या सबके लिए पूरा नहीं कर पाती है, तो लोगों को जो डिसअपॉइंटमेंट होता है, ऑफ कोर्स वो होता है, और इसी का नतीजा है कि लोग फिर प्रोटेस्ट करते हैं या आवाज़ उठाते हैं कि आपने जो आपकी बेसिक जिम्मेदारियां हैं आप वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, हमने आपको क्यों दिया है गवर्नमेंट बनाने के लिए ये जिम्मेदारी. अगर आप गवर्नमेंट हैं तो गवर्नमेंट एक अच्छा गवर्नेंस एस्टैब्लिश करना तो आपकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसके ऊपर तो कोई लिमिट नहीं है, बट बेसिक गवर्नेंस तो आपको करना ही चाहिए. तो आप ऑफ कोर्स इसलिए केस फाइल नहीं कर सकते उस पार्टी के अगेंस्ट, लेकिन हाँ, अगले इलेक्शन के समय आप अपनी नाराजगी जता सकते हैं उन्हें वोट ना दे करके.
1: सुकुल मिलाकर के ये एक लूप होल आप इसको समझ सकते हैं कि एक मैनिफेस्टो जो आपको दिया गया है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो एक लगा बंधा कॉन्ट्रैक्ट है कि ये तो बोला है तो दिया ही जाएगा, बट दैट इज नॉट द केस. वो अलग हो सकता है, बिल्कुल वो पूरा ना हो, ये भी संभावना है. उसको लेकर आपके पास दूसरे तरीके हैं. वो आपका संविधान आपको अधिकार देता है कि आप जाकर के प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप अगले इलेक्शन में उनको वोट ना दें, वो भी आपके पास अधिकार है. लेकिन इस चीज को चैलेंज कर पाना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज देयर इज नो रिटन अग्रीमेंट टू दिस पार्ट कि दोनों पार्टीज ने यहाँ पर दस्तखत किए होंगे कि आपको ये करना है, हम ये रिसीव करेंगे. सो दैट इज नॉट द केस. लेते एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे. मैं हूँ सागर, शो चल रहा है सत्यमेव जयते. आगे बात करेंगे हमारे लोकतंत्र में चुने कैसे जाते हैं प्रतिनिधि, उसके बारे में. जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड, फील लाइफ.
2: ज्वाला समुंदर की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूँ कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश, तुम्हारे घर ले चले. और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे.
3: और मैं ये कह रही हूं भगवान ने हमें नया

0: जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें, जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
1: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
0: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
1: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
0: तो फिर एक वादा करो।
1: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
0: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
1: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

0: वेलकम बैक, मैं सागर। शो चल रहा है सत्यमेव जयते, जय जै हिंद जय भारत। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मार्वष्टा 107.8 एफएम के साथ। डॉक्टर अस्मिता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है हमारे स्टूडियो में। बात कर रहे हैं इलेक्शंस को समझने की कोशिश यहाँ पर हो रही है कि कैसे वो काम करता है। बहुत सारी चीजें हैं जो सरफेस लेवल पर आपको शायद नजर ना आए, लेकिन अगर आप बैठ के थोड़ा सा उस विचार को खोलेंगे, अगर बैठ के उस सिस्टम को समझने की आप कोशिश करेंगे, सो यू विल रियलाइज दिस सो मच इनटू दिस। बहुत सारा प्रोसेसेस वहां पर होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। अगला प्रश्न मेरा आपसे यही रहने वाला है कि हमारा इलेक्शन सिस्टम काम कैसे करता है। हम जब बात करते हैं कि इलेक्शंस आर द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, तो एग्जैक्टली इलेक्शन सिस्टम भारत में काम कैसे करता है, वोटिंग से लेकर काउंटिंग से लेकर विनर डिक्लेयर करने तक, और कैसे आप कह सकते हैं कि हमारी ये जो डेमोक्रेसी है बाकी कंट्रीज से अलग है।
1: जी, तो भारत में चुनाव कैसे होंगे, कौन कराएगा, कब कराएगा, ये सब के लिए हमारे पास तीन बहुत ही मुख्य जो है कानून बने हुए हैं। पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950, जो हमारा संविधान है, संविधान का जो 15वां हिस्सा है, पार्ट 15, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत चुनाव आयोग का गठन करता है। इट इज एस्टैब्लिश अंडर आर्टिकल 324। अब वहाँ पे 324 टू 329 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बहुत सारे पावर और उनकी बेसिकली उनका दायरा बताते हैं, स्कोप एंड पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है। ये तीन बेसिकली जो कानून मिल करके भारत में चुनाव कैसे होना ये एस्टैब्लिश करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो चुनाव कराता है, वो सेंट्रल लेवल पे जो चुनाव हो रहा है पार्लियामेंट में, जो लोकसभा राज्यसभा है वो उसको ओवरसी करते हैं, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव भी वो ओवरसी करते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो चुनाव है वो स्टेट गवर्नमेंट ओवरसी करती है, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। तो इसके अलावा फिर जो दो मैंने आपको एक्ट बताए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, उसमें जो पहला वाला 1950 का एक्ट है वो बात करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में, और जो 1951 वाला और ज़्यादा बड़ा एक्ट है वो ये बात करता है कि कौन चुनाव लड़ सकते हैं, कौन ऑफिसर्स कौन कौन होंगे, कैसे कब कोई डिस्क्वालीफाई हो सकता है, अगर आपको कोई ग्रीवेंस है इलेक्शन मैकेनिज्म में तो आप क्या कर सकते हैं, ये सारे कुछ मिला करके इन तीनों एक्ट में है। इसके अलावा इनमें थोड़े थोड़े परिवर्तन होते रहते हैं जिन्हें हम अमेंडमेंट कहते हैं। सो अमेंडमेंट एक्ट पास होते रहते हैं जो कि हुए हैं बीच बीच में। रिसेंटली अभी 2023 में अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था, जिससे आपको पता ही होगा कि जो सिलेक्शन कमेटी है, जिससे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं देश के, उनका चुनाव कैसे करना है, इसमें परिवर्तन किया गया था। तो ये एक्ट्स बेसिकली इस्टेब्लिश करते हैं। अब आते हैं कि चुनाव कैसे होगा। इसके लिए मैं आपको पहले बताना चाहूँगी कि चुनाव लड़ कौन सकता है, कौन है जो कैंडिडेट हो सकता है चुनाव का। तो लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों के लिए ही जो एलिजिबिलिटी है कैंडिडेट्स की, वो है आपको बहुत सिंपल एलिजिबिलिटीज़ हैं, जिसमें से मेजर जो हैं वो ये हैं कि आपको 25 साल का होना है मिनिमम, आपको भारत का नागरिक होना है, इसके अलावा आपको कोई दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना है अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, आपको आप एक इंसॉल्वेंट नहीं है बेसिकली, एक लॉ में टर्म होता है कि आप बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी वाला, जहाँ पे दिवाला नहीं है बेसिकली, और इसके अलावा आपको मॉरल टर्पिट्यूड, पब्लिक पॉलिसी, कुछ ग्राउंड्स हैं लॉ के, उन ग्राउंड्स में अगर आप फॉल नहीं कर रहे हैं और आप 25 साल के और भारत के नागरिक हैं, तो आप लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के आप के लिए आप चुनाव लड़ सकते हैं। और सिमिलरली जब राज्यसभा और काउंसिल की बात होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए। वैसे ही प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनने के लिए अलग से एलिजिबिलिटी नहीं है, बट प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको मिनिमम 35 साल का होना जरूरी है, और अगेन आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है। अब अगर आप ये एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आपको किसी पार्टी से एफिलिएटेड अगर आप हैं तो वो पार्टी आपको टिकट देती है, अदरवाइज आप इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ सकते हैं, आपको अपने आप को रजिस्टर कराना होगा। इसके बाद जो लोग आपको चूज कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं इलेक्टर्स, उनका एक इलेक्टोरल रोल बनता है। इलेक्टोरल रोल मतलब आप समझ लीजिए एक लिस्ट है उन लोगों की जो एलिजिबल हैं वोट करने के लिए। सो इलेक्टोरल रोल बनाना भी चुनाव आयोग का ही काम होता है, और ये बहुत ही गहन एक स्टेप होता है, बहुत ही सीरियस स्टेप है और बहुत ही इंटेंसिव स्टेप है, क्योंकि इलेक्टोरल रोल आप लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते रहते हैं, लोगों की डेथ होती रहती है, नए लोग मेजर हो रहे होते हैं, 18 साल के हो रहे होते हैं, और लोग एलिजिबल और इनएलिजिबल होते ही रहते हैं। तो आप सोच के देखिए, इतने सारे लोग जहाँ पे हमारे देश की जनता कितनी है आपको पता ही है, उसमें ये मेंटेन करना कि कौन एलिजिबल है और कौन इन एलिजिबल है, ये मेंटेन करना ही आप अपने आप में बहुत ही बड़ा काम है। तो पहले तो इलेक्टोरल रोल बनाया जाता है, मतलब कौन है वो लोग जो वोट कर सकते हैं। फिर आप, जैसा कि मैंने आपको बताया था, निर्वाचन क्षेत्र होता है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। अगर हम जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हैं लोकसभा के लिए, तो वो होती है कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर लोकसभा। तो जब लोकसभा के लिए इलेक्शन हो रहे हैं, जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, तो आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर के, कई सारे पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं जहाँ पे आप वोट कर सकते हैं, आप पोलिंग बूथ में जाएंगे, आपकी आईडी, सो आपको एक चीज़ पता होगी कि वोटर आईडी कार्ड होना इज नॉट इक्विवेलेंट टू बीइंग एलिजिबल टू बी अ वोटर। यू नीड टू हैव योर नेम एनलिस्टेड इन द इलेक्टोरल रोल एज वेल। सिर्फ वोटर आईडी कार्ड होना ही अपने आप में कंप्लीट एलिजिबिलिटी नहीं है, आपको एक एलिजिबल वोटर भी बनना है। अगर आप एलिजिबल वोटर भी हैं, आपका नाम है रोल्स में और आपके पास वोटर आईडी कार्ड भी है, तो आप पोलिंग बूथ में जाकर के वोट दे सकते हैं। अभी जो सिस्टम हमारी कंट्री में चल रहा है वो चल रहा है ईवीएम्स का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पहले वो पर्ची वाला सिस्टम रहता था, तो आप अपना वोट डालेंगे और उसके बाद फिर रिटर्निंग ऑफिसर्स, काउंटिंग ऑफिसर्स, बूथ ऑफिसर्स, ये लोग होते हैं ऑब्जर्वर्स, कई सारे ऑफिसर्स हैं। ये सारे ऑफिसर्स लोग की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं और ये सब इंश्योर करते हैं कि कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं विदाउट एनी थ्रेट और प्रेशर, रिक्वायर्ड उस स्टिपुलेटेड टाइम के ही अंदर। फिर काउंटिंग होती है, आपने एक बार वोट अपने डाल दिया, उसके बाद काउंटिंग होती है, काउंटिंग के बाद डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होता है। अब ये सिमिलरली ऐसा ही स्टेट में भी होता है कि जहाँ पे अब उसका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो अलग बनता है जनरल इलेक्शन से, क्योंकि जो, जैसे कि आपको पता होगा कि लोकसभा में नंबर ऑफ सीट्स जितनी रहती है विच इज़ एक्चुअली 543, तो पूरे देश को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए लोग वोट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को। वैसे ही जब स्टेट इलेक्शंस हो रहे हैं, असेंबली इलेक्शंस, तो स्टेट को भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है और फिर वहाँ पे लोग अपनी जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो बिलोंग करते हैं वहाँ पे जाकर वो वोट कर सकते हैं, वो कहीं और वोट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि मैं मध्य प्रदेश में, मेरा मैं वहाँ से, मेरा वोटर आईडी वहाँ से है, मैं वहाँ के इलेक्टोरल रोल में हूँ तो मैं दिल्ली के इलेक्शंस में वोट नहीं कर सकती। आई हैव टू गो टू मध्य प्रदेश, टू दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, एंड वहीं मैं वोट कर सकती हूँ। ये सब इसलिए इंश्योर किया जाता है कि लोग इसमें अनफेयर मींस ना यूज़ हो सकें, बेसिकली कि जनता को ले जाया जा रहा है और कहीं और वोटिंग कराई जा रही है, तो आप वहीं वोट कर सकते हैं जहाँ के आप हैं। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, फिर काउंटिंग होती है और इसके बाद वही जितने भी लोग जीत रहे हैं अपनी अपनी सीट्स में, वो फिर काउंट होता है कि कौन सी, अगर वो किसी पार्टी को बिलोंग कर रहे हैं तो जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा सीट्स आती हैं दे कैन फॉर्म द गवर्नमेंट, अगर नहीं आती है तो दे कैन फॉर्म कोअलिशन गवर्नमेंट, जिसमें वो और लोगों के साथ मिल करके फिर एक ऐसी गवर्नमेंट बनाते हैं जिसमें एक से ज़्यादा पार्टी होती है। सो दे मेक कोअलिशंस एंड देन दे फॉर्म द गवर्नमेंट, जिनको बेसिकली जो बोलते हैं ना कि एट द फ्लोर ऑफ द हाउस दे हैव टू प्रूव, कॉन्फिडेंस मोशन होता है कि बाकी लोग अगर सवाल रेज, बेसिकली किसी को स्कोप नहीं देना या सवाल रेज करने का कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास ना हो सके कि ये सरकार नहीं बना सकती, या इनकी सरकार गिराना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, सरकार गिराने का मतलब होता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना कि ये गवर्नमेंट नहीं बना सकते, दे आर नॉट केपेबल, इनसे सरकार नहीं बनेगी। तो अगर वो नहीं हो रहा है तो आप फिर आप सरकार बना सकते हैं। आपको स्पीकर के सामने बेसिकली प्रपोजल देना होता है कि हमने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सीट्स बना ली हैं, अगर 250 सीट्स हैं तो हमने उसमें 126 सीट हमारे पास है, हम गवर्नमेंट बना सकते हैं। जो पहले चला गया स्पीकर को, जिसने भी ये प्रपोजल दे दिया कि वी हैव मेजोरिटी सीट्स, वो सरकार बना सकते हैं।
0: ओके, देयर इज अ प्रोसेस इन बिटवीन। आपने एक टर्म यूज करी कि अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है दैट डजंट मीन डायरेक्टली कि आप जाके वोट कर सकते हैं, आपको उसके लिए एक स्लिप चाहिए होती है। मैं दो चीजों का फर्क समझना चाहता हूँ। अगर मेरे पास वोटर आईडी कार्ड है तो कितनी संभावना है ये कि मुझे वो वोटिंग के लिए जो स्लिप मिलती है, जो मेरा नाम रोल आउट होता है, वो मिलेगा? और अगर नहीं मिलेगा तो किन ग्राउंड्स पर मुझे हटाया जा सकता है?
1: जी, सो इलेक्टोरल रोल और वोटर आईडी कार्ड, ये दो अलग अलग चीजें हैं। वोटर आईडी कार्ड बेसिकली ये बताता है कि आप भारत के नागरिक हैं और आप वोट करने के लिए एलिजिबल हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बट जो इलेक्टोरल रोल है वो ये बताता है कि इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप वोट करने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, इलेक्टोरल रोल में शामिल होने या उससे हटाए जाने के जो ग्राउंड्स हैं वो ये हो सकते हैं कि आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सालों से रह नहीं रहे हैं। क्योंकि जब इलेक्टोरल रोल बनाने के लिए हर घर में ये ऑफिसर्स जाते हैं, आपने देखा होगा घर, ये अभी भी हमारे यहाँ पूरा टोटल मैनुअल ही चल रहा है, घर घर पहुँचते हैं ऑफिसर्स और वो एक्चुअली इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, अगर उनको लगता है कि ये पर्सन अब यहाँ नहीं रहता है, कहीं और शिफ्ट हो गया है, अगर इस पर्सन की डेथ हो गई है, अगर अब ये नया वोटर ऐड हो सकते हैं क्योंकि अभी 18 साल से ज़्यादा के हो गए हैं, तो इन चीज़ों के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि अब ये एलिजिबल वोटर है कि नहीं। तो आपको वेट करना पड़ता है कि आपका नाम इलेक्टोरल रोल में आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो उसके भी रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। आपने फॉर्म 6 सुना होगा, अभी जब SIR की बात हो रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। स्पेशल इंटेंसिव रिविजन किस चीज़ का हो रहा है? इलेक्टोरल रोल का ही हो रहा है। वो ये देखना चाह रहे हैं, ये बेसिकली होता है हर सेंसस के बाद। तो अभी 2026 में एक सेंसस कंप्लीट होने वाला है, अगर आपको पता हो, अगले साल उसका डेटा आने वाला है। तो सेंसस का बेसिकली मतलब ये होता है ना, जनगणना, ये जानना कि अब कितने लोग जिंदा हैं, कितने लोग नहीं हैं, कितने नए लोग आ गए हैं, लोग कहाँ माइग्रेट करके चले गए हैं, कौन नए लोग यहाँ आ गए, ये सब का लेखा जोखा होता है। तो उस रोल में अगर आपका नाम नहीं आया और आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं और गलती से आपका नाम हट गया या गलत तरीके से हटाया गया है, या लेट्स से आपके नाम की स्पेलिंग गलत हो गई है, या लेट्स से आपके फादर का नाम गलत हो गया है, एड्रेस गलत आ गया है, या आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी अब बदलनी चाहिए क्योंकि आप कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, अगर आपको इस टाइप के इशूज़ हैं तो इनको हम सिंपल वोटर इशूज़ कहते हैं। तो इसके लिए आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, उनकी सर्विसेज हैं, इलेक्शन सर्विसेज हैं, उस पोर्टल पर जा करके आप जो है दायर कर सकते हैं अपना रिड्रेसल। इसके अलावा अगर आपको इस टाइप का ग्रीवांस है कि इलेक्शन प्रोसीजर में कोई अनफेयरनेस था, जो रिजल्ट आए उसमें अनफेयरनेस है, अगर ये उस टाइप का मैटर है, तो आप फिर हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटिशन फाइल कर सकते हैं। सो ये दो टाइप के ग्रीवांस होते हैं, एक तो आपके पर्सनल लेवल पे जो कि सिंपली अप्लाई करके सुधारे जा सकते हैं, और दूसरा अगर आपको पूरे चुनाव प्रणाली में ही कोई अनफेयरनेस नजर आया कि यहीं पे उसमें ही कुछ गड़बड़ी थी, तो फिर आप इलेक्शन पिटिशन फाइल कर सकते हैं। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि जो इलेक्शन के मैटर्स होते हैं, इसके लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में लाइक अ नॉर्मल पिटिशन नहीं जा सकते, स्पेशली इनके लिए अलग से बेंचेस बनाए जाते हैं जिनको हम इलेक्शन पिटिशन कहते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, उनकी इसमें एक्सपर्टीज होती है, उनका काम सिर्फ इलेक्शन पिटिशन को ही सुनना होता है। तो आप इलेक्शन पिटिशन फाइल करेंगे अगर आपको इलेक्शन से रिलेटेड कोई ग्रीवांस है, अदरवाइज जैसे और आपके फंडामेंटल राइट्स ग्रीवांस होते हैं तो आप SLP फाइल करते हैं, आप रिट फाइल करते हैं, वो कॉमन होते हैं, बट फॉर इलेक्शन यू हैव अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ पिटिशन विच इज नोन एज इलेक्शन पिटिशन, आप वो फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में।
0: बहुत सुंदर, अलर्ट लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो को कंटिन्यू करेंगे। कुछ और प्रश्न हमारे जो यहाँ पर हम चाहेंगे मैम एड्रेस करें, फॉर दैट पार्ट जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस एंड एंजॉय दिस म्यूजिकल वाइब। फील गुड।

0: ऑन दिस नोट अपने शो को हम आगे लेकर चलेंगे। मैं हूं आरजे सागर, शो यहां पर चल रहा है सत्यमेव जयते, जय हिंद जय भारत। शो में आगे बात करेंगे एसआईआर की, आपने भी बात करी स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, ठीक है। मैं थोड़ा सा और इसके बारे में बात करना चाहूंगा। अभी हाल फिलहाल इसको लेकर बहुत सारे हमने शोर सुना है, लोगों का काफी परेशान हो रहे हैं, काफी इसको अपोज किया जा रहा है। क्या प्रॉब्लम है इस सिस्टम के साथ जिसको लोग कॉल आउट कर रहे हैं?
1: जी, सो स्पेशल इंटेंसिव रिविजन एसआईआर का जो मामला भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रखा है, वो इसलिए हो रहा है कि जैसा कि हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं या मीडिया में सुन रहे हैं कि लगभग 13 करोड़ लोगों का नाम, जो कि एलिजिबल वोटर्स थे, उनका नाम, उनके पास वोटर आईडी कार्ड होते हुए भी उनका नाम आफ्टर एसआईआर इलेक्टोरल रोल से हटा दिया गया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लगभग 1-1.5 साल पहले बिहार में एसआईआर हुए थे और तब फिर पिटिशन फाइल करी गई थी कि एसआईआर में इलीगली बहुत सारे लोगों का नाम हटा दिया गया है। बट फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया था कि ये जो एसआईआर हुआ है पूरा, दिस हैज़ हैपेंड अकॉर्डिंग टू द लॉज, क्योंकि ये पावर मिला हुआ है चुनाव आयोग को कॉन्स्टिट्यूशन में एज वेल एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया एक्ट में कि वो एसआईआर कंडक्ट कर सकते हैं आफ्टर फ्यू ईयर्स, जब उनको लगता है कि बहुत, मतलब ये एक रेगुलर एक्सरसाइज है आप कह सकते हैं। अभी न्यूज़ में इतना इसलिए आया है क्योंकि थोड़ा पॉलिटिसाइज भी हो गया है, बट न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि बहुत सारे लोगों का नाम हटा दिया गया, स्पेशली क्योंकि दिल्ली में हुआ है ये चीज़, तो वैसे ही और सेंसिटिव हो जाता है थोड़ा, क्योंकि कैपिटल ऑफ इंडिया है। एसआईआर इज़ अ रेगुलर एक्सरसाइज, बट इस बार थोड़े ज़्यादा लोगों का नाम आई थिंक हटा दिया गया है, इसलिए लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं इस बारे में। एंड इन जनरल भी अभी देश का माहौल थोड़ा पॉलिटिसाइज है इसलिए भी, और आपको पता ही है कि अभी जो चल रहा है कि जो सवाल भी उठाए जा रहे हैं पूरे चुनाव प्रणाली में चुनाव आयुक्त के ऊपर, तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए जब नाम हटाए गए हैं तो ये पूरा मिक्स ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स एंड कंट्रोवर्सीज बन गया है। बट आई वुड जस्ट लाइक, नॉट गोइंग टू द कंट्रोवर्सीज, बट आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू दैट एसआईआर इज अ रेगुलर रिविजन प्रोसेस, जो कि हर एक जगह आप देख सकते हैं। आपने एक बार कोई कानून बना दिया तो ऐसा नहीं कि 50 साल तक वो कानून वैसे का वैसा ही सेम इफेक्टिव रहेगा, ज़रूरत पड़ती है तो उसमें परिवर्तन लाया जाता है। बट ये है कि हमें ज़रूर इंश्योर करना चाहिए कि जिनके नाम हटे हैं वो सही तरीके से हटाए गए हों, किसी अल्टीरियर मोटिव के लिए ये नाम ना हटाए गए हों। जैसा कि बंगाल इलेक्शंस के टाइम भी कहा जा रहा था कि लगभग वहाँ पे भी कुछ 30-35 लाख वोटर्स, एलिजिबल वोटर्स के नाम हटा दिए गए थे, तो लोग ऐसा सवाल उठाते हैं कि इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है कि लोगों ने उन्हीं मतलब फॉर देयर पॉलिटिकल एंड्स, टू मीट देयर पॉलिटिकल एंड्स ऐसा किया गया होगा। इट इज़ अ रेगुलर एक्सरसाइज, बट हमें इंश्योर करना चाहिए कि हम ये चीज़ सही तरीके से करें, इसको और किसी अपने गोल को अचीव करने के लिए ना करा जाए। तो रिवाइज करना ज़रूरी है, बट सही तरीके से रिवाइज करना ज़रूरी है।
0: ऑलराइट, और अगर मैं एक नागरिक हूँ, मेरा नाम गलत तरीके से वहाँ से हट गया है, मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं क्या कर सकता हूँ?
1: जी, तो अगर आपका नाम हट गया, आपको लगता है कि एक गलत तरीके से हटा है, तो आप इलेक्शन कमीशन की एक पोर्टल है इलेक्शन सर्विसेज, आप वहाँ पे जा करके अपना रजिस्ट्रेशन, आप वहाँ पे अपना ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हैं। ऑल्सो देयर इज फॉर्म 6, जो भी आपने सुना होगा अभी न्यूज़ में, फॉर्म 6 भर सकते हैं। फॉर्म 6 इज़ नथिंग बट रजिस्टरिंग द चेंजेस दैट यू थिंक शुड बी डन इन योर इलेक्टोरल रोल और योर वोटर आईडी। अगर कुछ गलत है, कुछ मिस हो गया है, कुछ एक्स्ट्रा आ गया है, तो आप उसमें चेंज करा सकते हैं। तो आप बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के पास ये फाइल कर सकते हैं कि आपका नाम जो है वो गलती से हटा दिया गया या फिर गलत तरीके से हटाया गया है, विच शुड बी रेक्टिफाइड। तो आप जाकर के उस पोर्टल में रजिस्टर कर सकते हैं, और अगर आपको पोर्टल पर रजिस्टर नहीं करना है तो आप फिजिकली भी ऑफिस में ये कंप्लेन जो है रजिस्टर कर सकते हैं।
0: ऑलराइट, आई एम डन विद माय क्वेश्चंस। लास्ट में जाते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हर एक नागरिक को भारत के, आपको एक बेसिक गवर्नेंस टूलकिट देनी हो जिसमें 3 चीजें कौन सी होने वाली हैं जो उनको पता होनी चाहिए, अबाउट देयर कॉन्स्टिट्यूशन, अबाउट द इलेक्शंस, एंड अबाउट देयर राइट्स टू सीक रिड्रेसल।
1: जी, अगर अगर हमें ऐसा कुछ टूलकिट की जो आप बात कर रहे हैं, ऐसा कोई टूलकिट होना चाहिए जो कि अपने आप में कंप्लीट हो, जिससे कि मुझे ये पता चले कि मुझे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, अगर मैं गलत ना हूं तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, दूसरा आपने कौन सा बोला था टूलकिट में क्या होना चाहिए?
0: देयर राइट्स टू सीक रिड्रेसल एंड अबाउट इलेक्शंस, कॉन्स्टिट्यूशन, क्या चीजें उन्हें पता होनी चाहिए नॉन नेगोशिएबल।
1: अच्छा, उन्हें क्या चीजें पता, अच्छा ठीक है। तो अगर हम भारत के नागरिक हैं, तो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि हमारे पास मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, सोचने का मौलिक अधिकार है, बोलने का मौलिक अधिकार है, काम करने का मौलिक अधिकार है, समानता का मौलिक अधिकार है, बस आपको खड़े होने की हिम्मत रखनी चाहिए, क्योंकि खड़े होने वाले के साथ अक्सर दुनिया उतना साथ नहीं चलती है, आपके पास हिम्मत होनी चाहिए, आप और आपको जागरूक भी होना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि संविधान हर किसी को पढ़ना चाहिए, सिर्फ लॉयर्स को, सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ना चाहिए, संविधान आपका भी उतना ही है जितना लॉयर्स का है, तो संविधान हर किसी को पढ़ना चाहिए। तो इसके अलावा आपकी वॉइस मैटर करती है, बट वॉइस सही वॉइस मैटर करती है, आपके पास सोचने और समझने की शक्ति होनी चाहिए, आपके आँख बंद नहीं होने चाहिए, आपके कान बंद नहीं होने चाहिए। मैं चाहती हूँ आज के टाइम पे देश के हर एक नागरिक को अपनी आँखें और अपने कान सोच करके, अपना दिमाग खोल करके वोट करना चाहिए और दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। आई जस्ट विश दैट एवरीबडी गेट्स दिस अवेयरनेस टू नॉट बी जस्ट you know, keep flowing with whatever is going on. They should be able to see through. तो सिर्फ किसी के बोलने पे, जैसे हम, मैं वो शब्द यूज़ नहीं करना चाहती यहाँ पे, लेकिन हमें सिर्फ विश्वास करने के लिए किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करना है, हमें अपने दिमाग से विश्वास करना चाहिए और बिल्कुल हमें अपने अपने अधिकारों के लिए खड़े होना चाहिए और दूसरों के अधिकारों के लिए भी खड़े होना चाहिए हमें।
0: बहुत सुंदर। Alright, ma'am, I'm done with the show. Thank you so much for coming here. Thank you so much for giving us this time. And I just hope ki jitne listeners ne pura show suna hoga, aapko kafi kuch basics ke bare mein pata laga hoga exactly ki kya kya rights hain aapke, kaise ye SIR kaam karta hai. It's a regular practice. So don't make it so hawa aur hype ki bhaiya ye kya dal diya hamare upar. It's a regular practice just to avoid disturbing elements. Okay, that is the process jo bahut time se raha hai hamare saath. So thank you so much, ma'am, for joining us.
1: Thank you.
0: All right, dosto, now on this note, this is your dost and host, Rajesh Sagar, signing off.

मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है। ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है। तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के संग लेक वादा, अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे।

0: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। और आपको तो पता ही है कि महिला सशक्तिकरण मेरे दिल के कितनी करीब है। अक्सर मैं सशक्तिकरण की तो बात करती हूँ, लेकिन इस कार्यक्रम में मैं आपको ऐसी महिलाओं से मिलवाती हूँ जो एम्पावर्ड है, सशक्त है और जो सशक्तिकरण दूसरी महिलाओं में भी फैला रही है। सो आज हम जिनसे बात करने वाले हैं वो हैं प्रेरणा यादव जी, जो कि फाउंडर हैं क्यारी की। क्यारी एक बहुत ही खूबसूरत सा मुझे कहना चाहिए पहल है, जहां पर कि ना सिर्फ आपको आर्ट मिलता है लेकिन बहुत ही खूबसूरत आर्ट की चीजें मिलती हैं। सो क्यारी के लिए अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप ऑफकोर्स इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम प्रेरणा जी से ढेर सारी बातें करने वाले हैं और हम उनसे जानने वाले हैं कि भाई ये क्यारी की शुरुआत कैसी हुई और इनकी खुद के सशक्तिकरण की जर्नी कैसी है। लेकिन इन सारी बातों के लिए करेंगे स्वागत प्रेरणा जी का रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में। प्रेरणा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू भावना फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस बिग प्लेटफॉर्म।
0: प्रेरणा जी सबसे पहला सवाल, दरअसल मेरे कार्यक्रम का ये एक स्टैंडर्ड सवाल है और हर महिला से मैं ये सवाल पूछती हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि महिला के लिए महिला सशक्तिकरण यानी विमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन बिल्कुल अलग होती है। सो अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या कहेंगी आप, आपके नजरिए में महिला सशक्तिकरण क्या है या आप विमेन एम्पावरमेंट को कैसे डिफाइन करेंगी?
1: भावना अगर वन वर्ड में कहूं तो मेरे लिए वो इक्वालिटी है। ठीक है, हमारे देश में हम लोग दोनों मेल एंड फीमेल बराबर हैं, हाफ हाफ हैं। तो फीमेल्स और मेल्स का राइट्स, डिग्निटी टू लिव अ फ्री लाइफ, फ्रीडम, हर चीज का फ्रीडम है ना, सोचने का, डिसीजन लेने का, हर चीज में, वो मेरे लिए वही सशक्तिकरण है महिलाओं के लिए कि उन्हें भी सशक्त किया जाए इन सब चीजों से।
0: और जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हम दरअसल ये कहना चाहते हैं कि महिलाओं को समान अधिकार मिले, समान रिस्पेक्ट मिले और साथ के साथ उन्हें यहाँ इस समाज में सर उठाकर जीने का मौका मिले। वेल जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। वक्त है एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का, यानी आपको सुनाने का एक बहुत ही प्यारा सा गाना, फील गुड फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट की इस खूबसूरत सी कड़ी में हम उतनी ही प्यारी और उतनी ही खूबसूरत प्रेरणा यादव जी से बात कर रहे हैं। प्रेरणा यादव जी एक बहुत ही जानी मानी आर्टिस्ट हैं और ये जब अपने हाथ से ब्रश उठाती हैं तो ये इतनी खूबसूरत चीजें बनाती हैं कि क्या कहने। और उसके लिए आपको जाना पड़ेगा क्यारी बाई प्रेरणा यादव जी। तो ये फाउंडर हैं क्यारी की और इनकी क्यारी या इनकी बगिया के फूल बहुत ही खूबसूरत हैं। प्रेरणा जी, अब मैं बात करती हूँ आजकल की महिलाओं के चैलेंजेस के बारे में। सो मैं ये मानती हूँ कि महिलाओं के लिए जीवन थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर मैं आजकल की महिलाओं की बात करूँ तो किस प्रकार के चैलेंजेस फेस कर रही हैं आजकल की महिलाएं?
1: भावना, फॉर मी नंबर वन इज नॉट बीइंग अंडरस्टूड। हम लोग इतने सालों से मुहिम चला रहे हैं इक्वालिटी की, ओके, लेकिन हमारे जो सेकंड हाफ है, जो मेल काउंटर पार्ट है हम लोग के, वो लोग हमारी सोच को अनरीजनेबल अनरिलेटेबल बताते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हमें सशक्तिकरण की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, जब हम दोनों ही इस पृथ्वी पर बराबर हैं, तो फिर जैसे उन्हें वो सशक्त है वैसे हम लोग क्यों नहीं है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज भी हमारे देश में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे विमेन को इक्वली ट्रीट तो बिल्कुल नहीं किया जाता है। चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, जैसे उन्हें कोई एजुकेशन नहीं मिलता है। अगर वो कुछ काम करने जाती हैं, पहली बात तो बहुतों को तो काम करने का हक भी नहीं है घर में, मतलब घर से बाहर जाके, और अगर कोई काम करती है तो उन्हें अपने मेल काउंटर पार्ट से सेम काम के लिए कम पेमेंट मिलता है। और ये चाहे बॉलीवुड जैसे बहुत बड़े प्लेटफॉर्म की बात करो, चाहे छोटी छोटी जगहों पे, आपको ये चीज देखने को मिलता ही है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है हम लोगों के लिए कि जो मेल हैं हमारे समाज के, जो पुरुष लोग हैं, वो लोग इस बात को समझें कि हम लोग किस लिए सशक्तिकरण चाह रहे हैं, हम लोग क्यों इक्वालिटी की मांग कर रहे हैं, ताकि हमें भी पावर एंड डिग्निटी मिले, हम एक रेस्पेक्ट और इक्वालिटी के साथ जिंदगी को जी सकें। और बस यही बात समझने वाली है और इसी के लिए तो हम लोग का संघर्ष है। और ये सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है। और एक चैलेंज ये है कि औरतें भी औरतों के प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पा रही हैं। इवन हमारे घर में जैसे जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, बहुत बुजुर्ग, वो लोग सपोज वो घर की मालकिन ही है एक तरह से, तो वो लोग अपने हिसाब से जिस तरह से उन्होंने जिंदगी जी है उसी तरह वो नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करें कि नहीं, हमारे घर की लड़कियां बाहर नहीं जाएंगी, हमारे घर की लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनेंगी, हमारे घर की लड़कियां दिन भर चौके चूल्हे में ही रहेंगी, उन्हें केवल मर्दों को कैटर करना है, उनकी अपनी कोई सोच समझ शौक कुछ भी नहीं है। तो पुरुष तो है ही, कुछ हमारे जो घरों की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उन लोगों को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और जब वो लोग उतर आएंगी, वो इक्वालिटी को समझ पाएंगी, तो फिर हमारा स्ट्रगल इतना बड़ा नहीं होगा।
0: देखिए, प्रेरणा जी ने ना एक बड़ी अच्छी बात कही है और इस बात का मैं बिल्कुल मान भी करती हूँ और मैं इस बात से इत्तेफाक भी रखती हूँ। इसी को कहते हैं सोशल कंडीशनिंग। हमारे समाज की कंडीशनिंग इस तरीके से है कि महिलाओं को कभी भी ये आंका ही नहीं जाता है कि वो बराबर है। आज अगर हम 2026 की बात करें तो इतना लंबा समय हो गया है और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि शायद हम बच्चियों को उस तरीके से परवरिश देने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि एक लड़के की होती है। लेकिन अगर हम सदियों पहले की बात करें या शायद आज से 20-25 साल पहले की बात करें तो सशक्तिकरण का ये जो पूरा का पूरा मुहिम है ये चल ही रहा है और आज भी हम इसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका एकमात्र कारण है कि आज भी अगर आप देखें महिलाओं को पुरुषों की इक्वालिटी की और साथ के साथ समाज में अपनी आइडेंटिटी की क्राइसिस है। क्राइसिस यानी उन्हें यही नहीं समझ में आता है कि उनका अपना वजूद क्या है और यही सबसे बड़ी परेशानी है। सो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि ये समाज कब समझेगा और खास तौर पर खुद महिलाएं कब समझेंगी। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। सुना रही हूं एक प्यारा सा गाना, फील गुड फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के खूबसूरत से कार्यक्रम में हम प्रेरणा जी से बात कर रहे हैं। प्रेरणा जी एक आर्टिस्ट हैं, फाउंडर हैं क्यारी की, और प्रेरणा जी अब आपके जीवन की बात कर लेते हैं। सो आप एक महिला हैं, आपने भी जिंदगी में एक एम्पावरिंग सा डिसीजन लिया। मैं अगर आपके जीवन की बात करूं तो आपने ऐसा कौन सा डिसीजन लिया जिसको आप अपना सशक्तिकरण भरा, और ऐसा डिसीजन कह सकती हैं जिसको लेने के बाद आपने कभी रिग्रेट नहीं किया, और साथ के साथ आपकी क्यारी की शुरुआत कैसे हुई?
1: वेरी नाइस क्वेश्चन भावना। भावना, आई वॉज ब्लेस्ड कि मैं एक एजुकेटेड फैमिली में पैदा ली, और मेरे पेरेंट्स बहुत ब्रॉड माइंडेड थे। उन्हें हमारे यहाँ इक्वालिटी वाली कोई चीज, मतलब हमने सोचा नहीं था कि कुछ इक्वालिटी जैसी कुछ चीज होती है, क्योंकि हमारे भाई बहन सब में शुरू से इक्वालिटी, चाहे घर का काम हो, चाहे बाहर जाना हो, चाहे कुछ भी। एनीवेज, तो मेरा क्यारी का कैसे शुरुआत हुआ मैं वो बताती हूँ कि मुझे आर्ट में शुरू से बहुत इंटरेस्ट था। इवन मेरी मदर को भी बहुत इंटरेस्ट था। तो आर्ट मैं ऐसे ही कर रही थी जैसे सब बच्चे लोग करते हैं, कुछ ड्राइंग कर लिया, स्कूल से प्रोजेक्ट्स मिला, वो सब किया, बस यहीं तक था। क्योंकि हमारे टाइम में इतने बड़े पैमाने पे ये सब नहीं होता था, क्योंकि सोशल मीडिया भी नहीं था। तो बस हम लोग जो अपने चारों तरफ देखते थे, सीखते थे एक दूसरे से, बस उतना ही करते थे। लेकिन मेरी मम्मी मुझे बहुत हमेशा मोटिवेट करती थी कि जैसे किसी मेरी फ्रेंड की शादी है तो बाहर, वो कहती थी बाजार से सामान खरीद के गिफ्ट मत दो, अपने हाथ से कोई पेंटिंग बना के दो, वो जिंदगी भर उसको चेरिश करेगी, उसके लिए एक मेमोरी होगा, स्वीट मेमोरी होगा कि मेरी फ्रेंड प्रेरणा ने मुझे बना के दिया। तो मैं वैसे ही करती थी एज अ हॉबी। फिर कुछ सालों ये चलता रहा। फिर कुछ सालों बाद मैं कुछ ऐसी सशक्त महिलाओं से, मैं कहूँगी, मैं मिली एक प्लेटफॉर्म पे। मैंने देखा कि बहुत बड़ा बड़ा काम कर रही हैं औरतें। तब मुझे आइडिया आया कि यस, मैं अपने आर्ट को, हॉबी को, मैं एक बिजनेस के रूप में भी बदल सकती हूँ, और उससे केवल मैं ही एम्पावर्ड नहीं होंगी, मेरे थ्रू और भी औरतें और बच्चियाँ एम्पावर्ड होंगी। तो मैंने उस समय मैंने किसी से पूछा नहीं और मैंने क्यारी स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई क्यारी की।
0: क्या बात है। सो देखिए, बहुत सारी महिलाएं हैं ना जिनके पास हुनर तो होता है, जिनके पास टैलेंट तो है, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आता कि हम अपने टैलेंट को एक बिजनेस में, एक आइडेंटिटी में, एक वजूद में कैसे बदलें। उन सभी लोगों के लिए मुझे लगता है कि प्रेरणा जी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। देखिए, आपके पास अगर कोई हुनर है तो ये मत समझिए कि इस हुनर को मैं कहां लेकर जाऊं या क्या करूं। अगर आप जज्बे से लगी रहेंगी ना तो आप उससे बहुत कुछ क्रिएटिव बना सकती हैं। अब अगर मैं क्यारी की ही बात करूं तो प्रेरणा जी आप हमारे सभी लिसनर्स को बताइए ना कि क्यारी किस प्रकार की चीजें लेकर आता है लोगों के लिए।
1: हाँ भावना, क्यारी में हमारा जो बिजनेस का जो नीश है वो है हैंड पेंटेड ज्वेलरीज। ज्वेलरीज तो आप लोग सब कोई जानते हैं, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, ये सब कोई पहनी हुई है। लेकिन अब जो औरतें थोड़ी स्मार्ट हो गई हैं और वो चाहती हैं अपने आप को थोड़े अलग तरह से प्रेजेंट करना, वो चाहती हैं कि भीड़ में मैं एक मेरी पर्सनैलिटी स्टैंड आउट करे, तो वो इस तरह की चीजें पसंद करती हैं। मैं क्ले से, लकड़ी से और MDF बोर्ड से मैं ज्वेलरीज बनाती हूँ, और फैब्रिक से ज्वेलरीज बनाती हूँ, और वो महिलाएं बहुत पसंद करती हैं बहुत ज्यादा। और इसके अलावा, ये तो मेरा नीश हो गया, इसके अलावा मैं होम डेकोर आइटम्स भी बनाती हूँ, जैसे वुडन वॉल प्लेट्स होते हैं, पेंटिंग्स हो गए, वासेस हो गए, और दिवाली के समय में हमारे यहाँ से दिया, कलश, ये सब लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा डिफरेंट रहता है, थोड़ा आर्टिस्टिक रहता है। तो जो लोग आर्ट पसंद करते हैं या जिन्हें चाहिए कि मेरा घर थोड़ा सा अलग दिखे, थोड़ी और खूबसूरती आ जाए, तो वो लोग बहुत पसंद करते हैं, और इसी से मेरे बिजनेस को बहुत नाम भी मिला है, बहुत पहचान मिली है और बहुत शोहरत मिला है इसी से, ऐसे ही।
0: वाकई दोस्तों, जिस तरीके से हम बात करते हैं आज के ज़माने के हैंडीक्राफ्ट की, और आजकल एक ज़माना है सब कुछ पर्सनलाइज्ड होने का। आप गोल्ड, डायमंड, सिल्वर ज्वेलरी लेने जाते हैं तो आपको बड़ी जनरलाइज्ड ज्वेलरी मिलती है, लेकिन जिस तरीके की ज्वेलरी अब आप अपने लिए डिज़ाइन करवा सकते हैं, मान लीजिए नवरात्रि है और आप माँ दुर्गा की खूबसूरत सी प्रतिमा चाहते हैं जो कि आप अपने गले में पहन कर जा सकें, तो अब ओकेशन के हिसाब से भी आपको ज्वेलरी मिलती है और ये सारा काम जो है आपको मिलता है क्यारी पर। तो ये खूबसूरत सी क्रिएशन है प्रेरणा जी की और बहुत ही अच्छा काम ये कर रही हैं। वेल जुड़े रहिएगा दोस्तों रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ वक्त एक और प्यारे से गाने का। फील गुड फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का ये कार्यक्रम। और आज हम बात कर रहे हैं प्रेरणा यादव जी से, जो कि फाउंडर हैं क्यारी की। प्रेरणा जी, अब अगला अहम सवाल, अक्सर महिलाओं को ऐसा लगता है कि अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो सशक्त नहीं है। मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि एक महिला को सशक्त होने के लिए कहीं ना कहीं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना जरूरी है?
1: इसमें दो बातें हैं भावना।

0: फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो होना जरूरी है, बिल्कुल। कुछ औरतें बाहर जाके काम नहीं करना चाहती, वो चाहती उन्हें ये, जैसे हमें आर्ट पसंद है तो हम उसके लिए बाहर भी जाते हैं, हम घर से भी काम कर लेते हैं, और कुछ लोगों को ये सब काम करना पसंद नहीं है, बाहर जाना पसंद नहीं, उन्हें अपने घर को संवारना, अपने बच्चों को देखना, अपने पति को देखना, अच्छे अच्छे खाना बनाना, खूब सुंदर से डेकोरेट करना, उन लोगों को ये सब चीजें पसंद आती हैं, ठीक है। दोनों ही सशक्त हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप बाहर पैसे कमाए तभी आप सशक्त हो सकते, नहीं। इसके लिए अब यहाँ पर बात आती है पुरुष की, उसका उसके घर में जो पुरुष है उनकी मानसिकता कैसी है। अगर वो उसके काम को भी उतना ही वैल्यू दे, घर के काम को भी उतना ही वैल्यू दे जितना वो बाहर जाकर करता है, उसको जितनी वैल्यू मिलती, जितना रिस्पेक्ट मिलता, अगर उस औरत को भी उतना ही मिले तो वो भी सशक्त है। अगर वो घर के बड़े बड़े डिसीजन, छोटे छोटे डिसीजन में उसकी राय ली जाती है, उसको वैल्यू किया जाता है, तो वो औरत भी सशक्त है। अगर वो बच्चों को पाल रही है, तो बच्चे का जब एजुकेशन का टाइम हुआ तो केवल पति डिसाइड करेगा कि भाई किस स्कूल में जाएगी या नहीं जाएगी, वाइफ का डिसीजन नहीं लिया जाए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका भी वैल्यू होना चाहिए, उसका भी से होना चाहिए हर डिसीजन में, हर उसमें, तो वो भी तो सशक्त है ना अपने जगह पे। और वो आपका कितना सारा, जैसे अगर कोई आदमी बाहर काम कर रहा और वो घर का काम कर रही, अगर दोनों को बराबर ही वैल्यू दिया जाए तो जिस तरह पुरुष सशक्त है उसी तरह महिला भी सशक्त है।
1: बाकी दोस्तों बिल्कुल सही कहा, सशक्तिकरण सिर्फ पैसा नहीं होता है, महिलाओं की अपना वजूद, अपनी आइडेंटिटी ही उनका सशक्तिकरण है। अब ये कैसे डिसाइड कर रही हैं कि वो जिंदगी को कैसे जीना चाहती हैं, वाकई उन पर ही निर्भर करता है। जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 FM के साथ, फील गुड फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का ये कार्यक्रम। और आज हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं प्रेरणा जी से। प्रेरणा जी, महिलाओं के लिए क्रिएटिविटी जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, और अक्सर मैंने देखा है महिलाएं बहुत क्रिएटिव होती हैं। सो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप अपनी क्यारी के थ्रू बाकी महिलाओं को कैसे एम्पावर कर रही हैं।
1: हाँ, महिलाएं इनका एक इननेट नेचर होता है क्रिएटिविटी का, ये तो गॉड गिफ्टेड होती हैं, हर जगह कुछ ना कुछ अपनी क्रिएटिविटी से लोगों को अचंभित कर ही देती हैं। क्यारी के थ्रू मेरे पास जो औरतें आती हैं काम करने हमारे साथ, पहले तो मैं स्कूल्स और कॉलेजेस में सिखाया करती थी जाके लड़कियों को, जो हम लोग सीखते हैं, मैं पीडीलाइट से जुड़ी हुई थी तो हम लोग जाके सिखाते थे, तो उतनी लड़कियों ने सीखा, वो फिर उस चीज को काम को आगे बढ़ाती थी। और जो मैं घर से अपने बिजनेस को करती, यहाँ मैं जो स्लम्स की औरतें हैं यहाँ पर, मैं उन्हें सिखा रही हूँ, जैसे वो माला गुथना सीख रही हैं हमसे, थोड़ी थोड़ी पेंटिंग करना सीख रही हैं हमसे, और वो सीखती भी हैं और अर्न भी करती हैं। मैं ही उन्हें पे भी करती हूँ और मैं उन्हें सिखाती भी हूँ। तो ठीक है, वो बहुत हाई स्टैंडर्ड भी नहीं वो कर सक रही हैं, लेकिन हाँ, अपने घर में अब उनकी एक इज्जत है। अब उनके पति ही उनसे जब मांगते हैं तो बड़ा खुश होती हैं, और हमें दूसरे दिन आके बताती हैं कि दीदी वो आज तो ये राजू के पापा हम ही से पैसा मांगे और हमने दे दिया। तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि कल जो हाथ उनके सामने फैल रहे थे, आज वो हाथ देने के लिए आगे बढ़ रहे। तो महिलाएं इस तरह से भी सशक्त हो रही हैं।
0: देखिए भाई, ये सशक्तिकरण की कहानी बड़ी खूबसूरत है, और सही मायने में जब महिलाओं की कहानियां हम सुनते हैं ना, तो एक अलग किस्म की एनर्जी आती है। बस जरूरत यह है कि हमारा समाज इसे एक्सेप्ट करे, और धीरे धीरे ये बदलाव हमारे समाज में जरूर आए। ये सशक्तिकरण की कहानी यूं ही जारी रहने वाली है। बस आप जुड़े रहेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण के इस खूबसूरत से कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं प्रेरणा यादव जी से, जो फाउंडर हैं क्यारी की। प्रेरणा जी, बहुत सारी बातें हमने आपसे जानी, लेकिन जाते जाते हमारे सभी लिसनर्स को क्या खास मैसेज आप देकर जाना चाहेंगे?
1: मैं महिलाओं से कहना चाहूंगी कि अपने अंदर की ताकत को पहचाने, अपने अंदर छुपी हुई बहुत सारे जो आपके गुण हैं, बहुत सारे हुनर हैं, उसे पहचाने, उन्हें बाहर निकालें, उसे निखारें और अपने पैर पे खड़े होने की कोशिश करें। और मैं जो पुरुष लोगों से मैं ये कहूंगी कि हमें ना भगवान ना पायदान समझो, हमें सिर्फ तुम्हारी तरह ही एक इंसान समझो।
0: What a beautiful message। वाकई भाई, महिलाएं ये नहीं कहती उन्हें भगवान समझे और ना ही आप उन्हें डोरमैट समझे कि आप उस पर से अपनी गंदगी साफ करके आगे निकल जाएं। सो कहीं ना कहीं इक्वालिटी की बात है। प्रेरणा जी, बहुत ही खूबसूरत सी आपकी कहानी है और बहुत ही खूबसूरत सी आपकी जर्नी है। ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी इस जर्नी के लिए, लेकिन तहे दिल से धन्यवाद कि आज आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी।
1: थैंक यू सो मच भावना, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए और उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातों से सब नहीं तो कुछ लोगों को तो थोड़ा बहुत भी फायदा होगा, और अगर फायदा होगा तो मुझसे जब बड़ा खुशकिस्मत कोई नहीं होगा।
0: वाकई दोस्तों, ये जो खूबसूरत सा कार्यक्रम है ये है ही महिला सशक्तिकरण का। सो महिलाएं यूं ही सशक्तिकरण फैलाती रहें और ये जो बदलाव है हम अपने समाज में देखते रहें। वक्त है आपसे इजाजत लेने का, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन तब तक के लिए आप कहीं नहीं जाने वाले, आप जुड़े रहने वाले हैं अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ। आरजे भावना को दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: जो देश अपनी धरती को नष्ट करता है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। जंगल हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये जंगल हवा को शुद्ध और ताजा बनाकर हम लोगों को नई शक्ति देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा, दुनिया की सुरक्षा।
1: नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में, जिसे लेकर के आता है रेडियो मानव रचना हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं किसी एक ऐसे मुद्दे पर जो जुड़ा हुआ है हमारे आपकी जिंदगी से, और उसी मुद्दे पर हमारा प्रयास रहता है कि हम इस प्रोग्राम के जरिए तलाशें नई सोच के साथ नई दिशाएं जो हमें लेकर के जाएं एक बेहतर भविष्य की ओर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि रेडियो मानव रचना 107.8 FM का हमेशा प्रयास रहता है कि हम आपके जीवन को जितना बेहतर बना सकें, उसको और ज़्यादा खुशनुमा बना सकें। जितने भी प्रयास किए जा सकते हैं, हम रेडियो मानव रचना के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हमेशा उन प्रयासों पर काम करते रहते हैं। ऐसा ही एक प्रयास आज हम अपने कार्यक्रम में एक चर्चा करेंगे एक विषय पर जो जुड़ा हुआ है हमारे जीवन से, हमारी धन संपत्ति को लेकर के। दोस्तों, आम तौर पर जब कभी भी हम बात करते हैं पैसे की, तो वो अपने आप में एक कला है, यानी एक आर्ट है पैसा कमाना। लेकिन उसी पैसे को कैसे बढ़ाया जा सकता है या उसमें वृद्धि करने के तरीके कौन से होते हैं, वो अपने आप में एक साइंस है, एक टेक्निक है। और उसी टेक्निक के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कि हम अपनी तेज रफ्तार जिंदगी में कैसे बेहतर आय तो चाहते हैं, लेकिन उस धन को कैसी समझदारी से, कितनी समझदारी से हम उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। और इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी आज एक खास मेहमान सोनम पारिक, जो एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में रिसर्च और मार्केटिंग हेड हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे सोनम जी के साथ। सोनम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम में नई सोच नई दिशाएं में, वेलकम।
2: बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी।
1: सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। आपने अभी बताया कि एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में आप रिसर्च एंड मार्केटिंग हेड हैं, तो वो क्या है कंपनी?
2: तो हमारी कंपनी है मेवेंस कैपिटल, वो बेसिकली नोएडा में बेस्ड आउट है। ये एक बुटीक वेल्थ एडवाइजरी फर्म है, तो हम यहाँ पे HNIs, अल्ट्रा HNIs, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के वेल्थ मैनेज करते हैं। तो किस तरीके से कहाँ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, किस तरीके से उनको उनका पूरा एक एसेट एलोकेशन होता है, उनका पूरा एक पोर्टफोलियो बनता है, तो इस हिसाब से ये हमारा जॉब प्रोफाइल होता है जो हम क्लाइंट्स के लिए करते हैं। मेरा काम ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के बारे में समझें, क्या मार्केट्स में स्ट्रैटेजीज चल रही हैं, क्या रिसर्च है, क्या ग्लोबल इन्वेस्टिंग में क्या चल रहा है, डोमेस्टिक में क्या चल रहा है, तो वो मेरा जॉब प्रोफाइल है यहाँ पे।
1: तो हम अगर हम सीधे सीधे मुद्दे पर आएं, यदि हम आज के विषय की बात करें, तो एक आम चर्चा में रहता है कि जब कभी भी हम अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई बात करते हैं या व्यापार को लेकर के या पैसे को लेकर के बात करते हैं, तो हम केवल बात करते हैं कि हम कैसे पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आप समझिए कि जो आपका वाला वेल्थ मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक है, उसके बारे में एक चर्चा दिमाग में आती है कि आखिर वेल्थ मैनेजमेंट है क्या। मतलब हम पैसा कमाने की बात करते हैं, व्यापार कीजिए, जॉब कीजिए या कोई नया स्टार्टअप कीजिए, तो हर किसी में एक बात आती है कि हमने पैसा कमाया। लेकिन जब हम वेल्थ मैनेजमेंट वर्ड यूज करते हैं, तो एक्चुअली वेल्थ मैनेजमेंट है क्या? और दूसरी बात यह कि जब कभी भी वेल्थ मैनेजमेंट की बात आती है, तो हम आम तौर पर समझते हैं कि वेल्थ का सीधा सीधा संबंध होता है उन लोगों से जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, या हम जिनको आमतौर पर कहते हैं कि बहुत ज्यादा अकूत संपत्ति के जो मालिक हैं, उन्हीं को केवल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इस बारे में आपकी क्या राय है?
2: नहीं, पहली बात तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के जमाने में वेल्थ प्लानिंग हर एक बंदे के लिए उतनी ही जरूरी है। लोगों को ये लगता होगा, बट आई थिंक वो प्योरली गलत फहमी है। अगर वेल्थ प्लानिंग की बात करें तो सरल भाषा में ये है, आपका आज सुरक्षित करना और आपका आने वाले कल का लक्ष्य को प्राप्त करने का सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। तो आप वेल्थ प्लानिंग में आपका, जैसे आज अगर कोई नया बंदा अपनी जॉब शुरू कर रहा है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो छोटे छोटे SIPs करें, अपने इंश्योरेंस करें। कंपनीज होंगी, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपना सक्सेशन प्लानिंग करें, एस्टेट प्लानिंग करें। तो ये सब काम जो करना होता है, इसको टोटली वेल्थ मैनेजमेंट कहते हैं। एक टाइम पे शायद वेल्थ मैनेजमेंट चॉइस होती थी, लेकिन आज के ज़माने में मेरे नज़रे में तो वेल्थ मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी चीज़ है।
1: अच्छा, एक बात आप बताइए सोनम, आमतौर पर देखा है हमने बहुत सारा लोग कमाई भी करते हैं, उनके सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा सेटल्ड होते हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको एक स्ट्रेस रहता है, इकोनॉमिकल स्ट्रेस अगर आर्थिक तनाव की बात करें तो उसके पीछे का क्या कारण है?
2: ये देखो, एक वर्ड में अगर मैं बताना चाहूँगी संदीप जी, तो वो है डिसिप्लिन। आज आप किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट करिए, कहीं पे भी करिए, एक कॉमन चीज़ जो हर प्लेटफॉर्म पे रहेगी वो है डिसिप्लिन। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, लोगों को लगता है कि इनकम माइनस एक्सपेंस इज सेविंग्स, जबकि सबसे गलत है। इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। अगर

कुल मिलाकर के बात यदि हम करें तो आर्थिक तनाव का जो मुख्य कारण है वो है केवल आपका नजरिया। जैसा कि आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि आमतौर पर हम जब सेविंग्स की बात करते हैं तो होती है कि हमारी इनकम और उसमें से जो खर्चे घटाने के बाद जो हमारे पास पैसा बचता है वो हमारी सेविंग है, लेकिन जो नजरिया है वो हमें बदलने की जरूरत है कि हम अपनी आमदनी में से पहले सेविंग्स को अलग करें अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए और बाकी बचे हुए पैसे को ही खर्च करें। अपनी जो खर्चों की जो भी फहरिस्त है उसको हम इतना मैनेज करके चलें कि हम उसमें ही उसको पूरा कर पाएं। तो बहुत खूबसूरत बात सोनम जी ने अभी हमें बताई है कि एक डिसिप्लिन जो होता है अपनी आय को लेकर के वो रखना बहुत जरूरी है यदि आप अपनी वेल्थ को अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों इस चर्चा को जारी रखेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम, आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं आपकी संपत्ति के मैनेजमेंट के बारे में, यानी वेल्थ मैनेजमेंट कैसे किया जाए। आप जो

0: पसीना बहाकर आप मेहनत करके जो पैसा आप कमाते हैं उसको वृद्धि करने के, उसको बढ़ाने के कौन से उपाय आप अपना सकते हैं, और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट सोनम पारिक, जो एक बड़ी कंपनी में रिसर्च एंड मार्केटिंग हेड हैं। आज हमने सोनम जी से चर्चा की है आपकी मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में, और कुछ और सवालों के बारे में उनसे जानेंगे और जानकारी लेंगे। तो सोनम, आप एक बात बताइए, यदि कोई युवा, यानी हम जेन जी की बात करते हैं, यंगस्टर्स जॉब करते हैं, तो आमतौर पर देखा जाता है कि जब वो जॉब ज्वाइन करते हैं तो उनको शायद बचत से ज़्यादा कहीं ना कहीं ख्याल रहता है अपनी करंट की जो ज़रूरतें हैं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने का, तो क्या नज़रिया उस समय पे युवाओं को अपनाना चाहिए? या अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो कोई युवा यदि अपनी नौकरी की शुरुआत करता है अपने करियर की, तो बेसिकली उसको सबसे पहले करना क्या चाहिए?
1: देखिए, आज पढ़ लिख के इतनी मेहनत करके कोई जॉब शुरू करता है तो उसका पहला नज़रिया तो यही होता है कि यार थोड़ा अपने पे खर्च कर लें, नई घड़ी ले लें, बाइक ले लें, गाड़ी ले लें, कहीं घूम आए। और जो मुझे लगता है ऑनेस्टली कहीं गलत नहीं है, आपने अपना एक करियर बिल्ड कर रहे हो, आप पैसे कमा रहे हो, लेकिन डिसिप्लिन जितना जल्दी शुरू हो जाता है ना उतना ही बेहतर रिजल्ट देता है। तो मेरा सुझाव तो यही रहेगा कि थोड़ा सा ही सही आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, जो SIP होती है, बेस्ट तरीका। तो आपने जो भी आप इनकम कमाते हो, हम टेक्निकली कहते हैं कि उसका 33-35% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, बट प्रैक्टिकली देखें तो नया नया किसी ने अगर जॉब शुरू किया तो वो पॉसिबल नहीं होता। बट एक डिसिप्लिन लाने के लिए, एक फॉर्मेट बिल्ड करने के लिए कम से कम 20% से वो एक SIP शुरू कर दें, वो डिसिप्लिन आ जाएगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे वो अपने इस डिसिप्लिन को, अपनी SIP अमाउंट को बढ़ाते रहेंगे।
0: तो कुल मिलाकर के बात यह है कि यदि आप कहीं से भी इनकम की शुरुआत करते हैं किसी भी एक नए वेतन के रूप में, तो कहीं ना कहीं आपको उसी समय से डिसिप्लिन होना चाहिए ताकि आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर्ड रह सके। और साथ ही साथ एक बात जो समझने वाली है, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास इतनी बिखरी हुई होती हैं कि वो हमेशा आकर्षित करती हैं, और ख़ासकर हमारे युवाओं को, जो कहीं ना कहीं एक जो EMI का एक फंडा चल पड़ा है कि आप सेविंग्स में रेगुलर पेमेंट देने की बजाय आप कोशिश करते हैं कि आप भविष्य की आवश्यकता की चीज़ें भी करंट में खरीद लें और उसके ऊपर खर्चा करें, तो हमें बचने की ज़रूरत है उन सब बातों से। यदि मैं सीधे शब्दों में बात कहूं, जैसे मैंने पिछले भाग में आपसे बात की कि जो वेल्थ मैनेजमेंट है, क्या ये कॉन्सेप्ट केवल उन लोगों के लिए है कि बहुत सारा पैसा होता है? तो मैं उसी बात को एक दूसरे तरीके से कहना चाहता हूं कि यदि कोई युवा है, उसने अभी जॉब ज्वाइन की और वो अपना, जैसे कि आपने कहा कि 20% मिनिमम एक सेविंग करना चाहिए, तो मैं अगर इसको फिगर आउट करूँ कि यदि कोई व्यक्ति मात्र 5,000 रुपये महीने की सेविंग करता है और उसको निवेश करना चाहता है, तो क्या उसको निवेश शुरू करना चाहिए?
1: बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक जो हमारी इंस्टीट्यूशन है SEBI और AMFI, उनका ना पूरा कॉन्सेप्ट यही है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को लेके। आज SEBI ने एक मिनिमम 250 रुपये की भी SIP शुरू करवा दी है। उसका कॉन्सेप्ट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करें। तो 5,000 तो बहुत बड़ी रकम हो गई, आपको अगर 1,000 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट महीने दर महीने करना है तो भी आप कर सकते हो।
0: तो ये तो बात हुई SIP और म्यूचुअल फंड की। साथ ही साथ अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है, जब हम वेल्थ मैनेजमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको सीधा सीधा अगर हम लिंक करें इन्वेस्टमेंट से, हमने सेविंग की बात की कि ठीक है पहले हमें सेविंग करना चाहिए, बचे हुए पैसे को खर्च करें, लेकिन यदि हम उस सेविंग को इन्वेस्ट करने की बात करें, तो आप क्योंकि एक रिसर्च मार्केटिंग हेड हैं आप कंपनी की, तो आप बेहतर जानती होंगी कि क्या क्या हमारे पास उपाय हैं या क्या अवसर हमारे पास आज की डेट में अवेलेबल हैं। तो लोगों के मन में जो प्रश्न रहता है कि आखिर उनकी जो सेविंग है उसको इन्वेस्ट कहाँ पर करें, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं?
1: देखिए, मुझे लगता है कहाँ करें से पहले आपको जवाब देना पड़ेगा कैसे करें। ठीक है, आज क्या हो रहा है, आज के डेट में एक बंदे को अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके किसी फैमिली मेंबर में, उसके किसी फ्रेंड में या जानकार में अगर किसी ने एक कंपनी से या एक स्कीम से पैसा कमाया है तो वो भी उसी में डाल देते हैं। इनफैक्ट इसका मैं संदीप जी आपको बहुत बढ़िया उदाहरण देना चाहूँगी। तो आपने देखा होगा पिछले साल भर से हमने गोल्ड और सिल्वर में बहुत रैली देखी है कि प्राइस बहुत ही शॉर्टअप हो चुके थे। तो म्यूचुअल फंड में गोल्ड और सिल्वर इन्वेस्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है ETF। तो अगर आपको बाय करना है तो आप गोल्ड ETF या सिल्वर ETF बाय करते हैं। ये कैटेगरी अपने आप में महीने दर महीने 3-4 हज़ार करोड़ रुपए इकट्ठा कर पाती थी। जनवरी में गोल्ड सबसे पीक पे था, ठीक है, उस टाइम पे गोल्ड और सिल्वर में जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो 24,000 करोड़ की हुई है। आज डेट पे जनवरी से अभी तक अगर आप देखोगे तो गोल्ड और सिल्वर काफी करेक्ट हो गए। गोल्ड तकरीबन 20-24% फॉल ले चुका है और सिल्वर भी लगभग उतना ही फॉल ले चुका है। अब उसका नतीजा क्या हुआ, पिछले महीने मई में उसी फंड में से 3,000 करोड़ निकल गए। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि क्योंकि किसी ने देखा कि यार गोल्ड में बहुत पहले इन्वेस्ट कर रखा हुआ था, जनवरी में बहुत रिटर्न मिल गए तो बंदों ने जान में इन्वेस्ट कर दिया।
0: तो यानी लोग टेक्निकल इन्फॉर्मेशन की बजाय लोगों में, जिसको हम आमतौर पर आम भाषा में भेड़ चाल बोलते हैं, उस तरह का है कि लोग फॉलो करते हैं कि कोई क्या कर रहा है,
1: पास्ट रिटर्न्स देखते हैं, जबकि वो इकलौता तरीका नहीं होता आपका इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए संदीप जी, तीन चीजें हर एक बंदे को समझना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले। पहली चीज है आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। जब मैं रिस्क प्रोफाइल बोलती हूँ तो उसका मतलब ये है कि मार्केट्स में जो हम पिछले 2 साल से देख भी रहे हैं, अगर रिटर्न नहीं आया तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? क्या आप शांति से बैठ के वेट करोगे, आप पैनिक करोगे या आप बेच दोगे? ऐसे करके ना बहुत क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हमारी कंपनी भी करती है, वो क्वेश्चंस का आप जवाब देते हो, उन जवाब से हमें पता चल जाता है कि आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है। दूसरी चीज जो हम करते हैं वो है इन्वेस्टमेंट होराइजन। कि मानो मैं कह रही हूँ मुझे यहाँ से 1 साल के लिए पैसा रखना है, 2 साल के लिए रखना है, 5 साल के लिए रखना है, 10 साल के लिए रखना है, तो दूसरी चीज आपको जाननी होगी कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है। तीसरी चीज आपका पर्पस क्या है। आज नए युवाओं के लिए शायद पर्पस होगा कि मुझे 2 साल बाद एक यूरोप ट्रिप लेना है, 4 साल बाद एक गाड़ी लेनी है, घर लेना है। मिडिल एज वालों के लिए होगा बच्चों की एडुकेशन या रिटायरमेंट प्लान। तो तीसरा सवाल होगा पर्पस, कि आपका इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है। फिर जाके आता है कि आपको किस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है। आज लोग गलती यही कर रहे हैं, वो शुरू ही नीचे से कर रहे हैं कि किस प्रोडक्ट में डालें, जबकि पहले समझना होगा ये तीन चीजों का जवाब। जब इन तीन चीजों का आपको जवाब मिल जाएंगे ना, तो आपका प्रोडक्ट अपने आप बन जाएगा, आपका एक पूरा एसेट एलोकेशन बन जाएगा कि उन तीन सवाल के हिसाब से आपको इक्विटी में कितना रखना है, डेट में कितना रखना है, ग्लोबल इन्वेस्टिंग में कितना रखना है और गोल्ड और सिल्वर में कितना रखना है।
0: मतलब अगर हम सीधी बात करें तो वेल्थ मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो एक्चुअली शुरू होता है, सबसे पहले आपको स्वयं को पहचानने की जरूरत है कि आपकी अपनी आवश्यकताएं हैं क्या। यदि हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आपकी अपनी जरूरतें क्या हैं, उन पैरामीटर्स पे कौन सी चीज फिट बैठती है। जब आप उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जवाब मिल जाएगा। और यदि इस प्रकार का जवाब ढूंढने में आप सक्षम नहीं हैं, वहीं पर काम शुरू होता है किसी वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट का।
1: करेक्ट, एकदम सही।
0: तो साथ ही इस चीज में एक और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि आमतौर पर आपने देखा होगा भारतीय गृहस्थी में महिलाओं का भी पूरा एक रोल रहता है, वो भी एक गृहस्थी जीवन बिताते हुए भी उनके पास अपनी एक कुछ सेविंग्स होती हैं, उनकी भी भागीदारी काफी हद तक हमारी जो अगर हम वेल्थ की बात करें तो उसमें होती है। तो उनको किस तरह से इस वेल्थ मैनेजमेंट का पार्ट बनना चाहिए या उनके लिए क्या स्कोप है वेल्थ मैनेजमेंट?
1: सर देखिए, एक तो सबसे पहली बात, वुमेन इन्वेस्टर्स ने खूब तरक्की कर ली है इसमें। मैं भी कुछ दिन पहले एक डेटा देख रही थी, तो 2020 की बात है, कोविड के टाइम पे जो हमारे म्यूचुअल फंड का AUM है उसका तकरीबन 5-1 लाख करोड़ रुपए वुमेन इन्वेस्टर्स का होता था। दिसंबर 2025 में वो डेटा है 17.5 लाख करोड़ का। तो ये एक डेवलपमेंट हुआ है कि वुमेन इन्वेस्टर्स और पे और इन्वेस्ट करने लगी है। तो इसमें जो मुझे लगता है, ऑब्वियसली मैं नोटिस करती हूँ कि वुमेन बहुत क्लियर हैं, उनको कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं बनना है, उनको फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन चाहिए, हर एक डिसीजन का पार्ट बनना चाहते हैं। और उससे मैं ये कह रही हूँ, हो सकता है कई जगहों पे आप शायद गलत भी हो जाओ, बट उससे निराश नहीं होना चाहिए।
0: लेकिन एक बात है कि जो उनका दायरा है वो काफी, क्योंकि घरेलू महिलाएं हैं तो काफी सीमित होता है, तो उनके लिए कौन से प्रोडक्ट या कौन से तरीके उपलब्ध हैं कि वो अपनी जमा की हुई जो सेविंग्स उनके पास रहती है उसको इन्वेस्ट करने के उनके पास कौन से सरलतम उपाय उपलब्ध होते हैं?
1: देखिए, हर एक इन्वेस्टमेंट उनके लिए ओपन है, ऐसा नहीं है। आज अगर वो हाउसवाइफ हैं, वो जॉब नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए सिक्योर्ड सेफ थोड़े से बेटर सेफ फंड्स होते हैं जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई जॉब करने वाले हैं तो वो उस, देखिए फंड्स आप अपेरेंटली सेम ही रहेंगे, आप वुमेन के ले लो, मेन के ले लो, हाँ, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में हर एक तरीके के प्लान्स हैं आपके पास। अगर आप कहते हो कि मुझे 6 महीने के लिए ही पैसा रखना है, तो उस हिसाब से भी आप अपने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे लगता है, एंड प्लस आपने अभी एक बात बोली कि वुमेन, क्योंकि यू नो ऑब्वियसली मेजर हाउस मेकर्स ही रही हैं, जो मुझे लगता है वो ये है, वुमेन का ना बहुत ही एक नेचुरल इंस्टिंक्ट आता है जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। कहीं ना कहीं उनका इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग होता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या सही है, क्या ये सही रहेगा, या अगर उसमें कुछ भी उनको ऊपर नीचे है, तो मुझे लगता है वो शायद कंपैरेटिवली जल्दी आइडेंटिफाई कर सकती है।
0: बट आज की डेट में ये तरीके बड़े साइंटिफिक हो गए और वेल्थ मैनेजमेंट और बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करती है यदि हम उन तरीकों को अपनाते हैं। तो अभी इस चर्चा को जारी रखेंगे म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ।
2: घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम बात कर रहे हैं आपकी बचत को निवेश करने के फंडों को लेकर के, तौर तरीकों को लेकर के, जिसे हम आधुनिक रूप में अगर हम भाषा में नाम बोलें तो वेल्थ मैनेजमेंट का। और हमारे कुछ सवालों का आपको जवाब देने के लिए आई हुई है हमारे पास रिसर्च एंड मार्केटिंग हेड सोनम पारिक, जो एक कंपनी में वेल्थ मैनेजमेंट पे ही अपनी सलाहों से बहुत से लोगों का पैसा बढ़ाने का या उनको ऐसे नए उपाय सुझाने का, वो साइंटिफिक तरीके समझाने का काम करती हैं कि जिससे उनका कमाया हुआ पैसा कम समय में ज़्यादा वृद्धि पा सके, यानी ज़्यादा बढ़ सके। तो सोनम, एक बात जो आम तौर पे जब कभी भी हम बात करते हैं फ्यूचर सिक्योर करने की, चाहे कोई युवा है या कोई गृहिणी है या कोई भी है, तो एक थॉट हर किसी के मन में आता है जब वो सेविंग करता है या निवेश करता है, तो दो तरीके दिमाग में चलते हैं। एक तो ये कि हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो, आमतौर पे आपने देखा होगा। और एक दूसरा थॉट आता है जब वो अपने लिए बात करते हैं कि अपनी रिटायरमेंट के बाद उनका किस तरह से उस पैसे का यूज वो कर सकते हैं, या क्या बेहतर तरीके हैं जो रिटायरमेंट के बाद उन्हें एक बेहतर रिटर्न दे पाएं या एक आरामदायक जिंदगी वो बिता पाएं रिटायरमेंट के बाद। तो आखिर यदि हम रिटायरमेंट की बात करते हैं तो कब रिटायरमेंट का जो थॉट है उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता होती है, या चाहे हम किसी वेतन परस्त व्यक्ति की बात करें या किसी बिजनेसमैन की, तो जो रिटायरमेंट की प्लानिंग है वो एग्जैक्टली कब शुरू की जानी चाहिए आपकी राय में?
1: ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि आप कहो कि मैंने इतने साल जॉब कर लिया उसके बाद मैं रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करूं। आप इनफैक्ट जॉब जब शुरू कर रहे हो, आपकी इनकम शुरू हुई है, आप तब से भी प्लानिंग शुरू कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप तीन उन सवालों के जब जवाब देते हो तो तीसरा होता है आपका पर्पस। तो समझिए कि मैंने अभी अभी अपनी जॉब शुरू करी है और मैं कह रही हूँ कि यार मुझे 4 साल बाद घर लेना है, उसके बाद मेरा बट एक रिटायरमेंट प्लान भी मुझे करना है। तो कौन वेल्थ एडवाइजर क्या करते हैं या जनरली लोगों को भी क्या करना चाहिए, आप एक एसेट एलोकेशन करोगे। उसका क्या मतलब हुआ है कि मेरी इनकम से मैं एक्स अमाउंट बचा सकती हूँ, तो वो एक्स अमाउंट के हिस्से बनेंगे कि एक हिस्सा मैंने रखा है अपने घर खरीदना है उसके लिए, एक हिस्सा मैंने रखा है रिटायरमेंट के लिए। अब क्योंकि मैंने अभी अभी करियर शुरू किया और मेरे रिटायरमेंट में बहुत लंबा टाइम है, तो मेरे लिए जो रिटायरमेंट के प्रोडक्ट्स होंगे वो अलग होंगे। वो शायद एक लॉन्ग टर्म होगा जिसमें मैं थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले पाऊंगी, थोड़ा स्ट्रांग इक्विटी होगा, तो उस हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट होगी। दूसरा आपका है कि आपको 4-5 साल बाद मुझे घर लेना है, वो पैसा उसमें जा रहा है, तो मैं उस फंड में लूंगी जो मुझे पता है कि 5 साल में एक एक्स अमाउंट बना के दे सके, ताकि आपके जो भी माइलस्टोन है उसको हम अचीव कर सके। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आप जब आप चाहो आप अपना रिटायरमेंट शुरू करो। हाँ, परसेंटेज चेंज हो जाएगा क्योंकि मैंने अभी अभी शुरू किया है, मेरे जॉब मेरे रिटायर होने में टाइम है। तो अगर मैं समझो 100 रुपये बचा रही हूँ तो उसका मैं शायद सिर्फ 10 रुपये डालूंगी रिटायरमेंट में, 90 कहीं और डालूंगी। फिर धीरे धीरे जैसे मेरी इनकम बढ़ती रहेगी वैसे वैसे मैं अपना एलोकेशन बढ़ाती रहूंगी।
0: तो यदि हम सरल शब्दों में बात करें तो रिटायरमेंट की जो भी योजना है वो किसी भी समय आप आरंभ कर सकते हैं, लेकिन वो योजना किस प्रकार की होगी, उसमें एलोकेशन ऑफ फंड्स होगा किस प्रकार से, वो डिपेंड करता है आपकी अपनी स्थिति के ऊपर कि आप किस स्थिति में हैं और आपकी फ्यूचर को लेकर के प्लानिंग क्या है। क्योंकि हर किसी व्यक्ति की अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं, किसी के बच्चे फॉरेन एजुकेशन के बारे में प्लानिंग कर रहे होते हैं, कोई अपने लिए एक बहुत अच्छा बड़ा घर प्लान कर रहा होता है, या कोई बहुत आरामदायक जीवन जीना चाहता है रिटायरमेंट के बाद। तो यदि हम सरल शब्दों में बात करें तो आपकी आवश्यकताओं के, आपकी ज़रूरतों के या आपकी इच्छाओं के अनुरूप ही आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए, उसका कोई समय सुनिश्चित नहीं है। तो एक बात और जो वेल्थ मैनेजमेंट को लेकर के बात आती है दिमाग में जब कभी भी हम सोचते हैं, तो इतनी तरह के लुभावने विज्ञापन आते हैं तरह तरह की, म्यूचुअल फंड में कभी किसी में इन्वेस्टमेंट की बातें करती हैं, तो जो बातें हैं उन बातों में एक सबसे ज़्यादा जो आजकल पॉपुलर वर्ड है बहुत आमतौर पर, अभी आपने कई बार हमारी चर्चा में SIP का जिक्र किया म्यूचुअल फंड को लेकर के, तो म्यूचुअल फंड के बारे में आज के समय में सबसे बड़ा मिथ है क्या, मतलब लोगों के मन में जो शंकाएं रहती हैं उनमें क्या सबसे बड़ी जो मिथ है वो म्यूचुअल फंड को लेकर के क्या है?
1: मुझे लगता है सबसे बड़ा मिथ जो है लोगों को वो ये है कि म्यूचुअल फंड मतलब शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड मतलब इक्विटी, जबकि ऐसा नहीं है। आज अगर एक बंदा कहता है, क्लाइंट कहता है कि मुझे एक ही दिन के लिए पैसा रखना है, तो म्यूचुअल फंड में ओवरनाइट फंड्स होते हैं। कोई कहता है मुझे 7 से 10 दिन के लिए पैसा रखना है, तो उसके लिए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। कोई कहता है नहीं मुझे 2 से 3 महीने रखना है, तो उसके लिए लिक्विड फंड्स है, लिक्विड प्लस फंड्स है। कोई कहता है मुझे एक साल के लिए रखना है, तो उसके लिए आर्बिट्राज फंड्स हैं। तो लोगों का ये मिथ है कि म्यूचुअल फंड मतलब इक्विटी मतलब कभी भी गिर सकता है, वो बहुत गलत है। आज आपको जो कॉम्बिनेशन चाहिए आप उस कॉम्बिनेशन में म्यूचुअल फंड का एक्सेस ले सकते हैं। इक्विटी डेट चाहिए, इक्विटी कम डेट ज़्यादा चाहिए, वो हो सकता है। आपको चाहिए इक्विटी कम डेट कम बट उसमें थोड़े कमोडिटीज़ भी आ जाएँ तो वो भी हो सकता है। प्योर डेट चाहिए वो भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से लोगों को ये समझना होगा म्यूचुअल फंड सिर्फ और सिर्फ इक्विटी तक सीमित नहीं है, उसमें और भी ऑप्शंस हैं। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं।
0: यानी अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड अपने आप में एक बंच है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद उपलब्ध हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास हैं, और मैं जहां तक समझता हूं कि वहीं पर कहीं काम शुरू होता है एक वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट का।
1: करेक्ट।
0: तो दोस्तों इस चर्चा को जारी रखेंगे छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद और जानेंगे कि आपके धन की वृद्धि साइंटिफिक तरीके से एक वेल्थ मैनेजमेंट के प्रोग्राम को अपना करके एक डिसिप्लिन्ड लाइफ के तरीके से किस प्रकार से की जा सकती है। तो जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ और फिर हाजिर होते हैं इस चर्चा को जारी रखेंगे।

0: वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका नई सोच नई दिशाएं में, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंगल। और दोस्तों आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो है आपके पैसे से जुड़ा हुआ, यानी आपकी सेविंग्स को कैसे हम कम एफर्ट्स में ज़्यादा बढ़ा सकते हैं एक इन्वेस्टमेंट के जरिए। और उसके लिए ज़रूरत होती है हमें एक वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट की, और हमारे बीच आज हमारी खास मेहमान हैं जो रिसर्च एंड मार्केटिंग हेड हैं एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में, सोनम पारिक। आज हमने सोनम से जाना कि किस प्रकार से आप अपनी जो सेविंग्स है, एक बहुत बड़ा उन्होंने एक मंत्र बताया कि आपको नज़रिया बदलने की आवश्यकता है कि आपको पहले अपनी इनकम में से सेविंग्स को अलग करना है, बाकी बचे हुए पैसे का इस्तेमाल करना है अपनी ज़रूरतों पर, ना कि ज़रूरतों के बाद बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करना है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आता है यदि आप अपने इस नज़रिए को बदलते हैं, और ख़ासकर इस मंत्र को अपनाने की आवश्यकता है हमारी जेन जी को, हमारे युवाओं को, ताकि आपका फ्यूचर बेहतर बन सके। तो सोनम, आज एक मुद्दा और जो आमतौर पर आप जैसे पूरी चर्चा में हमने बात की, आखिर पैसा हमारा है, हमारे सामने बहुत सारे विज्ञापन, बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, क्यों हमें ज़रूरत है एक वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट की? मतलब हमारे पास ऑप्शंस हैं, पैसा हमारे पास है, हमें पता है कि किस पे कितनी रिटर्न आ रही है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। तो वो एक आम आदमी या कोई भी जो व्यक्ति एक बहुत अच्छे पद पर कहीं है या एक बड़ा व्यापार चला रहा है, तो उसे वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट आखिर चाहिए क्यों?
1: देखिए, सेम वजह है जिसके लिए लोगों को डॉक्टर चाहिए होता है, लॉयर चाहिए होता है, फिटनेस ट्रेनर चाहिए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए होता है। बेसिकली आपको एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल चाहिए जिसकी एक्सपर्टीज हो उस इंडस्ट्री में। आज तो एआई का ज़माना है, आप खुद इन्वेस्टमेंट कर सकते हो पूछ के। एंड वैसे भी आज के युवाओं में तो DIY चलता है, डू इट योरसेल्फ। लेकिन ये दोनों चीज़ों में जो रोल प्ले करेगा वो है आपके पास्ट रिटर्न्स, जिसके बेसिस पे आप डिसीजन लोगे। एंड जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आपका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सिर्फ पास्ट रिटर्न पे नहीं होता है। आज क्या होता है कि वेल्थ एडवाइजर के पास ना एक्सेस होता है, वो फंड मैनेजर से बात करते हैं, वो उनकी रिसर्च टीम से बात करते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी समझते हैं, उनके फ्यूचर प्लान समझते हैं, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि क्या ये स्ट्रैटेजी और ये प्लान मेरे क्लाइंट के लिए सूटेबल है कि नहीं। अगर है तब जाके वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं। तो जो आप खुद करते हो वो आप पास्ट रिटर्न्स के बेसिस पे करते हो। एक वेल्थ एडवाइजर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पे बनाता है वो प्रोफाइल। दूसरी चीज़, आपका टाइम मैनेजमेंट। देखिए, आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट एक फुल टाइम जॉब है। अगर आपका अपना करियर है जिसमें आपको फुल टाइम देना पड़ता है, तो आप कभी भी इन्वेस्टमेंट के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक सेक्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, उस सेक्टर में एक कोई पर्टिकुलर कंपनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो इन सब में बहुत टाइम जाता है। आज एक वेल्थ एडवाइजर का फुल फ्लेज्ड काम यही है। तो कहीं ना कहीं उनकी हेल्प लेने से आपको एक एडेड एडवांटेज मिलता है। और तीसरा जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ वो ये है कि वेल्थ एडवाइजर आपके लिए एक इमोशनल सपोर्ट और बफर बन जाता है। आज हमने देखा है कि कोविड के वक्त, डीमोनेटाइजेशन के वक्त, काफ़ी लोगों ने पैनिक में पैसा बेच दिया, अपने फंड्स बेच दिए। यही अगर कोई वेल्थ एडवाइजर होता तो वो कहीं ना कहीं एक इमोशनल इंटेलिजेंस से या फिनेंशियल इंटेलिजेंस से आपको हैंडल कर लेता। एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसको हम हमारे इंडस्ट्री में 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, विच इज़ कंपाउंडिंग। जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट होता ना, वो ऐसे पैनिक सेलिंग में कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो आज अगर एक वेल्थ एडवाइजर होगा आपके पास तो वो आपको सही गाइडेंस दे पाएगा। तो दैट इज द रीजन मुझे लगता है कि कोई भी स्टेज पे आप हो, आपने करियर शुरू किया है, आप कॉर्पोरेट हो, आप ग्रो कर चुके हो, आपको एक वेल्थ एडवाइजर बहुत काम आएगा आपका इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स या इन्वेस्टमेंट्स को आगे ले जाने के।
0: यानी अगर हम बात करें तो एक व्यापारी केवल अपने व्यापार से संबंधित सूचनाओं के बारे में जानकारी रखता है, या कोई, यदि हम किसी सैलरीड पर्सन की बात करें या प्रोफेशनल की बात करें, तो हर किसी का अपना एक क्षेत्र होता है। वहीं पर कहीं ना कहीं जो वेल्थ एडवाइजर है, जो वेल्थ मैनेजमेंट जो एक्सपर्ट हम बात करते हैं, उनका भी अपना एक क्षेत्र है। वो इसी क्षेत्र से संबंधित उत्पाद या आपके पैसे की जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पर आपको बेहतर रिटर्न दे पाएगी, तो उनके पास सोर्सेज ज़्यादा तरीके से होते हैं। और एक, जैसे हमने शुरू में बात की कार्यक्रम के शुरू में, कि पैसे को बढ़ाना अपने आप में एक विज्ञान है, कमाना एक कला हो सकता है लेकिन बढ़ाना विज्ञान है। तो उस विज्ञान के जो एक्सपर्ट हैं वो वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइजर होते हैं। अच्छा, दूसरा एक बात, तो आमतौर पर जब कभी भी हम बात करते हैं सेविंग्स की, तो एक पहले तरीका होता था कि लोग थोड़े थोड़े पैसे बचा करके अपने पास घर में रख लेते थे, बैंकों में नहीं जमा कराते थे क्योंकि बैंकों में खाते नहीं होते थे, लेकिन व्यवस्था बदली तो लोगों ने बैंकों में जमा कराना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके मन में एक शंका हमेशा बनी रहती थी कि यदि हमें कभी जरूरत पड़ी इमरजेंसी के टाइम पे तो हमारा पैसा हमारे पास होना चाहिए। बैंकों की सर्विसेज ऐसी हो गई, कार्ड्स बन गए, डेबिट कार्ड बन गए, एटीएम बन गए कि आप कभी भी पैसा निकाल लो। लेकिन जैसे आज का आधुनिक युग आया, यदि हम वेल्थ मैनेजमेंट की बात करें तो क्या वेल्थ मैनेजमेंट करके या पैसे को हम डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर इन्वेस्ट करके क्या ये सुविधा हमारे पास एक आम आदमी के दिमाग में जो थॉट आता है कि यदि पैसे की इमरजेंसी में आकस्मिक कोई आवश्यकता पड़ती है तो क्या उसमें भी वही सुविधा उनको उपलब्ध होती है कि या इन्वेस्टमेंट के बाद वो फंस जाते हैं 3 महीने 6 महीने 1 साल के लिए कि उनको पैसा बीच में अगर जरूरत है तो मिलेगा या नहीं मिलेगा?
1: देखिए क्या होता है ना, हर फंड का अपना एक एग्जिट लोड बोलते हैं इसको या लॉक इन पीरियड होता है। हर फंड के जो आप इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखोगे, जो फैक्ट शीट कहते हैं हम, उनमें डेटा हमेशा आता है। तो इक्विटी फंड्स होंगे जिसमें लॉक इन नहीं होगा। लॉक इन मतलब कि आपका पैसा आप निकाल सकते हो, साल भर से पहले अगर आप निकालते हो तो कोई चार्जेस लगते हैं। लेकिन जो मैं पहले बता रही थी कि जो 1 दिन 2 महीने 6 महीने के लिए फंड्स में पैसा रखता है उसमें कोई एग्जिट लोड नहीं होता, आप कभी भी निकाल सकते हो। मुझे लगता है ये जो सवाल आपने पूछा है ना, ये शायद आपके भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस से आया होगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री में और म्यूचुअल फंड्स कह लो, वेल्थ कह लो, इंश्योरेंस कह लो, इनमें ना मिस सेलिंग बहुत होती है। तो क्योंकि आपने अगर किसी से बाय किया है और कोई टारगेट प्रेशर होगा या कोई भी वजह हो सकती है, उस वजह से जब आपको कोई प्रोडक्ट बेचने जाता है तो वो कहीं ना कहीं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है, क्योंकि उनको पता है कि आपको इतने टाइम में चाहिए होगा तो वो उस हिसाब से आपको जवाब देते हैं। लेकिन आप कभी भी कोई भी स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका एक वन पेज में आपको सब साफ दिख जाता है। तो कुछ फंड हैं जिसमें आपको जब चाहिए तब पैसा आएगा, लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि एटीएम कार्ड जैसा नहीं होगा कि आपने आज चाहा और आज पैसा आ जाएगा। मिनिमम से मिनिमम जो है वो ये है कि आप आज रिडेम्पशन डालते हो तो अगले दिन आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। और एक आधी स्कीम में ऐसा होगा जहाँ आज रिडेम्पशन डालोगे तो 2 दिन बाद आएगा, पर ये मैक्सिमम है, इतने में आपका पैसा आ जाता है। हाँ, ये नहीं है कि आप चाहो कि तुरंत आए,
0: मतलब लिक्विडिटी जो है वो स्लो नहीं है, बहुत जल्दी आपको पैसा मिल जाता है। क्योंकि यदि आकस्मिक आवश्यकता की बात करें तो उतना फंड तो आप बैंक में भी रख सकते हैं, लेकिन एक सलाह वाली बात है कि यदि आपको पैसे में वृद्धि भी चाहिए और समय पर पैसा चाहिए तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास हैं।
1: देखिए आज ना क्लाइंट्स के लिए बहुत आसान हो गया इन्वेस्टमेंट करना। जैसे मैंने आपको बताया कि सेबी का माइंडसेट ही यही है कि इन्वेस्टर्स के लिए जितनी चीजें आसान बना सके। अब इट्स एवरीथिंग इज ऑन अ क्लिक, आप अपने ऐप के थ्रू बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो आज इन्वेस्टमेंट कन्वीनियंट बहुत हो गया है। जो पहले होता था कि आपको ब्रांच जाके चीजें करनी पड़ती थी, आज वो आपके क्लिक ऑफ अ बटन पे है। तो इन्वेस्टमेंट्स बहुत सरल हो गया है, तरीका बहुत सरल हो गया है,
0: अगर हम डिजिटल युग की बात करें आज तो। बिल्कुल, तो दोस्तों इस चर्चा को जारी रखते हैं इस छोटे से

म्यूजिकल ब्रेक के बाद सुनते रहिए रेडियो मानवरचना 107.8 FM, आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंगल। आज हम चर्चा कर रहे हैं वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर अपनी विशेष मेहमान सोनम पारिक के साथ। तो फिर हाजिर होते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं आपकी वेल्थ को बढ़ाने के उपायों के ऊपर एक वेल्थ एडवाइजर के साथ, जो हैं सोनम पारिक, जो एक वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, वेल्थ एडवाइजर हैं, रिसर्च एंड मार्केटिंग हेड है कंपनी में। और वो आज हमें बता रही हैं कि आखिर वेल्थ मैनेजमेंट है क्या और वेल्थ एडवाइजर की या वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट की हमें ज़रूरत पड़ती क्यों है। सोनम, एक बात जो मैंने भी कार्यक्रम के पिछले हिस्से में भी कही थी कि पहले एक व्यवस्था थी कि लोग आमतौर पर जो सेविंग होती है, बचत होती है, उसको घर में रखते थे, पैसा संभाल के रख दिया। या बहुत सारे हमने किस्से ऐसे भी सुने हैं कि पैसे को घड़ों के अंदर बढ़ के दबा दिया, सोने के सिक्के दबा दिए, तो एक व्यवस्था चलती थी। लेकिन जब से बैंकिंग सिस्टम शुरू हुआ और अगर हम आज लेटेस्ट बात करें तो डिजिटल युग हमारा है, तो क्या ये जो व्यवस्था है वास्तव में वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइजरी, जिस प्रकार की आप जो आपका व्यवसाय जो प्रोफेशन है, वो किस प्रकार से देखता है इस बात को कि हमें ये पैसा जो इन्वेस्ट करना है वो कैसे हमारी देश की इकोनॉमी में हेल्प करता है। मतलब अगर हम सेविंग्स की बात करें तो सेविंग तो आपने पैसा बचा करके अपने पास रख लिया तो वो भी सेविंग है, और वो आपने बैंक में अपने अकाउंट में रख लिया वो भी सेविंग है। लेकिन यदि हम डिफरेंट डिफरेंट तरह की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वो कैसे हेल्प करता है हमारे देश की इकोनॉमी में।
1: देखिए, आपने जो कहा कि घर पे पैसा रखते हैं वो भी सेविंग है और जो बैंक में रखते हैं वो भी सेविंग है, एक्चुअली वो नहीं है। देखिए, सेविंग का मतलब ये नहीं है कि मैंने पैसा इकट्ठा कर लिया। सेविंग का मतलब बेसिकली यही है कि आगे चल के जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन जो हम कहते हैं, मेरा पैसा उसको बीट कर पाए। ठीक है, तो आज अगर सरल भाषा में बोलूँ तो इन्फ्लेशन अगर 3.5% 4% चल रही है तो मेरा पैसा एटलीस्ट उतना बढ़ना चाहिए, तब वो नॉर्मल पैसा कहलाया जाएगा। तब भी वो रिटर्न नहीं है, राइट? रिटर्न वो होगा जिसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद भी जो मैं पैसा कमा रही हूँ वो एक्स्ट्रा है,
0: जो उसकी ग्रोथ है वो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली थोड़ी ज्यादा हो।
1: एग्जैक्टली। अब आपने घर पे पैसा रखा, आपने साल 5 साल 6 साल रखा, उसने कोई रिटर्न नहीं दिया, लेकिन महंगाई तो बढ़ गई, तो आपकी जो वैल्यू थी मनी की वो कम हो गई। और सेम हिसाब चलता है जो आपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखा होगा, वो पैसा वैसे का वैसा ही है, जो ब्याज आता है थोड़ा बहुत वो आ गया, लेकिन इन्फ्लेशन उससे कई ज्यादा है। तो हुआ क्या, आपके जो पैसा है उसका वैल्यू कहीं ना कहीं कम हो गई, इसीलिए आप कहते हो कि आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो। देखिए, आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो ही इकोनॉमी चलेगी, राइट? ये पूरा एक सर्कल है। आप कंज्यूम करोगे तो कंजम्पशन बढ़ेगी हमारी देश की कंजम्पशन बढ़ेगी, तो जो कंपनियां वो प्रोडक्ट बनाती हैं वो चलेंगी, तब हमारा मार्केट चलेगा तो लोगों को रिटर्न मिलेगा। तो ये पूरा एक विशेष सर्कल है। अगर आपने कंज्यूम ही नहीं किया, आपने स्पेंडिंग नहीं करी, आपने पैसे बचाए नहीं, तो वो इकोनॉमी पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। बट थैंक्स टू डिमोनेटाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन, आज ज्यादा से ज्यादा लोग पैसा अपने अकाउंट में रख रहे हैं और कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है।
0: तो अगर हम सीधी सीधी बात करें तो बचत करना अपने आप में पैसे को अपने पास रखना नहीं है जब तक कि आप उसका इन्वेस्टमेंट ना कर दें। यानी हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे हम बैंक की बात करें या अदर जो कंपनीज हैं जो इस तरह का काम करती हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं या डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स में पैसा इन्वाइट करती हैं लोगों का, जब तक उसमें पैसा जा करके इकोनॉमी में ना जाए तब तक हम उसको एक तरह की सेविंग्स ना माने, ये हमारा एक थॉट होना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात आपने कही और समझने की बात है कि नजरिया हमें बदलना जरूर पड़ेगा कि हम आम तौर पर जो एक मिथ पाल के रखते हैं दिमाग में कि जो पैसे बचेंगे उनको हम इन्वेस्ट करेंगे, जबकि हमें सोचना ये चाहिए कि जो पैसा हमारे पास बचे उसे खर्च करना है। यानी पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देनी है। तो एक बहुत बड़ा थॉट आज के इस प्रोग्राम में, इस चर्चा में निकल के आया है। तो सोनम, एक बात और मैं जो जानना चाहता हूँ, यदि हम एक समअप करें इस सारी बात को, जिस प्रकार के विचार आपने हमारे सामने रखे, तो निश्चित रूप से एक वेल्थ एडवाइजर या एक वेल्थ मैनेजमेंट जो एक्सपर्ट होता है वही ऐसे थॉट रख सकता है जिस प्रकार से आपने हमें चीज़ें समझाई कि क्यों एक वेल्थ एडवाइजर की आवश्यकता पड़ती है। तो यदि हम कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर के जाएं तो हमारे जो लिसनर्स हैं रेडियो मानव रचना के, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहती हैं?
1: देखिए, आज हर कोई, हमारी गवर्नमेंट, हमारे फंड मैनेजर्स इंडिया ग्रोथ स्टोरी की बात कर रहे हैं, जो कि सही भी है। ये ग्रोथ स्टोरी का पार्ट आप तभी बन पाएंगे जब आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। आपको ये समझना है, हर एक आपके लिसनर्स को, कि आप किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके से, किसी भी अमाउंट से इस इन्वेस्टमेंट जर्नी का पार्ट बनिए। आप सोचिए आप क्या कर सकते हैं, आप कितना पैसा बचा सकते हैं, कितने टाइम के लिए रख सकते हैं, वो कितनी भी छोटी से छोटी अमाउंट हो, लेकिन इस इंडस्ट्री का, इस इन्वेस्टमेंट जर्नी का एक फ्लेवर लीजिए। जब आप फ्लेवर लेंगे, जब आप पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ आने लगेगी, काफ़ी आपका पर्सपेक्टिव खुलेगा, काफ़ी आप चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो मेरे आपके लिसनर्स से बस यही रिक्वेस्ट है कि आइडेंटिफाई करिए आपकी वेल्थ जर्नी क्या है, बट प्लीज़ डू बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी किसी भी फॉर्म में। आप एक एडवाइज़र के साथ करना चाहते हो वो भी चलेगा, आप इंडिपेंडेंटली करना चाहते हो वो भी चलेगा, बट ट्राई टू रीड मोर, आप सही जगहों से इंफॉर्मेशन लीजिए एंड उस हिसाब से फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करिए।
0: क्योंकि आमतौर पर हमने देखा जितनी भी स्कीम्स आती हैं उसके बाद फिर एक लाइन आ जाती है कि जोखिम और मार्केट,
1: सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क।
0: तो उन सब चीजों के बारे में यदि कोई राय कहीं से मिल सकती है तो आपको निश्चित रूप से एक वेल्थ एडवाइजर ही दे सकता है। तो आज के कार्यक्रम में दोस्तों हमने जाना कि आखिर कमाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस कमाई में से कुछ बचत करके उसको निवेश करना, और साथ ही साथ यदि आप उस निवेश पर एक बेहतर रिटर्न चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि वो निवेश कहीं ना कहीं आपके उन सपनों को पूरा करे, जो सपने मन में लेकर के आपने वो निवेश किया या वो बचत की है, तो आपको एक बेहतर वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट या वेल्थ एडवाइजर की ज़रूरत पड़ती है, जो अपनी जो एक्सपर्टीज है उसका फ़ायदा आपकी वेल्थ को बढ़ाने में दे सके। और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि आपके पास पैसे का वॉल्यूम कुछ भी है, आपकी बचत का आकार कुछ भी है, लेकिन आप भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन सकते हैं, आप भी वेल्थ मैनेजमेंट का ही हिस्सा बन सकते हैं। उसमें कोई भी आकार या कोई समय बिल्कुल नहीं होता। हालाँकि जो भी प्रोग्राम आपको चूज़ करना है, किसी भी चीज़ में आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो वो आपकी स्थिति के ऊपर, आपके पैसे के आकार के ऊपर कि आपकी बचत कितनी है, आपकी आयु कितनी है या आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं उसके ऊपर निर्भर करती है। तो आज इन सभी सवालों के हमने जवाब जानने की कोशिश की है। आशा करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपके बहुत सारे जो मन में प्रश्न हैं वो कहीं ना कहीं उनके जवाब आपको आज मिले होंगे। और इस चर्चा ने आज हमें ये भी समझाया कि धन केवल कमाने की नहीं बल्कि उसे सही दिशा देने की भी आवश्यकता है, यानी केवल पैसा कमाना पर्याप्त नहीं है बल्कि उसका इन्वेस्टमेंट भी सही तरीके से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों इसी संदेश के साथ आपसे लेते हैं आज्ञा और अगले प्रोग्राम में एक नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तो सोनम आज आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच
1: फॉर कॉलिंग मी हियर।
0: तो दोस्तों इस प्रोग्राम में आज इतना ही, अगले प्रोग्राम में एक नए मुद्दे के साथ आपसे मिलेंगे, फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए संदीप सिंगल को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइफ।

0: प्रकृति का आधार नहीं रहेंगे ये, तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर ले ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे, संतुलित बनाएंगे।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं यादों की डायरी प्रियंका के साथ, और आज की हमारी कहानी है काली सलवार, जिसे लिखा है सादत हसन मंटो ने।
2: दिल्ली आने से पहले वो अंबाला छावनी में थी, जहां कई गोरे उसके ग्राहक थे। इन गोरों से मिलने जुलने की वजह से वो अंग्रेजी के 10-15 शब्द सीख गई थी। इनको वो आम बातचीत में इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन जब वो दिल्ली में आई और उसका कारोबार ना चला, तो एक दिन उसने अपनी पड़ोसन तमंचा चांद से कहा, दिस लाइफ वेरी बैड, यानी ये जिंदगी बहुत बुरी है जिसमें खाने को ही नहीं मिलता। अंबाला छावनी में उसका धंधा बहुत अच्छा चलता था। छावनी के गोरे शराब पीकर उसके पास आ जाते थे। वो 3-4 घंटे में ही 8-10 गोरों को निपटा कर 20-30 रुपए पैदा कर लिया करती थी। अगर वो उससे कुछ रियायत चाहते तो वो सिर हिलाकर कह दिया करती थी, साहब हमारी समझ में तुम्हारी बात नहीं आती। और अगर वो उससे जरूरत से ज्यादा छेड़छाड़ करते तो वो उनको अपनी जुबान में गालियां देना शुरू कर देती। वो हैरत में उसके मुंह की तरफ देखते तो वो उनसे कहती, साहब तुम एकदम उल्लू का पट्टा है, समझा? ये कहते वक्त अपने लहजे में गुस्सा न लाती, बल्कि बड़े प्यार से उनके साथ बातें करती। यहाँ दिल्ली में जब वो आई थी, एक भी गोरा उसके घर नहीं आया था। 3 महीने उसको हिंदुस्तान के शहर में रहते हो गए थे, जहाँ उसने सुना था कि बड़े लाट साहब रहते हैं जो गर्मियों में शिमला चले जाते हैं, मगर सिर्फ 6 आदमी उसके पास आए थे, सिर्फ 6, यानी महीने में 2। और इन 6 ग्राहकों से उसने खुदा झूठ ना बुलवाए तो 18.5 रुपए वसूल किए थे। 3 रुपए से ज्यादा पर कोई मानता ही नहीं था। सुल्ताना ने इनमें से 5 आदमियों को अपना रेट 10 रुपए बताया था, मगर ताजुब की बात है, इनमें से हर एक ने यही कहा, भाई हम 3 रुपए से 1 कौड़ी ज्यादा नहीं देंगे। न जाने क्या बात थी कि इनमें से हर एक ने उसे 3 रुपए के काबिल समझा। चुनांचे जब 6ठा आदमी आया तो उसने खुद उससे कहा, देखो मैं 3 रुपए 1 टाइम के लूंगी, इससे 1 धेला तुम कहो तो मैं ना लूंगी, अब तुम्हारी मर्जी, रहना है तो रहो वरना जाओ। 6ठे आदमी ने ये सुनकर तकरार ना की और उसके यहाँ ठहर गया। जब दूसरे कमरे में वो दरवाजा बंद करके अपना कोट उतारने लगा तो सुल्ताना ने कहा, लाइए 1 रुपया दूध का। उसने 1 रुपया तो न दिया, लेकिन नए बादशाह की चमकती हुई अठन्नी जेब में से निकाल कर उसको दे दी, और सुल्ताना ने भी चुपचाप ले ली कि चलो जो आया गनीमत है। 18.5 रुपए 3 महीने में, 20 रुपए महीना तो इस कोठे का किराया था, जिसको मकान मालिक अंग्रेजी भाषा में फ्लैट कहता था। इस फ्लैट में ऐसा पखाना था जिसमें जंजीर खींचने से सारी गंदगी पानी के जोर से एकदम नल में नीचे गायब हो जाती थी, और बड़ा शोर होता था। शुरू शुरू में तो उस शोर ने उसे बहुत डराया था। पहले दिन जब वो शौच जाने के लिए उस पखाने में गई तो उसकी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। फारिग होने के बाद जब वो उठने लगी तो उसने लटके हुए जंजीर का सहारा ले लिया। उस जंजीर को देखकर उसने ख्याल किया, चूंकि ये खास लोगों की रहने की जगह है, इसलिए ये जंजीर लगाई गई होगी कि उठते वक्त तकलीफ ना हो और सहारा मिल जाए। मगर जैसे ही उसने जंजीर को पकड़कर उठना चाहा, ऊपर खटखट की आवाज हुई और फिर एकदम पानी इस शोर के साथ बाहर निकला कि डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई। खुदा बख्श कमरे में अपना फोटोग्राफी का सामान ठीक कर रहा था और साफ बोतलों में हाइड्रोकोलीन डाल रहा था कि उसने सुल्ताना से पूछा, क्या हुआ, ये चीख तुम्हारी थी? सुल्ताना का दिल धड़क रहा था। उसने कहा, ये मुआ पैखाना है या क्या है? बीच में ये रेलगाड़ी की तरह जंजीर क्यों लटका रखी है? मेरी कमर में दर्द था, मैंने कहा चलो इसका सहारा ले लूंगी, पर इस मुई जंजीर को छेड़ना था कि वो धमाका हुआ कि मैं तुमसे क्या कहूँ। इस पर खुदा बख्श बहुत हंसा और उसने सुल्ताना को उस पैखाने के बारे में सब कुछ बता दिया था कि ये नए फैशन का है जिसमें जंजीर हिलाने पर

0: गंदगी जमीन के नीचे धस जाती है। खुदा बख्श और सुल्ताना आपस में कैसे मिले, ये एक लंबी कहानी है। खुदा बख्श रावलपिंडी का था। एंट्रेंस पास करने के बाद उसने लॉरी चलाना सीखा। चुनांचे 4 साल तक वो रावलपिंडी और कश्मीर के बीच लॉरी चलाने का काम करता था। इसके बाद कश्मीर में उसकी दोस्ती एक औरत से हो गई। उसको भगाकर वो लाहौर ले आया। लाहौर में चूंकि उसको कोई काम न मिला तो इसलिए उसने अपनी औरत को पेशे पर बैठा दिया। 2-3 साल तक ये सिलसिला जारी रहा और फिर वो औरत किसी और के साथ भाग गई। खुदा बख्श को मालूम हुआ कि वो अंबाला में है। वो उसकी तलाश में अंबाला आया जहां उसको सुल्ताना मिल गई। सुल्ताना ने उसको पसंद किया, चुनांचे दोनों का संबंध हो गया। खुदा बख्श के आने से सुल्ताना का कारोबार एकदम चमक उठा। औरत चूंकि अंधविश्वासी थी इसलिए उसने समझा कि खुदा बख्श बड़ा लक्की है जिसके आने से इतनी तरक्की हो गई। चुनांचे इस विश्वास ने खुदा बख्श की अहमियत उसकी नजर में और बढ़ा दी। यहाँ वो गोरों की फोटो खींचता रहता। 1 महीने के अंदर अंदर उसकी छावनी में बहुत से गोरों से जान पहचान हो गई। चुनांचे वो सुल्ताना को वहीं ले गया। यहाँ छावनी में खुदा बख्श के जरिए कई गोरे सुल्ताना के पक्के हो गए और उसकी आमदनी भी दुगनी हो गई। सुल्ताना ने कानों के लिए बूंदे खरीदे, 5.5 तोले की 8 कंगड़ियां भी बनवा ली, 10-15 अच्छी अच्छी साड़ियां भी जमा कर ली। घर में फर्नीचर वगैरह भी आ गया। कुल मिलाकर अंबाला छावनी में वो बड़ी खुशहाल थी। मगर एकाएक न जाने खुदा बख्श के दिल में क्या समाई कि उसने दिल्ली जाने की ठान ली। सुल्ताना इनकार कैसे करती जबकि खुदा बख्श को अपने लिए बड़ा लकी समझती थी। उसने खुशी खुशी दिल्ली जाना कबूल किया। सोचा कि इतने बड़े शहर में जहाँ लाट साहब रहते हैं उसका धंधा और भी चलेगा। चुनांचे जल्दी जल्दी घर का भारी सामान बेच बाज कर वो खुदा बख्श के साथ दिल्ली आ गई। यहाँ पहुँच कर खुदा बख्श ने 20 रुपये पर एक छोटा सा फ्लैट ले लिया जिसमें वो रहने लगे। एक ही किस्म के नए मकानों की लंबी सी कतार सड़क के साथ साथ चली गई थी। म्यूनिसिपल कमेटी ने शहर का एक भाग खास वेश्याओं के लिए रख दिया था ताकि वो शहर में जगह जगह अड्डे ना बनाए। नीचे दुकानें थी और ऊपर 2 मंजिला रिहायशी फ्लैट। चूंकि सब इमारतें एक ही डिजाइन की थी इसलिए शुरू शुरू में सुल्ताना को अपना फ्लैट तलाशने में बड़ी मुश्किल होती थी। पर जब नीचे लॉन्ड्री वाले ने अपना बोर्ड घर की पेशानी पर लगा दिया तो उसको एक पक्की निशानी मिल गई। बोर्ड पर लिखा था, यहाँ मैले कपड़ों की धुलाई की जाती है। ये बोर्ड पढ़ते ही वो अपना फ्लैट तलाश लिया करती थी। इस तरह उसने बहुत सी निशानियां कायम कर ली थी। मसलन बड़े बड़े अक्षरों में जहाँ कोयले की दुकान लिखा था वहीं उसकी सहेली हीराबाई रहती थी जो कभी रेडियो घर में गाने जाया करती थी। जहाँ यात्रियों के खाने का सारा इंतजाम है लिखा था वहीं उसकी दूसरी सहेली मुख्तार रहती थी। पलंग के कारखाने के ऊपर अनवरी रहती थी जो उस कारखाने के सेठ के पास नौकर थी। चूंकि सेठ साहब को रात के वक्त अपने कारखाने की देखभाल करनी होती थी इसलिए वो अनवरी के पास ही रहते थे। दुकान खोलते ही ग्राहक थोड़ी आते हैं। चुनांचे जब 1 महीना तक सुल्ताना बेकार रही तो उसने यही सोचकर अपने दिल को तसल्ली दी। पर जब 2 महीने गुजर गए और कोई आदमी उसके कोठे पर न आया तो उसे बहुत चिंता हुई। उसने खुदा बख्श से कहा, क्या बात है खुदा बख्श, हमें आए आज पूरे 2 महीने हो गए, किसी ने इधर का रुख नहीं किया। मानते हो आजकल बाजार बहुत मंदा है पर इतना मंदा भी तो नहीं कि महीने भर में कोई शक्ल ही देखने ना आए। खुदा बख्श को भी ये बात बहुत अरसे से खटक रही थी मगर वो खामोश था। वो इसके आगे कुछ कहने ही वाला था कि सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज आई। खुदा बख्श और सुल्ताना दोनों ने इस आवाज की तरफ ध्यान दिया। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। खुदा बख्श ने लपक कर दरवाजा खोला। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये पहला ग्राहक था जिससे 3 रुपए में सौदा तय हुआ। उसके बाद 5 और आए यानी 3 महीने में 6 जिनसे सुल्ताना ने 18.5 रुपए वसूल किए। 20 रुपए महीना तो फ्लैट के किराए में ही चले जाते थे। पानी का टैक्स और बिजली का बिल अलग था। इसके अलावा घर के दूसरे खर्चे थे, खाना पीना, कपड़े लत्ते, दवा दारू और आमदनी कुछ भी नहीं थी। 18.5 रुपए 3 महीने में आए तो उसे आमदनी तो नहीं कह सकते। सुल्ताना परेशान हो गई। 5.5 तोले की 8 कंगनियां जो उसने अंबाले में बनवाई थी आहिस्ता आहिस्ता बिक गई। आखिरी कंगनी की जब बारी आई तो उसने खुदा बख्श से कहा, तुम मेरी सुनो और चलो अम्बाले में, यहाँ क्या धरा है भाई? होंगे यहाँ लाट साहब, पर हमें तो ये शहर रास नहीं आया। तुम्हारा काम भी वहाँ खूब चलता था, चलो वहाँ चलते हैं। जो भी नुकसान हुआ उसको अपना सिर सदका समझो। लो इस कंगनी को बेच कर आओ, आज रात की गाड़ी से ही यहाँ से चल देंगे। खुदा बख्श ने कंगनी सुल्ताना के हाथ से ली और कहा, नहीं जाने मन, अम्बाला अब नहीं जाएंगे, यही दिल्ली में रहकर कमाएंगे। तुम्हारी चूड़ियां सब की सब वापस आएंगी। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो बड़ा कारसाज है, यहाँ भी वो कोई ना कोई सबब बना ही देगा। सुल्ताना चुप हो गई, चुनांचे आखिरी कंगनी भी हाथ से उतर गई। सूने हाथ लेकर उसको बहुत दुख होता था, पर क्या करती, पेट भी तो आखिर किसी काम धंधे से भरना था ना। 5 महीने गुजर गए और आमदनी खर्च के मुकाबले चौथाई से भी कुछ कम रही तो सुल्ताना की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। खुदा बख्श भी अब सारा सारा दिन गायब रहने लगा था। सुल्ताना को इसका भी दुख था। इसमें कोई शक नहीं कि पड़ोस में उसकी 2 मिलने वालियां मौजूद थी, उनके साथ वो अपना वक्त काट सकती थी। हर रोज उनके यहाँ जाना और घंटों बैठे रहना उसको बुरा लगता था। चुनांचे आहिस्ता आहिस्ता उसने इन सहेलियों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया। सारा दिन वो अपने सुनसान मकान में बैठी रहती, कभी सुपारी काटती रहती, कभी पुराने फटे कपड़ों को सीती रहती, और कभी बाहर बालकनी में आकर जंगले के पास खड़ी हो जाती और सामने रेलवे रोड में खड़े और चलते इंजनों की तरह घंटों बेमतलब देखती रहती। अम्बाला छावनी में जब वो रहती थी तो स्टेशन के पास ही उसका मकान था, मगर वहां उसने कभी इन चीजों को ऐसी नजरों से नहीं देखा था। अब तो कभी कभी उसके दिमाग में ये ख्याल आता कि ये जो सामने रेल की पटरियों का जाल सा बिछा है और जगह जगह से भाप और धुआं उठ रहा है, बहुत सी गाड़ियां हैं जिनको चंद मोटे मोटे इंजन इधर उधर धकेलते रहते हैं। सुल्ताना को कभी कभी ये इंजन सेठ मालूम होते थे, जो कभी कभी अम्बाला में उसके यहाँ आया करते थे। खुदा बख्श से उसने कई बार कहा, देखो मेरे हाल पर रहम करो, यहाँ घर में रहा करो, मैं सारा दिन यहाँ बीमारों की तरह पड़ी रहती हूँ। मगर उसने हर बार सुल्ताना को ये कहकर तसल्ली दी, जाने मन, मैं बाहर कुछ कमाने की फिक्र कर रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा तो चंद दिनों में ही बेड़ा पार हो जाएगा। पूरे 5 महीने हो गए थे, मगर अभी तक ना सुल्ताना का बेड़ा पार हुआ था ना खुदा बख्श का। मुहर्रम का महीना सिर पर आ रहा था, मगर सुल्ताना के पास काले कपड़े बनवाने के लिए कुछ भी नहीं था। मुख्तार ने लेडी हिमल्टन की एक नए ढंग की कमीज बनवाई, उसकी आस्तीनें काली जॉर्जेट की थी, जिसके साथ मैच करने के लिए उसके पास काली साटन की सलवार थी जो काजल की तरह चमकती थी। अनवरी ने रेशमी जॉर्जेट की एक बड़ी उम्दा साड़ी खरीदी थी, उसने सुल्ताना से कहा था वो इसी साड़ी के नीचे सफेद बॉस्की का पेटीकोट पहनेगी, क्योंकि ये नया फैशन है। इस साड़ी के साथ पहनने को अनवरी ने काली मखमल का एक जूता भी लिया था जो बड़ा नाजुक था। सुल्ताना ने जब ये तमाम चीजें देखी तो उसको इस एहसास से बहुत दुख हुआ कि वो मुहर्रम मनाने के लिए ऐसा लिबास खरीदने की हैसियत तक नहीं रखती। अनवरी और मुख्तार के पास ये लिबास देखकर जब वो घर आई तो उसका दिल बहुत दुखी था। उसे ऐसा मालूम होता था कि फोड़ा सा उसके अंदर हो गया है, घर बिल्कुल खाली था। खुदा बख्श वैसे ही हमेशा की तरह बाहर था। देर तक वो दरी पर गांव तकिया सिर के नीचे रखकर लेटी रही, पर जब उसकी गर्दन ऊंचाई की वजह से अकड़ सी गई तो उठकर बाहर बालकनी में चली गई ताकि गमगीन ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दे। बाजार में ऐसे आदमी चलने शुरू हो गए थे जो ताक झाक करने के बाद चुपचाप घर का रुख करते हैं। ऐसे ही एक आदमी ने गर्दन ऊंची करके सुल्ताना की तरफ देखा। सुल्ताना मुस्कुरा दी और उसको भूल गई, क्योंकि अब सामने पटरियों पर एक इंजन आ गया था। सुल्ताना ने गौर से उसकी तरफ देखना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता ये ख्याल उसके दिमाग में आया कि इंजन ने भी काला लिबास पहन रखा है। ये अजीबोगरीब ख्याल दिमाग में से निकालने की खातिर जब उसने सड़क की ओर देखा तो उसे वही आदमी बैलगाड़ी के पास खड़ा नजर आया जिसने उसकी तरफ ललचाई नजरों से देखा था। सुल्ताना ने उसे हाथ से इशारा किया। उस आदमी ने इधर उधर देखा और सुल्ताना से इशारों में पूछा, किधर से आऊं? सुल्ताना ने उसे रास्ता बता दिया। वो आदमी थोड़ी देर खड़ा रहा, मगर फिर बड़ी फुर्ती से ऊपर चलाया। सुल्ताना ने उसे दरी पर बैठाया। जब वो बैठ गया तो उसने बातचीत शुरू करने के लिए कहा, आप ऊपर आते डर रहे थे? वो आदमी ये सुनकर मुस्कुराया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? डरने की बात ही क्या थी? इस पर सुल्ताना ने कहा, मैंने ये इसलिए कहा कि आप देर तक वहीं खड़े रहे और फिर कुछ सोच कर आए। वो ये सुनकर फिर मुस्कुराया, तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं तो ऊपर वाले फ्लैट की तरफ देख रहा था। वहां कोई औरत खड़ी अपने मर्द को ठेंगा दिखा रही थी, मुझे ये मंजर पसंद आया। फिर बालकनी में सब्ज बल्ब रोशन हुआ, मैं कुछ देर के लिए ठहर गया। सब्ज रोशनी मुझे बहुत पसंद है, आंखों को बहुत अच्छी लगती है। ये कहकर उसने कमरे का जायजा लेना शुरू किया। फिर वो उठ खड़ा हुआ। सुल्ताना ने पूछा, आप जा रहे हैं? आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हारे मकान देखना चाहता हूँ। चलो मुझे तमाम कमरे दिखाओ। चलिए। सुल्ताना ने उसको तीनों कमरे एक एक करके दिखा दिए। उस आदमी ने बिल्कुल खामोशी से उन कमरों का मुआयना किया। जब वो फिर उसी कमरे में आ गए जहां पहले बैठे थे, तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम शंकर है। सुल्ताना ने पहली बार गौर से शंकर की तरफ देखा। वो ठीक ठाक कद, मामूली शक्ल सूरत का आदमी था, मगर उसकी आंखें सबसे अलग, साफ शफाक थी। कभी कभी उसमें एक अजीब किस्म की चमक भी पैदा होती थी। गठीला और कसरती बदन था, खाकी रंग की गर्म पैंट पहने था, सफेद कमीज थी जिसका कॉलर गर्दन पर से ऊपर को उठा हुआ था। शंकर कुछ इस तरह दरी पर बैठा था कि मालूम होता था कि शंकर की बजाय सुल्ताना ग्राहक है। इस एहसास ने सुल्ताना को थोड़ा परेशान कर दिया, चुनांची उसने शंकर से कहा, फरमाइए। ये सुनकर वो लेट गया। मैं क्या फरमाऊं? तुम ही कुछ फरमाओ, तुम ही ने तो मुझे बुलाया है। सुल्ताना ये सुनकर चकरा गए, मगर इसके बावजूद उसे बेख्तियार हंसी आ गई। आप काम क्या करते हैं? शंकर ने जवाब दिया, यही जो तुम करती हो। क्या तुम क्या करती हो? मैं कुछ नहीं करती। तो मैं भी कुछ नहीं करता, सुल्ताना ने भन्ना कर कहा। ये तो कोई बात ना हुई, आप कुछ ना तो जरूर करते होंगे ना? शंकर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, तो तुम भी तो कुछ ना कुछ जरूर करती होगी। झक मारती हूँ। तो मैं भी झक मारता हूँ। तो आओ झक मारे, मैं हाजिर हूँ, मगर झक मारने के दाम मैं कभी नहीं दिया करता। होश की दवा करो, ये लंगर खाना नहीं। तो मैं भी वॉलंटियर नहीं। सुल्ताना यहाँ रुक गई। उसने पूछा, ये वॉलंटियर क्या होते हैं? जाने तुम क्या उटपटांग बातें करते हो, बोलो रहोगे? इसी शर्त पर जो मैं पहले बता चुका हूं। सुल्ताना उठ खड़ी हुई, तो जाओ रास्ता पकड़ो। शंकर आराम से उठा, पतलून की जेबों में उसने अपने दोनों हाथ ठूंसे और जाते हुए कहा, मैं कभी कभार इस बाजार से गुजरा करता हूँ, जब भी तुम्हें जरूरत हो बुला लेना, मैं बहुत काम का आदमी हूँ। शंकर चला गया और सुल्ताना काले लिबास को भूलकर देर तक उसके बारे में सोचती रही। इस आदमी की बातों ने उसके दुख को बहुत हल्का कर दिया था। शाम को जब खुदा बख्श आया तो सुल्ताना ने उससे पूछा, तुम आज सारा दिन किधर गायब रहे? पुराने किले के पास से आ रहा हूँ, वहाँ एक बुजुर्ग कुछ दिनों से ठहरे हुए हैं, उन्हीं के पास हर रोज जाता हूँ कि हमारे दिन फिर जाएं। कुछ उन्होंने तुमसे कहा? नहीं, अभी वो मेहरबान नहीं हुए, पर सुल्ताना मैं जो उनके खिदमत कर रहा हूँ वो अकारत कभी नहीं जाएगी। अल्लाह का फजल अगर शामिल हाल रहा तो जरूर वारे न्यारे हो जाएंगे। सुल्ताना के दिमाग में मुहर्रम मनाने का ख्याल समाया हुआ था। खुदा बख्श से रोनी आवाज में कहने लगी, सारा सारा दिन बाहर गायब रहते हो, मुहर्रम सिर पर आ गया है, कुछ तुमने इसकी फिक्र की कि मुझे काले कपड़े चाहिए? घर में फूटी कौड़ी नहीं, कंगनियां थी सो वो एक एक करके बिक गई, तुम ही बताओ क्या होगा? यूं फकीरों के पीछे कब तक मारे मारे फिरा करोगे? मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ दिल्ली में खुदा ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। मेरी सुनो तो आप काम शुरू कर दो, कुछ तो सहारा हो ही जाएगा। खुदा बख्श तरी पर लेट गया और कहने लगा, पर ये काम शुरू होने के लिए भी तो थोड़ा कुछ सरमाया चाहिए। सुल्ताना ने बात काट कर कहा,
1: तुम खुदा के लिए कुछ करो, चोरी करो या डाका मारो, पर मुझे एक सलवार का कपड़ा जरूर ला दो। मेरे पास सफेद बॉस्की की कमीज है, उसको मैं काला करवा लूंगी। सफेद निनॉन का एक दुपट्टा भी मेरे पास है, वही जो तुमने मुझे दिवाली पर लाकर दिया था, ये भी कमीज के साथ रंगवा लिया जाएगा। सिर्फ सलवार की कसर है, सो वो तुम किसी ना किसी तरह पैदा कर दो। देखो, तुम्हें मेरी जान की कसम है, किसी ना किसी तरह जरूर ला दो। मेरा मरा मुंह देखो अगर ना लाओ।
0: मैं कहां से लाऊं? अफीम खाने के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं।
1: कुछ भी करो, मगर मुझे 4.5 गज काली साटन ला दो। तुम अगर चाहो तो जरूर इतने पैसा पैदा कर सकते हो। जंग से पहले ये साटन 12-14 आने गज मिल जाती थी, अब 1.25 रुपए गज के हिसाब से मिलती है। 4.5 गजों पर कितने कितने रुपए खर्च हो जाएंगे?
0: अब तुम कहती हो तो मैं हिला करूंगा। ये कहकर खुदा बख्श उठा, चलो अब इन बातों को भूल जाओ, मैं होटल से खाना ले आऊं। होटल से खाना आया, दोनों ने मिलकर निपटाया और सो गए। सुबह हुई, खुदा बख्श पुराने किले वाले फकीर के पास चला गया और सुल्ताना अकेली रह गई। कुछ देर लेटी रही, कुछ देर सोती रही, इधर उधर कमरों में टहलती रही। दोपहर का खाना खाने के बाद उसने अपना सफेद निनॉन का दुपट्टा और सफेद बॉस्की की कमीज निकाली और नीचे लॉन्ड्री वाले को रंगने के लिए दे आई। कपड़े धोने के अलावा वहां रंगने का काम भी किया जाता था। ये काम करने के बाद उसने वापस आकर फिल्मों की किताब पढ़ी, जिसमें उसकी देखी हुई फिल्मों की कहानी और गीत छपे हुए थे। ये किताब पढ़ते पढ़ते वो सो गई। जब उठी तो 4 बज चुके थे, क्योंकि धूप आंगन में मोरी के पास पहुंच चुकी थी। नहा धोकर फ्री हुई तो गर्म चादर ओढ़कर बालकनी में आ खड़ी हुई। तकरीबन 1 घंटा सुल्ताना बालकनी में खड़ी रही। अब शाम हो गई थी, बत्तियां रोशन हो रही थी, नीचे सड़क पर रोशन के आसार नजर आने लगे थे। सर्दी थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी, मगर सुल्ताना को ये नागवार महसूस ना हुई। वो सड़क पर आते जाते टांगों और मोटरों की तरफ एक अरसे से देख रही थी। अचानक उसे शंकर नजर आया। मकान के नीचे पहुंचकर उसने गर्दन ऊंची की और सुल्ताना की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। सुल्ताना ने गैर इरादी तौर पर हाथ का इशारा किया और उसे ऊपर बुलवा लिया। शंकर ऊपर आया तो सुल्ताना बहुत परेशान हुई कि उससे क्या कहे। दरअसल उसने ऐसे ही बिना सोचे समझे इशारा कर दिया था। शंकर भी ऊपर चला आया, जैसे उसका अपना ही घर हो। पहले दिन की तरह वो गांव तकिया सिर के नीचे रखकर लेट गया। जब सुल्ताना ने देर तक उससे कोई बात ना की तो उसने कहा,
1: तुम मुझे 100 दफा बुला सकती हो,
0: और 100 दफा ही कह सकती हो कि चले जाओ। मैं ऐसी बातों पर कभी नाराज नहीं हुआ करता।
1: नहीं, बैठो, तुम्हें जाने को कौन कहता है?
0: शंकर इस पर मुस्कुरा दिया, तो मेरी शर्तें मंजूर हैं?
1: कैसी शर्तें?
0: सुल्ताना ने हंसकर कहा, क्या निकाह कर रहे हो मुझसे?
1: निकाह और शादी कैसी?
0: ना तुम उम्र भर किसी से निकाह करोगी ना मैं।
1: ये रस्में हम लोगों के लिए नहीं।
0: छोड़ दो इन फिजूल की बातों को, कोई काम की बात करो।
1: बोलो, क्या बात करूं?
0: तुम औरत हो, कोई ऐसी बात शुरू करो जिससे दो घड़ी दिल बहल जाए। इस दुनिया में सिर्फ दुकानदारी नहीं, कुछ और भी है।
1: साफ साफ कहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो?
0: जो दूसरे चाहते हैं। शंकर उठकर बैठ गया।
1: तुम में और दूसरों में फिर क्या फर्क रहा?
0: तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं, उनमें और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो पूछनी नहीं चाहिए। सुल्ताना ने थोड़ी देर तक शंकर की इस बात को समझने की कोशिश की, फिर कहा, मैं समझ गई हूँ, तो कहो क्या इरादा है?
1: तुम जीते मैं हारी, पर मैं कहती हूँ आज तक किसी ने ऐसी बात कबूल ना की होगी।
0: तुम गलत कहती हो, इस मोहल्ले में तुम्हें ऐसी सादा लो औरतें भी मिल जाएंगी जो कभी यकीन नहीं करेगी कि औरत ऐसी जिल्लत कबूल कर सकती है जो तुम बगैर किसी एहसान के कबूल करती रही हो। लेकिन इनके ना यकीन करने के बावजूद तुम हजारों की तादाद में हो। तुम्हारा नाम सुल्ताना है ना? हाँ, सुल्ताना ही है। शंकर उठ खड़ा हुआ और हंसने लगा। मेरा नाम शंकर है। ये नाम भी उटपटांग होते हैं। चलो आओ अंदर चले। शंकर और सुल्ताना दरी वाले कमरे में वापस आए तो दोनों हंस रहे थे, न जाने किस बात पर। जब शंकर जाने लगा तो सुल्ताना ने कहा, शंकर मेरी एक बात मानोगे? शंकर ने जवाब में कहा, पहले बात बताओ। सुल्ताना कुछ झेप सी गई। तुम कहोगे कि मैं दाम वसूल करना चाहती हूँ, मगर कहो कहो, रुक क्यों गई हो? सुल्ताना ने हिम्मत से काम लेकर कहा, बात यह है कि मुहर्रम आ रहा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि काली सलवार बनवा सकूं। यहाँ के सारे बखेड़े तो मुझसे सुन ही चुके हो। कमीज और दुपट्टा मेरे पास मौजूद है जो मैंने आज रंगवाने के लिए दे दिया है। शंकर ने यह सुनकर कहा, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूं जिससे तुम काली सलवार बनवा सको?
1: नहीं, मेरा मतलब यह है कि अगर हो सके तो तुम मुझे काली सलवार बनवा दो। मेरी जेब में तो इत्तेफाक से ही कुछ होता है। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा। मुहर्रम की पहली तारीख को तुम्हें ये सलवार मिल जाएगी। लो बस, अब खुश हो गई?
0: सुल्ताना के बूंदों की तरफ देखकर शंकर ने पूछा, क्या ये बूंदे तुम मुझे दे सकते हो? सुल्ताना ने हंसकर कहा,
1: तुम इनका क्या करोगे, चांदी के मामूली बूंदे हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए के होंगे।
0: इस पर शंकर ने कहा, मैंने तुमसे बूंदे मांगे हैं, इनकी कीमत नहीं पूछी। बोलो देती हो?
1: ले लो।
0: ये कहकर सुल्ताना ने बूंदे उतारकर शंकर को दे दिए। सुल्ताना को कतई यकीन नहीं था कि शंकर अपना वादा पूरा करेगा, मगर 8 रोज के बाद मुहर्रम की पहली तारीख को सुबह 9 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो शंकर खड़ा था। अखबार में लिपटी हुई चीज उसने सुल्ताना को दी और कहा, साजन की काली सलवार है, देख लेना, शायद लंबी हो। अच्छा अब मैं चलता हूँ। शंकर सलवार देकर चला गया और कोई बात उसने सुल्ताना से ना की। उसकी पतलून में शिकने पड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे। ऐसा महसूस होता था कि अभी अभी सोकर उठा है और सीधा इधर ही चलाया है। सुल्ताना ने कागज खोला। साजन की काली सलवार थी, ऐसी ही जैसी वो अनवरी के पास देख कर आई थी। सुल्ताना बहुत खुश हुई। बूंदों और इस सौदे का जो अफसोस उसे हुआ था, इस सलवार ने और शंकर के वादे निभाने ने उसे दूर कर दिया था। दोपहर को वो नीचे लॉन्ड्री वाले से अपनी रंगी हुई कमीज और दुपट्टा लेकर आई। तीनों काले कपड़े जब उसने पहन लिए तो दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो अनवरी दाखिल हुई। उसने सुल्ताना के तीनों कपड़ों की तरफ देखा और कहा, कमीज और दुपट्टा तो रंगा हुआ महसूस होता है, पर हाँ ये सलवार नहीं है। कब बनवाई? सुल्ताना ने जवाब दिया, आज ही दर्जी से लाई हूँ। ये कहते हुए उसकी नजरें अनवरी के कानों पर पड़ी। ये बूंदे तुमने कहाँ से लिए हैं? अनवरी ने जवाब दिया, आज ही मंगवाए हैं। इसके बाद उनमें कोई बात नहीं हुई।

0: नमस्कार।
1: कहिए क्या सुनेंगे आप?
2: रेडियो मानव रचना, रेडियो मानव रचना।
3: रेडियो मानव रचना 107.8 FM में हूँ दीक्षा आपके साथ, और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा कार्यक्रम जो जुड़ा हुआ है हम सभी की जिंदगियों से। ईश्वर ने हमें जीवन दिया, लेकिन इस जीवन में कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं जब हमारे शरीर के कुछ अंग सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं, और तब हमें जरूरत पड़ती है उस ऐसे एक डोनर की जो हमारी मदद करता है स्वयं ईश्वरी रूप बन के। ऐसे ही खास कार्यक्रम को आपके बीच लेकर आता है ऑर्गन इंडिया और रेडियो मानव रचना 107.8, और इस कार्यक्रम का नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। आइए जानते हैं कुछ बहुमूल्य बातें अंग दान से जुड़ी हुई।

0: करो।
1: जीवन एक अनमोल उपहार है, अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें, अंगदान जीवन दान।
2: आप सभी सुनने वालों को ऑर्गन इंडिया की तरफ से नमस्कार। मेरा नाम पायल है और हम सब यही आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। आज हम आपका स्वागत करते हैं ऑर्गन इंडिया के इस बेहद खास कार्यक्रम में, जीवन एक अनमोल उपहार, जिसमें हम अंग दान के बारे में बात करेंगे। ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क यानी ऑर्गन इंडिया की पहल साल 2013 में पराशर फाउंडेशन ने की थी, जो कि दिल्ली की एक गैर सरकारी सामाजिक संस्था है। अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम अंगदान, देहदान और उत्तक दान के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम ऑर्गन फेलियर या अंगों के खराब होने की गंभीर समस्या से पीड़ित मरीजों को, जिनके पास ऑर्गन ट्रांसप्लांट या अंग प्रत्यारोपण के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, उन्हें ये सारी जानकारी देते हैं और वो अपने उत्तम इलाज के लिए क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, ये भी सारा कुछ हम बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गीतिका वशिष्ठ, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर ऑर्गन इंडिया। तो कहीं मत जाइएगा और सुनते रहिएगा ये कार्यक्रम, जीवन एक अनमोल उपहार।
3: नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर गीतिका वशिष्ठ। मैं ऑर्गन इंडिया के साथ सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह काम कर रही हूँ और मैं आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ।
4: कहा जाता है कि आंखें मन का दर्पण होती है और संसार की सुंदरता को देखने में हमें सक्षम बनाती है। आज हम इन्हीं खूबसूरत और अनमोल नेत्रों के बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ है एक खास मेहमान डॉक्टर अनीता सेठी, जो कि डायरेक्टर है फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव के नेत्र रोग विभाग में। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: नमस्कार गीतिका जी, मुझे बहुत प्रसन्नता है आपके इस कार्यक्रम का हिस्सा बन के।
4: डॉक्टर अनीता, आंकड़ों के अनुसार विश्व में कम से कम 28 से 30 करोड़ लोग जो हैं वो आंखों की किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और उनमें से 90% लोग प्रगतिशील देशों में ही पाए जाते हैं। आपके 20 साल से अधिक अनुभव के अनुसार ऐसी कौन सी बीमारियां होती हैं?
5: तो आपने तो विश्व के आंकड़े दिए हैं, हमारे देश में भी बहुत सारे लोग हैं जो आंखों के कई बीमारियों से पीड़ित हैं और उसके वजह से उनके काम करने में, आमदनी में बहुत मुश्किलें और दिक्कतें पड़ती हैं।
4: क्या हमारे देश की जो ये स्थिति पहले से बेहतर हुई है या हम विपरीत दिशा की ओर बढ़ रहे हैं?
5: नहीं, विपरीत दिशा की ओर तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं। राज्य सरकारें और केंद्रीय सरकार बहुत कुछ कर रहे हैं, डॉक्टर, हमारे ऑप्टोमेट्रिस्ट, बहुत सारे लोग मिलके इसको ठीक करने के लिए लगे हुए हैं। हमने बहुत काम किया है मगर हम अभी कहीं भी पास नहीं है उस लक्ष्य के।
4: ऐसी कौन सी नेत्रों की बीमारियां हैं जो आमतौर पर देखा जाती हैं?
5: नेत्रों की बीमारियां तो बहुत सारे हैं। आंखों के नंबर, जिसको हम रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं, बहुत सारे लोगों को चश्मे की जरूरत है और कईयों को पता भी नहीं चलता है, खासकर बच्चों को, कि उनको चश्मे की जरूरत है और वो बहुत कम दृष्टि और कम नजर से अपना काम चलाने की कोशिश करते हैं। फिर इन्फेक्शंस हैं या आंखों में एलर्जीज हैं, काला मोतियाबिंद है, शुगर की वजह से बीमारियां हैं, सामने का जो पर्दा है कॉर्निया, उसमें इन्फेक्शन की वजह से उसमें सफेदी आती है, उससे भी नजर में दिक्कत होती है। चोट की वजह से पीछे का पर्दा जो रेटिना है वो अपनी जगह से हिल जाता है या उसमें खून आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो आंखों को प्रॉब्लम कर सकते हैं।
4: बच्चों में ऐसी कोई खास नेत्रों की बीमारी रहती है जिसपे उनको ध्यान रखना चाहिए?
5: हाँ, बच्चों का के आंखों का ध्यान तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बचपन में हम पकड़ सकते हैं, हम उसका इलाज जो करते हैं तो वो जिंदगी भर के लिए बच्चे की आंखें मजबूत और अच्छे रहते हैं। खासकर कि जो चश्मे का नंबर है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं वो बता नहीं पाते हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि इससे अच्छा दिखाई दे सकता है, तो इसमें जो माता पिता, अध्यापक, उनके बड़े भाई बहन, जो भी उनके आसपास है, दादा दादी, नाना नानी, सबको देखना चाहिए कि क्या ये बच्चा बहुत पास जाके चीजों को, टीवी को या अपने किताबों को बहुत पास से देखता है, या क्या वो ठोकर खाता है चलते चलते, या बहुत अजीब से सिर को टेढ़ा करके देखता है, या कोई तिरछापन है इनकी आंखों में। ये सब साइंस है है कि इनके आंखों में कोई प्रॉब्लम है और इन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए।
4: ये तो हमने बात की बच्चों की। देखा गया है कि कभी जैसे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं या कोई गिर गया, आंखों में चोट लग गई, उसके कारण भी आंखों पर प्रभाव पड़ जाता है।
5: तो आजकल हम देख रहे हैं कि इंजरी या चोट की वजह से जो आंखों के परेशानियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। शहरों में अब गाड़ियां ज्यादा हो गई हैं, लोग तेजी से चलाते हैं, सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, हेलमेट नहीं पहनते हैं। ये इतने असाधारण तरीके हैं बचाव के, मगर लोग बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं इस पे। जैसे गांव में जो खेती करते हैं उससे चोट लग सकता है, तिनके चले जाते हैं आंख में, लोग उनको मलते हैं, देसी दवाइयां डालते हैं, इन सब से आंखों के बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो जब भी कोई चोट लगे तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कोई देसी इलाज नहीं करना चाहिए। आंखों को बिल्कुल मलना नहीं चाहिए, जैसे लगता है कि आंख के अंदर कोई चीज गिर गया है, कोई कीड़ा चला गया है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि वो उसका इलाज सही वक्त पे करे।
4: भारत जो है वो विश्व का डायबिटीज कैपिटल कहलाता है, तो क्या उसका कोई नेत्र रोग से लेना देना है या उसका कोई प्रभाव पड़ता है?
5: शुगर का की बीमारी का तो बहुत बड़ा असर पड़ता है आंखों पर, और हमारे पास मतलब शुगर की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस या जो प्रभाव पड़ता है उससे दृष्टि बिल्कुल खत्म भी हो सकती है। बहुत ही जरूरी है कि शुगर वाले मरीजों को पता होना चाहिए कि शुगर का प्रभाव आंखों में पड़ता है, दिल पे भी पड़ता है, किडनी पे भी पड़ता है, मगर आंखों में हम लोग जब देखते हैं हमें अच्छे से पता चलता है कि ये प्रभाव कितना गंभीर है और इसका कितनी जल्दी हमें इलाज करना चाहिए। आंखों पे एक तो सफेद मोतिया जल्दी आता है शुगर वाले पेशेंट में, काला मोतिया के भी संभव बहुत बढ़ जाता है, और रेटिना या पर्दे पे चेंजेस जिसको हम रेटिनोपैथी कहते हैं वो बहुत ही गंभीर है। उसमें आंखों में खून आ जाता है, आंखों का पर्दा सिकुड़ जाता है, और अगर सही समय पे इलाज ना करे तो बिल्कुल अंधापन या ब्लाइंडनेस हो सकता है।
4: डॉक्टर साहब, आपने हमें नेत्र रोग के बारे में बताया, पर इन रोग के लक्षण क्या होते हैं?
5: सबसे महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि कम दिखना। अगर हमें कम दिखाई दे तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आंख में लाली होना, आंख से पानी आना, आंख में दर्द होना, खुजली होना, लाइट के आसपास थोड़े रंगीन गोले दिखना या कभी कभी काली मक्खी से उड़ना, आंख के अंदर बिजली से चमकना, ये सब कुछ कुछ बीमारियों के लक्षण हैं। कुछ ऐसे लक्षण हैं जिसमें आपने तुरंत जाना है, तो वो है अगर आंख में बहुत तेज लाली, पानी आए, बहुत तेज दर्द हो या बिल्कुल अचानक दिखना बंद हो जाए, तो ये बहुत जरूरी है। ऐसे अगर लक्षण हो तो आप तुरंत आंख के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ही जाएंगे।
4: हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अनीता सेठी से, जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। इलाज की जब बात आती है, नेत्र रोगों का इलाज कैसे किया जा सकता है?
5: तो नेत्र रोगों का इलाज सिंपल, जो सबसे सिंपल इलाज है वो चश्मे का इलाज है। मतलब चश्मे दिया जाता है जिससे पेशेंट को अच्छी तरह से दिखाई दे। खासकर बच्चों में जरूरी है कि चश्मे का नंबर जो है साल में एक बार जरूर चेक हो, क्योंकि नंबर जो है वो बच्चों के उम्र के साथ बढ़ सकता है 18 वर्ष के उम्र तक। दूसरा, जो बाकी बीमारियां हैं कुछ का तो दवाइयों से इलाज होता है, जैसे आई ड्रॉप्स, आई जेल्स, कभी कभी टैबलेट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे इन्फेक्शंस हैं उनका इलाज आई ड्रॉप से होता है, मगर जरूरी है कि जो आई ड्रॉप्स बताए जाते हैं आप उसी तरीके से उनको यूज करें, ओवर यूज नहीं करना चाहिए, और केमिस्ट के पास जाके बिना डॉक्टर से मिलके आपको आई ड्रॉप्स नहीं यूज करने चाहिए, क्योंकि हर दवाई का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकता है।
4: और ये आमतौर पे बहुत देखा जाता है,
5: कुछ अगर लुब्रिकेटिंग हो या जैसे रिफ्रेश टीयर्स टाइप के जो टीयर सप्लीमेंट्स होते हैं वो सेफ होते हैं, बट स्टेरॉइड अगर कोई आपको स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स दे दे तो उनके बहुत सारे बुरे प्रभाव हो सकता है। बिना डॉक्टर को दिखाए आप लॉन्ग टर्म दवाइयां तो बिल्कुल ही मत लें। जो दवाइयों से नहीं ठीक होते हैं उनके लिए हमें सर्जरी या ऑपरेशन करना पड़ता है, जैसे सफेद मोतियाबिंद है, काला मोतियाबिंद है, अगर आपका पर्दा अचानक रेटिनल डिटैचमेंट पर्दा उखड़ जाए, या शुगर की कुछ बीमारियां हैं तो वो उनके लिए हमें सर्जरी करनी पड़ती है। कुछ बीमारियां हम लेजर से भी ठीक करते हैं, जैसे डायबिटीज डायबिटीज के रेटिनोपैथी या पर्दे पे जब खून जम जाता है, अलग अलग बीमारी पे डिपेंड करता है कि हम अलग अलग बीमारियों का किस तरह से इलाज होता है।
4: पर अधिकतर नेत्र रोगों का इलाज संभव है।
5: अधिकतर नेत्र रोगों का इलाज संभव है, मगर जो पैदाइशी रोग होते हैं, कई पैदाइशी रोग, उनका कोई इलाज नहीं है। जैसे कि एक रोग है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, जिसमें पेशेंट को दिन में तो दिखाई देता है, रात को बिल्कुल नहीं दिखाई देता है।
4: डॉक्टर अनीता, हम ये जानना चाहेंगे कि वातावरण का हमारे नेत्रों से पर कोई प्रभाव पड़ता है?
5: हाँ, वातावरण का नेत्र रोग पे प्रभाव पड़ता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो हमारे नेत्रों पे काफ़ी बुरा प्रभाव कर सकता है। एक हमने देखा है कि मोतियाबिंद या सफ़ेद मोतियाबिंद कैटरैक्ट का जो इंसिडेंस है वो उन जगहों में ज़्यादा है जहाँ पे हमें लगता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि पहाड़ों पर, समुंदर पर, या जहाँ बर्फ़ है वहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है। इन सब जगहों पे हमें हमेशा सनग्लासेस जिसमें अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन है वो ज़रूर पहनना चाहिए। ऑल्सो जो प्रदूषण है, प्रदूषण का भी बहुत बुरा असर पड़ता है हमारी आँखों पर। कई लोगों को, और ये हम शहर में ज़्यादा देखते हैं, खास करके हमारे शहर में दिल्ली गुड़गांव में, कि आँखों में जलन, आँखों से पानी आना,

0: खारिश, खुजली, रड़क, तो ये सब प्रदूषण के ही लक्षण हैं और इनसे बचना ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि आप हवा से आप कहाँ कहाँ तक बचोगे। मगर जितना भी आप कर सकते हैं, सनग्लासेस पहनेंगे आप, धूल मिट्टी से थोड़ा अपने आप को बचा के रखेंगे, एयर कंडीशन, ज़्यादा एयर कंडीशन वातावरण में ना रहें।
1: अब सबसे बड़ा प्रश्न, हम नेत्र रोग से बच कैसे सकते हैं?
0: ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम बीमारियों को रोके, जो हम कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं, जो हम बढ़ा के बीमारी जो हम देखते हैं, हम नहीं देखना चाहते हैं। जो प्रिवेंशन है या बचने का है, जैसे चश्मे जो है, चश्मे का नंबर, उसको हम कैसे रोकें? कुछ तो इनबॉर्न, मतलब आपको पैदाइशी ही है कि आपको नंबर होगा, मगर जो बढ़ावा देता है ये जो हम स्क्रीन, बहुत ज़्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल, जैसे स्मार्टफोन्स है, टेलीविजन है, ये जो हम बहुत ज़्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, या उससे जो है आँखों का क्या वीक नंबर जो है वो बढ़ सकता है, आँखों में वीकनेस आ सकता है, आँखों में थकावट भी रहता है। तो हमें ये जो स्क्रीन का जो प्रयोग है हमें कम करना है। और कई लोग पूरे दिन कंप्यूटर पे काम करते हैं, वो उनका ऑफिस है, ऑफिस को छोड़ के इमीडिएटली वो अपने फोन्स पे आ जाते हैं, तो ये आपने कम करना है। और जैसे आप कंप्यूटर पे काम कर रहे, बीच बीच में जान के आपने पलक को झपकाना है, आपने किसी खिड़की के बाहर किसी दूर वाली चीज को, पेड़ को देखा, घड़ी को देखा, ताकि आँख के जो मसल्स हैं वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। और बिना डॉक्टर के बताए कोई भी चीज़, जैसे कुछ लोग कभी मधु आँख के अंदर डालना चाहते हैं या बहुत ज़्यादा छींटे मारते हैं, तो अगर आपकी आँख में कोई इरिटेशन हो या कोई रड़क हो, तो ज़्यादा पानी डालने से वो ठीक नहीं होने वाला, आपको इसका इलाज करवाना है, डॉक्टर से दवाई लेके आप दवाई डालिए और वो उससे ठीक हो जाएगा। और जैसे शुगर की बीमारी है, आप उसको कंट्रोल करिए ताकि शुगर के जो कॉम्प्लिकेशंस है जो हम नेत्रों पे देखते हैं वो नहीं होंगे। शरीर जो है वो एक ही है, एक बीमारी का असर कहीं पे भी आ सकता है, ये नहीं है कि ब्लड प्रेशर है तो वो खाली ब्लड प्रेशर है, वो आंखों पे भी बुरा असर कर सकता है। तो जो भी आपकी बीमारियां है, थायराइड है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उन सबको कंट्रोल करिए ताकि आपकी आईज भी हेल्दी रहेंगे। और लोग मेरे से पूछते हैं आंखों का कोई अलग से एक्सरसाइज होता है? आंखों का कोई ऐसा खास अलग से एक्सरसाइज नहीं है, पूरे बॉडी को अगर स्वस्थ रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, भागेंगे, बच्चों को खासकर मैं हमेशा कहती हूँ कि आप बाहर का गेम खेलिए, फुटबॉल क्रिकेट खेलिए, ये गेम जो कंप्यूटर पे होता है वो मत खेलिए, क्योंकि पूरा बॉडी अगर स्वस्थ रहेगा तो आंख भी स्वस्थ रहेंगे। उस खास करके बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि वो विटामिन ए युक्त भोजन करें, मतलब गाजर, हरी पत्ती वाली सब्जियां, फ्रूट, ये आंखों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और जंक फूड, खुद माता पिता को भी जंक अवॉइड करना है ताकि बच्चे अवॉइड करें, तो वो बहुत ही बढ़िया है। पूरे फैमिली को हेल्दी ही खाना चाहिए।
1: और आपने ये बहुत ही बेहतर सुझाव दिया और बताया है हमारे श्रोताओं को। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनीता।
0: धन्यवाद गीतिका जी।
2: मैं आप सभी श्रोताओं को बता दूं कि अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org विजिट कर सकते हैं या हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स 1800-120-3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंगदान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर एक फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और सर्टिफिकेट भेजा जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार के लोगों को जरूर बताइएगा और अपने आसपास सभी को प्रेरणा भी दीजिएगा। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।
3: तो आज के इस कार्यक्रम में हमने बहुत सी बातें जानी अंगदान से जुड़ी हुई। ऑर्गन इंडिया के सौजन्य से कार्यक्रम हम आपके बीच लाए। रेडियो मानव रचना 107.8 की इस कोशिश में अगर आप भी हमारा साथ देना चाहते हैं और अपनी राय और अपनी कुछ खास विचार हमारे समक्ष रखना चाहते हैं तो हमें मैसेज या कॉल करें 8010781078 या फिर हमारे इंटरनेट रेडियो रेडियो मानव रचना के माध्यम से आप ऐप डाउनलोड करके भी इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं और जिस भी व्यक्ति के साथ आप शेयर करना चाहें, दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी शेयर कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जीवन एक अनमोल उपहार, इसकी अहमियत को समझिए और अपना ख्याल रखिए। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

0: हाय दोस्तों, मैं हूं रूप कुमार राठौड़ और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना पर 107.8 FM। फील गुड फील लाइफ।
1: हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मानव रचना 107.8 पर श्रोताओं हाजिर हूँ मैं सरता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम गीत जो बन गए मोती, जिनकी चमक कभी कम नहीं होती। वो सदाबहार नगमे, रेट्रो गाने जो वाकई में ही मोती बन चुके हैं, लेकर आते हैं सिर्फ और सिर्फ रेडियो मानव रचना पर आप सभी के लिए हर शनिवार शाम 8 बजे। और दोस्तों, आप जानते हैं इस कार्यक्रम में मैं अकेली नहीं होती, मेरे साथ होते हैं हमारे कम्युनिटी मेंबर्स। तो चलिए पहले उनका स्वागत करती हूँ। मेरे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं शैलेंद्र नांगिया जी। सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी। सभी सुनने वालों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार
1: जी। और मेरे साथ हैं प्रदीप गर्ग पराग जी भी। सर, आपका भी स्वागत है।
3: थैंक यू वेरी मच सरिता जी। सभी सुनने वाले दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार
1: जी। श्रोताओं, आप सभी जानते हैं कि हर हफ्ते एक नया थीम, एक नया टॉपिक लेकर आते हैं इस कार्यक्रम में और उसी टॉपिक के साथ आपको बहुत सारे रेट्रो गाने सुनाते हैं। लेकिन अगर आप हमारा कार्यक्रम लगातार सुनते हैं शनिवार को 8 बजे, तो आपको ज्ञात होगा कि पिछली बार हमने बात की थी टॉपिक चलो चलें चलना पर, और 2 पार्ट हम कर चुके हैं, लेकिन गाने इतने सारे हैं कि अभी इनका सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है। तो आज लेकर आए हैं इसी टॉपिक को, यानी कि पार्ट 3 हम करेंगे आज चल चलो चलें चलना के साथ। और दोस्तों, आप भी अपनी पसंद हमारे इस कार्यक्रम में शामिल करा सकते हैं। अगर आप कोई रेट्रो गाना सुनना चाहते हैं जिसके मुखड़े में चल चलो चलें चलना ऐसा कोई शब्द आया है, तो आप हमें 8010781078 पर कॉल, व्हाट्सएप या मैसेज करके अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे इस कार्यक्रम के साथ और सुनिए बहुत ही प्यारे गाने। तो चलिए, आज का पहला गाना हम कौन सा ले रहे हैं बता रहे हैं हमें नांगिया जी।
2: जी सरिता जी, मैं तो गाना बता रहा हूँ, लेकिन क्या आप तैयार हैं इस ड्यूएट के लिए?
1: जी,
2: तो ये ड्यूएट है फिल्म लव मैरिज 1959। पर्दे पर हैं देव साहब के साथ माला सिन्हा, हेलेन, अभि भट्टाचार्य, नीता, सुशील, राजेश व अन्य कलाकार। रफ़ी और लता दी की आवाज़ में ये गीत है। हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन का मधुर संगीत है
1: जी।

0: चांद गगन में,
1: तू झुमके चले तो दिल पे चले कटारी।
0: हो है मीठी छुरी ये जालिम नजर तुम्हारी,
1: तू झुमके चले तो दिल पे चले कटारी।
0: हो है मीठी छुरी ये जालिम नजर।

0: बहुत ही खूबसूरती से पेश किया आप दोनों ने इस खूबसूरत गीत को।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: थैंक यू जी।
2: जी श्रोताओं, बहुत ही प्यारा ये नगमा 1959 की फिल्म लव मैरिज से। आप इसे एंजॉय करें आज के टॉपिक चल चलो चले चलना के साथ। और दोस्तों, इस तरह आप भी अपनी पसंद जरूर हमें भेजें 8010781078 पर। फिलहाल ये गाना आप सभी के लिए फील गुड
0: फील लाइव।

0: बहुत ही प्यारे नगमे के बाद दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गीत जो बन गए मोती जिनकी चमक कभी कम नहीं होती। और दोस्तों लेकर आए हैं कार्यक्रम आज टॉपिक चल चलो चलें चलना के साथ। और बहुत सारे गाने आपको सुना चुके हैं, पहले हम दो प्रोग्राम कर चुके हैं और आज भी तीसरा प्रोग्राम इसी टॉपिक के साथ। तो चलिए बिना देर की आगे बढ़ते हैं और अगला गाना ले लेते हैं प्रदीप जी से।
1: जी ये फिल्म है जबक 1961 की फिल्म है, महिपाल इसके नायक हैं। उनकी नवरंग और पारसमणि फिल्म भी काफ़ी हिट हुई थी, काफ़ी अच्छे गीत थे दोनों में। और महिपाल और श्यामा की जोड़ी है इस फिल्म में। लता रफ़ी का गाया हुआ ड्यूएट सॉन्ग है, प्रेम धवन के बोल हैं, चित्रगुप्त का मधुर संगीत है
0: जी।
1: और सरिता जी भी इसमें मेरा साथ देंगी क्योंकि ड्यूएट सॉन्ग है
0: जी।

0: जी प्रदीप जी, सरिता जी, बहुत ही अच्छे से आपने गीत को पेश किया।
1: थैंक यू जी, थैंक यू
2: जी। दोस्तों बहुत ही प्यारा ये गाना, थोड़ा सा सॉफ्ट नंबर है, सैड नहीं कहूंगी लेकिन प्यारा है बहुत ही। तो आप इस गाने को एंजॉय कीजिए, जबक फिल्म से, 1961 की फिल्म, और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8। आज का टॉपिक है चल चलो चलें चलना, और अपनी फरमाइश भी जरूर भेजें हमें 8010781078 पर। फिलहाल ये गाना आप सभी के लिए, फील गुड।

0: स्वागत है श्रोताओं, आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गीत जो बन गए मोती, जिनकी चमक कभी कम नहीं होती। और दोस्तों, बहुत ही प्यारे सदाबहार नगमे लेकर आए हैं आपके लिए आज टॉपिक चल चलो चले चलना के साथ पार्ट 3। और मेरे पास अब रिक्वेस्ट आ गई है, मैसेज किया है मुझे मुकेश जी ने, और मुकेश जी गाना सुनना चाहते हैं चल रही सजनी, फिल्म का नाम बम्बई का बाबू। तो चलिए बाकी जानकारी के लिए चलते हैं नांगिया जी के पास।
1: जी जरूर, फिल्म है बम्बई का बाबू 1960। पर्दे पर हैं देवानंद के साथ सुचित्रा सेन, नासिर हुसैन, अचला सचदेव, जगदीश राज, जीवन धूमल व अन्य कलाकार। SD बर्मन साहब ने गीत की धुन तैयार की है, मजरू सुल्तानपुरी ने बोल लिखे हैं और मुकेश की बहुत ही मधुर आवाज में ये गीत है।
0: जी।

0: अब क्या सोचे।
1: बहुत ही खूबसूरत आवाज में आपने विदाई के इस गीत को पेश किया,
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर
2: जी। श्रोताओं, बहुत ही प्यारा है गाना हमारे लिसनर मुकेश जी की रिक्वेस्ट पर, तो आप इसे एंजॉय कीजिए। रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गीत जो बन गए मोती, और आज का टॉपिक है चल चलो चले चलना, फील गुड।

0: स्वागत है इस बहुत ही प्यारे गाने के बाद दोस्तों आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गीत जो बन गए मोती। शैलेंद्र नांगिया जी, प्रदीप जी मेरे साथ स्टूडियो में हैं और बहुत ही प्यारे गानों का सफर चल रहा है आज के टॉपिक चल चलो चले चलना के साथ। तो चलिए चलते हैं आगे और अगली रिक्वेस्ट भी ले लेते हैं। मुझे मैसेज किया है अभिषेक जी ने और अभिषेक जी गाना सुनना चाहते हैं मेरे सनम फिल्म से पुकारता चला हूँ मैं। बहुत ही प्यारा गाना है दोस्तों, सुपरहिट गाना। तो चलिए बाकी जानकारी ले लेते हैं प्रदीप जी से।
1: जी, ये गीत है फिल्म मेरे सनम से, 1965 की ये फिल्म। रफ़ी साहब का गाया हुआ ये गीत है। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, ओपी नैयर का मधुर संगीत है
0: जी।
1: और पर्दे पर जोड़ी है विश्वजीत और आशा पारिक की। इनकी एक और फिल्म आई थी बिन बादल बरसात 1963 में, उसके भी गीत बड़े हिट हुए थे। तो ये जो गीत है रफ़ी साहब का गाया हुआ, विश्वजीत पर पिक्चराइज, बहुत ही हिट सॉन्ग है अपने समय का। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक

0: रहा हूँ मैं।
1: जी
2: बहुत खूब गर्ग साहब, बहुत अच्छे से आपने गीत को पेश किया।
0: थैंक यू जी, थैंक यू
1: जी। श्रोताओं, बहुत ही प्यारा गाना, बहुत ही फेमस गाना। अभिषेक जी ने इस गाने की रिक्वेस्ट की, पुकारता चला हूँ मैं। आप इसे एंजॉय कीजिए रेडियो मानवरचना 107.8 पर। और दोस्तों, इसी तरह आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का, आज के टॉपिक चल चलो चलें चलना के साथ, तो आप हमें कॉल व्हाट्सएप मैसेज जरूर कीजिए। 8010781078 ये हमारा नंबर है। फिलहाल ये गाना आप सभी एंजॉय कीजिए और लौट कर आइए कार्यक्रम की जो बन गए मोती में। फील गुड।

0: जी श्रोताओं, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम गीत जो बन गए मोती में। और जैसा कि अभी सरिता जी ने बताया, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 3 ऑफ द टॉपिक चल चला चलें चली चलना। तो जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। तो दोस्तों, इस चलना टॉपिक के ऊपर हमारे को इतने सारे गीत मिल गए हैं और अभी और मिलते जा रहे हैं आपको सुनाने के लिए। कोशिश करेंगे कि इसका एक और पार्ट भी आपके लिए हम जल्द ही लेकर आएंगे। तो आगे चलते हैं। तो हमारे पास फिल्म आई है अराउंड द वर्ल्ड 1967। इस फिल्म का गीत हम पेश करने जा रहे हैं। पर्दे पर इस फिल्म में नजर आए राज कपूर के साथ राजश्री और अन्य कलाकार हैं अचला सचदेव, प्राण, राज मेहरा, ओम प्रकाश, प्रेम चोपड़ा व अन्य कलाकार। गीत को आवाजें दी हैं मुकेश के साथ शारदा ने और गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने, शंकर जयकिशन ने संगीत तैयार किया है
1: जी।
0: दोस्तों, ये गीत फिल्म में दो बारी बजता है। एक बारी ये ड्यूएट है मुकेश और शारदा की आवाज में और एक बारी ये सोलो भी है सिर्फ शारदा की आवाज में। तो ये जानकारी मैंने आपको दी और अब मैं इस गीत की दो लाइनें सरिता जी के साथ मिलकर पेश करना चाहूंगा
1: जी।

0: राज कपूर और राज श्री जी के इस बहुत ही प्यारे गाने के बाद दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और दोस्तों कार्यक्रम की जो बन गई मोती में आज का टॉपिक है चल चलो चले चलना। अभी हमने गाना एंजॉय किया अराउंड द वर्ल्ड फिल्म से और राज कपूर जी एक बार फिर से हमारी लिस्ट में और बहुत ही फेमस बहुत ही प्यारा गाना और इस गाने के साथ बहुत सारी बातें जुड़ी हैं, यादें जुड़ी हैं, मोटिवेशन जुड़ा है। तो ये गाना कौन सा है, फिल्म कौन सी है, ये सारी जानकारी हमें दे रहे हैं प्रदीप जी।
1: जी ये फिल्म है मेरा नाम जोकर, 1970 की फिल्म है, राज कपूर प्रोडक्शन की ये फिल्म है। इस फिल्म की एक खास बात यह है कि ये फिल्म बहुत लंबी थी और इसमें दो मध्यांतर इस फिल्म में हुए थे। राज कपूर जी ने बहुत मन से ये फिल्म बनाई थी। इसमें तीन नायिकाएं उनकी थी, सिम्मी और फिर रशियन आर्टिस्ट थी जो सर्कस वाला रोल था और बाद में पद्मिनी। तो ये जो गीत है सर्कस का शो करते हुए परफॉर्म करते हुए है, मुकेश जी का गाया हुआ गीत है, नीरज जी के बोल हैं और शंकर जयकिशन का मधुर संगीत है।
0: जी
2: जी।
1: ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, तू जहां आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गांव नहीं, कूचा नहीं, बस्ती नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है। और प्यारे दुनिया ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, खरे को भी, खोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। ए भाई जरा देख के चलो।

0: बहुत खूब प्रदीप जी, बहुत ही डिफिकल्ट सॉन्ग को आपने बहुत अच्छे से निभाया, बहुत अच्छे से पेश किया, थैंक यू।
1: जी दोस्तों, बहुत ही प्यारा गाना, और सभी जानते हैं इस फिल्म के बारे में मेरा नाम जोकर। पहले तो बहुत ज़्यादा ये नहीं चली थी, लेकिन बाद में लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया। तो चलिए आप इस गाने को एंजॉय कीजिए रेडियो मानवरचना 107.8 पर, और लौट कर आइए कार्यक्रम गीत जो बन गए मोती सुन रहे हैं आप। और आज का टॉपिक है चल चलो चले चलना, फील गुड
2: फील नाइस।

0: स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और अभी हमने गाना एंजॉय किया मेरा नाम जोकर फिल्म से, भाई जरा देख के चलो। और दोस्तों बहुत ही प्यारा गाना, मोटिवेशनल गाना। और अब जब हम आगे चल रहे हैं तो अब जो अगला गाना है वो भी एक मोटिवेशनल गाना है। और ख़ास बात यह है वो भी फिल्म 1970 में आई थी और ये फिल्म भी 1970 में ही आई है। इस फिल्म का नाम है सफ़र। और इस फिल्म का कौन सा गाना है जो हमें बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा देता है और इस गाने के बोल क्या हैं, लिखा किसने है, गाया किसने है, सारी जानकारी तो हमें देंगे ही नांगिया जी, लेकिन साथ में गाकर भी ज़रूर सुनाएंगे। तो नांगिया जी,
1: जी सरिता जी, ये गीत है फिल्म सफ़र 1970 से। पर्दे पर नजर आया राजेश खन्ना के साथ शर्मिला टैगोर, फिरोज़ खान, अरुणा ईरानी, अशोक कुमार, आईएस जौहर व अन्य कलाकार। गीत की धुन तैयार की है कल्याण जी आनंद जी ने, बोल लिखे हैं इंदीवर ने और इस गीत को अपनी मधुर आवाज में गाया है मन्ना डे साहब ने।
0: क्या बात है
2: जी।
1: नदिया

0: होगा।
1: क्या बात है, बहुत
0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरती से आपने नदियां, धारा, सूरज, चंदा, ग्रह, जीवन, समय, घड़ी, ये सब निरंतर चलते रहने का संदेश देती हैं। और आपने एक ऐसे फिलोसफिकल गीत को बहुत ही मधुर स्वर दिया अपना और बहुत ही खूबसूरती से पेश किया।
2: जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: जी श्रोताओं, वाकई में ही बहुत ही प्यारा गाना और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारी प्रेरणा देता हुआ। तो चलिए 1970 की फिल्म सफर के इस गाने को आप एंजॉय कीजिए। रेडियो मानव रचना 107.8 पर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गीत जो बन गए मोती, और आज का टॉपिक है चल चलो चलें चलना पार्ट 3, फील गुड
0: फील लाइव।

0: स्वागत है दोस्तों आपसे भी कई बार फिर रेडियो मनोरंजन 107.8 पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और बहुत ही सुंदर गानों का सफर आज तय कर रहे हैं हम। चल चलो चलें चलना टॉपिक के साथ, और चलते चलते अब हम पहुँच गए हैं 1972 की फिल्म शोर के गाने के पास। और एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम में मोटिवेशन भरपूर है, तो अगला गाना भी हमें बहुत सारी प्रेरणा देता है। जैसे कि पहले भी दो गाने हमने सुने हैं, भाई जरा देख के चलो और नदियाँ चले चले रे धारा, प्रेरणा देता हुआ बहुत ही मोटिवेशनल गाना। और अगला गाना भी इसी कड़ी में हमें बता रहे हैं प्रदीप जी।
1: जी, ये फिल्म शोर का गीत है, 1972 की फिल्म है। मनोज कुमार, नंदा, जया भादुड़ी, प्रेमनाथ आदि पर पिक्चराइज्ड है। बहुत ही मोटिवेशनल सॉन्ग है, जीवन चलने का नाम, और एक ऐसी ही परिस्थितियों का गीत है। मनोज कुमार को पैसे की ज़रूरत होती है और साइकिल चलाने का कंपटीशन होता है कि दिन रात लगातार साइकिल उसमें चलानी होती है, तो मनोज कुमार जी वो बीड़ा उठाते हैं और उसको पूरा करते हैं। तो बहुत ही जो है पिक्चराइजेशन भी बहुत अच्छा है, वर्ड्स भी बहुत अच्छे हैं, महेंद्र कपूर, मन्ना डे और श्यामा आदि कोरस है। ये गीत मेन महेंद्र कपूर का स्वर है, इंद्रजीत सिंह तुलसी के बोल हैं, लक्ष्मी प्यारे का मधुर संगीत है।

के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा, के दुख से झुकना ना मित्रा, के एक पल रुकना।

हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान। हिम्मत अल्लाह, हिम्मत वाहेगुरु, हिम्मत है भगवान। हिम्मत अल्लाह, हिम्मत वाहेगुरु, हिम्मत है भगवान। कि इस पे मरता जा मित्रा, कि सजदा करता जा मित्रा, कि शीश झुकाता चल मित्रा, कि जग पे छाता

0: शाम।
1: जी प्रदीप जी, बहुत अच्छा गीत आपने बहुत अच्छे से पेश किया।
2: थैंक यू जी, थैंक यू
0: जी। दोस्तों, जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम, और बहुत ही प्यारा गाना शोर फिल्म से, आप इसे एंजॉय कीजिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर, और जल्दी से लौट कर एक अंतिम गाना आपको सुनाएंगे, और इस गाने की आई है मुझे रिक्वेस्ट, तो इसी गाने से आज का प्रोग्राम समाप्त करेंगे क्योंकि वक्त भी हो चला है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन फिलहाल इस गाने को एंजॉय कीजिए और लौटिए कार्यक्रम की जो बन गए मोती में। फील गुड।

0: मिलेंगे तो हम तुम मिलेंगे तो सब लोग देखेंगे, सब लोग देखेंगे तो देखेंगे तो दोनों किसी को नजर नहीं आए, चल दरिया में डूब जाए।
1: जी नांगे जी लौट आइए, दरिया में मत डूबिए आप।
0: जी जी
1: ये बहुत ही प्यारा गाना आपने हमारे श्रोताओं को याद दिलाया, सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम जो अपने श्रोताओं को ओरिजिनल ट्रैक पर सुनाना चाहेंगे वो है एक रिक्वेस्ट सॉन्ग, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा जो आज के कार्यक्रम का हम अंतिम गाना लेंगे वो हम लेंगे अपनी एक बहुत ही प्यारी सी लिसनर पूनम जी की रिक्वेस्ट पर
0: जी।
1: और ये गाना बहुत ही प्यारा है, पाकीज़ा फिल्म से लिया गया है और गाना है चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, बहुत ही प्यारा गाना। और इस गाने से आज के इस कार्यक्रम के सफर को हम विराम देंगे और फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे सेम टॉपिक के साथ, क्योंकि जैसे कि हमने बताया कि गाने बहुत सारे हैं और बहुत प्यारे भी हैं, तो ज़रूर सुनाएंगे आपको अगले हफ्ते। लेकिन फिलहाल पाकीज़ा के इस गाने की रिक्वेस्ट आई है हमें, तो हमें नांगिया जी आप इसके बारे में बताएं और गाके भी सुनाएं।
0: जी रिक्वेस्ट आई है, गाके भी सुनाएंगे और साथ में आप भी गाएंगी।
1: जी
0: फिल्म है पाकीज़ा 1972, पर्दे पर हैं मीना कुमारी, राजकुमार, अशोक कुमार, वीना, सप्रू, कमल कपूर, नादिरा, नसीम, बानू व अन्य कलाकार।
1: जी
0: लता दी के साथ आवाज है रफी साहब की, कैफ भोपाली के बोल हैं और गुलाम मोहम्मद का संगीत है। चलो

0: बहुत ही खूबसूरत गीत, राजकुमार मीना कुमारी पर पिक्चराइज्ड ये सॉन्ग, और ये पिक्चर भी बहुत ही हिट थी। मीना कुमारी की मृत्यु के बाद तो ये सुपर हिट हो गई थी फिल्म, और जिसने भी नहीं देखी थी ये फिल्म उसने देखी। मीना कुमारी ऐसी गजब की अदाकारा थी, और आप दोनों ने पाकीजा के इस गीत को बहुत ही पाकीजगी से, बहुत ही सुंदरता से, बहुत ही खूबसूरती से पेश किया।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: जी दोस्तों, वाकई में ही मीना कुमारी जी बहुत ही शानदार अदाकारा थी, और ये उनकी अंतिम फिल्म थी पाकीजा, और बहुत ही प्यारा गाना चलो दिलदार चलो। और आज के इस गाने के साथ हम इस कार्यक्रम को विराम देंगे, और पूनम जी ने इस गाने की रिक्वेस्ट की थी, तो दोस्तों आप सब ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, और इसी के साथ हमें दे इजाज़त, और कुछ गाने जो रह गए हैं वो अगले एपिसोड में ज़रूर सुनाएंगे आपको, लेकिन फिलहाल आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नांगी जी, प्रदीप जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी आपका, रेडियो मनोरचना का, और मेरी पूरी टीम का। साथियों, जाने से पहले दो लाइनें। खुश रहने का एक तावीज़ बनवाया है, लेकिन उस फकीर ने भरोसे से परहेज बताया है। तो साथियों, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, लेकिन किसी पर अगर भरोसा करना है तो सोच समझ के, देखभाल के करें।
2: जी बिल्कुल,
0: और मैं भी चंद पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा, और इससे पूर्व मैं अपनी सहयोगी टीम का और रेडियो मानव रचना और श्रोताओं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, और एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए।
1: बहुत खूब प्रदीप जी,
0: थैंक यू।
2: जी दोस्तों, वाकई में ही बहुत ही खूबसूरत बातों के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम जो है समाप्त कर रहे हैं, और अगले हफ्ते फिर से आएंगे लेकर कार्यक्रम की जो बन गए मोती, शनिवार को ठीक 8 बजे इसी टॉपिक के साथ, चल चलो चलें चलना। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM फील गुड फील लाइफ।
1: हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा और

इंसान की है जिन्होंने लोगों को सिर्फ एंटरटेन ही नहीं किया है बल्कि आम जिंदगी के छोटे छोटे मोमेंट्स में भी हुनर ढूंढने की कोशिश की है और हुनर ढूंढना सिखाया है। जी हाँ, जिनका नाम है राजू श्रीवास्तवा। राजू श्रीवास्तवा का असली जो नाम है वो है सत्य प्रकाश श्रीवास्तवा और उनका जन्म 25 दिसंबर 1963 को कानपुर में उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके फादर रमेश चंद्र श्रीवास्तव एक पोइट भी थे और बलाई काका के नाम से जाने जाते थे। राजू श्रीवास्तव को बचपन से ही मिमिक्री और स्टेज परफॉर्मेंस का काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। वो सोशल गैदरिंग और स्कूल फंक्शंस में परफॉर्म करा करते थे और दोस्तों यहीं से उनकी कहानी का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि वो सामने आता है और वो ये है कि आज जब हम किसी भी बच्चे को मिमिक्री करते हुए देखते हैं या जोक सुनाते हुए एक्टिंग करते हुए देखते हैं तो शायद हम उसे बस एक फन या फिर एक्टिविटी समझकर इग्नोर कर देते होंगे, लेकिन राजू जी ने अपने टैलेंट को सिर्फ टाइम पास नहीं समझा, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उनके अंदर लोगों को एंटरटेन करने की एबिलिटी है और उन्हें बॉलीवुड में खास इंटरेस्ट भी था। और जैसे कि अमिताभ बच्चन जी उनके फेवरेट स्टार में से एक रहे हैं और राजू जी उनके डायलॉग्स और सॉन्ग्स की मिमिक्री करते थे और धीरे धीरे इसी वजह से उन्हें स्टेज पर पहचान मिलने लगी। एक स्टेज परफॉर्मेंस में उन्हें अमिताभ बच्चन के डायलॉग्स बोलने के 50 रुपये तक पहली पेमेंट मिली थी। सो जी दोस्तों, सिर्फ 50 रुपये, वो अर्निंग जो आज बहुत ज़्यादा छोटी लग सकती है कि यार 50 रुपये क्या होते हैं, लेकिन किसी आर्टिस्ट के लिए पहली बार अपनी टैलेंट के पैसे कमाना बहुत बड़ी बात होती है। और यहीं से आज का एपिसोड का पहला सक्सेस मंत्र भी मिलता है कि टैलेंट छोटा हो या बड़ा, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने टैलेंट को पहचानते कितना है और उस पर काम कितना करते हैं। तो राजू श्रीवास्तवा की जर्नी अभी बस शुरू हुई थी, कानपुर के स्टेज से लेकर मुंबई की दुनिया तक का सफर अभी उनका इंतजार कर रहा था। तो जानेंगे इस जर्नी को, लेकिन अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे आर्टिस्ट की जिन्होंने अपनी कॉमेडी से जनरेशन को एंटरटेन किया है, और उनका नाम है राजू श्रीवास्तवा। जी हाँ, पिछले सेगमेंट में जैसे कि हमने जाना कि कैसे बचपन से ही राजू जी को मिमिक्री और स्टेज परफॉर्मेंस का कितना शौक था। लेकिन दोस्तों, टैलेंट होना एक बात होती है और उस टैलेंट को करियर बनाना बिल्कुल अलग बात होती है। राजू जी के लिए ये जर्नी इजी तो नहीं थी, लेकिन उनका ड्रीम था कि वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाए, और इस ड्रीम को परस्यू करने के लिए वो मुंबई आए। मुंबई एक ऐसा शहर जहां पर हर दिन हजारों लोग अपने सपने लेकर आते हैं, लेकिन हर किसी को तुरंत सक्सेस नहीं मिलती। जी हाँ, राजू जी ने भी इनिशियली छोटे रोल्स और स्टेज परफॉर्मेंस किए। फिल्म्स में उन्हें सपोर्टिंग और कॉमिक रोल्स मिलते रहे, मैंने प्यार किया, बाजीगर, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया जैसे प्रोजेक्ट्स में उनकी एप्रिसिएशन रही है। लेकिन उनकी असली आइडेंटिटी अभी ऑडियंस के सामने आनी बाकी थी। और यहीं पर एक इंटरेस्टिंग चीज भी हुई कि शुरुआत में राजू जी को अमिताभ जी की मिमिक्री के लिए जाना जाता था, उन्हें जूनियर बच्चन भी कहा गया था इसके बाद। लेकिन राजू जी इस चीज को समझ गए थे कि अगर उन्हें लॉन्ग टर्म करियर बनाना है इस फील्ड में, तो वो सिर्फ किसी और की कॉपी बनकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उन्हें राजू श्रीवास्तवा बनना है। उन्होंने कॉमन लोगों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। उत्तर प्रदेश के लोगों का एक्सेंट, उनका बिहेवियर, फैमिली कॉन्वर्सेशंस, शादी के फंक्शंस हो, मोहल्ला हो, बॉलीवुड को देखने की देसी स्टाइल हो, ये सब उनकी कॉमेडी का पार्ट बनने लगे धीरे धीरे। और यही ऑब्जर्वेशन आगे चलकर उनकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ भी बन गई। दोस्तों, लाइफ में ना हम भी अक्सर किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखकर सोचते हैं कि मुझे भी उनकी तरह बनना है। इंस्पिरेशन लेना गलत नहीं है, लेकिन किसी की जर्नी का डुप्लीकेट बनना जरूरी भी नहीं है। अगर आपको किसी और के फुटस्टेप फॉलो करने के बजाय इवेंचुअली अपने फुटप्रिंट्स को क्रिएट करना होता है, तभी आप अपना नाम बना सकते हैं। राजू श्रीवास्तवा जी ने भी वही किया, मिमिक्री से शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे अपनी स्टोरी टेलिंग, अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपना देसी ह्यूमर डेवलप किया, और यही से बना उनका अगला स्टेप टूवर्ड्स सक्सेस। और आज का सक्सेस मंत्रा, इंस्पिरेशन किसी से भी लो, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को खुद बनाओ। तो चलिए, वक्त हो गया है इसी के साथ एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। सुनिए बहुत ही प्यार सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील नाइस।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा की इस जर्नी में हम चल रहे हैं राजू श्रीवास्तवा जी के साथ। जी हाँ, कॉमेडी से जिनकी शुरुआत हुई, फिर उसके बाद धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और फिर अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए बहुत सारे सपने देखे और उसे पूरा भी किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी जर्नी में। और मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी ना आपने नोटिस किया होगा कि कॉमेडी एक्चुअली सिर्फ जोक सुनाने का नाम नहीं होती है। जी हाँ, कभी कभी हमारी डेली लाइफ में ही इतने फनी सिचुएशंस होते हैं कि अगर कोई उन्हें थोड़ा सा डिफरेंटली ऑब्जर्व करे तो वही एक अमेजिंग स्टोरी बन सकती है। और राजू श्रीवास्तव उसी ऑब्जर्वेशन के मास्टर थे। उनकी कॉमेडी का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था कॉमन मैन की लाइफ। जी हाँ, उन्होंने देखा कि लोग कैसे बात करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं और कैसे मूवीज देखते हैं, फैमिली में क्या कॉन्वर्जेशन होती है, मोहल्ले का एनवायरनमेंट कैसा होता है और ऑर्डिनरी सिचुएशन को फनी एंगल से कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बॉलीवुड मूवीज उनकी कॉमेडी का एक रिक्योरिंग पार्ट रही है। अमिताभ बच्चन और शोले से उनकी फैसिनेशन ने उनके अर्ली एक्ट को इन्फ्लुएंस किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सिर्फ सेलिब्रिटीज की मिमिक्री से आगे बढ़कर एवरीडे कैरेक्टर्स भी क्रिएट किए हैं। यही उनकी ओरिजिनलिटी थी और वो एक ऑर्डिनरी सिचुएशन को लेकर उसमें एक फनी पर्सपेक्टिव ढूंढ लेते थे। और दोस्तों, ये क्वालिटी सिर्फ कॉमेडियन के लिए यूजफुल नहीं होती है बल्कि लाइफ में भी ऑब्जर्वेशन एक पावरफुल स्किल हो सकती है। आप जर्नलिस्ट हैं, टीचर हैं, बिजनेस करते हैं या फिर कंटेंट क्रिएट करते हैं या फिर रेडियो में काम क्यों ना करते हो, अगर आप लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उनकी नीड्स को नोटिस करते हैं तो आप बेटर काम क्रिएट कर सकते हैं। राजू श्रीवास्तवा ने भी ऑडियंस को ऑब्जर्व किया। उन्हें पता था कि ऑडियंस किस टाइप की है और उनकी सिचुएशन से रिलेट कर सकती है। उनका ह्यूमर लार्जली एवरीडे एक्सपीरियंस से कनेक्टेड था, इसी वजह से उनकी कॉमेडी में ऑडियंस को अपनी लाइफ के कैरेक्टर्स और सिचुएशंस नजर आने लगे और फिर क्या, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया। इसी में एक तरफ मिमिक्री थी और दूसरी तरफ था स्टोरी टेलिंग। एक तरफ बॉलीवुड रेफरेंस थे तो दूसरी तरफ थे देसी कैरेक्टर्स, और इन सब को कंबाइन करके राजू जी ने अपना एक डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस स्टाइल डेवलप किया। दोस्तों, सक्सेस के लिए सिर्फ टैलेंट ही इनफ नहीं होता है बल्कि आपको ये समझना पड़ता है कि आपकी ऑडियंस क्या चाहती है आपसे और आप उस तक अपनी बात को किस यूनिक वे में पहुंचा सकते हैं। राजू जी ने ये समझा और फिर साल आया 2005, एक ऐसा शो जो इंडियन कॉमेडी लैंडस्केप के लिए भी इम्पोर्टेंट था और राजू श्रीवास्तवा के करियर के लिए भी। नाम था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज और इसी स्टेज पर दुनिया को मिला एक ऐसा इंसान जिसका नाम था गजोदर भैया। याद तो आ गया होगा। तो चलिए, इसी के साथ हमारा दूसरा सक्सेस मंत्र है कि ऑब्जर्व करिए, लर्न करिए और ऑर्डिनरी चीजों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉसिबिलिटी को ढूंढिए। तो चलिए, वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ आरजे स्नेहा और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। तो दोस्तों, सक्सेस मंत्रा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं जिसमें हम बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों की, उनकी पर्सनैलिटी की, जिन्होंने अपनी लाइफ से, अपनी कहानियों से हमें मोटिवेट किया है, हमें इंस्पायर किया है कि हम भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमारे पास सब कुछ होगा तभी हम कुछ कर पाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता पर वो जीरो से स्टार्ट करके अपना नाम आसमान तक पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों, आज जिनकी हम बात कर रहे हैं उनका नाम है राजू श्रीवास्तवा। जी हाँ, राजू श्रीवास्तवा की बात कर रहे हैं, कॉमेडी किंग की बात कर रहे हैं आज, और उनके कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, उनकी जर्नी की बात कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हमने जानी और लास्ट जो सेगमेंट था उसमें मैंने आपको बताया था एक नाम कि उनकी पहचान बनी गजोदर भैया के नाम से। जी हाँ, राजू जी की पहचान जिसने बदल दी वो था ये कैरेक्टर। दोस्तों, कुछ कैरेक्टर ना सिर्फ कैरेक्टर ही नहीं होते हैं, वो आर्टिस्ट की ना आइडेंटिटी, एक परमानेंट पार्ट बन जाते हैं। राजू श्रीवास्तवा के लिए एक ऐसा ही कैरेक्टर था गजोदर भैया। 2005 में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के फर्स्ट सीजन में राजू श्रीवास्तवा नेशनल ऑडियंस के सामने आए। शो ने उन्हें एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया और यहीं उनका गजोदर भैया कैरेक्टर ऑडियंस के बीच एक्सट्रीमली पॉपुलर हुआ। गजोदर भैया का स्टाइल बिल्कुल अलग था, देसी एक्सेंट, सिंपल बॉडी लैंग्वेज, हाथ को सर के पीछे रखने का सिग्नेचर पोस्चर और एवरीडे एक्सपीरियंस को अपने यूनिक अंदाज में नरेट करना, ये सब मिलकर गजोदर को मेमोरेबल बनाते थे। इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि गजोदर भैया का कैरेक्टर एक बार्बर से इंस्पायर्ड था जिसे राजू जी अपने होम टाउन में जानते थे। उस बार्बर की स्टोरी टेलिंग और एनिमेटेड वे में नरेटिंग इंसिडेंट्स ने राजू जी को इंस्पायर किया है। और दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग है। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि सक्सेसफुल आइडिया के लिए कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेंट करना पड़ेगा, लेकिन राजू जी की जर्नी हमें बताती है कि इंस्पिरेशन आपके आसपास भी हो सकती है। एक लोकल बार्बर हो सकता है, एक मोहल्ला हो सकता है, एक फैमिली कॉन्वर्जेशन हो सकती है, एक चाय की दुकान हो सकती है, एक बस की जर्नी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया दे सकता है अगर आप ऑब्जर्व करना जानते हैं। तो राजू द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में सेकंड रनर अप रहे हैं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी बहुत स्ट्रांग थी। बाद में शो के स्पिन ऑफ द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज चैंपियन में उन्हें किंग ऑफ कॉमेडी का टाइटल भी मिला था। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि हर बार फर्स्ट पोजीशन मिलना ही सक्सेस का प्रूफ नहीं होता है। जी हाँ, कभी कभी आप कंपटीशन में टॉप पोजीशन पर नहीं होते हैं लेकिन आप ऑडियंस के दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही राजू श्रीवास्तवा की स्टोरी में भी रिकग्नाइजेशन सिर्फ ट्रॉफी या फिर रैंकिंग से ही डिफाइन नहीं हुई। उनकी रियल अचीवमेंट थी एक ऐसी आइडेंटिटी को क्रिएट करना जिसे लोग नाम से नहीं कैरेक्टर से पहचानने लगे। गजोदर भैया एक कैरेक्टर था लेकिन उस कैरेक्टर ने राजू श्रीवास्तवा को एक परमानेंट पॉप कल्चर आइडेंटिटी दे दी थी। और इसके बाद हमें क्या सक्सेस मंत्र मिलता है कि कंपटीशन में पोजीशन इम्पोर्टेंट हो सकता है लेकिन आपकी यूनिक आइडेंटिटी बनना उससे भी ज्यादा वैल्यूएबल है। तो इसी के साथ अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, जहां पर आप सुनते हैं अलग अलग जर्नी को, अलग अलग कहानियों को, जिससे आप मोटिवेट होते हैं, आप इंस्पायर होते हैं उनकी जर्नी से। और कहते हैं ना कि जब हम किसी की कहानी सुनते हैं, किसी की बातें सुनते हैं, तो हमें भी अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि यार जब सामने वाला इंसान कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। लाइफ में वैसे भी सक्सेस किसको नहीं चाहिए, हर किसी को चाहिए कि वो सक्सेस हो जाए, अपना नाम बना ले, अपने घर वालों के लिए, अपने देश के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ बड़ा करके दिखाए। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और इस जर्नी में हम चल रहे हैं आज राजू श्रीवास्तव की, और राजू श्रीवास्तव जी की जर्नी के साथ आज हम चल रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि उन्होंने सक्सेस मिलने के बाद भी खुद को एक फॉर्मेट तक रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। जी हाँ, कॉमेडी उनकी कोर आइडेंटिटी थी, लेकिन उन्होंने फिल्म, टेलीविजन और स्टेज मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर भी काम किया है। आपने उन्हें मैंने प्यार किया, बाजीगर, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया जैसे फिल्म्स में देखा होगा। टेलीविजन पर भी उनकी जर्नी काफ़ी एक्टिव रही है। बिग बॉस 3 और कॉमेडी का महामुकाबला, नच बलिए और मजाक मजाक में और दूसरे शो में भी हिस्सा रहे हैं, और उनका खुद का अपना शो भी था, राजू हाजिर हो भी आया था। और यहाँ एक सिंपल सी बात भी समझिए कि सक्सेस मिलना एक अचीवमेंट है, लेकिन सक्सेस को मेंटेन करना एक कंटिन्यूस प्रोसेस भी है। आप सोचिए, अगर आपकी कोई एक वीडियो वायरल हो गई, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप हमेशा ही रेलिवेंट रहे, क्योंकि ट्रेंडिंग चीज़ का कभी ना कभी टाइम आता है नीचे जाने का। पर आप क्या कर सकते हैं, आपको कंटिन्यूसली लर्न करना होता है, नई चीज़ों को, नए प्लेटफॉर्म को समझना होता है, ऑडियंस को, चेंजिंग टेस्ट को, वो जो चाहते हैं उसे समझना होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अपने कोर आइडेंटिटी को लूज किए बिना इवॉल्व करना होता है। राजू श्रीवास्तव ने भी टेलीविजन के डिफरेंट फॉर्मेट को एक्सप्लोर किया है, स्टैंड अप कॉमेडी के साथ रियलिटी शो, कॉमेडी शो और एक्टिंग प्रोजेक्ट्स का भी एक्सपीरियंस लिया है। उनकी जर्नी एक और इंटरेस्टिंग चीज बताती है कि एक अपॉर्चुनिटी कभी कभी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का डोर खोल देती है। स्टेज ने उन्हें ऑडियंस दी, मिमिक्री ने उन्हें रिकॉग्नाइजेशन दी, गजोदर भैया ने उन्हें आइडेंटिटी दी, टेलीविजन ने उन्हें मास रीच दी, और फिल्म ने उन्हें एक वाइडर एंटरटेनमेंट करियर का एक्सपीरियंस दिया। यानी सक्सेस एक सिंगल इवेंट नहीं थी, ये एक चेन थी, एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक की, और एक एक्सपीरियंस से नेक्स्ट एक्सपीरियंस तक के। और दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में बिना कुछ बिल्ड कर रहे हैं तो हर अपॉर्चुनिटी को फाइनल डेस्टिनेशन मत समझिए, किसी इंटर्नशिप को सिर्फ इंटर्नशिप मत समझिए, किसी छोटे से प्रोजेक्ट को सिर्फ छोटा सा प्रोजेक्ट ही मत समझिए, और किसी स्टेज परफॉर्मेंस को सिर्फ एक परफॉर्मेंस की तरह मत समझिए। हो सकता है वही एक्सपीरियंस आपको नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाए। राजू जी की जर्नी में भी छोटे स्टेज परफॉर्मेंस से लेकर नेशनल टेलीविजन तक का सफर एकदम से नहीं हुआ था, बहुत मेहनत लगती है उसके लिए, बहुत काम करना पड़ता है। तो इसलिए एक अपॉर्चुनिटी को एंड पॉइंट मत समझिए, उसे आप अपनी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की बिगनिंग बनाइए। तो चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइव।

स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूँ आपकी होस्ट आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा में हम चल रहे हैं राजू श्रीवास्तवा जी की जर्नी के साथ। और अब तक हमने राजू श्रीवास्तवा को एक चाइल्ड परफॉर्मर, मिमिक्री आर्टिस्ट, स्ट्रगलिंग एक्टर और सक्सेसफुल कॉमेडियन के रूप में जाना, लेकिन उनकी लाइफ का एक और चैप्टर भी रहा है, वो है पब्लिक लाइफ और पॉलिटिक्स। जी हाँ, 2014 में राजू श्रीवास्तवा को समाजवादी पार्टी ने कानपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से कैंडिडेट बनाया था। बाद में उन्होंने टिकट वापस कर दिया और मार्च 2014 में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। 2019 में उन्होंने उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन अपॉइंट किया गया। उन्होंने पब्लिक कैंपेन में भी पार्टिसिपेशन किया, इंक्लूडिंग स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड रोल भी प्ले किया है। अब दोस्तों, हम इस पार्ट को पॉलिटिक्स के एंगल से नहीं बल्कि करियर जर्नी के एंगल से देखेंगे कि एक आर्टिस्ट के लिए अपनी फैमिलियर फील्ड से बाहर जाना एक बड़ा डिसीजन हो सकता है, लेकिन लाइफ में कभी कभी नया रोल हमें नया एक्सपीरियंस देता है, तो इसलिए कुछ नया ट्राई करना तो ज़रूरी है। राजू जी की जर्नी भी यहाँ हमें ये बताती है कि करियर एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, बल्कि आपको लाइफ में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। कभी आप एक लर्नर हो सकते हो, कभी आप एक परफॉर्मर हो सकते हो, कभी लीडर तो कभी मेंटोर, और हर स्टेज पर आपको अपनी स्किल्स को नए एनवायरनमेंट में अप्लाई करना पड़ता है। राजू श्रीवास्तवा की कलीग्स और फेलो कॉमेडियंस ने भी उनके कंट्रीब्यूशन को याद किया। कॉमेडियन सुनील पाल ने उन्हें मेंटर बताया है और कहा है कि राजू जूनियर्स को अपॉर्चुनिटीज और गाइडेंस देने के लिए भी रेडी रहते हैं हमेशा। और ये पॉइंट मुझे पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट लगता है कि सक्सेस का मतलब सिर्फ खुद आगे बढ़ना नहीं होता है, कभी कभी सक्सेस का एक ब्यूटीफुल पार्ट ये भी होता है कि आप अपने एक्सपीरियंस से दूसरों का रास्ता थोड़ा सा ईजी कर देते हैं, कभी किसी जूनियर को गाइड करके, कभी किसी बिगनर को अपॉर्चुनिटी देकर, और कभी किसी को कॉन्फिडेंस देकर, तो कभी किसी को बस इतना कह दें कि कीप गोइंग। क्योंकि जब आप खुद स्ट्रगल से एक पोजीशन तक पहुंचते हैं ना, तो आपको पता होता है कि एक छोटी सी हेल्प भी किसी के लिए कितनी बड़ी हो सकती है। और राजू श्रीवास्तवा की जर्नी का ये चैप्टर हमें इसी ब्रॉडर आइडिया से कनेक्ट करता है। और इसका सक्सेस मंत्र आपको क्या समझ आया, मैं बताती हूँ आपको कि ग्रो इतना करो कि आपकी जर्नी सिर्फ आपकी ना रहे, वह दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन और अपॉर्चुनिटी बन सके। तो चलिए, वक्त हो गया है इसी के साथ एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा में हम चल रहे हैं राजू श्रीवास्तवा जी की जर्नी के साथ, उनके बारे में, उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में बहुत सारी बातें जानी। लेकिन अब इस लास्ट सेगमेंट में हम आ गए हैं जहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी समरी दूंगी इस पूरे एपिसोड की, जहाँ पर आप समझ पाएंगे कि आज हमारा इनकी जर्नी के बारे में बात करने का क्या मोटिव था। तो दोस्तों, हर आर्टिस्ट की जर्नी का एक फाइनल चैप्टर भी होता है, लेकिन कुछ आर्टिस्ट जो होते हैं वो चले जाते हैं, फिर भी उनका काम उन्हें ऑडियंस के बीच जिंदा रखता है। राजू श्रीवास्तवा जी उन्हीं आर्टिस्ट में से एक रहे। 10 अगस्त 2022 को वर्कआउट के दौरान कार्डियक अरेस्ट के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में एडमिट किया गया। 40 दिन तक ट्रीटमेंट के बाद 21 सितंबर 2022 को उनकी 58 ईयर्स की उम्र में ही उनका निधन हो गया। लेकिन दोस्तों, उनकी स्टोरी को सिर्फ उनके निधन की डेट पर एंड कर देना उनकी जर्नी को बहुत छोटा कर देना होगा। उन्होंने एक ऐसे टाइम में कॉमेडी को पॉपुलर बनाया जब इंडिया में स्टैंड अप कॉमेडी आज की तरह मेन स्ट्रीम रिकग्नाइजेशन नहीं मिला था। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के बाद उनकी पॉपुलैरिटी ने भी ये दिखाया है कि कॉमन मैन की स्टोरीज, देसी कैरेक्टर्स और एवरीडे लाइफ का ह्यूमर एक ह्यूज ऑडियंस को कनेक्ट कर सकता है। उनकी कॉमेडी की सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी थी, वो थी रिलेटेबिलिटी। जी हाँ, आप उनकी परफॉर्मेंस देखते हुए कभी किसी अंकल को याद कर सकते हैं, कभी किसी नेबर को, तो कभी अपने घर में ही किसी कैरेक्टर को। और शायद इसी वजह से राजू श्रीवास्तवा सिर्फ कॉमेडियन ही नहीं रहे, वो एक जनरेशन के मेमोरीज के पार्ट बन गए। उन्होंने हमें ये भी दिखाया कि एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन को स्टोरी टेलिंग में बदला जा सकता है, एक लोकल कैरेक्टर को नेशनल आइडेंटिटी भी दी जा सकती है, और एक ऑर्डिनरी सिचुएशन को लाफ्टर में कन्वर्ट किया जा सकता है, और एक स्ट्रगलिंग परफॉर्मर अपनी इंडिविजुअलिटी के दम पर अपनी जगह बना सकता है। तो दोस्तों, अगर आज की पूरी कहानी को एक लाइन में अगर समझे तो राजू श्रीवास्तवा जी का सक्सेस मंत्रा शायद ये होगा कि अपने टैलेंट को पहचानो, प्रैक्टिस को अपनी हैबिट बनाओ, और अपनी आइडेंटिटी को क्रिएट करो, और लाइफ की ऑर्डिनरी मोमेंट को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि कभी कभी आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ वही होती है जिसे दुनिया शुरुआत में सिर्फ एक छोटा सा टैलेंट समझ रही होती है। राजू श्रीवास्तवा जी ने लोगों को हंसाया, लेकिन उनकी जर्नी हमें एक सीरियस लेसन देकर जाती है कि सक्सेस सिर्फ फेमस होने का नाम नहीं है, बल्कि सक्सेस है अपनी पहचान बनाना और अपने काम से लोगों की जिंदगी में एक याद छोड़ जाना। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। तो चलिए, वक्त हो गया है मेरा इसी के साथ आप सभी से इजाजत लेने का। मिलते हैं एक और इंस्पायरिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और अपनी कहानी खुद लिखते रहिए, और मुझे दीजिए इजाजत, और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइट।

0: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन्ज मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8, फील गुड फील लाइफ।
1: नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं 1973 के बड़े ही चर्चित गीत के साथ, फिल्म थी जोशीला। कांप रही हूं मैं, सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है।

वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। ये फिल्म थी जोशीला 1973। काप रही हूँ मैं आशा भोसले, आर डी बर्मन, साहिर लुधियानवी। अब बड़ा ही बेहतरीन जो है वो जो है ये फास्ट और जो है मिक्सिंग टाइप का नंबर था। मिक्सिंग तो अब होती है, लेकिन हाँ हम भी बहुत सारी चीज़ें मिक्स करते हैं। आपको पिछली बार शोले के इस ऐसे मोड़ पे छोड़ के गया था कि आपने कहा था कि इसे पूरा कीजिए, और राज बब्बर साहब के साथ भी क्या हो रहा था उसे भी पूरा कीजिए। तो ठीक है जनाब, हम इन दोनों पे चलते हैं, लेकिन पहले शोले पे चलते हैं, क्योंकि उस पर आपने बड़ी सारी बातें लिखी कि क्या हुआ था, क्या उसी तरीके से फिल्म का एंड हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ था, एंड कैसे हुआ ये तो हमें मालूम है, लेकिन हाँ उसे कैसे जो है वो संपादित किया गया, क्या हुआ और आगे कैसे बढ़े थे, इसके बारे में बताएं तो बिल्कुल बताएंगे। अनुपमा चोपड़ा जी की किताब है ये, द मेकिंग ऑफ अ क्लासिक शोले, और थैंक यू वेरी मच। ये किताब जो है वो आपने जो लिखी उस हिसाब से भाई बड़ी सारी ऐसी रोचक चीज़ें सामने आईं, और अब ये जो है वो अध्याय जो है वो भी ख़त्म हो रहा है, तो शोले को है जो हम पूरा करते हैं आज नहीं, लेकिन कुछ प्रोग्राम्स के बाद ज़रूर हम इसको जो है पूर्ण कर देंगे। लेकिन क्या हुआ था कि भाई जब एक बिंदु पर रमेश ने फिल्म में अपना नाम हटाने का भी विचार कर लिया था, आखिरकार वो कहता है कि समझदार दर्शकों को कौन समझाने जा रहा था कि वास्तव में ये वही था और इरादा था, लेकिन ये वो ही जो सामने आया या कुछ और था, लेकिन अंततः निर्माता प्रबल हुआ। जीपी ने रमेश को जमीनी हकीकत समझाई, अगर वो जिद्दी होते तो फिल्म रिलीज ही नहीं होती। खुद एक वकील होने के नाते वह अदालत जाने की निरर्थकता को किसी और से बेहतर जानते थे। आपातकाल में उनके पास कोई अधिकार नहीं थे, और उत्पादन के 3 साल के अंत में उनके पास बहुत कम पैसे बचे थे। वे उच्च नैतिक आधार लेने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। रिलीज की तारीख 15 अगस्त 1975 तय की गई थी। जैसा कि तब अभ्यास था, पॉलीडोर ने 2 महीने पहले संगीत जारी किया था। आत्मविश्वास के एक असाधारण प्रदर्शन में उन्होंने 30,000 जो है वो रिकॉर्ड जारी किए थे, जो सामान्य फिल्म लॉन्च से 2 गुना था। उन्होंने डीलरों को एक विशेष योजना की भी पेशकश की थी। साल के अंत में डीलर परंपरागत रूप से 7.5% सामान वापस कर सकते थे, जिसे बेचने में वे कामयाब नहीं रहे थे, लेकिन फिल्म को रिलीज से पहले जो रिकॉर्ड नहीं बिके थे उन्हें वापस कर देते हैं। रिलीज के बाद अगर संगीत चलता है और डीलर रिकॉर्ड चाहते हैं तो उन्हें अधिक भुगतान करना होगा। यानी कि ये जो है वो कंडीशन जो है वो शोले से आई थी। अब ये रिलीज से कोई भी देरी पॉलीडोर के व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। वास्तव में कोई विकल्प नहीं था, रमेश को अंत को फिर से शूट करना होगा, ये समझ में आ गया था। और हमें समझ में आ गया है कि भाई अब जो बात होगी वो बड़ी सारी बातें होंगी, अगले गीत की भी बात होगी। तो अगला गीत जो है मुझे याद आ रहा है, तेरे बिना जिया जाए ना घर, 1978, लता मंगेशकर, राहुल देव बर्मन, गुलजार, विनोद मेहरा, रेखा। सुनते हैं और लौटते हैं।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हम बड़ी सारी बातें हो रही हैं, लेकिन आपका जो संदेश आया उसके ऊपर जो है वो हम बिल्कुल अमल करेंगे। आपने कहा कि भाई वो जो गीतमाला के अंश सुनाते हैं उसमें से कोई रोचक इंटरव्यू तो हमें ज़रूर सुनाएं, तो मैं अपनी टेक्निकल टीम को बोलता हूं कि भाई आप कोई एक रोचक इंटरव्यू ढूंढें और ये ज़रूर अभी जो है वो सुनाएं। समय आपके पास बहुत कम है, तुरंत सुनाएं और उसके बाद हम लौटेंगे। बड़े सारे रोचक किस्से हैं, उन्हें भी जो है वो हम आपसे जो है उनकी जान पहचान कराएंगे। और ये जो था कि जब एडिटिंग रूम बना था राज बब्बर का घर, इसे भी तो आपको बताना है पूरा।
1: अच्छा भाई, आप जरा बैठ जाइए जमकर और सुनिए एक बड़े मजे की बात। क्या आप जानते हैं बहनों भाइयों कि दादा बर्मन से हुई पहली मुलाकात में, बिल्कुल पहली मुलाकात में, किशोर कुमार ने उन्हें इम्प्रेस किया था अपने गायन से ज्यादा अपनी एक्टिंग से। जी हाँ, खास तौर पर अपनी मिमिक्री यानी अपनी नकलबाजी से। लीजिए किशोर कुमार ही की आवाज में सुनिए कि क्या हुआ जब वो पहली बार दादा बर्मन से मिले।
2: जब मैं उनसे मिला तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा, बड़े निराले लगे। धोती कुर्ता और दोनों कलाइयों में चमेली के गजरे, तंबाकू वाला पान चबाते चबाते हारमोनियम बजा रहे थे। कुछ देर बाद दादा मुनि ने सचिंदा को बताया कि जो मेरा भाई है ना, ये भी थोड़ा थोड़ा गा लेता है। वो बोले, तुम्हारा भाई क्या नाम है तुम्हारा? मैं बोला, मेरा नाम किशोर। ओ किशोर, जरा गाओ तो मैंने उनका वही गाना गाया जो उस वक्त बहुत पॉपुलर था बंगाली में। गाना था

तो वो तो हंसते हंसते बोले, वंडरफुल, ये तो हमारा कॉपी करता। अरे दादामुनि, एका आवाज बहुत अच्छा है, खूब भालो गान करे, आमी ओके निश्चय चांस देबो। बस फिर क्या था, मैं सोच भी नहीं सकता था कि सचिन दा मुझे गाना गवाएंगे, मैं तो फूल कर कुप्पा हो गया।

वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। बड़ी ये जो हमने सुना, ये जो इंटरव्यूज हैं ये तो बड़े दिल के अंदर उतर जाते हैं। अमीन साइनी साहब, आपको जितना याद करें उतना मिस करते हैं, और भाई आपके जो रोचक जो इंटरव्यूज थे ये तो हमारे जहन में जो है उतर चुके हैं। थैंक यू टू माई टेक्निकल टीम जो है ये इसको ढूंढ के लाती है और तुरंत से आपकी जो फरमाइश है उसे पूरा कर देती है। लेकिन हुआ क्या था राज बब्बर साहब के साथ, जब एडिटिंग रूम बन गया था राज बब्बर का घर, ये किस्सा हम सुना रहे थे आपको, हिस्से का हिस्से में, तो एडिटिंग रूम को देखकर राज साहब के होटल के भव्य कमरे वाली उम्मीद तो टूट गई। अब उसके बाद क्या हुआ, अब राज भाई साहब बताते हैं। एक दिन जो है प्रकाश मेहरा जी ने मुझे बुलाया और कहा कि वे किसी कारण से उन्हें नमक हलाल में नहीं ले पाएंगे। अब उससे पहले जो था उनको लगता था कि भाई अब उनका रास्ता मुंबई में खुल गया है। अब मगर ऊपर वाले ने शायद ये तय किया था कि राज बब्बर को सफलता इतनी आसानी से नहीं देनी है, और इसलिए ऐसा हुआ। अब ये बात सुनकर मुझे बुरा तो ज़रूर लगा, लेकिन मैं निराश नहीं हुआ। जब प्रकाश जी ने मुझे फिल्म से हटाने की बात कही तब मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा, ठीक है लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, भले ही आप मुझे फिल्म से निकाल दीजिए मगर इस कमरे से मत निकालिए। मैं 1 जनवरी को यहाँ आया था और अगली 1 जनवरी को ये कमरा खाली कर दूंगा। इसके लिए वे राजी हो गए। इसी बात पर निदा फाजली का एक शेर जो है वो साझा किया। रूमी जाफरी साहब ने, कोशिश भी कर उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर उसके अदब थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। इसके बाद फिर संघर्ष शुरू हुआ और हम आते हैं एक ऐसी बढ़िया जो है वो फिल्म थी देश प्रदेश 1978, लता मंगेशकर, राजेश रोशन, अमित खन्ना, टीना मुनीम पे, और मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद आ रहा है देवानंद पे फिल्माया गया था। आप कहें और हम ना आए, इसको सुनते हैं और लौटते हैं।

वेलकम बैक दोस्तों, अभी मेरे साथ निसेट के साथ। भैया आप ये कह रहे थे कि आगे क्या हुआ था शोले में, तो बिल्कुल शोले का भी हम आपको बताते हैं कि भाई अब ये बात तो थी कि भाई अंत को फिर से शूट करना पड़ेगा, ये एक कठिन कार्य था। 20 जुलाई हो चुकी थी, अगले सप्ताह के भीतर अंत को फिर से शूट और फिर से डब करना होगा, पृष्ठभूमि संगीत को फिर से तैयार किया जाएगा और लंदन में रीमिक्स किया जाएगा और फिल्म रिलीज के लिए मुद्रित होगी। जल्दबाजी में कलाकारों को बुलाया गया। संजीव कुमार सोवियत संघ में एक फिल्म फेस्टिवल में शिरकत कर रहे थे, उन्होंने तुरंत भारत के लिए उड़ान जो है भरी। 2 दिनों के लिए कलाकार और चालक दल रामनगरम में इकट्ठा हुए। वो फिर से पुराने समय की तरह लग रहा था, वे विशाल पत्थरों के बीच कड़ी धूप में वापस आ गए थे। सभी पहले की तरह उस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए प्रतिबद्ध थे जो उन्हें एक साथ लाई थी। अब सेंसर ने फिल्म के कई अन्य दृश्यों में कुछ हिंसा को भी उजागर किया था। एक महत्वपूर्ण दृश्य जो हैक किया गया था वो रामलाल का था, जिसके चेहरे पर एक दृढ़ नज़र थी, जूते के तलवों में शातिर दिखने वाले नाखून जो है वो चल रहे थे, जिसे वो ठाकुर के पास ले जाता है और जिससे ठाकुर गब्बर को मारता है। कटौती लागू होने और नए अंत को सम्मानित और सम्मिलित करने के साथ फिल्म सेंसर बोर्ड को संतुष्ट भी करनी थी और अंतिम 70 mm प्रिंट तब लंदन में बनाए गए थे। 35 mm के लिए नकारात्मक मुंबई वापस लाया गया और फिल्म सेंटर में मुद्रित किया गया और इसलिए शोले रिलीज के लिए तैयार थी। शोले का एक कमजोर संस्करण एक नए कम अंत के साथ। लेकिन जाहिर है दुनिया में कहीं जब ट्रेस करना असंभव हो होने की अफवाह, मूल अछूती फिल्म के कुछ प्रिंट बचे थे, इसलिए सभी अंत उदासीनता बराबर थे। कभी कभी इस मूल फिल्म के वीडियो टेप और DVDs की प्रतियों में इस तरीके की कुछ कॉपियां जो है वो हमको मिल जाती हैं, जिसमें एंड क्या था जो इस तरीके से लोग बताते हैं। जिन लोगों ने नवी पीढ़ी की प्रतियों को देखा है वो कहते हैं कि फजीहत और ख़राब आवाज़ के बावजूद ठाकुर का निराशाजनक रोना जो अंत में था वो काफ़ी जो है वो अच्छा लगा था और दर्शकों के लिए स्पष्ट था कि सत्ता और हिंसा के सभी जो है वो जो मोड़ होते हैं वो जो होते हैं वो अनिवार्य होते हैं। 70 के दशक के इस लंबे समय पहले के दिनों में ये नैतिक दृष्टि थी जिसे रमेश सिप्पी और सलीम जावेद ने भारतीय दर्शकों के सामने लाने की कोशिश की थी। अब हमने क्या कोशिश की है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप जो है वो ये गीत सुने और माना हो तुम, टूटे खिलौने 1978, ये सुदास, बप्पी लहरी, कैफी आजमी, शेखर कपूर, शबाना आजमी, सुनते हैं और लौटते हैं।

वेलकम बैक दोस्तों, आप मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। बड़ी सारी बातें हो रही थी, शोले की भी बात हो रही थी। अब जो एक पब्लिसिटी जो हुई है वो भी ये भी हुई थी कि भाई एंड जो है वो बिगाड़ दिया है शोले का, इसलिए क्या चलेगी ये फिल्म, होगी ठीक होगी नहीं होगी, बड़ी सारी बातें हो रही थी। अंत को देख कर जो है वो बहुत उत्साहित तो नहीं लग रहे थे रमेश साहब, लेकिन हाँ जो है कुछ चीज़ें जो हैं वो बदलनी पड़ती हैं, क्योंकि वहाँ पर उनका से नहीं था, जिस टाइप का एनवायरनमेंट था भाई, उनको फिल्म भी रिलीज़ करनी थी। अब 70 के दशक के उन लंबे समय पहले के दिनों में ये नैतिक दृष्टि थी जिसे रमेश सिप्पी और सलीम जावेद ने भारतीय दर्शकों के सामने लाने की कोशिश की थी। हमारे सेंसर के ज्ञान के कारण इसके बजाय हमें जो मिला वो कानून का पालन करने के गुणों के बारे में एक आसान पेबुलम था, और एक फिल्म जिसमें कम से कम भाग में एक सौंदर्य, कह सकते हैं कि अनाड़ीपन था। अब एक प्रचार ब्लिट्स ने शोले के आने की घोषणा की, यानी कि एक मैगजीन ने जो कि पब्लिसिटी करती थी उसने शोले के आने की घोषणा कर दी थी। पहली बार चौपाटी बीच पर किसी फिल्म के विज्ञापन के लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स का इस्तेमाल किया गया, और हम जो कर रहे हैं वो बड़ा ही जो रोचक सा गीत था, गपुची गपुची गम गम त्रिशूल 1978, लता मंगेशकर, नितिन मुकेश, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी, सचिन, पूनम ढिल्लों पर फिल्माया गया था। इस गीत को सुनते हैं और लौटते हैं।

वेलकम बैक दोस्तों, आप मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। आपने कहा कि भाई राज बब्बर वाला जो बात है उसको भी तो आप पूरा कीजिए, क्योंकि अब आप तो शोले की रिलीज तक आ गए थे, वो बात जो है वो कहीं पीछे से रुकी हुई सी लग रही है। तो ये बात तो है कि भाई जब एडिटिंग रूम बन गया था राज बब्बर का घर, इस बात को जो है वो हम पूरा ज़रूर करेंगे इस जो है वो हमारे एपिसोड में, इसको तो हम ज़रूर ज़रूर ज़रूर सुनाएंगे क्योंकि बड़ा रोचक होता जा रहा है ये। तो इसके बाद फिर से संघर्ष जो शुरू हुआ, क्योंकि भाई जब जो प्रकाश मेहरा जी ने बोला कि भाई नमक हलाल में अब हम आपको नहीं लेंगे, तो भाई आगे की बात हुई। अब राज बब्बर जी अब क्या करते, छोटे छोटे फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने उन्होंने शुरू कर दिए, इसमें थोड़ी बहुत उनकी आमदनी भी होने लगी। अब एक बार बीआर चोपड़ा साहब ने मुझे बुलाया और कहा मैं जीनत अमान को लेकर एक फिल्म बना रहा हूँ। फिर उन्होंने मुझे कहानी सुनानी शुरू की। कहानी सुनते सुनते एक एक्टर के तौर पर मेरा ध्यान उसी किरदार की तरफ जा रहा था जो नेगेटिव रोल में था। मन में यही आ रहा था कि अगर रमेश का रोल मिल जाए तो मज़ा आ जाए। अब नरेशन खत्म होने के बाद चोपड़ा साहब ने मुझसे वही रोल करने को कहा जो मैं करना चाहता था। इस तरह मुझे इंसाफ का तराजू मिली। राज बब्बर साहब बताते हैं, अब राजू भाई ने मुझे इंसाफ का तराजू फिल्म का भी एक किस्सा सुनाया था। बकौल राज भाई मैं हिंदी में फैमिली के साथ फिल्म देखने गया, उसमें जो भाई वो जो गलत सीन था उसको देखकर पब्लिक ने मुझे इतनी गालियां देनी शुरू की कि मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। इस पर माँ ने मुझसे कहा बेटा हम दो रोटी कम खा लेंगे लेकिन तुम पैसे कमाने के लिए ऐसा काम मत करो। लेकिन एक एक्टर के तौर पर मुझे इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आई, क्योंकि इससे ये तो पता चल रहा था कि मैं अपनी परफॉर्मेंस में कामयाब हो गया था। और मुझे लगता है कि हम जो है अपने टेक्निकल टीम से बोलते हैं कि भाई क्या मौसम है, ऐसे कुछ बोलते चल कहीं दूर निकल जाए। किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, राजेश रोशन, मजरू सुल्तानपुरी, ऋषि कपूर, राखी, शशि कपूर, बड़े सारे कलाकार इसमें। राजेश रोशन का संगीत था, किशोर कुमार की आवाज़, बाकमाल आवाज़। फिल्म थी दूसरा आदमी 1977, ढूंढ निकाला हमने, इसे सुनते हैं और लौटते हैं।

वेलकम बैक दोस्तों, आप मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब लोगों ने कहा कि भाई वो राज बब्बर का किस्सा आप जरूर पूरा करें कि हुआ क्या। अब हमारा नंबर है 8010781078 और आप हमें सुन सकते हैं, आप हमें लिंक्स के थ्रू भी सुन सकते हैं और आपको जो है वो लिंक्स हम जो है वो बता भी देते हैं कि किस लिंक पे जो है वो हम आपको जो है वो इन सारे प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स के की जो है वो पेशकश रखते हैं। तो उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि भाई अब आगे क्या हुआ था। तो राज बब्बर साहब ने कहा कि उनकी माँ ने बोला कि बेटा हम दो रोटी कम खा लेंगे लेकिन पैसे कमाने के लिए ऐसा काम नहीं करो। लेकिन उन्हें लगा कि भाई उनकी परफॉर्मेंस तो कामयाब हो गई क्योंकि इतनी नेगेटिव परफॉर्मेंस को लोगों ने इस तरीके से नेगेटिवली देखा था। इसके बाद आई 31 दिसंबर 1979 की रात यानी 1980 की पहली जनवरी और प्रकाश मेहरा साहब ने अपने बंगले पर पार्टी रखी थी। राज भाई को भी बुलाया गया। पार्टी के बाद राज भाई ने जेब से चाबी निकाली और शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा, मैंने आपसे वादा किया था कि एक साल बाद 1 जनवरी को आपका कमरा खाली कर दूंगा, ये रही आपके कमरे की चाबी। राजेंद्र कुमार के भाई वीरेंद्र कुमार ने उन्हें अपनी फिल्म में साइन किया था और रहने के लिए फ्लैट भी दे दिया था। इसलिए राज भाई पहली तारीख से वहाँ शिफ्ट हो गए। फिर उनके करियर की गाड़ी ऐसी चली कि दोबारा कभी रुकी नहीं। अब इससे जुड़ा इत्तेफाक भी सुनिए कि कुछ दिन पहले मेरे दोस्त अशोक पांडे की बर्थडे पार्टी थी और इससे पहले कि हम इस जो है वो इस बात को बताएं तो हमें याद आ रहा है फिल्म थी हम किसी से कम नहीं 1977, मोहम्मद रफ़ी, राहुल देव बर्मन, आशा भोसले। राहुल देव बर्मन का संगीत था, मजरू सुल्तानपुरी, ऋषि कपूर, काजल किरण। तारीख पर फिल्माया गया। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ। गीत सुनते हैं और लौट।

वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। लेकिन अब जो है वो बिल्कुल ही ऐसी बात हो रही है कि जाने का मन नहीं कर रहा। अब घड़ी लेकिन बिल्कुल साथ नहीं देती। हमारा नंबर है 8010781078। अगर आप ये चाहते हैं कि प्रोग्राम और थोड़ा लंबा हो, यानी कि एक घंटे का जो ये हमारा प्रोग्राम है, अगर आप इसकी अवधि जो है वो और बढ़वाना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। और उस बात से आप हमें ये भी बताएं कि आप और किस विषय में बात करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं। बहरहाल, जो राज बब्बर साहब की हम बात कर रहे थे और उस बात को तो हम पूरा करें, तो वो जो किस्सा था, तो उन्होंने कहा कि अब इससे जुड़ा इत्तेफाक भी सुनिए। कुछ दिन पहले मेरे दोस्त अशोक पंडित की बर्थडे पार्टी थी। पार्टी जुहू के एक बड़े रेस्टोरेंट और पब में रखी हुई थी। ये जो है वो रूबी जाफरी साहब कह रहे हैं किस्से का हिस्सा में जो उन्होंने हमें जो साझा किया, जो एक लेख था रसरंग में जो प्रसारित हुआ था। जब एडिटिंग रूम बन गया था राज बब्बर का घर, तो उन्होंने कहा कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो गाड़ी पार्क की तो हैरान रह गया। वो किंग्स होटल के नीचे प्रकाश मेहरा के ऑफिस वाली जगह थी, जहाँ अब रेस्टोरेंट और पब बन चुका था। मैं अंदर गया और राजपाल यादव को ये किस्सा सुनाया। तभी आमिर खान आ गए। मैंने उन्हें भी बताया कि ये वही जगह है जहाँ से मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस जैसी फिल्में बनी हैं। फिर मैंने उन्हें राज भाई वाला पूरा किस्सा सुनाया। आमिर को इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ। तभी संयोग से राज बब्बर अपनी बेटी जूही और दामाद अनूप के साथ वहाँ पहुँच गए। फिर राज भाई ने खुद कहा, रूमी ने जो किस्सा सुनाया वो बिल्कुल सच है। और इसी के साथ जो है अब जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन अनुमति दीजिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हमें लिखते रहिए, गीत सुनते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक बड़े ही जो है नए अध्याय और दिलचस्प अध्याय के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक नए संस्करण के साथ। जाते जाते मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। फिल्म थी फांसी 1978, मोहम्मद रफ़ी, सुलक्षणा पंडित, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गुलशन बावरा, शशि कपूर और सुलक्षणा पंडित पर फिल्माया गया था। जब आती होगी याद मेरी, सुनते हैं, लौटते हैं अगले हफ्ते, लौटते हैं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हमें लिखते रहिए। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक नए संस्करण के साथ। आपका होस्ट और दोस्त अब विदा चाहता है। धन्यवाद।

0: Hi, I'm Digmanshu Dhulia. You're listening to Radio Manav Rachna 107.8 FM. Feel good, feel live.
1: Well, hello, good evening, namaskar, sir, shri akal, ram ram, jai mata di, assalamu alaikum, doston, main hoon Aarti Sagar, aaya hoon lekar ke show Satyamev Jayate, Jai Hind, Jai Bharat. ये शो अपने आप में बहुत स्पेशल हो जाता है. रीज़न बीइंग कि आपको लीगल चीज़ों के बारे में बहुत कुछ पता लगता है. हम लोग बात करते हैं लीगल फ्रेमवर्क की, हम लोग बात करते हैं समटाइम्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे राइट्स की, वो तमाम चीज़ें जो एक नागरिक को इस देश के पता होने चाहिए, भले वो आपके काम में आए या ना आए. बट एटलीस्ट यू शुड नो कि आपके अधिकार क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो भारत की, जो आप कह सकते हो कि कानून की किताब है या संविधान की जो किताब है वो आपको देती है, वो उन अधिकारों के बारे में बात करते हैं. आज हमारे साथ यहाँ पर हैं डॉक्टर अस्मिता. डॉक्टर अस्मिता से हम बहुत सारी बातें करेंगे. हम लोग बात करेंगे एग्जैक्टली इलेक्शन के ऊपर थोड़ी सी बात की जाएगी, SIR के ऊपर थोड़ी सी बात की जाएगी, थोड़ा समझने की कोशिश की जाएगी कि ये जो हम बोलते हैं इलेक्शन होता है कैसे होता है, क्या है पूरा फंडामेंटल, कैसे काम करता है. विल टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स, बट सबसे पहले स्वागत करेंगे डॉक्टर अस्मिता का. हाय मैम, वेलकम टू आवर शो.
2: थैंक यू सागर.
1: सबसे पहला प्रश्न मेरा रहने वाला है अबाउट फेडरलिज्म. भारत को डिस्क्राइब किया जाता है एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. किसी भी एक आम इंसान के लिए मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर फेडरलिज्म जैसे टर्म्स की हम लोग बात करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे रेलिवेंट है, क्या मतलब है इसका एक्चुअली, एंड कैसे जो पावर्स हैं वो डिवाइड की जाती हैं सेंटर और स्टेट के बीच में.
2: जी, बहुत ही अच्छा सवाल है ये शुरुआत करने के लिए. जैसा कि आपने कहा, भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है.
1: बिल्कुल.
2: संघ मतलब संगठित. तो बेसिकली अगर बहुत शुरुआत से देखें तो जो हमारा गवर्नेंस सिस्टम है, राइट आफ्टर द इंडिपेंडेंस ये डिसाइड किया गया कि हमारी जो गवर्नमेंट होगी वो यूनिटरी नहीं होगी. मतलब जो सारा पावर है वो एक ही लेवल पे सारा जो है कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहेगा, हम डिवाइडेड रखेंगे, जिसकी वजह से एक जो यूनियन लेवल है और एक जो स्टेट लेवल है दोनों के बीच में पावर्स डिवाइडेड हैं. तो हमारा जो ये सर्वोच्च कानून है जिसे हम संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेसिकली वो एक किताब है जो पूरे भारत को भारत बनाती है. पूरे भारत का जो सिस्टम है, चाहे वो न्याय का सिस्टम हो, चाहे वो न्याय बनाने का सिस्टम हो, चाहे वो कानून बनाने का सिस्टम हो, चाहे वो उस कानून को अप्लाई करने का सिस्टम हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारत को बनाता है. सो ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रस्तावना है जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं, वो प्रियम्बल हमारे लिए बेसिक गोल सेट करता है, जिसमें हमारा एक गोल है डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना. हमने इंडिया को एक डेमोक्रेटिक नेशन इस्टेब्लिश किया है. सो डेमोक्रेसी का मतलब ही ये होता है कि लोग अपने लीडर का चुनाव खुद कर सकते हैं. क्योंकि ऐसे भी देश हैं जहाँ पे मोनार्की सिस्टम है, जहाँ पे अभी भी राजाओं का राज चलता है. ऐसे सिस्टम है जहाँ पे अभी भी फैमिली रूल्स करती हैं. बट हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है वो ये है कि हम लोग एक रिपब्लिक हैं, जहाँ पे जिसका ये मतलब होता है कि चुनाव करके जो है वो लीडर आएगा, वो लीडर इनहेरिट नहीं करेगा वो सीट. और हम डेमोक्रेसी हैं जहाँ पे लोगों का जो लोग जो सोचते हैं, लोग जो चाहते हैं वो मैटर करेगा. सो डेमोक्रेसी से आता है कि हमें लोगों को चुनना है, जहाँ से आता है इलेक्शन. अब जैसा मैंने आपको बताया कि

0: काउंसिल होते हैं। तो हम जो जनता है हम चुनते हैं डायरेक्टली लोकसभा के मेंबर्स को और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को, जिनको हम जनरल इलेक्शन और असेंबली इलेक्शंस भी कहते हैं कॉमन भाषा में, जो आपने सुना होगा बहुत बार। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं इन दो हाउसेस के मेंबर्स को, और फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन भी होते हैं जहां हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बट ये चुने हुए मेंबर्स उनको चुनते हैं। तो ये बहुत मतलब भारत का जो पूरा निर्वाचन की जो निर्वाचन प्रक्रिया है पूरे दुनिया में बहुत यूनिक है, क्योंकि इतना बड़ा देश होते हुए जहाँ पे सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री और उसके बाद हम डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करते हुए चुनाव करवा पाते हैं, ये अपने आप में बहुत ही बहुत बड़ा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इतनी जनता का आप सोच के देखिए, पहले उनका इलेक्टोरल रोल बनाना, कौन कौन एलिजिबल है ये डिसाइड करना, और फिर इतने सारी जगहों पे वोटिंग कराना, फिर उसको काउंट करना, फिर रिजल्ट डिक्लेयर करना, और ये सब हो रहा है सेंट्रली एक आयोग के द्वारा जिसको हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आप सोच के देखिए, इतने बड़े देश में जहाँ इतनी डाइवर्सिटी है, इतने स्टेट्स हैं, इतना कुछ एरियाज तो ऐसे भी है जहाँ तक पहुँच पाना मुश्किल है, बट हमारी सरकार जो है वो हर एक जगह में चुनाव कराती है। आप सोच के देखिए, ऐसा और किसी देश में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इट्स अ द डांस ऑफ डेमोक्रेसी जो हम कहते हैं, कि दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया, कि हम इतने बड़े लेवल पर चुनाव करा पाते हैं और सक्सेसफुली करा पाते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर। एक प्रश्न यहाँ पर ये भी उठता है कि अगर हम ये बात कर रहे हैं कि मैं अपना प्रतिनिधि चुन रहा हूँ, लेट्स से मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ का एक MLA का जब इलेक्शन हो रहा है, विधायक को मैं वोट डाल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जब ये तमाम प्रतिनिधि चुने जाएंगे तो मिला करके एक समूह बनेगा जिसके ऊपर एक मुख्य आदमी बैठेगा जिसको मुख्यमंत्री के नाम से जानते हैं, चीफ मिनिस्टर। बहुत बार ऐसा देखा गया है रिसेंट टाइम्स में कि जब ये इलेक्शंस होते हैं, खासतौर पर स्टेट के जब इलेक्शंस होते हैं, तो आपके पास आपका वहां से विधायक कौन है, उस प्रतिनिधि का चेहरा आपके पास है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा उसका चेहरा आपके पास नहीं है
0: जी।
1: क्या है ये सिस्टम कि अगर मैंने जिस विधायक को वोट डाला और ऊपर बैठा हुआ मुख्यमंत्री, मैं उसको नापसंद करता हूं, लेकिन क्योंकि उसको डायरेक्ट मैंने नहीं चुना है, मैंने अपने विधायक को चुना है, तो क्या मेरा कुछ भूमिका उसमें हो सकती है या मैं कुछ आवाज उठा सकता हूं वहां पर?
0: जी, पहली बात तो देखिए, जो मुख्यमंत्री है उसे भी किसी न किसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीत कर ही आना पड़ेगा। सबसे पहले आपको तो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना पड़ता है, फिर जो जिस जैसे आप पॉलिटिकल पार्टी हम जानते हैं, पार्टी मतलब बेसिकली इट्स काइंड ऑफ अ टीम जो वो टिकट्स देती है अपने कैंडिडेट्स को, मतलब आप समझ लीजिए एक अलग अलग टीम से जो कम्पीट कर रही हैं, जिस टीम के पास सबसे ज़्यादा सीट्स आती हैं, यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी लगती है, कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि मिनिमम 50% ऑफ द सीट चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके पास सबसे ज़्यादा सीट आई उस पार्टी का जो लीडर होगा वो ऑटोमेटिकली मुख्यमंत्री बन जाता है। तो बेसिकली आप और उस मुख्यमंत्री को भी चुनाव जीतना ज़रूरी है। सो भले ही आपके निर्वाचन आयोग से, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी से हो सकता है वो ना हो, बट किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने उन्हें ज़रूर इलेक्ट किया होगा, तभी वो पहले मेंबर बनेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के, और उसके बाद बिकॉज वो ऑलरेडी जो पार्टी जीत रही है उसके वो लीडर हैं, तभी वो बनते हैं मुख्यमंत्री। और सिमिलरली सेंट्रल लेवल पे जो लीडर ऑफ द विनिंग पार्टी होते हैं उसके लीडर बनते हैं प्राइम मिनिस्टर। ये एक अनरिटन रूल है। लीडर बोलने का मतलब यही है कि वो पार्टी पहले से डिसाइड करके रखती है, फिर बाद में भी डिसाइड करती है कि अब जब हमारे पास इतनी सीट्स आ गई हैं, वी कैन फॉर्म द गवर्नमेंट, तो अब गवर्नमेंट का फेस कौन होगा, हमारा लीडर कौन होगा। तो आपने नहीं चुना हो सकता है, लेकिन किसी ना किसी ने तो उन्हें चुना ही है, तो वो बिना चुने तो नहीं बन रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, और चाहे हो चीफ मिनिस्टर हो। तो हो ये सकता है कि, और जो दूसरे आपके सवाल के दूसरे पार्ट में आते हैं कि अगर पसंद नहीं है तो बेसिकली फिर अब आगे, जब एक बार तो वो बन गए मुख्यमंत्री, अगर उसके बाद भी अगर आप पब्लिक वॉइस अपना जो है वो कहीं पे डिस्प्ले कर सकते हैं, अगर आप अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी आवाज़ रख सकते हैं, या आप सिर्फ मुख्यमंत्री को पसंद ना करने की वजह से, हो सकता है अगली बार ये आपकी चॉइस है, हो सकता है आप उस पार्टी को वोट ना करना चाहें क्योंकि आपको पता है कि इस पार्टी का लीडर तो ये पर्टिकुलर पर्सन ही है और यही मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत बार पार्टीज़ पहले से डिक्लेयर कर देती हैं कि ये हमारे मुख्यमंत्री होने वाले हैं, बहुत बार पार्टीज़ नहीं कर पाती हैं क्योंकि आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट रहता है, फिर वो फैक्शंस बन जाते हैं, कई बार पार्टी टूट भी जाती है इस चक्कर में, तो वो सब पॉलिटिक्स तो चल रही होती है। लेकिन ये मैं आपको ज़रूर बता दूँ कि वो बिना चुना हुआ नहीं बन सकते हैं, वो किसी ने चुना ही है उन्हें।
1: बिल्कुल, फेयर पॉइंट। इसमें अगला प्रश्न ये भी उठता है कि अगर मानकर चलिए एक पॉलिटिकल पार्टी ने चुनाव से पहले कुछ वादे किए थे कि हम लोग ये चीज़ें आपको करके देंगे, उसमें टाइम फ्रेम नहीं था, लेकिन वो वादे पूरे अगर नहीं होते हैं अगले टेन्योर में उनके, तो क्या मेरे पास एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एज अ वोटर, कुछ अधिकार है, मैं उसको चैलेंज कर सकता हूँ कहीं किसी कोर्ट में जाकर के?

0: जी देखिए, इसको हम इलेक्शन मैनिफेस्टो कहते हैं. मैनिफेस्टो इज नॉट एसेंशियली इन लीगल टर्म्स अ प्रॉमिस. ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है पार्टी और आपके बीच में कि आप, लेट्स से आप एक कंज्यूमर हैं और आपने उनको कंसिडरेशन में वोट दिया है और उस वोट के बदले आपको ये मिलना ही चाहिए. ये आपका अनफॉर्चुनेटली अधिकार नहीं है. बट हाँ, अगर आपसे किसी ने कुछ वादा किया है, अब आम आदमी की नज़रों में ये वादा ही है, उन्हें नहीं पता मैनिफेस्टो और कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस. आम आदमी के लिए एक वादा ही होता है. अगर सरकार अपने किए हुए वादों से पलट जाती है या उस तरीके से पूरा नहीं कर पाती है या सबके लिए पूरा नहीं कर पाती है, तो लोगों को जो डिसअपॉइंटमेंट होता है, ऑफ कोर्स वो होता है. और इसी का नतीजा है कि लोग फिर प्रोटेस्ट करते हैं या आवाज़ उठाते हैं कि आपने जो आपकी बेसिक जिम्मेदारियां हैं आप वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं. हमने आपको क्यों दिया है गवर्नमेंट बनाने के लिए ये जिम्मेदारी? अगर आप गवर्नमेंट हैं तो गवर्नमेंट एक अच्छा गवर्नेंस स्टैब्लिश करना तो आपकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. उसके ऊपर तो कोई लिमिट नहीं है, बट बेसिक गवर्नेंस तो आपको करना ही चाहिए. तो आप ऑफ़ कोर्स इसलिए केस फाइल नहीं कर सकते उस पार्टी के अगेंस्ट, लेकिन हाँ, अगले इलेक्शन के समय आप अपनी नाराजगी जता सकते हैं उन्हें वोट ना दे करके.
1: सुकुल मिलाकर के ये एक लूप होल आप इसको समझ सकते हैं कि एक मैनिफेस्टो जो आपको दिया गया है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो एक लगा बंधा कॉन्ट्रैक्ट है कि ये तो बोला है तो दिया ही जाएगा. बट दैट इज नॉट द केस. वो अलग हो सकता है, बिल्कुल वो पूरा ना हो, ये भी संभावना है. उसको लेकर आपके पास दूसरे तरीके हैं. वो आपका संविधान आपको अधिकार देता है कि आप जाकर के प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप अगले इलेक्शन में उनको वोट ना दें, वो भी आपके पास अधिकार है. लेकिन इस चीज को चैलेंज कर पाना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज देयर इज नो रिटन अग्रीमेंट टू दिस पार्ट कि दोनों पार्टीज ने यहाँ पर दस्तखत किए होंगे कि आपको ये करना है, हम ये रिसीव करेंगे. सो दैट इज नॉट द केस. लेते एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे. मैं हूँ सागर, शो चल रहा है सत्यमेव जयते. आगे बात करेंगे हमारे लोकतंत्र में चुने कैसे जाते हैं प्रतिनिधि, उसके बारे में. जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड, फील लाइव. ज्वाला,
2: समुंदर की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूँ कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश, तुम्हारे घर ले चले. और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे.
3: और मैं ये कह रही हूँ, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती, नया घर दिया है. हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके.
2: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं.
3: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते. वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी.
2: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता.
3: तो फिर एक वादा करो.
2: मेरी जान मांग लो, जान मेरी.
3: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे. इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए.
2: ज्वाला, ये मेरा वादा है.

0: वेलकम बैक, मैं सागर। शो चल रहा है सत्य में जय थे, जय हिंद, जय भारत। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मार्वल 107.8 FM के साथ। डॉक्टर अस्मिता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है हमारे स्टूडियो में। बात कर रहे हैं इलेक्शंस को समझने की कोशिश यहाँ पर हो रही है कि कैसे काम करता है। बहुत सारी चीजें हैं जो सरफेस लेवल पर आपको शायद नजर ना आए, लेकिन अगर आप बैठ के थोड़ा सा उस विचार को खोलेंगे, अगर बैठ के उस सिस्टम को समझने की आप कोशिश करेंगे, सो यू विल रियलाइज देयर इज सो मच इनटू दिस। बहुत सारा प्रोसेसेस वहां पर होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। अगला प्रश्न मेरा आपसे यही रहने वाला है कि हमारा इलेक्शन सिस्टम काम कैसे करता है। हम जब बात करते हैं कि इलेक्शंस आर द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, तो एग्जैक्टली इलेक्शन सिस्टम भारत में काम कैसे करता है, वोटिंग से लेकर काउंटिंग से लेकर विनर डिक्लेयर करने तक, और कैसे आप कह सकते हैं कि हमारी ये जो डेमोक्रेसी है बाकी कंट्रीज से अलग है।
1: जी, तो भारत में चुनाव कैसे होंगे, कौन कराएगा, कब कराएगा, ये सबके लिए हमारे पास तीन बहुत ही मुख्य जो है कानून बने हुए हैं। पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950, जो हमारा संविधान है, संविधान का जो 15वां हिस्सा है, पार्ट 15, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत चुनाव आयोग का गठन करता है। इट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 324। अब वहाँ पे 324 टू 329 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बहुत सारे पावर और उनकी बेसिकली उनका दायरा बताते हैं, स्कोप एंड पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है। ये तीन बेसिकली जो कानून मिल करके भारत में चुनाव कैसे होना ये एस्टैब्लिश करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो चुनाव कराता है, वो सेंट्रल लेवल पे जो चुनाव हो रहा है पार्लियामेंट में, जो लोकसभा राज्यसभा है वो उसको ओवरसी करते हैं, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव भी वो ओवरसी करते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो चुनाव है वो स्टेट गवर्नमेंट ओवरसी करती है, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। तो इसके अलावा फिर जो दो मैंने आपको एक्ट बताए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, उसमें जो पहला वाला 1950 का एक्ट है वो बात करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में, और जो 1951 वाला और ज़्यादा बड़ा एक्ट है वो ये बात करता है कि कौन चुनाव लड़ सकते हैं, कौन ऑफिसर्स कौन कौन होंगे, कैसे कब कोई डिस्क्वालीफाई हो सकता है, अगर आपको कोई ग्रीवेंस है इलेक्शन मैकेनिज्म में तो आप क्या कर सकते हैं, ये सारे कुछ मिला करके इन तीनों एक्ट में है। इसके अलावा इनमें थोड़े थोड़े परिवर्तन होते रहते हैं जिन्हें हम अमेंडमेंट कहते हैं। सो अमेंडमेंट एक्ट पास होते रहते हैं जो कि हुए हैं बीच बीच में। रिसेंटली अभी 2023 में अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था, जिससे आपको पता ही होगा कि जो सिलेक्शन कमेटी है, जिससे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं देश के, उनका चुनाव कैसे करना है, इसमें परिवर्तन किया गया था। तो ये एक्ट्स बेसिकली इस्टैब्लिश करते हैं। अब आते हैं कि चुनाव कैसे होगा। इसके लिए मैं आपको पहले बताना चाहूँगी कि चुनाव लड़ कौन सकता है, कौन है जो कैंडिडेट हो सकता है चुनाव का। तो लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों के लिए ही जो एलिजिबिलिटी है कैंडिडेट्स की, वो है आपको बहुत सिंपल एलिजिबिलिटीज़ हैं, जिसमें से मेजर जो हैं वो ये हैं कि आपको 25 साल का होना है मिनिमम, आपको भारत का नागरिक होना है, इसके अलावा आपको कोई दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना है अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, आपको आप एक इंसॉल्वेंट नहीं है बेसिकली, एक लॉ में टर्म होता है कि आप बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी वाला, जहाँ पे दिवाला नहीं है बेसिकली, और इसके अलावा आपको मॉरल टर्पिट्यूड, पब्लिक पॉलिसी, कुछ ग्राउंड्स हैं लॉ के, उन ग्राउंड्स में अगर आप फॉल नहीं कर रहे हैं और आप 25 साल के और भारत के नागरिक हैं, तो आप लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के आप के लिए आप चुनाव लड़ सकते हैं। और सिमिलरली जब राज्यसभा और काउंसिल की बात होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए। वैसे ही प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनने के लिए अलग से एलिजिबिलिटी नहीं है, बट प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको मिनिमम 35 साल का होना जरूरी है, और अगेन आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है। अब अगर आप ये एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आपको किसी पार्टी से एफिलिएटेड अगर आप हैं तो वो पार्टी आपको टिकट देती है, अदरवाइज आप इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ सकते हैं, आपको अपने आप को रजिस्टर कराना होगा। इसके बाद जो लोग आपको चूज कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं इलेक्टर्स, उनका एक इलेक्टोरल रोल बनता है। इलेक्टोरल रोल मतलब आप समझ लीजिए एक लिस्ट है उन लोगों की जो एलिजिबल हैं वोट करने के लिए। सो इलेक्टोरल रोल बनाना भी चुनाव आयोग का ही काम होता है, और ये बहुत ही गहन एक स्टेप होता है, बहुत ही सीरियस स्टेप है और बहुत ही इंटेंसिव स्टेप है, क्योंकि इलेक्टोरल रोल आप लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते रहते हैं, लोगों की डेथ होती रहती है, नए लोग मेजर हो रहे होते हैं, 18 साल के हो रहे होते हैं, और लोग एलिजिबल और इनएलिजिबल होते ही रहते हैं। तो आप सोच के देखिए, इतने सारे लोग जहाँ पे हमारी देश की जनता कितनी है आपको पता ही है, उसमें ये मेंटेन करना कि कौन एलिजिबल है और कौन अब इनएलिजिबल है, ये मेंटेन करना ही आप अपने आप में बहुत ही बड़ा काम है। तो पहले तो इलेक्टोरल रोल बनाया जाता है, मतलब कौन है वो लोग जो वोट कर सकते हैं। फिर आप, जैसा कि मैंने आपको बताया था, निर्वाचन क्षेत्र होता है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। अगर हम जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हैं लोकसभा के लिए, तो वो होती है कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर लोकसभा। तो जब लोकसभा के लिए इलेक्शन हो रहे हैं, जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, तो आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर के कई सारे पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं जहाँ पे आप वोट कर सकते हैं। आप पोलिंग बूथ में जाएंगे, आपकी आईडी, सो आपको एक चीज़ पता होगी कि वोटर आईडी कार्ड होना इज नॉट इक्विवेलेंट टू बीइंग एलिजिबल टू बी अ वोटर। यू नीड टू हैव योर नेम एनलिस्टेड इन द इलेक्टोरल रोल एज वेल। सिर्फ वोटर आईडी कार्ड होना ही अपने आप में कंप्लीट एलिजिबिलिटी नहीं है, आपको एक एलिजिबल वोटर भी बनना है। अगर आप एलिजिबल वोटर भी हैं, आपका नाम है रोल्स में और आपके पास वोटर आईडी कार्ड भी है, तो आप पोलिंग बूथ में जाकर के वोट दे सकते हैं। अभी जो सिस्टम हमारी कंट्री में चल रहा है वो चल रहा है ईवीएम्स का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पहले वो पर्ची वाला सिस्टम रहता था, तो आप अपना वोट डालेंगे और उसके बाद फिर रिटर्निंग ऑफिसर्स, काउंटिंग ऑफिसर्स, बूथ ऑफिसर्स, ये लोग होते हैं, ऑब्जर्वर्स, कई सारे ऑफिसर्स हैं। ये सारे ऑफिसर्स लोग की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं और ये सब इंश्योर करते हैं कि कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं विदाउट एनी थ्रेट और प्रेशर, रिक्वायर्ड उस स्टिपुलेटेड टाइम के ही अंदर। फिर काउंटिंग होती है, आपने एक बार वोट अपने डाल दिया, उसके बाद काउंटिंग होती है, काउंटिंग के बाद डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होता है। अब ये सिमिलरली ऐसा ही स्टेट में भी होता है कि जहाँ पे अब उसका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो अलग बनता है जनरल इलेक्शन से, क्योंकि जो, जैसे कि आपको पता होगा कि लोकसभा में नंबर ऑफ सीट्स जितनी रहती है विच इज़ एक्चुअली 543, तो पूरे देश को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए लोग वोट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को। वैसे ही जब स्टेट इलेक्शंस हो रहे हैं, असेंबली इलेक्शंस, तो स्टेट को भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है और फिर वहाँ पे लोग अपनी जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो बिलोंग करते हैं वहाँ पे जाकर वो वोट कर सकते हैं, वो कहीं और वोट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि मैं मध्य प्रदेश में मेरा वोटर आईडी वहाँ से है, मैं वहाँ के इलेक्टोरल रोल में हूँ, तो मैं दिल्ली के इलेक्शंस में वोट नहीं कर सकती। आई हैव टू गो टू मध्य प्रदेश, टू दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, एंड वहीं मैं वोट कर सकती हूँ। ये सब इसलिए इंश्योर किया जाता है कि लोग इसमें अनफेयर मीन्स ना यूज़ हो सके, बेसिकली कि जनता को ले जाया जा रहा है और कहीं और वोटिंग कराई जा रही है, तो आप वहीं वोट कर सकते हैं जहाँ के आप हैं। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, फिर काउंटिंग होती है और इसके बाद जितने भी लोग जीत रहे हैं अपनी अपनी सीट्स में, वो फिर काउंट होता है कि कौन सी, अगर वो किसी पार्टी को बिलोंग कर रहे हैं तो जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा सीट्स आती हैं दे कैन फॉर्म द गवर्नमेंट, अगर नहीं आती है तो दे कैन फॉर्म कोअलिशन गवर्नमेंट, जिसमें वो और लोगों के साथ मिल करके फिर एक ऐसी गवर्नमेंट बनाते हैं जिसमें एक से ज़्यादा पार्टी होती है। सो दे मेक कोअलिशंस एंड देन दे फॉर्म द गवर्नमेंट, जिनको बेसिकली जो बोलते हैं ना कि एट द फ्लोर ऑफ द हाउस दे हैव टू प्रूव, कॉन्फिडेंस मोशन होता है कि बाकी लोग अगर सवाल रेज, बेसिकली किसी को स्कोप नहीं देना या सवाल रेज करने का कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास ना हो सके, कि ये सरकार नहीं बना सकती, या इनकी सरकार गिराना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, सरकार गिराने का मतलब होता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना, कि ये गवर्नमेंट नहीं बना सकते, दे आर नॉट केपेबल, इनसे सरकार नहीं बनेगी। तो अगर वो नहीं हो रहा है तो आप फिर आप सरकार बना सकते हैं। आपको स्पीकर के सामने बेसिकली प्रपोजल देना होता है कि हमने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सीट्स बना ली, अगर 250 सीट्स हैं तो हमने उसमें 126 सीट हमारे पास है, हम गवर्नमेंट बना सकते हैं। जो पहले चला गया स्पीकर को, जिसने भी ये प्रपोजल दे दिया कि वी हैव मेजोरिटी सीट्स, वो सरकार बना सकते हैं।
0: ओके, देयर इज अ प्रोसेस इन बिटवीन। आपने एक टर्म यूज करी कि अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है दैट डजंट मीन डायरेक्टली कि आप जाके वोट कर सकते हैं, आपको उसके लिए एक स्लिप चाहिए होती है। मैं दो चीजों का फर्क समझना चाहता हूँ। अगर मेरे पास वोटर आईडी कार्ड है तो कितनी संभावना है ये कि मुझे वो वोटिंग के लिए जो स्लिप मिलती है या जो मेरा नाम रोल आउट होता है वो मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो किन ग्राउंड्स पर मुझे हटाया जा सकता है?
1: जी, सो इलेक्टोरल रोल और वोटर आईडी कार्ड, ये दो अलग अलग चीजें हैं। वोटर आईडी कार्ड बेसिकली ये बताता है कि आप भारत के नागरिक हैं और आप वोट करने के लिए एलिजिबल हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बट जो इलेक्टोरल रोल है वो ये बताता है कि इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप वोट करने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, इलेक्टोरल रोल में शामिल होने या उससे हटाए जाने के जो ग्राउंड्स हैं वो ये हो सकते हैं कि आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सालों से रह नहीं रहे हैं। क्योंकि जब इलेक्टोरल रोल बनाने के लिए हर घर में ये ऑफिसर्स जाते हैं, आपने देखा होगा, घर, ये अभी भी ये हमारे यहाँ पूरा टोटल मैनुअल ही चल रहा है, घर घर पहुँचते हैं ये ऑफिसर्स और वो एक्चुअली इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, अगर उनको लगता है कि ये पर्सन अब यहाँ नहीं रहता है, कहीं और शिफ्ट हो गया है, अगर इस पर्सन की डेथ हो गई है, अगर अभी ये नया वोटर ऐड हो सकते हैं क्योंकि अभी 18 साल से ज़्यादा के हो गए हैं, तो इन चीज़ों के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि अभी एलिजिबल वोटर है कि नहीं। तो आपको वेट करना पड़ता है कि आपका नाम इलेक्टोरल रोल में आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो उसके भी रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। आपने फॉर्म 6 सुना होगा, अभी जब SIR की बात हो रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। स्पेशल इंटेंसिव रिविजन किस चीज़ का हो रहा है? इलेक्टोरल रोल का ही हो रहा है। वो ये देखना चाह रहे हैं, ये बेसिकली होता है हर सेंसस के बाद। तो अभी 2026 में एक सेंसस कंप्लीट होने वाला है, अगर आपको पता हो अगले साल उसका डेटा आने वाला है। तो सेंसस का बेसिकली मतलब ये होता है ना, जनगणना, ये जानना कि अब कितने लोग जिंदा हैं, कितने लोग नहीं हैं, कितने नए लोग आ गए हैं, लोग कहाँ माइग्रेट करके चले गए हैं, कौन नए लोग यहाँ आ गए, ये सब का लेखा जोखा होता है। तो उस रोल में अगर आपका नाम नहीं आया और आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं और गलती से आपका नाम हट गया या गलत तरीके से हटाया गया है, या लेट्स से आपके नाम की स्पेलिंग गलत हो गई है, या लेट्स से आपके फादर का नाम गलत हो गया है, एड्रेस गलत आ गया है, या आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी अब बदलनी चाहिए क्योंकि आप कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, अगर आपको इस टाइप के इशूज़ हैं तो इनको हम सिंपल वोटर इशूज़ कहते हैं। तो इसके लिए आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, उनकी सर्विसेज हैं, इलेक्शन सर्विसेज हैं, उस पोर्टल पर जा करके आप जो है दायर कर सकते हैं अपना रिड्रेसल। इसके अलावा अगर आपको इस टाइप का ग्रीवांस है कि इलेक्शन प्रोसीजर में कोई अनफेयरनेस था, जो रिजल्ट आए उसमें अनफेयरनेस है, अगर ये उस टाइप का मैटर है तो आप फिर हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटिशन फाइल कर सकते हैं। सो ये दो टाइप के ग्रीवांस होते हैं, एक तो आपके पर्सनल लेवल पे जो कि सिंपली अप्लाई करके सुधारे जा सकते हैं, और दूसरा अगर आपको पूरे चुनाव प्रणाली में ही कोई अनफेयरनेस नज़र आया कि यहीं पे उसमें ही कुछ गड़बड़ी थी, तो फिर आप इलेक्शन पिटिशन फाइल कर सकते हैं। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि जो इलेक्शन के मैटर्स होते हैं इसके लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में लाइक अ नॉर्मल पिटिशन नहीं जा सकते, स्पेशली इनके लिए अलग से बेंचेस बनाए जाते हैं जिनको हम इलेक्शन पिटिशन कहते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, उनकी इसमें एक्सपर्टीज होती है, उनका काम सिर्फ इलेक्शन पिटिशन को ही सुनना होता है। तो आप इलेक्शन पिटिशन फाइल करेंगे अगर आपको इलेक्शन से रिलेटेड कोई ग्रीवांस है, अदरवाइज जैसे और आपके फंडामेंटल राइट्स के ग्रीवांस होते हैं तो आप SLP फाइल करते हैं, आप रिट फाइल करते हैं, वो कॉमन होते हैं, बट फॉर इलेक्शंस यू हैव अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ पिटिशन व्हिच इज नोन एज इलेक्शन पिटिशन, आप वो फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में।
0: बहुत सुंदर, अलर्ट लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो को कंटिन्यू करेंगे। कुछ और प्रश्न है हमारे जो यहाँ पर हम चाहेंगे मैम एड्रेस करें, फॉर दैट पार्ट जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस एंड एंजॉय दिस म्यूजिकल वाइब, फील गुड फील।

0: ऑन दिस नोट अपने शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूं आरजे सागर, शो यहां पर चल रहा है सत्यमेव जयते, जय हिंद जय भारत। शो में आगे बात करेंगे एसआईआर की, आपने भी बात करी स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, ठीक है। मैं थोड़ा सा और इसके बारे में बात करना चाहूंगा। अभी हाल फिलहाल इसको लेकर बहुत सारे हमने शोर सुना है, लोगों का काफी परेशान हो रहे हैं, काफी इसको अपोज किया जा रहा है। क्या प्रॉब्लम है इस सिस्टम के साथ जिसको लोग कॉल आउट कर रहे हैं?
1: जी, सो स्पेशल इंटेंसिव रिविजन एसआईआर का जो मामला भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रखा है, वो इसलिए हो रहा है कि जैसा कि हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं या मीडिया में सुन रहे हैं कि लगभग 13 करोड़ लोगों का नाम, जो कि एलिजिबल वोटर्स थे, उनका नाम, उनके पास वोटर आईडी कार्ड होते हुए भी उनका नाम आफ्टर एसआईआर इलेक्टोरल रोल से हटा दिया गया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लगभग 1-1.5 साल पहले बिहार में एसआईआर हुए थे और तब फिर पिटिशन फाइल करी गई थी कि एसआईआर में इलीगली बहुत सारे लोगों का नाम हटा दिया गया है, बट फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया था कि ये जो एसआईआर हुआ है पूरा, दिस हैज़ हैपन्ड अकॉर्डिंग टू द लॉज, क्योंकि ये पावर मिला हुआ है चुनाव आयोग को कॉन्स्टिट्यूशन में एज वेल एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया एक्ट में कि वो एसआईआर कंडक्ट कर सकते हैं आफ्टर फ्यू ईयर्स, जब उनको लगता है कि बहुत, मतलब ये एक रेगुलर एक्सरसाइज है आप कह सकते हैं। अभी न्यूज़ में इतना इसलिए आया है क्योंकि थोड़ा पॉलिटिसाइज भी हो गया है, बट न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि बहुत सारे लोगों का नाम हटा दिया गया, स्पेशली क्योंकि दिल्ली में हुआ है ये चीज़, तो वैसे ही और सेंसिटिव हो जाता है थोड़ा, क्योंकि कैपिटल ऑफ इंडिया है। एसआईआर इज़ अ रेगुलर एक्सरसाइज, बट इस बार थोड़े ज़्यादा लोगों का नाम आई थिंक हटा दिया गया है, इसलिए लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं इस बारे में। एंड इन जनरल भी अभी देश का माहौल थोड़ा पॉलिटिसाइज है इसलिए भी, और आपको पता ही है कि अभी जो चल रहा है कि जो सवाल भी उठाए जा रहे हैं पूरे चुनाव प्रणाली में चुनाव आयुक्त के ऊपर, तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए जब नाम हटाए गए हैं तो ये पूरा मिक्स ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स एंड कंट्रोवर्सीज बन गया है। बट आई वुड जस्ट लाइक, नॉट गोइंग टू द कंट्रोवर्सीज, बट आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू दैट एसआईआर इज अ रेगुलर रिविजन प्रोसेस जो कि हर एक जगह आप देख सकते हैं। आपने एक बार कोई कानून बना दिया तो ऐसा नहीं कि वो 50 साल तक वो कानून वैसे का वैसा ही सेम इफेक्टिव रहेगा, ज़रूरत पड़ती है तो उसमें परिवर्तन लाया जाता है। बट ये है कि हमें ज़रूर इंश्योर करना चाहिए कि जिनके नाम हटे हैं वो सही तरीके से हटाए गए हों, किसी अल्टीरियर मोटिव के लिए ये नाम ना हटाए गए हों। जैसा कि बंगाल इलेक्शंस के टाइम भी कहा जा रहा था कि लगभग वहाँ पे भी कुछ 30-35 लाख वोटर्स, एलिजिबल वोटर्स के नाम हटा दिए गए थे, तो लोग ऐसा सवाल उठाते हैं कि इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है कि लोगों ने उन्हीं मतलब फॉर देयर पॉलिटिकल एंड्स, टू मीट देयर पॉलिटिकल एंड्स ऐसा किया गया होगा। इट इज़ अ रेगुलर एक्सरसाइज, बट हमें इंश्योर करना चाहिए कि हम ये चीज़ सही तरीके से करें, इसको और किसी अपने गोल को अचीव करने के लिए ना करा जाए। तो रिवाइज करना ज़रूरी है, बट सही तरीके से रिवाइज करना ज़रूरी है।
0: और अगर मैं एक नागरिक हूँ, मेरा नाम गलत तरीके से वहाँ से हट गया,

0: मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं क्या कर सकता हूँ?
1: जी, तो अगर आपका नाम हट गया, आपको लगता है कि एक गलत तरीके से हटा है, तो आप इलेक्शन कमीशन की एक पोर्टल है इलेक्शन सर्विसेज, आप वहाँ पे जा करके अपना रजिस्ट्रेशन, आप वहाँ पे अपना ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हैं। ऑल्सो देयर इज़ फॉर्म 6, जो भी आपने सुना होगा अभी न्यूज़ में, फॉर्म 6 भर सकते हैं। फॉर्म 6 इज़ नथिंग बट रजिस्टरिंग द चेंजेस दैट यू थिंक शुड बी डन इन योर इलेक्टोरल रोल और योर वोटर आईडी। अगर कुछ गलत है, कुछ मिस हो गया है, कुछ एक्स्ट्रा आ गया है, तो आप उसमें चेंज करा सकते हैं। तो आप बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के पास ये फाइल कर सकते हैं कि आपका नाम जो है वो गलती से हटा दिया गया या फिर गलत तरीके से हटाया गया है, विच शुड बी रेक्टिफाइड। तो आप जाकर के उस पोर्टल में रजिस्टर कर सकते हैं, और अगर आपको पोर्टल पर रजिस्टर नहीं करना है तो आप फिजिकली भी ऑफिस में ये कंप्लेन जो है रजिस्टर कर सकते हैं।
0: ऑलराइट, आई एम डन विद माई क्वेश्चंस। लास्ट में जाते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हर एक नागरिक को भारत के, आपको एक बेसिक गवर्नेंस टूलकिट देनी हो जिसमें तीन चीजें कौन सी होने वाली हैं जो उनको पता होनी चाहिए, अबाउट देयर कॉन्स्टिट्यूशन, अबाउट द इलेक्शंस एंड अबाउट देयर राइट्स टू सीक रिड्रेसल।
1: जी, अगर अगर हमें ऐसा कुछ टूलकिट की जो आप बात कर रहे हैं, ऐसा कोई टूलकिट होना चाहिए जो कि अपने आप में कंप्लीट हो, जिससे कि मुझे ये पता चले कि मुझे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, अगर मैं गलत ना हूं तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, दूसरा आपने कौन सा बोला था टूलकिट में क्या होना चाहिए?
0: देयर राइट्स टू सीक रिड्रेसल एंड अबाउट इलेक्शंस, कॉन्स्टिट्यूशन, क्या चीजें उन्हें पता होनी चाहिए, नॉन नेगोशिएबल।
1: अच्छा, उन्हें क्या चीजें पता, अच्छा ठीक है। तो अगर हम भारत के नागरिक हैं तो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि हमारे पास मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, सोचने का मौलिक अधिकार है, बोलने का मौलिक अधिकार है, काम करने का मौलिक अधिकार है, समानता का मौलिक अधिकार है। बस आपको खड़े होने की हिम्मत रखनी चाहिए, क्योंकि खड़े होने वाले के साथ अक्सर दुनिया उतना साथ नहीं चलती है। आपके पास हिम्मत होनी चाहिए, आप और आपको जागरूक भी होना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि संविधान हर किसी को पढ़ना चाहिए, सिर्फ लॉयर्स को, सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ना चाहिए। संविधान आपका भी उतना ही है जितना लॉयर्स का है, तो संविधान हर किसी को पढ़ना चाहिए। तो इसके अलावा आपकी वॉइस मैटर करती है, बट वॉइस सही वॉइस मैटर करती है। आपके पास सोचने और समझने की शक्ति होनी चाहिए, आपके आँख बंद नहीं होने चाहिए, आपके कान बंद नहीं होने चाहिए। मैं चाहती हूँ आज के टाइम पे देश के हर एक नागरिक को अपनी आँखें और अपना अपने कान सोच करके, अपना दिमाग खोल करके वोट करना चाहिए और दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। आई जस्ट विश दैट एवरीबडी गेट्स दिस अवेयरनेस टू नॉट बी जस्ट कीप फ्लोइंग विद वॉट एवर इज गोइंग ऑन, दे शुड बी एबल टू सी थ्रू। तो सिर्फ किसी के बोलने पर, जैसे हम, मैं वो शब्द यूज़ नहीं करना चाहती यहाँ पर, लेकिन हमें सिर्फ विश्वास करने के लिए किसी चीज़ पर विश्वास नहीं करना है, हमें अपने दिमाग से विश्वास करना चाहिए। और बिल्कुल, हमें अपने अपने अधिकारों के लिए खड़े होना चाहिए और दूसरों के अधिकारों के लिए भी खड़े होना चाहिए हमें।
0: बहुत सुंदर। Alright, ma'am, I'm done with the show. Thank you so much for coming here. Thank you so much for giving us this time. And I just hope कि जितने listeners ने ये पूरा show सुना होगा, आपको काफ़ी कुछ basics के बारे में पता लगा exactly कि क्या क्या rights हैं आपके, कैसे ये SIR काम करता है। It's a regular practice. So don't make it so हवा और hype कि भैया ये क्या डाल दिया हमारे ऊपर। It's a regular practice just to avoid disturbing elements. Okay, that is the process जो बहुत time से रहा है हमारे साथ। So thank you so much, ma'am, for joining us.
1: Thank you.
0: All right, dosto, now on this note, this is your dost and host, Arjit Sagar, signing off.
2: Mera

रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती है बातें। और आज भी आपको ना कहीं घूमने के लिए लेकर के जाने वाली हूँ एक बड़ी खूबसूरत सी जगह। जी हाँ, जहाँ आकर आपको टाइम का ना मतलब पता ही नहीं चलेगा, समय जो है वो थम जाता है। और ऐसी जगह पर ना मतलब बहुत सुकून मिलता है। ये जगह जो है बहुत ही कमाल की है और श्रद्धा के दो जो बूंद है आंसू हर आत्मा को मुक्ति दिला देते हैं, ये जगह वही बताती है। और आज ना इस जगह के बारे में मैं बात आपसे करने वाली हूँ। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, इसे मुक्ति धाम कहा जाता है। इसे कहा जाता है कि यहाँ आपको जो है वो मुक्ति मिलती है। और साथ ही साथ आपको बता दूं मैं कि आज का हमारा सफर हमें लेकर के जा रहा है बिहार, और बिहार के सबसे प्राचीन शांत और आत्मिक जो केंद्र है यहाँ लेकर के आए हैं, जिसे हम और आप गया जी कहते हैं। ध्यान रहे, आज हम बोध गया के ध्यान मार्ग से थोड़ा अलग जो है वो जाएंगे। गया शहर के उन सदियों पुराने वैदिक आंगन में कदम रखेंगे और साथ ही साथ उन जहाँ उन हर गली हर गली जो है घाट पर जो पत्थर है सृष्टि की शुरुआत की कहानी जो कहते हैं, आज उनसे रूबरू होंगे। इमेजिन कीजिए, सुबह के 5 बजे हैं, हवा में ठंडक है और साथ ही फल्गु नदी के किनारे मंत्रोच्चारण की गूंज है। और देखिए, शास्त्रों की अगर हम बात करें, शास्त्र वास्त्रों में जो पंडित जी पितरों का आह्वान कर रहे हैं और हर तरफ मिट्टी के जो कटोरों में तिल जो है और साथ ही तुलसी की महक घुली हुई है। ये गया जो है ना, गया जी सिर्फ एक शहर नहीं है, ये हमारे संस्कारों का वो आखिरी मोड़ है जहां आकर हम अपने पुरखों के प्रति अपना सबसे बड़ा फर्ज अपना कर्ज चुकाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में मैं गया जी आपको घुमाने वाली हूँ। गया के सदियों पुराने वेदों, गुप्त नदियों, पहाड़ों और स्वाद की ऐसी सैर पर आपको ले जाने वाली हूँ जो कि आपका दिल छू जाएंगी। चलिए एक छोटा सा मैं ब्रेक लेती हूँ, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से

एक बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती है बातें। जी हाँ, आज आपको एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह लेकर के आई हूँ। ये जगह और कोई नहीं बल्कि है गया जी। जी हाँ, और आज का हमारा ये सफ़र हमें आज गया जी लेकर के आया है। तो आज गया जी की बहुत सारी मैं बातें करने वाली हूँ। देखिए, शहर का नाम गया कैसे पड़ा, इसके पीछे वायु पुराण की एक बहुत जो भावुक दास्तां है। कहते हैं कि गयासुर नाम का एक असुर था, पर उसके कर्म किसी देवता से भी ज्यादा पवित्र थे। उसने किसी देखिए ऐसी कठिन तपस्या ऐसी की थी कि भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि जो भी उसे देखेगा वो सीधा मुक्ति उसको मिल जाएगी। पर देखिए, इससे संसार का जो संतुलन है वो बिगड़ने लगा और हर कोई पाप करके भाई सीधे स्वर्ग जाने लगा। तब देवताओं ने जो है वो यज्ञ के लिए उसके विशाल शरीर की मांग करी और गयासुर ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना शरीर धरती पर बिछा दिया। जब यज्ञ के बाद भी उसका शरीर हिला तो भगवान विष्णु ने अपना जो दाहिना पैर है उसकी छाती पर रख कर उसे जो है वो स्थिर किया। गयासुर ने अंतिम इच्छा मांगी कि ये जगह उसके नाम से जानी जाए और जो यहाँ पर पितरों का पिंड दान करके उसे जो है वो करे तो उसे पुरखों को हमेशा के लिए उनके जो है वो मोक्ष मिल जाए। गयासुर के ये जो त्याग उन्होंने किया हमें ये सिखाता है कि बड़प्पन हमेशा परोपकार में होता है। और आजकल देखिए, हम अपने पुरखों का तो पिंड दान करते ही हैं। कई बार ये भी हमने सुना है या कई बार ये भी हमने जाना है कि लोग जो हैं पहले से पहले खुद का पिंड दान भी करके आते हैं। लेकिन जो मान्यता ये है कि जो आपके पितृ हैं उनका जो यानी कि जो आपके पूर्वज हैं, आपके जो आगे जो पहले की जनरेशन है, आपके दादा बाबा जो अब नहीं रहे हैं, उनका पितृदान किया जाता है ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। चलिए, इसी के साथ अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रेस्ट 107.8 FM। फील गुड, फील राइट।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप, मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। आज आपको लेकर आई हूँ मोक्षधाम जिसे कहते हैं गया जी, जी हाँ हम गया जी इनको कहते हैं। साथ ही साथ देखिए मैं आपको बता दूँ गया शहर का सबसे बड़ा और यहाँ का सबसे शक्तिशाली केंद्र है विष्णुपड़ टेम्पल। और विष्णुपद टेम्पल जो है ये फल्गु नदी के पश्चिमी तट पर स्थित ये मंदिर 1787 में इंदौर की महान और निष्प्रिय रानी जो है उन्होंने जो है बनवाया था, महारानी अहिल्याबाई होलकर ने ये मंदिर बनवाया था। मंदिर का आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बेहद विशाल है और प्रभावी है। पूरा मंदिर सॉलिड ग्रे ग्रेनाइट के ब्लॉक्स को आयरन क्लैम्प्स से जोड़कर बनाया गया है। मंदिर के 30 मीटर ऊंचे ऑक्टोगोनल जो शिखर है शिखरा जो है इसके नीचे गर्भगृह है और इसके नीचे गर्भगृह स्थित है जिसे धर्मशिला, जहां भगवान विष्णु के 40 सेंटीमीटर लंबे चरण चिन्ह जो है वो उकेरे हुए हैं और इन चरणों पर 9 अलग अलग प्रतीक जैसे कि शंख चक्र और गदा बने हुए हैं। जब पंडित जी सुबह सुबह इस चरण पर चंदन तुलसी और तुलसी पात्र जो है और साथ ही गुलाब अर्पित करते हैं तो वहाँ की जो ऊर्जा है वो इतनी शांत हो जाती है कि आपके मन का सारा जो भटकाव है जो भटक रहा है वो एक पल में शांत हो जाता है और सारा स्ट्रेस बस यूं ही खत्म हो जाता है। विष्णुपद मंदिर के आंगन से निकलकर अगर आप जाते हैं फल्गु नदी के तट पर, इसे जो है वो देखिए अंदर ही अंदर बहने वाली नदी कहा जाता है। और जो मैं आपको बता दूं कि ये जो नदी है बड़ी खूबसूरत दिखने में है, ऊपर से दिखने पर ये पूरी तरह से सूखी रेत दिखती है, पर जैसे ही आप रेत में थोड़ा सा गड्ढा खोदेंगे तो कांच जैसी साफ और मीठा पानी जो है वो छलक उठता है। इसके पीछे वाल्मीकि रामायण का एक किस्सा जुड़ा हुआ है। ये किस्सा क्या है आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूं हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूं और बहुत सारी होती हैं बातें। जी हाँ, गया आज आपको लेकर के आई हूं और गया जी की बहुत सारी बातें आपको बता रही हूं। और देखिए, एक वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक किस्सा आपको बताने वाली हूं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप फरीदाबाद से बाहर जा रहे हो और ये सोच रहे हैं कि रेडियो मानव रचना के साथ कैसे जुड़ना है, तो बस आपको क्या करना है, हमारा इंटरनेट ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले अपना एंड्रॉइड या मोबाइल फोन लेना है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर जाना है, सर्च बॉक्स में लिखना है रेडियो मानव रचना, जिसके बाद ऐप आपको दिख जाएगी, आपको कीजिए डाउनलोड और ढेर सारे पॉडकास्ट, एक्सपर्ट की एडवाइस और बहुत ही कमाल के सुपर डुपर हिट गाने आप सुन सकते हैं वर्ल्ड में कभी भी कहीं से भी। तो बस देरी किस बात की, जल्दी से डाउनलोड कीजिए ऐप और आप हमें सोशल मीडिया के थ्रू भी आप हमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो बस जल्दी से आप हमारे साथ जुड़ जाइए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मैन रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। आज लेकर के आई हूँ एक बहुत ही खास खूबसूरत जगह के बारे में बात आपसे कर रही हूँ। ये जगह है गया। जी हाँ, गया जी के बारे में आपको बता रही हूँ। तो यहाँ की एक और बात मैं आपको बताऊँ कि देखिए, एक ना वाल्मीकि रामायण का किस्सा जो है वो जुड़ा हुआ है जगह से। कहते हैं कि वनवास के दौरान जब भगवान राम और लक्ष्मण जी पिंडदान की सामग्री लेने गए थे, तब राजा दशरथ की आत्मा ने जो है या प्रकट होकर माता सीता से भोजन मांगा। सीता जी ने फल्गु नदी गया में, यानी कि गाय, तुलसी और बरगद के पेड़ के गवाह बनाकर फल्गु के रेत का पिंड अर्पित किया। पर जब राम जी आए तो फल्गु नदी ने शर्म और डर से झूठ बोल दिया कि सीता जी ने कोई पिंड नहीं दिया। अब देखिए, माता सीता ने गुस्से में आकर फल्गु को श्राप दिया कि वो हमेशा सूखी रहेगी और उसका पानी सिर्फ जमीन के नीचे बहेगा। आज देखिए, रबर डैम बनने के बाद जो है वो घाटों पर पानी टिका रहता है, पर इस नदी का जो कुदरती जो रहस्य है आज भी वही है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो देखिए ऐसी जुड़ी हुई हैं, पुरानी चीज़ें हैं जो हमारे देखिए हमने सुनी है, लोक कथाओं के द्वारा हमने सुनी है, या चीज़ें जो हैं ये मानी जाती हैं और आज भी जो है कई सारी चीज़ें मुमकिन हैं या चीज़ें जो है ये होती हैं। तो चलिए इसके साथ तभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रेस्टा 107.8 FM। फील गुड।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। और इस सफरनामा में बहुत ही खूबसूरत जगह आज आपको लेकर के आई हूँ। आज मैं लेकर के आई हूँ आपको गया। जी हाँ, आम लोगों को लगता है कि गया में सिर्फ एक जगह पिंड दान होता है, पर वास्तव में प्राचीन परंपरा के अनुसार गया में कुछ 45 अलग अलग वैदिक स्थान है जहाँ पिंड दान किया जाता है। पुराने जमाने में लगभग कुछ 360 जो है वो वैद्य हुआ करती थी। लेकिन देखिए, ये वैद्य अलग अलग कुंडों, तालाबों, पहाड़ों और मंदिरों में फैली हुई है। जैसे यहाँ पर जो है ब्रह्म सरोवर हो गया, या फिर उत्तर मानसरोवर, रुक्मणी कुंड और साथ ही साथ प्रेतशिला। यात्री एक दिन, 3 दिन या पूरे 17 दिन जो है वो पंचक्रोशी यात्रा करके इन सभी स्थानों पर जौ के आटे की, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, और काले तिल का पिंड जो है वो अर्पित करते हैं। हर एक वैदी के का जो है वो अलग इतिहास है, शास्त्र विधि है, और इन रास्तों पर चलते हुए आपको एहसास होता है कि हमारे पुरखों ने कितनी बारीकी से हमारी संस्कृति और आत्मिक शांति के नियम बनाए थे। चलिए, इसी के साथ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना और 7.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। और सफरनामा ये जो प्रोग्राम लेकर के आती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। आज आपको लेकर के आई हूँ गया। गया शहर से लगभग 8 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में खड़ी है एक पथरीली ऊंची पहाड़ी प्रेतशिला, द हिल ऑफ घोस्ट, जिसकी ऊंचाई लगभग 870 फुट है। यहां तक पहुंचने के लिए लगभग कुछ 676 सीढ़ियां स्टेयर्स जो हैं वो चढ़नी पड़ती है। लोकल विश्वास और गरुड़ पुराण के अनुसार देखिए, जिन आत्माओं की अकाल मृत्यु यानी कि अननेचुरल डेथ हो जाती है या जो है वो अशांत रहती हैं, उनकी शांति के लिए प्रेतशिला पर पिंड दान करना अनिवार्य माना जाता है। चोटी पर भगवान यामा और लॉर्ड शिवा यानी कि भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है। वहाँ एक चट्टान के जो छेदों से होकर हवा जो है जब सरसराती है तो अजीब सा एक सन्नाटा बनता है। प्रेतशिला की चोटी पर खड़े होकर जब आप चारों तरफ फैली जो घाटियां और पहाड़ों को देखते हैं तो मन एक विशाल शांति और विनम्रता से भर जाता है। तो ये जगह ही कुछ इस तरीके से है और आप अगर जाना चाहते हो ज़रूर जा सकते हैं उस जगह को, आप और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अभी फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लूँगी, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। आज आपको लेकर के आई हूँ गया। गया के सदर्न हिस्से में स्थित है यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी ब्रह्मयोनी हिल, जो लगभग 450 मीटर ऊंची है और 400 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़कर जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो दो नेचुरल नैरो केव्स गुफाएं जो है ये मिलती हैं, जिन्हें ब्रह्मयोनी और साथ ही मृत्युयोनी कहते हैं। इसी के साथ साथ देखिए, पुरानी मान्यताओं के अनुसार ये भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन सक्रिय गुफाओं के बीच से निकल जाता है वो पुनर्जन्म के चक्रव्यूह और साथ ही गर्भस्था के जो दुखों से मुक्त हो जाता है। और इसी पहाड़ी पर गौतम बुद्ध ने अपने 1000 शिष्यों को अपना मशहूर फायर सेमन, यानी कि जो देखिए जो एक उनका तरीका था वो उनको दिया था, जहां उन्होंने बताया था कि संसार रागा या फिर द्वेषा और मोह की आग में जल रहा है और ऊपर से पूरे गया शहर और फल्गु नदी के एरियल व्यू जो है ये भी जब आप देखेंगे उस चोटी से तो वो भी बहुत खूबसूरत और शानदार दिखाई देता है। तो देखिए, ये जगह जो है वो मान्यताओं से जुड़ी हुई है, ये जगह जो है स्पिरिचुअल है, ये जगह जो है यहाँ पर आपको शांति मिलेगी, ये जगह जो है यहाँ पर आपको बुद्ध का ज्ञान भी मिलेगा, ये जगह है गया जी। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा मैं ब्रेक लेती हूँ, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। आप कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, feel like

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा. और ये सफरनामा में देखिए आज हम एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह आए हैं, गया जी हम आए हैं. हर सैटरडे आपके लिए प्रोग्राम लेकर के आती हूँ, सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ. आज हम गया जी आए हैं, तो चलिए अब आए हैं तो थोड़ी पेट पूजा भी की जाए. गया के उस स्वाद की बात करें जिससे बिना या देखिए ये जो सफर है इस स्वाद के वो बिल्कुल अधूरा है. गया का तिलकुट, जी हाँ. देखिए रामना रोड और यहाँ के टकारी रोड के गलियों में घुसते ही हवा में जो है वो भुने हुए तिल और गरम गुड़ की महक घूमने लगती है. तिलकुट बनाने की कला कोई आम बात नहीं है. सफेद तिल को कोयले की आंच पर भुना जाता है, फिर पिघले हुए गुड़ या चीनी के साथ मिलाकर गरम गरम उसे जो है वो हालत में ही उसे जो है लोहे के भारी कूटना जो है जो होता है जिसे कूटा जाता है उसे कूटा जाता है. और जो है वो दो लोग मिलकर लगातार पीटते रहते हैं. और इसकी खासियत ये है कि ये इतना खस्ता और पतला बनता है कि मुंह में रखते ही बिना चबाए घुल जाता है. और ठंड के मौसम में खोया और गुड़ वाला जो तिलकुट है वो खाने का ना एक अलग ही मज़ा है, एक लुफ्त है. इसके साथ चावल के आटे के और मेवे से बना हुआ जो अनारसा है और साथ ही मखाने की लाई खाना जो है मत बिल्कुल भूलिएगा. ये स्वाद जो है वो सदियों की मेहनत और परंपरा का एक तोहफा है. इसी के साथ साथ देखिए आज हम एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह तो आए हैं, गया जी की आज हम बात कर रहे हैं. फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और लेती हूँ जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें. कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.

वेलकम बैक रेडियो मैनेव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत से प्रोग्राम लेकर के आती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। आज लेकर के आई हूँ आपको गया। जी हाँ, देखिए गया की मैं बात करूँ तो भस्मकूट पहाड़ी पर स्थित है कुछ, देखिए एक बहुत ही खूबसूरत सी एक जो कहूँगी मैं एक जगह जो है ये है, और 51 पवित्र शक्ति पीठों में से एक है माँ मंगला गौरी टेंपल। पौराणिक कथाओं के मुताबिक यहाँ माता सती का स्तन यानी कि ब्रेस्ट गिरा था, इसीलिए इसे स्तन पीठ का रूप जो है इसमें पूजा की जाती है। 15th century का ये मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर है जहाँ तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मंदिर का आंगन जो है, इस आंगन में प्राचीन यज्ञ कुंड और अखंड दीपक जलता रहता है। श्रावण के महीने में यहां मंगला गौरी व्रत करने के लिए हजारों महिलाएं आती हैं। मंदिर के माहौल इतना ज्यादा यहां पर शांत और पवित्र है कि यहां आकर भक्त अपने परिवार की सुरक्षा और मंगल कामना के लिए माथा टेकते हैं। गया की इस स्पिरिचुअल यात्रा में माता का ये दरबार एक अलग ही विश्वास और ऊर्जा से भर आपको देता है। तो जैसे अगर आप गया जाएं तो ये जो माँ मंगला गौरी टेंपल है यहाँ आप जरूर से भी जरूर जाएगा, क्योंकि ये टेंपल बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ धार्मिक जो है ये से जुड़ा हुआ है, मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। चलिए इसी के साथ अब लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा. सफरनामा एक खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ. बहुत सारी होती हैं बातें और इसी के साथ देखिए आज बातें जो हैं वो तो हमने करी हैं और आज लेकर के आई हूँ बड़ी खूबसूरत सी जगह आपको. आज मैं लेकर के आई हूँ आपको गया जी. जी हाँ, देखिए गया जी की आज हमने बात करी है. गया आने का प्लान अगर आप कर रहे हैं तो, अगर आप जाने का घूमने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि 2 दिन का एक सिंपल और परफेक्ट आइटनरी आप बना सकते हैं. Day 1 आप सुबह गया जंक्शन या पटना के रास्ते गया पहुंच जाइए. फल्गु नदी के घाट पर आपको स्नान करना है, विष्णुपद टेंपल के दर्शन कीजिए और उसके साथ साथ आपको जो है अक्षयवट जाकर प्रणाम करना है. दोपहर को रामना रोड जाकर आपको ताजा तिलकुट खरीदना है और लोकल कचौड़ी या नाश्ता आप कर लीजिए. शाम को बोध गया स्थित जो है आपको जो है यहाँ पर जो है शिफ्ट हो जाइए. आप बोध गया थोड़ा सा घूम लीजिए और यहाँ पर आपको महाबोधि टेंपल जो है वो आपको जाना है और शाम की आरती और ध्यान में आपको शामिल हो जाना है. Day 2 की अगर बात करें तो सुबह जल्दी बोधि ट्री के नीचे आपको बैठकर मेडिटेशन करनी है. द ग्रेट बुद्धा स्टैचू वहां पर देखिए. इसके बाद दोपहर को आपको थाई, जापानीज या जो भूटनीज मॉनेस्ट्रीज है यहाँ पर, मॉनेस्ट्री यहाँ पर जो है वो एक्सप्लोर कीजिए. शाम को जो है वो आपको जो है निरंजना नदी क्रॉस करके यहाँ पर सुजाता स्तूपा आप उसके बाद जाना है. इसके बाद लोकल हैंडीक्राफ्ट मार्केट से आपको अलग अलग जो भी चीज़ें आप खरीदना चाहते हैं वो आप खरीद लीजिए और इस पवित्र सफर को पूरा कीजिए. चलिए अब गया तो हम आ गए और इतनी सारी बातें भी की हैं. अगर आप भी कोई जगह ऐसी जानते हैं जो कि एक्सप्लोर करनी ज़रूर चाहिए सभी को और आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं हमारे थ्रू, ज़रूर हमें बता सकते हैं. नंबर बहुत ही आसान है 8010781078. फिलहाल अब वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का, तो मुझे दीजिए इजाज़त. कल होगी आपसे मुलाकात, होंगी बहुत सारी बातें. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. Feel good, feel life. Bye-bye. Take care.

0: अरे अरे, अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में।
2: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।
3: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। और आपको तो पता ही है कि महिला सशक्तिकरण मेरे दिल के कितनी करीब है। अक्सर मैं सशक्तिकरण की तो बात करती हूँ, लेकिन इस कार्यक्रम में मैं आपको ऐसी महिलाओं से मिलवाती हूँ जो एम्पावर्ड हैं, सशक्त हैं और जो सशक्तिकरण दूसरी महिलाओं में भी फैला रही हैं। सो आज हम जिनसे बात करने वाले हैं वो हैं प्रेरणा यादव जी, जो कि फाउंडर हैं क्यारी की। क्यारी एक बहुत ही खूबसूरत सा मुझे कहना चाहिए पहल है, जहां पर कि ना सिर्फ आपको आर्ट मिलता है लेकिन बहुत ही खूबसूरत आर्ट की चीजें मिलती हैं। सो क्यारी के लिए अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप ऑफकोर्स इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम प्रेरणा जी से ढेर सारी बातें करने वाले हैं और हम उनसे जानने वाले हैं कि भाई ये क्यारी की शुरुआत कैसी हुई और इनकी खुद के सशक्तिकरण की जर्नी कैसी है। लेकिन इन सारी बातों के लिए करेंगे स्वागत प्रेरणा जी का रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में। प्रेरणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: थैंक यू भावना फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस बिग प्लेटफॉर्म।
3: प्रेरणा जी, सबसे पहला सवाल, दरअसल मेरे कार्यक्रम का ये एक स्टैंडर्ड सवाल है और हर महिला से मैं ये सवाल पूछती हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि महिला के लिए महिला सशक्तिकरण यानी विमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन बिल्कुल अलग होती है। सो अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या कहेंगी आप, आपके नजरिए में महिला सशक्तिकरण क्या है या आप विमेन एम्पावरमेंट को कैसे डिफाइन करेंगी?
4: भावना, अगर वन वर्ड में कहूं तो मेरे लिए वो इक्वालिटी है। ठीक है, हमारे देश में हम लोग दोनों मेल एंड फीमेल बराबर हैं, हाफ हाफ हैं। तो फीमेल्स और मेल्स का राइट्स, डिग्निटी टू लिव अ फ्री लाइफ, फ्रीडम, हर चीज का फ्रीडम है ना, सोचने का, डिसीजन लेने का, हर चीज में, वो मेरे लिए वही सशक्तिकरण है महिलाओं के लिए कि उन्हें भी सशक्त किया जाए इन सब चीजों से।
3: और जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हम दरअसल ये कहना चाहते हैं कि महिलाओं को समान अधिकार मिले, समान रिस्पेक्ट मिले और साथ के साथ उन्हें यहाँ इस समाज में सर उठाकर जीने का मौका मिले। वेल, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। वक्त है एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का, यानी आपको सुनाने का एक बहुत ही प्यारा सा गाना, फील गुड फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट की इस खूबसूरत सी घड़ी में हम उतनी ही प्यारी और उतनी ही खूबसूरत प्रेरणा यादव जी से बात कर रहे हैं। प्रेरणा यादव जी एक बहुत ही जानी मानी आर्टिस्ट हैं और ये जब अपने हाथ से ब्रश उठाती हैं तो ये इतनी खूबसूरत चीजें बनाती हैं कि क्या कहने। और उसके लिए आपको जाना पड़ेगा क्यारी बाई प्रेरणा यादव जी। तो ये फाउंडर हैं क्यारी की और इनकी क्यारी या इनकी बगिया के फूल बहुत ही खूबसूरत हैं। प्रेरणा जी, अब मैं बात करती हूँ आजकल की महिलाओं के चैलेंजेस के बारे में। सो मैं ये मानती हूँ कि महिलाओं के लिए जीवन थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर मैं आजकल की महिलाओं की बात करूँ तो किस प्रकार के चैलेंजेस फेस कर रही हैं आजकल की महिलाएं?
1: भावना, फॉर मी नंबर वन इज नॉट बीइंग अंडरस्टूड। हम लोग इतने सालों से मुहिम चला रहे हैं इक्वालिटी की, ओके, लेकिन हमारे जो सेकेंड हाफ है, जो मेल काउंटर पार्ट है हम लोग के, वो लोग हमारी सोच को अनरीजनेबल अनरिलेटेबल बताते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हमें सशक्तिकरण की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, जब हम दोनों ही इस पृथ्वी पर बराबर हैं, तो फिर जैसे उन्हें वो सशक्त है वैसे हम लोग क्यों नहीं है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज भी हमारे देश में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे विमेन को इक्वली ट्रीट तो बिल्कुल नहीं किया जाता है। चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, जैसे उन्हें कोई एजुकेशन नहीं मिलता है। अगर वो कुछ काम करने जाती हैं, पहली बात तो बहुतों को तो काम करने का हक भी नहीं है घर में, मतलब घर से बाहर जाके, और अगर कोई काम करती हैं तो उन्हें अपने मेल काउंटर पार्ट से सेम काम के लिए कम पेमेंट मिलता है। और ये चाहे बॉलीवुड जैसे बहुत बड़े प्लेटफॉर्म की बात करो, चाहे छोटी छोटी जगहों पे, आपको ये चीज देखने को मिलता ही है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है हम लोगों के लिए कि जो मेल हैं हमारे समाज के, जो पुरुष लोग हैं, वो लोग इस बात को समझें कि हम लोग किस लिए सशक्तिकरण चाह रहे हैं, हम लोग क्यों इक्वालिटी की मांग कर रहे हैं, ताकि हमें भी पावर एंड डिग्निटी मिले, हम एक रेस्पेक्ट और इक्वालिटी के साथ जिंदगी को जी सकें। और बस यही बात समझने वाली है और इसी के लिए तो हम लोग का संघर्ष है। और ये सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है। और एक चैलेंज ये है कि औरतें भी औरतों के प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पा रही हैं। इवन हमारे घर में जैसे जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, बहुत बुजुर्ग, वो लोग सपोज वो घर की मालकिन ही है एक तरह से, तो वो लोग अपने हिसाब से जिस तरह से उन्होंने जिंदगी

0: या उसी तरह वो नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करें कि नहीं हमारे घर की लड़कियां बाहर नहीं जाएंगी, हमारे घर की लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनेंगी, हमारे घर की लड़कियां दिन भर चौके चूल्हे में ही रहेंगी, उन्हें केवल मर्दों को कैटर करना है, उनकी अपनी कोई सोच समझ शौक कुछ भी नहीं है। तो पुरुष तो है ही, कुछ हमारे जो घरों की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उन लोगों को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और जब वो लोग उतर आएंगी वो इक्वालिटी को समझ पाएंगी तो फिर हमारा स्ट्रगल इतना बड़ा नहीं होगा।
1: देखिए प्रेरणा जी ने ना एक बड़ी अच्छी बात कही है, और इस बात का मैं बिल्कुल मान भी करती हूँ और मैं इस बात से इत्तफाक भी रखती हूँ। इसी को कहते हैं सोशल कंडीशनिंग। हमारे समाज की कंडीशनिंग इस तरीके से है कि महिलाओं को कभी भी ये आंका ही नहीं जाता है कि वो बराबर है। आज अगर हम 2026 की बात करें तो इतना लंबा समय हो गया है, और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि शायद हम बच्चियों को उस तरीके से परवरिश देने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि एक लड़के की होती है। लेकिन अगर हम सदियों पहले की बात करें या शायद आज से 20-25 साल पहले की बात करें तो सशक्तिकरण का ये जो पूरा का पूरा मुहिम है ये चल ही रहा है, और आज भी हम इसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका एकमात्र कारण है कि आज भी अगर आप देखें महिलाओं को पुरुषों की इक्वालिटी की और साथ के साथ समाज में अपनी आइडेंटिटी की क्राइसिस है। क्राइसिस यानी उन्हें यही नहीं समझ में आता है कि उनका अपना वजूद क्या है, और यही सबसे बड़ी परेशानी है। सो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि ये समाज कब समझेगा और खास तौर पर खुद महिलाएं कब समझेंगी। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ, सुना रही हूं एक प्यारा सा गाना, फील गुड फील लाइक।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के खूबसूरत से कार्यक्रम में हम प्रेरणा जी से बात कर रहे हैं। प्रेरणा जी एक आर्टिस्ट हैं, फाउंडर हैं क्यारी की। और प्रेरणा जी, अब आपके जीवन की बात कर लेते हैं। सो आप एक महिला हैं, आपने भी जिंदगी में एक एम्पावरिंग सा डिसीजन लिया। मैं अगर आपके जीवन की बात करूं तो आपने ऐसा कौन सा डिसीजन लिया जिसको आप अपना सशक्तिकरण भरा, और ऐसा डिसीजन कह सकती हैं जिसको लेने के बाद आपने कभी रिग्रेट नहीं किया, और साथ के साथ आपकी क्यारी की शुरुआत कैसे हुई?
1: वेरी नाइस क्वेश्चन भावना। भावना, आई वॉज ब्लेस्ड कि मैं एक एजुकेटेड फैमिली में पैदा ली, और मेरे पेरेंट्स बहुत ब्रॉड माइंडेड थे। उन्हें हमारे यहाँ इक्वालिटी वाली कोई चीज, मतलब हमने सोचा नहीं था कि कुछ इक्वालिटी जैसी कुछ चीज होती है, क्योंकि हमारे भाई बहन सब में शुरू से इक्वालिटी, चाहे घर का काम हो, चाहे बाहर जाना हो, चाहे कुछ भी। एनीवेज, तो मेरा क्यारी का कैसे शुरुआत हो मैं वो बताती हूँ कि मुझे आर्ट में शुरू से बहुत इंटरेस्ट था। इवन मेरी मदर को भी बहुत इंटरेस्ट था। तो आर्ट मैं ऐसे ही कर रही थी जैसे सब बच्चे लोग करते हैं, कुछ ड्राइंग कर लिया, स्कूल से प्रोजेक्ट्स मिला, वो सब किया, बस यहीं तक था। क्योंकि हमारे टाइम में इतने बड़े पैमाने पे ये सब नहीं होता था, क्योंकि सोशल मीडिया भी नहीं था। तो बस हम लोग जो अपने चारों तरफ देखते थे, सीखते थे एक दूसरे से, बस उतना ही करते थे। लेकिन मेरी मम्मी मुझे बहुत हमेशा मोटिवेट करती थी कि जैसे किसी मेरी फ्रेंड की शादी है तो बाहर, वो कहती थी बाजार से सामान खरीद के गिफ्ट मत दो, अपने हाथ से कोई पेंटिंग बना के दो, वो जिंदगी भर उसको चेरिश करेगी, उसके लिए एक मेमोरी होगा, स्वीट मेमोरी होगा कि मेरी फ्रेंड प्रेरणा ने मुझे बना के दिया। तो मैं वैसे ही करती थी एज अ हॉबी। फिर कुछ सालों ये चलता रहा। फिर कुछ सालों बाद मैं कुछ ऐसी सशक्त महिलाओं से, मैं कहूंगी, मैं मिली एक प्लेटफॉर्म पे। मैंने देखा कि बहुत बड़ा बड़ा काम कर रही औरतें। तब मुझे आइडिया आया कि यस, मैं अपने आर्ट को, हॉबी को, मैं एक बिजनेस के रूप में भी बदल सकती हूँ, और उससे केवल मैं ही एम्पावर्ड नहीं होंगी, मेरे थ्रू और भी औरतें और बच्चियां एम्पावर्ड होंगी। तो मैंने उस समय मैंने किसी से पूछा नहीं और मैंने क्यारी स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई क्यारी।
0: क्या बात है। सो देखिए, बहुत सारी महिलाएं हैं ना जिनके पास हुनर तो होता है, जिनके पास टैलेंट तो है, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आता कि हम अपने टैलेंट को एक बिजनेस में, एक आइडेंटिटी में, एक वजूद में कैसे बदलें। उन सभी लोगों के लिए मुझे लगता है कि प्रेरणा जी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। देखिए, आपके पास अगर कोई हुनर है तो ये मत समझिए कि इस हुनर को मैं कहां लेकर जाऊं या क्या करूं। अगर आप जज्बे से लगी रहेंगी ना तो आप उससे बहुत कुछ क्रिएटिव बना सकती हैं। अब अगर मैं क्यारी की ही बात करूं तो प्रेरणा जी, आप हमारे सभी लिसनर्स को बताइए ना कि क्यारी किस प्रकार की चीजें लेकर आता है लोगों के लिए।
1: हाँ भावना, क्यारी में हमारा जो बिजनेस का जो नीश है वो है हैंड पेंटेड ज्वेलरीज। ज्वेलरीज तो आप लोग सब कोई जानते हैं, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, ये सब कोई पहनी हुई है। लेकिन अब जो औरतें थोड़ी स्मार्ट हो गई हैं और वो चाहती हैं अपने आप को थोड़े अलग तरह से प्रेजेंट करना, वो चाहती हैं कि भीड़ में मैं एक मेरी पर्सनालिटी स्टैंड आउट करे, तो वो इस तरह की चीजें पसंद करती हैं। मैं क्ले से, लकड़ी से और MDF बोर्ड से मैं ज्वेलरीज बनाती हूँ, और फैब्रिक से ज्वेलरीज बनाती हूँ, और वो महिलाएं बहुत पसंद करती हैं, बहुत ज्यादा। और इसके अलावा, ये तो मेरा नीश हो गया, इसके अलावा मैं होम डेकोर आइटम्स भी बनाती हूँ, जैसे वुडन वॉल प्लेट्स होते हैं, पेंटिंग्स हो गए, वासेस हो गए, और दिवाली के समय में हमारे यहाँ से दिया, कलश, ये सब लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा डिफरेंट रहता है, थोड़ा आर्टिस्टिक रहता है। तो जो लोग आर्ट पसंद करते हैं या जिन्हें चाहिए कि मेरा घर थोड़ा सा अलग दिखे, थोड़ी और खूबसूरती आ जाए, तो वो लोग बहुत पसंद करते हैं, और इसी से मेरे बिजनेस को बहुत नाम भी मिला है, बहुत पहचान मिली है और बहुत शोहरत मिला है इसी से, ऐसे ही।
0: वाकई दोस्तों, जिस तरीके से हम बात करते हैं आज के ज़माने के हैंडीक्राफ्ट की, और आजकल एक ज़माना है सब कुछ पर्सनलाइज्ड होने का। आप गोल्ड, डायमंड, सिल्वर ज्वेलरी लेने जाते हैं तो आपको बड़ी जनरलाइज्ड ज्वेलरी मिलती है, लेकिन जिस तरीके की ज्वेलरी अब आप अपने लिए डिज़ाइन करवा सकते हैं, मान लीजिए नवरात्रि है और आप माँ दुर्गा की खूबसूरत सी प्रतिमा चाहते हैं जो कि आप अपने गले में पहन कर जा सकें, तो अब ओकेशन के हिसाब से भी आपको ज्वेलरी मिलती है और ये सारा काम जो है आपको मिलता है क्यारी पर। तो ये खूबसूरत सी क्रिएशन है प्रेरणा जी की और बहुत ही अच्छा काम ये कर रही हैं। वेल जुड़े रहिएगा दोस्तों रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ, वक्त एक और प्यारे से गाने का। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का ये कार्यक्रम। और आज हम बात कर रहे हैं प्रेरणा यादव जी से, जो कि फाउंडर हैं क्यारी की। प्रेरणा जी, अब अगला अहम सवाल। अक्सर महिलाओं को ऐसा लगता है कि अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो सशक्त नहीं है। मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि एक महिला को सशक्त होने के लिए कहीं ना कहीं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना जरूरी है?
1: इसमें दो बातें हैं भावना। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो होना जरूरी है बिल्कुल। कुछ औरतें बाहर जाके काम नहीं करना चाहती, वो चाहती उन्हें ये, जैसे हमें आर्ट पसंद है तो हम उसके लिए बाहर भी जाते हैं, हम घर से भी काम कर लेते हैं। और कुछ लोगों को ये सब काम करना पसंद नहीं है, बाहर जाना पसंद नहीं, उन्हें अपने घर को संवारना, अपने बच्चों को देखना, अपने पति को देखना, अच्छे अच्छे खाना बनाना, खूब सुंदर से डेकोरेट करना, उन लोगों को ये सब चीजें पसंद आती हैं, ठीक है। दोनों ही सशक्त हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप बाहर पैसे कमाए तभी आप सशक्त हो सकते, नहीं। इसके लिए अब यहाँ पर बात आती है पुरुष की, उसका उसके घर में जो पुरुष है उनकी मानसिकता कैसी है। अगर वो उसके काम को भी उतना ही वैल्यू दे, घर के काम को भी उतना ही वैल्यू दे जितना वो बाहर जाकर करता है, उसको जितनी वैल्यू मिलती, जितना रिस्पेक्ट मिलता, अगर उस औरत को भी उतना ही मिले तो वो भी सशक्त है। अगर वो घर के बड़े बड़े डिसीजन, छोटे छोटे डिसीजन में उसकी राय ली जाती है, उसको वैल्यू किया जाता है, तो वो औरत भी सशक्त है। अगर वो बच्चों को पाल रही है तो बच्चे का जब एजुकेशन का टाइम हुआ तो केवल पति डिसाइड करेगा कि भाई किस स्कूल में जाएगी या नहीं जाएगी, वाइफ का डिसीजन नहीं लिया जाए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका भी वैल्यू होना चाहिए, उसका भी से होना चाहिए हर डिसीजन में, हर उसमें, तो वो भी तो सशक्त है ना अपने जगह पे। और वो आपका कितना सारा, जैसे अगर कोई आदमी बाहर काम कर रहा और वो घर का काम कर रही, अगर दोनों को बराबर ही वैल्यू दिया जाए तो जिस तरह पुरुष सशक्त है उसी तरह महिला भी सशक्त है।
0: बाकी दोस्तों बिल्कुल सही कहा, सशक्तिकरण सिर्फ पैसा नहीं होता है, महिलाओं की अपना वजूद, अपनी आइडेंटिटी ही उनका सशक्तिकरण है। अब ये कैसे डिसाइड कर रही हैं कि वो जिंदगी को कैसे जीना चाहती हैं, वाकई उन पर ही निर्भर करता है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का ये कार्यक्रम। और आज हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं प्रेरणा जी से। प्रेरणा जी, महिलाओं के लिए क्रिएटिविटी जो है वो एक बहुत बड़ी चीज है, और अक्सर मैंने देखा है महिलाएं बहुत क्रिएटिव होती हैं। सो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप अपने क्यारी के थ्रू बाकी महिलाओं को कैसे एम्पावर कर रही हैं।
1: हाँ, महिलाएं इनका एक इननेट नेचर होता है क्रिएटिविटी का, ये तो गॉड गिफ्टेड होती हैं, हर जगह कुछ ना कुछ अपनी क्रिएटिविटी से लोगों को अचंभित कर ही देती हैं। क्यारी के थ्रू मेरे पास जो औरतें आती हैं काम करने हमारे साथ, पहले तो मैं स्कूल्स और कॉलेजेस में सिखाया करती थी जाके लड़कियों को, जो हम लोग सीखते हैं, मैं पीडीलाइट से जुड़ी हुई थी तो हम लोग जाके सिखाते थे, तो उतनी लड़कियों ने सीखा, वो फिर उस चीज को काम को आगे बढ़ाती थी। और जो मैं घर से अपने बिजनेस को करती, यहाँ मैं जो स्लम्स की औरतें हैं यहाँ पर, मैं उन्हें सिखा रही हूँ, जैसे वो माला गुथना सीख रही हैं हमसे, थोड़ी थोड़ी पेंटिंग करना सीख रही हैं हमसे, और वो सीखती भी हैं और अर्न भी करती हैं। मैं ही उन्हें पे भी करती हूँ और मैं उन्हें सिखाती भी हूँ। तो ठीक है, वो बहुत हाई स्टैंडर्ड पे नहीं वो कर सक रही हैं, लेकिन हाँ, वो अपने घर में अब उनकी एक इज्जत है। अब उनके पति ही उनसे जब मांगते हैं तो बड़ा खुश होती हैं, और हमें दूसरे दिन आके बताती हैं कि दीदी वो आज तो ये राजू के पापा हम ही से पैसा मांगे और हमने दे दिया। तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि कल जो हाथ उनके सामने फैल रहे थे, आज वो हाथ देने के लिए आगे बढ़ रहे। तो महिलाएं इस तरह से भी सशक्त हो रही हैं।
0: देखिए भाई, ये सशक्तिकरण की कहानी बड़ी खूबसूरत है, और सही मायने में जब महिलाओं की कहानियां हम सुनते हैं ना, तो एक अलग किस्म की एनर्जी आती है। बस जरूरत ये है कि हमारा समाज इसे एक्सेप्ट करे, और धीरे धीरे ये बदलाव हमारे समाज में जरूर आए। ये सशक्तिकरण की कहानी यूं ही जारी रहने वाली है। बस आप जुड़े रहेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण के इस खूबसूरत से कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं प्रेरणा यादव जी से, जो फाउंडर हैं क्यारी की। प्रेरणा जी, बहुत सारी बातें हमने आपसे जानी, लेकिन जाते जाते हमारे सभी लिसनर्स को क्या खास मैसेज आप देकर जाना चाहेंगे?
1: मैं महिलाओं से कहना चाहूंगी कि अपने अंदर की ताकत को पहचानें, अपने अंदर छुपी हुई बहुत सारे जो आपके गुण हैं, बहुत सारे हुनर हैं, उसे पहचानें, उन्हें बाहर निकालें, उसे निखारें और अपने पैर पे खड़े होने की कोशिश करें। और मैं जो पुरुष लोगों से मैं ये कहूंगी कि हमें ना भगवान ना पायदान समझो, हमें सिर्फ तुम्हारी तरह ही एक इंसान समझो।
0: What a beautiful message। वाकई भाई, महिलाएं ये नहीं कहती उन्हें भगवान समझे और ना ही आप उन्हें डोरमैट समझे कि आप उस पर से अपनी गंदगी साफ करके आगे निकल जाएं। सो कहीं ना कहीं इक्वालिटी की बात है। प्रेरणा जी, बहुत ही खूबसूरत सी आपकी कहानी है और बहुत ही खूबसूरत सी आपकी जर्नी है। ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी इस जर्नी के लिए, लेकिन तहे दिल से धन्यवाद कि आज आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी।
1: थैंक यू सो मच भावना, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए और उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातों से सब नहीं तो कुछ लोगों को तो थोड़ा बहुत भी फायदा होगा, और अगर फायदा होगा तो मुझसे जब बड़ा खुशकिस्मत कोई नहीं होगा।
0: वाकई दोस्तों, ये जो खूबसूरत सा कार्यक्रम है ये है ही महिला सशक्तिकरण का। सो महिलाएं यूं ही सशक्तिकरण फैलाती रहें और ये जो बदलाव है हम अपने समाज में देखते रहें। वक्त है आपसे इजाजत लेने का, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन तब तक के लिए आप कहीं नहीं जाने वाले, आप जुड़े रहने वाले हैं अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ। आरजे भावना को दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: नमस्कार, मैं हूँ राकेश ओम प्रकाश मेहरा और आप सुन रहे हैं 107.8 मानव प्रश्न।
1: नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में, जिसे लेकर के आता है रेडियो मानव रचना हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं किसी एक ऐसे मुद्दे पर जो जुड़ा हुआ है हमारे आपकी जिंदगी से, और उसी मुद्दे पर हमारा प्रयास रहता है कि हम इस प्रोग्राम के जरिए तलाशें नई सोच के साथ नई दिशाएं जो हमें लेकर के जाएं एक बेहतर भविष्य की ओर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि रेडियो मानव रचना 107.8 FM का हमेशा प्रयास रहता है कि हम आपके जीवन को जितना बेहतर बना सकें, उसको और ज़्यादा खुशनुमा बना सकें। जितने भी प्रयास किए जा सकते हैं, हम रेडियो मानव रचना के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हमेशा उन प्रयासों पर काम करते रहते हैं। ऐसा ही एक प्रयास आज हम अपने कार्यक्रम में एक चर्चा करेंगे एक विषय पर जो जुड़ा हुआ है हमारे जीवन से, हमारी धन संपत्ति को लेकर के। दोस्तों, आम तौर पर जब कभी भी हम बात करते हैं पैसे की, तो वो अपने आप में एक कला है, यानी एक आर्ट है पैसा कमाना। लेकिन उसी पैसे को कैसे बढ़ाया जा सकता है या उसमें वृद्धि करने के तरीके कौन से होते हैं, वो अपने आप में एक साइंस है, एक टेक्निक है। और उसी टेक्निक के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कि हम अपनी तेज रफ्तार जिंदगी में कैसे बेहतर आय तो चाहते हैं, लेकिन उस धन को कैसी समझदारी से, कितनी समझदारी से हम उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। और इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी आज एक खास मेहमान सोनम पारिक, जो एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में रिसर्च और मार्केटिंग हेड हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे सोनम जी के साथ। सोनम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम में नई सोच नई दिशाएं में, वेलकम।
2: बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी।
1: सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। आपने अभी बताया कि एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में आप रिसर्च एंड मार्केटिंग हेड हैं, तो वो क्या है कंपनी?
2: तो हमारी कंपनी है मेवेंस कैपिटल, वो बेसिकली नोएडा में बेस्ड आउट है। ये एक बुटीक वेल्थ एडवाइजरी फर्म है, तो हम यहाँ पे HNIs, अल्ट्रा HNIs, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के वेल्थ मैनेज करते हैं। तो किस तरीके से कहाँ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, किस तरीके से उनको उनका पूरा एक एसेट एलोकेशन होता है, उनका पूरा एक पोर्टफोलियो बनता है, तो इस हिसाब से ये हमारा जॉब प्रोफाइल होता है जो हम क्लाइंट्स के लिए करते हैं। मेरा काम ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के बारे में समझें, क्या मार्केट्स में स्ट्रैटेजीज चल रही हैं, क्या रिसर्च है, क्या ग्लोबल इन्वेस्टिंग में क्या चल रहा है, डोमेस्टिक में क्या चल रहा है, तो वो मेरा जॉब प्रोफाइल है यहाँ पे।
1: तो हम अगर हम सीधे सीधे मुद्दे पर आएं, यदि हम आज के विषय की बात करें, तो एक आम चर्चा में रहता है कि जब कभी भी हम अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई बात करते हैं या व्यापार को लेकर के या पैसे को लेकर के बात करते हैं, तो हम केवल बात करते हैं कि हम कैसे पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आप समझिए कि जो आपका वाला वेल्थ मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक है, उसके बारे में एक चर्चा दिमाग में आती है कि आखिर वेल्थ मैनेजमेंट है क्या। मतलब हम पैसा कमाने की बात करते हैं, व्यापार कीजिए, जॉब कीजिए या कोई नया स्टार्टअप कीजिए, तो हर किसी में एक बात आती है कि हमने पैसा कमाया। लेकिन जब हम वेल्थ मैनेजमेंट वर्ड यूज करते हैं, तो एक्चुअली वेल्थ मैनेजमेंट है क्या? और दूसरी बात ये कि जब कभी भी वेल्थ मैनेजमेंट की बात आती है, तो हम आमतौर पर समझते हैं कि वेल्थ का सीधा सीधा संबंध होता है उन लोगों से जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, या हम जिनको आमतौर पर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अकूत संपत्ति के जो मालिक हैं, उन्हीं को केवल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इस बारे में आपकी क्या राय है?
2: नहीं नहीं नहीं, पहली बात तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के ज़माने में वेल्थ प्लानिंग हर एक बंदे के लिए उतनी ही ज़रूरी है। लोगों को ये लगता होगा, बट आई थिंक वो प्योरली गलत फहमी है। अगर वेल्थ प्लानिंग की बात करें, तो सरल भाषा में ये है, आपका आज सुरक्षित करना और आपका आने वाले कल का लक्ष्य को प्राप्त करने का सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। तो आप वेल्थ प्लानिंग में आपका, जैसे आज अगर कोई नया बंदा अपनी जॉब शुरू कर रहा है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो छोटे छोटे SIPs करें, अपने इंश्योरेंस करें। कंपनीज होंगी, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपना सक्सेशन प्लानिंग करें, एस्टेट प्लानिंग करें। तो ये सब काम जो करना होता है, इसको टोटली वेल्थ मैनेजमेंट कहते हैं। एक टाइम पे शायद वेल्थ मैनेजमेंट चॉइस होती थी, लेकिन आज के ज़माने में मेरे नज़रिए में तो वेल्थ मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी चीज़ है।
1: अच्छा, एक बात आप बताइए सोनम, आमतौर पर देखा है हमने बहुत सारा लोग कमाई भी करते हैं, उनके सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा सेटल्ड होते हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको एक स्ट्रेस रहता है, इकोनॉमिकल स्ट्रेस, अगर आर्थिक तनाव की बात करें, तो उसके पीछे का क्या कारण है?
2: ये देखो, एक वर्ड में अगर मैं बताना चाहूँगी संदीप जी, तो वो है डिसिप्लिन। आज आप किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट करिए, कहीं पर भी करिए, एक कॉमन चीज जो हर प्लेटफॉर्म पे रहेगी वो है डिसिप्लिन। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, लोगों को लगता है कि इनकम माइनस एक्सपेंस इज सेविंग्स, जबकि ये सबसे गलत है। इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। अगर ये लोग सॉर्ट कर लें कि हम पहले बचाएं और उस बचत में डिसिप्लिन फॉलो करते रहें, तो मुझे लगता है ओवर द टाइम ना ये जो इनको भी तनाव हो रहा है अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके या अपने अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ को लेके, वो कहीं ना कहीं ओवर द टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, डिसिप्लिन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये क्विक मनी वाला अगर आप आपका बिहेवियर होगा तो आप वेल्थ नहीं बना पाएंगे। आप पैसे शायद बचा लेंगे, कुछ कमा लेंगे, लेकिन जब हम वेल्थ प्लानिंग की बात कर रहे हैं उस चीज में सिर्फ और सिर्फ आपको डिसिप्लिन हेल्प करेगा।
1: तो कुल मिलाकर के बात यदि हम करें तो आर्थिक तनाव का जो मुख्य कारण है वो है केवल आपका नजरिया। जैसा कि आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि आमतौर पर हम जब सेविंग्स की बात करते हैं तो होती है कि हमारी इनकम और उसमें से जो खर्चे घटाने के बाद जो हमारे पास पैसा बचता है वो हमारी सेविंग है, लेकिन जो नजरिया है वो हमें बदलने की जरूरत है कि हम अपनी आमदनी में से पहले सेविंग्स को अलग करें अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, और बाकी बचे हुए पैसे को ही खर्च करें। अपनी जो खर्चों की जो भी फहरिस्त है उसको हम इतना मैनेज करके चलें कि हम उसमें उसको पूरा कर पाएं। तो बहुत खूबसूरत बात सोनम जी ने अभी हमें बताई है कि एक डिसिप्लिन जो होता है अपनी आय को लेकर के वो रखना बहुत जरूरी है यदि आप अपनी वेल्थ को अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों इस चर्चा को जारी रखेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं आपकी संपत्ति के मैनेजमेंट के बारे में, यानी वेल्थ मैनेजमेंट कैसे किया जाए। आप जो पसीना बहाकर मेहनत करके जो पैसा आप कमाते हैं, उसको वृद्धि करने के, उसको बढ़ाने के कौन से उपाय आप अपना सकते हैं, और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट सोनम पारिक, जो एक बड़ी कंपनी में रिसर्च एंड मार्केटिंग हेड हैं। आज हमने सोनम जी से चर्चा की है आपकी मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में, और कुछ और सवालों के बारे में उनसे जानेंगे और जानकारी लेंगे। तो सोनम, आप एक बात बताइए, यदि कोई युवा, यानी हम जेन जी की बात करते हैं, यंगस्टर्स जॉब करते हैं, तो आमतौर पर देखा जाता है कि जब वो जॉब ज्वाइन करते हैं तो उनको शायद बचत से ज़्यादा कहीं ना कहीं ख्याल रहता है अपनी करंट की जो ज़रूरतें हैं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने का। तो क्या नज़रिया उस समय पे युवाओं को अपनाना चाहिए, या अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो कोई युवा यदि अपनी नौकरी की शुरुआत करता है अपने करियर की, तो बेसिकली उसको सबसे पहले करना क्या चाहिए?
1: देखिए, आज पढ़ लिख के इतनी मेहनत करके कोई जॉब शुरू करता है तो उसका पहला नज़रिया तो यही होता है कि यार थोड़ा अपने पे खर्च कर लें, नई घड़ी ले लें, बाइक ले लें, गाड़ी ले लें, कहीं घूम आए। और जो मुझे लगता है ऑनेस्टली कहीं गलत नहीं है, आपने अपना एक करियर बिल्ड कर रहे हो, आप पैसे कमा रहे हो, लेकिन डिसिप्लिन जितना जल्दी शुरू हो जाता है ना उतना ही बेहतर रिजल्ट देता है। तो मेरा सुझाव तो यही रहेगा कि थोड़ा सा ही सही आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, जो SIP होती है, बेस्ट तरीका। तो आपने जो भी आप इनकम कमाते हो, हम टेक्निकली कहते हैं कि उसका 33-35% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, बट प्रैक्टिकली देखें तो नया नया किसी ने अगर जॉब शुरू किया तो वो पॉसिबल नहीं होता। बट एक डिसिप्लिन लाने के लिए, एक फॉर्मेट बिल्ड करने के लिए कम से कम 20% से वो एक SIP शुरू कर दें, वो डिसिप्लिन आ जाएगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे वो अपने इस डिसिप्लिन को, अपनी SIP अमाउंट को बढ़ाते रहेंगे।
0: तो कुल मिलाकर के बात यह है कि यदि आप कहीं से भी इनकम की शुरुआत करते हैं किसी भी एक नए वेतन के रूप में, तो कहीं ना कहीं आपको उसी समय से डिसिप्लिन होना चाहिए ताकि आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर्ड रह सके। और साथ ही साथ एक बात जो समझने वाली है, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास इतनी बिखरी हुई होती हैं कि वो हमेशा आकर्षित करती हैं, और ख़ासकर हमारे युवाओं को, जो कहीं ना कहीं एक जो EMI का एक फंडा चल पड़ा है कि आप सेविंग्स में रेगुलर पेमेंट देने की बजाय आप कोशिश करते हैं कि आप भविष्य की आवश्यकता की चीज़ें भी करंट में खरीद लें और उसके ऊपर खर्चा करें। तो हमें बचने की ज़रूरत है उन सब बातों से। यदि मैं

0: ये शब्दों में बात कहूँ, जैसे मैंने पिछले भाग में आपसे बात की कि जो वेल्थ मैनेजमेंट है, क्या ये कॉन्सेप्ट केवल उन लोगों के लिए है कि बहुत सारा पैसा होता है? तो मैं उसी बात को एक दूसरे तरीके से कहना चाहता हूँ कि यदि कोई युवा है, उसने अभी जॉब ज्वाइन की और वो अपना, जैसे कि आपने कहा कि 20% मिनिमम एक सेविंग करना चाहिए, तो मैं अगर इसको फिगर आउट करूँ कि यदि कोई व्यक्ति मात्र 5,000 रुपये महीने की सेविंग करता है और उसको निवेश करना चाहता है, तो क्या उसको निवेश शुरू करना चाहिए?
1: बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक जो हमारी इंस्टीट्यूशन है सेबी और एम्फी, उनका ना पूरा कॉन्सेप्ट यही है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को लेके। आज सेबी ने एक मिनिमम 250 रुपये की भी SIP शुरू करवा दी है। उसका कॉन्सेप्ट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करें। तो 5,000 तो बहुत बड़ी रकम हो गई। आपको अगर 1,000 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट महीने दर महीने करना है तो भी आप कर सकते हो।
0: तो ये तो बात हुई SIP और म्यूचुअल फंड की। साथ ही साथ अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है, जब हम वेल्थ मैनेजमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको सीधा सीधा अगर हम लिंक करें इन्वेस्टमेंट से, हमने सेविंग की बात की कि ठीक है पहले हमें सेविंग करना चाहिए, बचे हुए पैसे को खर्च करें, लेकिन यदि हम उस सेविंग को इन्वेस्ट करने की बात करें, तो आप क्योंकि एक रिसर्च मार्केटिंग हेड हैं आप कंपनी की, तो आप बेहतर जानती होंगी कि क्या क्या हमारे पास उपाय हैं या क्या अवसर हमारे पास आज की डेट में अवेलेबल हैं। तो लोगों के मन में जो प्रश्न रहता है कि आखिर उनकी जो सेविंग है उसको इन्वेस्ट कहाँ पर करें, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं?
1: देखिए, मुझे लगता है कहाँ करें से पहले आपको जवाब देना पड़ेगा कैसे करें। ठीक है, आज क्या हो रहा है, आज के डेट में एक बंदे को अगर इन्वेस्टमेंट करनी है उसके किसी फैमिली मेंबर में, उसके किसी फ्रेंड में या जानकार में, अगर किसी ने एक कंपनी से या एक स्कीम से पैसा कमाया है तो वो भी उसी में डाल देते हैं। इनफैक्ट इसका मैं संदीप जी आपको बहुत बढ़िया उदाहरण देना चाहूँगी। तो आपने देखा होगा पिछले साल भर से हमने गोल्ड और सिल्वर में बहुत रैली देखी है कि प्राइस बहुत ही शॉर्टअप हो चुके थे। तो म्यूचुअल फंड में गोल्ड और सिल्वर इन्वेस्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है ETF। तो अगर आपको बाय करना है तो आप गोल्ड ETF या सिल्वर ETF बाय करते हैं। ये कैटेगरी अपने आप में महीने दर महीने 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर पाती थी। जनवरी में गोल्ड सबसे पीक पे था। ठीक है, उस टाइम पे गोल्ड और सिल्वर में जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो 24,000 करोड़ की हुई है। आज डेट पे जनवरी से अभी तक अगर आप देखोगे तो गोल्ड और सिल्वर काफ़ी करेक्ट हो गए। गोल्ड तकरीबन 20 से 24% फॉल ले चुका है और सिल्वर भी लगभग उतना ही फॉल ले चुका है। अब उसका नतीजा क्या हुआ, पिछले महीने मई में उसी फंड में से 3,000 करोड़ निकल गए। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि क्योंकि किसी ने देखा कि यार गोल्ड में बहुत पहले इन्वेस्ट कर रखा हुआ था, जनवरी में बहुत रिटर्न मिल गए तो बंदों ने जान में इन्वेस्ट कर दिया।
0: तो यानी लोग टेक्निकल इन्फॉर्मेशन की बजाय लोगों में, जिसको हम आमतौर पर आम भाषा में भेड़ चाल बोलते हैं, उस तरह का है कि लोग फॉलो करते हैं कि कोई क्या कर रहा है,
1: पास्ट रिटर्न्स देखते हैं, जबकि वो इकलौता तरीका नहीं होता आपका इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए संदीप जी, तीन चीजें हर एक बंदे को समझना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले। पहली चीज है आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। जब मैं रिस्क प्रोफाइल बोलती हूँ तो उसका मतलब ये है कि मार्केट्स में जो हम पिछले 2 साल से देख भी रहे हैं, अगर रिटर्न नहीं आया तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? क्या आप शांति से बैठ के वेट करोगे, आप पैनिक करोगे या आप बेच दोगे? ऐसे करके ना बहुत क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हमारी कंपनी भी करती है, वो क्वेश्चंस का आप जवाब देते हो, उन जवाब से हमें पता चल जाता है कि आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है। दूसरी चीज जो हम करते हैं वो है इन्वेस्टमेंट होराइजन, कि मानो मैं कह रही हूँ मुझे यहाँ से 1 साल के लिए पैसा रखना है, 2 साल के लिए रखना है, 5 साल के लिए रखना है, 10 साल के लिए रखना है। तो दूसरी चीज़ आपको जाननी होगी कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है। तीसरी चीज़ आपका पर्पस क्या है। आज नए युवाओं के लिए शायद पर्पस होगा कि मुझे 2 साल बाद एक यूरोप ट्रिप लेना है, 4 साल बाद एक गाड़ी लेनी है, घर लेना है। मिडिल एज वालों के लिए होगा बच्चों की एडुकेशन या रिटायरमेंट प्लान। तो तीसरा सवाल होगा पर्पस, कि आपका इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है। फिर जाके आता है कि आपको किस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है। आज लोग गलती यही कर रहे हैं, वो शुरू ही नीचे से कर रहे हैं कि किस प्रोडक्ट में डालें, जबकि पहले समझना होगा ये तीन चीजों का जवाब। जब इन तीन चीजों का आपको जवाब मिल जाएंगे ना, तो आपका प्रोडक्ट अपने आप बन जाएगा, आपका एक पूरा एसेट एलोकेशन बन जाएगा कि उन तीन सवाल के हिसाब से आपको इक्विटी में कितना रखना है, डेट में कितना रखना है, ग्लोबल इन्वेस्टिंग में कितना रखना है और गोल्ड और सिल्वर में कितना रखना है।
0: मतलब अगर हम सीधी बात कहें तो वेल्थ मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो एक्चुअली शुरू होता है, सबसे पहले आपको स्वयं को पहचानने की जरूरत है कि आपकी अपनी आवश्यकताएं हैं क्या। यदि हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आपकी अपनी जरूरतें क्या हैं, उन पैरामीटर्स पे कौन सी चीज फिट बैठती है। जब आप उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जवाब मिल जाएगा। और यदि इस प्रकार का जवाब ढूंढने में आप सक्षम नहीं हैं, वहीं पर काम शुरू होता है किसी वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट का।
1: करेक्ट, एकदम सही।
0: तो साथ ही इस चीज में एक और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि आमतौर पर आपने देखा होगा भारतीय गृहस्थी में महिलाओं का भी पूरा एक रोल रहता है, वो भी एक गृहस्थी जीवन बिताते हुए भी उनके पास अपनी एक कुछ सेविंग्स होती हैं, उनकी भी भागीदारी काफी हद तक हमारी जो अगर हम वेल्थ की बात करें तो उसमें होती है। तो उनको किस तरह से इस वेल्थ मैनेजमेंट का पार्ट बनना चाहिए या उनके लिए क्या स्कोप है वेल्थ मैनेजमेंट में?
1: सर देखिए, एक तो सबसे पहली बात, वुमेन इन्वेस्टर्स ने खूब तरक्की कर ली है इसमें। मैं भी कुछ दिन पहले एक डेटा देख रही थी, तो 2020 की बात है, कोविड के टाइम पे जो हमारे म्यूचुअल फंड का AUM है उसका तकरीबन 5-1 लाख करोड़ रुपए वुमेन इन्वेस्टर्स का होता था। दिसंबर 2025 में वो डेटा है 17.5 लाख करोड़ का। तो ये एक डेवलपमेंट हुआ है कि वुमेन इन्वेस्टर्स और पे और इन्वेस्ट करने लगी है। तो इसमें जो मुझे लगता है, ऑब्वियसली मैं नोटिस करती हूँ कि वुमेन बहुत क्लियर हैं, उनको कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं बनना है, उनको फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन चाहिए, हर एक डिसीजन का पार्ट बनना चाहते हैं। और उससे मैं ये कह रही हूँ, हो सकता है कई जगहों पे आप शायद गलत भी हो जाओ, बट उससे निराश नहीं होना चाहिए।
0: लेकिन एक बात है कि जो उनका दायरा है वो काफी, क्योंकि घरेलू महिला है तो काफी सीमित होता है, तो उनके लिए कौन से प्रोडक्ट या कौन से तरीके उपलब्ध हैं कि वो अपनी जमा की हुई जो सेविंग्स उनके पास रहती है उसको इन्वेस्ट करने के उनके पास कौन से सरलतम उपाय उपलब्ध होते हैं?
1: देखिए, हर एक इन्वेस्टमेंट उनके लिए ओपन है, ऐसा नहीं है। आज अगर वो हाउसवाइफ हैं, वो जॉब नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए सिक्योर सेफ थोड़े से बेटर सेफ फंड्स होते हैं जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई जॉब करने वाले हैं तो वो उस, देखिए फंड्स आप अपेरेंटली सेम ही रहेंगे, आप वुमेन के ले लो, मेन के ले लो, हाँ, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में हर एक तरीके के प्लान्स हैं आपके पास। अगर आप कहते हो कि मुझे 6 महीने के लिए ही पैसा रखना है तो उस हिसाब से भी आप अपने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे लगता है, एंड प्लस आपने अभी एक बात बोली कि वुमेन, क्योंकि यू नो ऑब्वियसली मेजर हाउस मेकर्स ही रही हैं, जो मुझे लगता है वो ये है, वुमेन का ना बहुत ही एक नेचुरल इंस्टिंक्ट आता है जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। कहीं ना कहीं उनका इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग होता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या सही है, क्या ये सही रहेगा, या अगर उसमें कुछ भी उनको ऊपर नीचे है, तो मुझे लगता है वो शायद कंपैरेटिवली जल्दी आइडेंटिफाई कर सकती है।
0: बट आज की डेट में ये तरीके बड़े साइंटिफिक हो गए हैं और वेल्थ मैनेजमेंट और बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करती है यदि हम उन तरीकों को अपनाते हैं। तो अभी इस चर्चा को जारी रखेंगे म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ।
2: घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका रेडियो मानोरचना 107.8 FM के आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम बात कर रहे हैं आपकी बचत को निवेश करने के फंडों को लेकर के, तौर तरीकों को लेकर के, जिसे हम आधुनिक रूप में अगर हम भाषा में नाम बोलें तो वेल्थ मैनेजमेंट का। और हमारे कुछ सवालों का आपको जवाब देने के लिए आई हुई हैं हमारे पास रिसर्च एंड मार्केटिंग हेड सोनम पारिक, जो एक कंपनी में वेल्थ मैनेजमेंट पे ही अपनी सलाहों से बहुत से लोगों का पैसा बढ़ाने का या उनको ऐसे नए उपाय सुझाने का, वो साइंटिफिक तरीके से समझाने का काम करती हैं कि जिससे उनका कमाया हुआ पैसा कम समय में ज़्यादा वृद्धि पा सके, यानी ज़्यादा बढ़ सके। तो सोनम, एक बात जो आमतौर पर जब कभी भी हम बात करते हैं फ्यूचर सिक्योर करने की, चाहे कोई युवा है या कोई गृहिणी है या कोई भी है, तो एक थॉट हर किसी के मन में आता है जब वो सेविंग करता है या निवेश करता है, तो दो तरीके दिमाग में चलते हैं। एक तो ये कि हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो, आमतौर पर आपने देखा होगा, और एक दूसरा थॉट आता है जब वो अपने लिए बात करते हैं कि अपनी रिटायरमेंट के बाद उनका किस तरह से उस पैसे का यूज वो कर सकते हैं, या क्या बेहतर तरीके हैं जो रिटायरमेंट के बाद उन्हें एक बेहतर रिटर्न दे पाएं या एक आरामदायक जिंदगी वो बिता पाएं रिटायरमेंट के बाद। तो आखिर यदि हम रिटायरमेंट की बात करते हैं तो कब रिटायरमेंट का जो थॉट है उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता होती है, या चाहे हम किसी वेतन परस्त व्यक्ति की बात करें या किसी बिजनेसमैन की, तो जो रिटायरमेंट की प्लानिंग है वो एग्जैक्टली कब शुरू की जानी चाहिए आपकी राय में?
1: ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि आप कहो कि मैंने इतने साल जॉब कर लिया उसके बाद मैं रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करूं। आप इनफैक्ट जॉब जब शुरू कर रहे हो, आपकी इनकम शुरू हुई है, आप तब से भी प्लानिंग शुरू कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप तीन उन सवालों के जब जवाब देते हो तो तीसरा होता है आपका पर्पस। तो समझिए कि मैंने अभी अभी अपनी जॉब शुरू करी है और मैं कह रही हूँ कि यार मुझे 4 साल बाद घर लेना है, उसके बाद मेरा बड़े एक रिटायरमेंट प्लान भी मुझे करना है। तो कौन वेल्थ एडवाइज़र क्या करते हैं, या जनरली लोगों को भी क्या करना चाहिए, आप एक एसेट एलोकेशन करोगे। उसका क्या मतलब हुआ है कि मेरी इनकम से मैं एक्स अमाउंट बचा सकती हूँ, तो वो एक्स अमाउंट के हिस्से बनेंगे कि एक हिस्सा मैंने रखा है अपने घर खरीदना है उसके लिए, एक हिस्सा मैंने रखा है रिटायरमेंट के लिए। अब क्योंकि मैंने अभी अभी करियर शुरू किया और मेरे रिटायरमेंट में बहुत लंबा टाइम है, तो मेरे लिए जो रिटायरमेंट के प्रोडक्ट्स होंगे वो अलग होंगे। वो शायद एक लॉन्ग टर्म होगा जिसमें मैं थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले पाऊंगी, थोड़ा स्ट्रांग इक्विटी होगा, तो उस हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट होगी। दूसरा आपका है कि आपको 4-5 साल बाद मुझे घर लेना है, वो पैसा उसमें जा रहा है, तो मैं उस फंड में लूंगी जो मुझे पता है कि 5 साल में एक एक्स अमाउंट बना के दे सके, ताकि आपके जो भी माइलस्टोन है उसको हम अचीव कर सके। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आप जब आप चाहो आप अपना रिटायरमेंट शुरू करो। हाँ, परसेंटेज चेंज हो जाएगा क्योंकि मैंने अभी अभी शुरू किया है, मेरे जॉब मेरे रिटायर होने में टाइम है, तो अगर मैं समझो 100 रुपये बचा रही हूँ तो उसका मैं शायद सिर्फ 10 रुपये डालूंगी रिटायरमेंट में, 90 कहीं और डालूंगी। फिर धीरे धीरे जैसे मेरी इनकम बढ़ती रहेगी वैसे वैसे मैं अपना एलोकेशन बढ़ाती रहूंगी।
0: तो यदि हम सरल शब्दों में बात करें तो रिटायरमेंट की जो भी योजना है वो किसी भी समय आप आरंभ कर सकते हैं, लेकिन वो योजना किस प्रकार की होगी, उसमें एलोकेशन ऑफ फंड्स होगा किस प्रकार से, वो डिपेंड करता है आपकी अपनी स्थिति के ऊपर कि आप किस स्थिति में हैं और आपकी फ्यूचर को लेकर के प्लानिंग क्या है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति की अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं। किसी के बच्चे फॉरेन एजुकेशन के बारे में प्लानिंग कर रहे होते हैं, कोई अपने लिए एक बहुत अच्छा बड़ा घर प्लान कर रहा होता है, या कोई बहुत आरामदायक जीवन जीना चाहता है रिटायरमेंट के बाद। तो यदि हम सरल शब्दों में बात करें तो आपकी आवश्यकताओं के, आपकी ज़रूरतों के या आपकी इच्छाओं के अनुरूप ही आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए, उसका कोई समय सुनिश्चित नहीं है। तो एक बात और जो वेल्थ मैनेजमेंट को लेकर के बात आती है दिमाग में जब कभी भी हम सोचते हैं, तो इतनी तरह के लुभावने विज्ञापन आते हैं तरह तरह की, म्यूचुअल फंड में कभी किसी में इन्वेस्टमेंट की बातें करती हैं, तो जो बातें हैं उन बातों में एक सबसे ज़्यादा जो आजकल पॉपुलर वर्ड है, बहुत आमतौर पर अभी आपने कई बार हमारी चर्चा में SIP का जिक्र किया म्यूचुअल फंड को लेकर के, तो म्यूचुअल फंड के बारे में आज के समय में सबसे बड़ा मिथ है क्या, मतलब लोगों के मन में जो शंकाएं रहती हैं उनमें क्या सबसे बड़ी जो मिथ है वो म्यूचुअल फंड को लेकर के क्या है?
1: मुझे लगता है सबसे बड़ा मिथ जो है लोगों को वो ये है कि म्यूचुअल फंड मतलब शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड मतलब इक्विटी, जबकि ऐसा नहीं है। आज अगर एक बंदा कहता है, क्लाइंट कहता है कि मुझे एक ही दिन के लिए पैसा रखना है, तो म्यूचुअल फंड में ओवरनाइट फंड्स होते हैं। कोई कहता है मुझे 7 से 10 दिन के लिए पैसा रखना है, तो उसके लिए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। कोई कहता है नहीं मुझे 2 से 3 महीने रखना है, तो उसके लिए लिक्विड फंड्स है, लिक्विड प्लस फंड्स है। कोई कहता है मुझे एक साल के लिए रखना है, तो उसके लिए आर्बिट्राज फंड्स हैं। तो लोगों का ये मिथ है कि म्यूचुअल फंड मतलब इक्विटी मतलब कभी भी गिर सकता है, वो बहुत गलत है। आज आपको जो कॉम्बिनेशन चाहिए आप उस कॉम्बिनेशन में म्यूचुअल फंड का एक्सेस ले सकते हैं। इक्विटी डेट चाहिए, इक्विटी कम डेट ज़्यादा चाहिए, वो हो सकता है। आपको चाहिए इक्विटी कम डेट कम बट उसमें थोड़े कमोडिटीज़ भी आ जाएँ तो वो भी हो सकता है। प्योर डेट चाहिए वो भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से लोगों को ये समझना होगा म्यूचुअल फंड सिर्फ और सिर्फ इक्विटी तक सीमित नहीं है, उसमें और भी ऑप्शंस हैं। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं।
0: यानी अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड अपने आप में एक बंच है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद उपलब्ध हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास हैं, और मैं जहां तक समझता हूं कि वहीं पर कहीं काम शुरू होता है एक वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट का।
1: करेक्ट।
0: तो दोस्तों इस चर्चा को जारी रखेंगे छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद और जानेंगे कि आपके धन की वृद्धि साइंटिफिक तरीके से एक वेल्थ मैनेजमेंट के प्रोग्राम को अपना करके एक डिसिप्लिन लाइफ के तरीके से किस प्रकार से की जा सकती है। तो जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ और फिर हाजिर होते हैं इस चर्चा को जारी रखने के लिए।

0: वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका नई सोच नई दिशाएं में। और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल। और दोस्तों आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो है आपके पैसे से जुड़ा हुआ, यानी आपकी सेविंग्स को कैसे हम कम एफर्ट्स में ज़्यादा बढ़ा सकते हैं एक इन्वेस्टमेंट के जरिए। और उसके लिए ज़रूरत होती है हमें एक वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट की। और हमारे बीच आज हमारी खास मेहमान हैं जो रिसर्च एंड मार्केटिंग हेड हैं एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में, सोनम पारिक। आज हमने सोनम से जाना कि किस प्रकार से आप अपनी जो सेविंग्स है, एक बहुत बड़ा उन्होंने एक मंत्र बताया कि आपको नज़रिया बदलने की आवश्यकता है कि आपको पहले अपनी इनकम में से सेविंग्स को अलग करना है, बाकी बचे हुए पैसे का इस्तेमाल करना है अपनी ज़रूरतों पर, ना कि ज़रूरतों के बाद बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करना है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आता है यदि आप अपने इस नज़रिए को बदलते हैं। और ख़ासकर इस मंत्र को अपनाने की आवश्यकता है हमारी जेन जी को, हमारे युवाओं को, ताकि आपका फ्यूचर बेहतर बन सके। तो सोनम, आज एक मुद्दा और जो आमतौर पर, अब जैसे पूरी चर्चा में हमने बात की, आखिर पैसा हमारा है, हमारे सामने बहुत सारे विज्ञापन, बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, क्यों हमें ज़रूरत है एक वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट की? मतलब हमारे पास ऑप्शंस हैं, पैसा हमारे पास है, हमें पता है कि किस पे कितनी रिटर्न आ रही है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। तो वो एक आम आदमी या कोई भी जो व्यक्ति एक बहुत अच्छे पद पर कहीं है या एक बड़ा व्यापार चला रहा है, तो उसे वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट आखिर चाहिए क्यों?
1: देखिए, सेम वजह है जिसके लिए लोगों को डॉक्टर चाहिए होता है, लॉयर चाहिए होता है, फिटनेस ट्रेनर चाहिए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए होता है। बेसिकली आपको एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल चाहिए जिसकी एक्सपर्टीज हो उस इंडस्ट्री में। आज तो एआई का ज़माना है, आप खुद इन्वेस्टमेंट कर सकते हो पूछ के। एंड वैसे भी आज के युवाओं में तो DIY चलता है, डू इट योरसेल्फ। लेकिन ये दोनों चीज़ों में जो रोल प्ले करेगा वो है आपके पास्ट रिटर्न्स, जिसके बेसिस पे आप डिसीजन लोगे। एंड जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आपका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सिर्फ पास्ट रिटर्न पे नहीं होता है। आज क्या होता है कि वेल्थ एडवाइजर के पास ना एक्सेस होता है, वो फंड मैनेजर से बात करते हैं, वो उनकी रिसर्च टीम से बात करते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी समझते हैं, उनके फ्यूचर प्लान समझते हैं, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि क्या ये स्ट्रैटेजी और ये प्लान मेरे क्लाइंट के लिए सूटेबल है कि नहीं। अगर है तब जाके वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं। तो जो आप खुद करते हो वो आप पास्ट रिटर्न्स के बेसिस पे करते हो। एक वेल्थ एडवाइजर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पे बनाता है वो प्रोफाइल। दूसरी चीज आपका टाइम मैनेजमेंट। देखिए, आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट एक फुल टाइम जॉब है। अगर आपका अपना करियर है जिसमें आपको फुल टाइम देना पड़ता है, तो आप कभी भी इन्वेस्टमेंट के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक सेक्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, उस सेक्टर में एक कोई पर्टिकुलर कंपनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो इन सब में बहुत टाइम जाता है। आज एक वेल्थ एडवाइजर का फुल फ्लेज्ड काम यही है। तो कहीं ना कहीं उनकी हेल्प लेने से आपको एक एडेड एडवांटेज मिलता है। और तीसरा जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ वो ये है कि वेल्थ एडवाइजर आपके लिए एक इमोशनल सपोर्ट और बफर बन जाता है। आज हमने देखा है कि कोविड के वक्त, डीमोनेटाइजेशन के वक्त, काफ़ी लोगों ने पैनिक में पैसा बेच दिया, अपने फंड्स बेच दिए। यही अगर कोई वेल्थ एडवाइजर होता तो वो कहीं ना कहीं एक इमोशनल इंटेलिजेंस से या फिनेंशियल इंटेलिजेंस से आपको हैंडल कर लेता। एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसको हम हमारे इंडस्ट्री में 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, विच इज़ कंपाउंडिंग। जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट होता ना, वो ऐसे पैनिक सेलिंग में कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो आज अगर एक वेल्थ एडवाइजर होगा आपके पास तो वो आपको सही गाइडेंस दे पाएगा। तो दैट इज द रीजन मुझे लगता है कि कोई भी स्टेज पे आप हो, आपने करियर शुरू किया है, आप कॉर्पोरेट हो, आप ग्रो कर चुके हो, आपको एक वेल्थ एडवाइजर बहुत काम आएगा आपका इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स या इन्वेस्टमेंट्स को आगे ले जाने के लिए।
0: यानी अगर हम बात करें तो एक व्यापारी केवल अपने व्यापार से संबंधित सूचनाओं के बारे में जानकारी रखता है, या कोई, यदि हम किसी सैलरीड पर्सन की बात करें या प्रोफेशनल की बात करें, तो हर किसी का अपना एक क्षेत्र होता है। वहीं पर कहीं ना कहीं जो वेल्थ एडवाइजर है, जो वेल्थ मैनेजमेंट जो एक्सपर्ट हम बात करते हैं, उनका भी अपना एक क्षेत्र है। वो इसी क्षेत्र से संबंधित उत्पाद या आपके पैसे की जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पर आपको बेहतर रिटर्न दे पाएगी, तो उनके पास सोर्सेज ज़्यादा तरीके से होते हैं। और एक, जैसे हमने शुरू में बात की कार्यक्रम के शुरू में, कि पैसे को बढ़ाना अपने आप में एक विज्ञान है, कमाना एक कला हो सकता है लेकिन बढ़ाना विज्ञान है। तो उस विज्ञान के जो एक्सपर्ट हैं वो वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइजर होते हैं। अच्छा, दूसरा एक बात, तो आम तौर पर जब कभी भी हम बात करते हैं सेविंग्स की, तो एक पहले तरीका होता था कि लोग थोड़े थोड़े पैसे बचा करके अपने पास घर में रख लेते थे, बैंकों में नहीं जमा कराते थे क्योंकि बैंकों में खाते नहीं होते थे, लेकिन व्यवस्था बदली तो लोगों ने बैंकों में जमा कराना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके मन में एक शंका हमेशा बनी रहती थी कि यदि हमें कभी जरूरत पड़ी इमरजेंसी के टाइम पे तो हमारा पैसा हमारे पास होना चाहिए। बैंकों की सर्विसेज ऐसी हो गई, कार्ड्स बन गए, डेबिट कार्ड बन गए, एटीएम बन गए कि आप कभी भी पैसा निकाल लो। लेकिन जैसे आज का आधुनिक युग आया, यदि हम वेल्थ मैनेजमेंट की बात करें तो क्या वेल्थ मैनेजमेंट करके या पैसे को हम डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर इन्वेस्ट करके क्या ये सुविधा हमारे पास, एक आम आदमी के दिमाग में जो थॉट आता है कि यदि पैसे की इमरजेंसी में आकस्मिक कोई आवश्यकता पड़ती है तो क्या उसमें भी वही सुविधा उनको उपलब्ध होती है कि या इन्वेस्टमेंट के बाद वो फंस जाते हैं 3 महीने 6 महीने 1 साल के लिए कि उनको पैसा बीच में अगर जरूरत है तो मिलेगा या नहीं मिलेगा?
1: देखिए क्या होता है ना, हर फंड का अपना एक एग्जिट लोड बोलते हैं इसको या लॉक इन पीरियड होता है। हर फंड के जो आप इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखोगे, जो फैक्ट शीट कहते हैं हम, उनमें डेटा हमेशा आता है। तो इक्विटी फंड्स होंगे जिसमें लॉक इन नहीं होगा। लॉक इन मतलब कि आपका पैसा आप निकाल सकते हो, साल भर से पहले अगर आप निकालते हो तो कोई चार्जेस लगते हैं। लेकिन जो मैं पहले बता रही थी कि जो 1 दिन 2 महीने 6 महीने के लिए फंड्स में पैसा रखता है उसमें कोई एग्जिट लोड नहीं होता, आप कभी भी निकाल सकते हो। मुझे लगता है जो सवाल आपने पूछा है ना, ये शायद आपके भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस से आया होगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री में, और म्यूचुअल फंड्स कह लो, वेल्थ कह लो, इंश्योरेंस कह लो, इनमें ना मिस सेलिंग बहुत होती है। तो क्योंकि आपने अगर किसी से बाय किया है और कोई टारगेट प्रेशर होगा या कोई भी वजह हो सकती है, उस वजह से जब आपको कोई प्रोडक्ट बेचने जाता है तो वो कहीं ना कहीं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है, क्योंकि उनको पता है कि आपको इतने टाइम में चाहिए होगा तो वो उस हिसाब से आपको जवाब देते हैं। लेकिन आप कभी भी कोई भी स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका एक वन पेज में आपको सब साफ दिख जाता है। तो कुछ फंड हैं जिसमें आपको जब चाहिए तब पैसा आएगा, लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि एटीएम कार्ड जैसा नहीं होगा कि आपने आज चाहा और आज पैसा आ जाएगा। मिनिमम से मिनिमम जो है वो ये है कि आप आज रिडेम्पशन डालते हो तो अगले दिन आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। और एक आधी स्कीम में ऐसा होगा जहां आज रिडेम्पशन डालोगे तो 2 दिन बाद आएगा, बट ये मैक्सिमम है, इतने में आपका पैसा आ जाता है। हाँ, ये नहीं है कि आप चाहो कि तुरंत आए,
0: मतलब लिक्विडिटी जो है वो स्लो नहीं है, बहुत जल्दी आपको पैसा मिल जाता है। क्योंकि यदि आकस्मिक आवश्यकता की बात करें तो उतना फंड तो आप बैंक में भी रख सकते हैं, लेकिन एक सलाह वाली बात है कि यदि आपको पैसे में वृद्धि भी चाहिए और समय पर पैसा चाहिए तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास हैं।
1: देखिए आज ना क्लाइंट्स के लिए बहुत आसान हो गया इन्वेस्टमेंट करना। जैसे मैंने आपको बताया कि सेबी का माइंडसेट ही यही है कि इन्वेस्टर्स के लिए जितनी चीजें आसान बना सके। अब इट्स एवरीथिंग इज ऑन अ क्लिक, आप अपने ऐप के थ्रू बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो आज इन्वेस्टमेंट कन्वीनियंट बहुत हो गया है। जो पहले होता था कि आपको ब्रांच जाके चीजें करनी पड़ती थी, आज वो आपके क्लिक ऑफ अ बटन पे है। तो इन्वेस्टमेंट्स बहुत सरल हो गया है, तरीका बहुत सरल हो गया है,
0: अगर हम डिजिटल युग की बात करें आज तो बिल्कुल। तो दोस्तों इस चर्चा को जारी रखते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंगल। आज हम चर्चा कर रहे हैं वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर अपनी विशेष मेहमान सोनम पारिक के साथ। तो फिर हाजिर होते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं आपकी वेल्थ को बढ़ाने के उपायों के ऊपर एक वेल्थ एडवाइजर के साथ, जो हैं सोनम पारिक, जो एक वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, वेल्थ एडवाइजर हैं, रिसर्च एंड मार्केटिंग हेड है कंपनी में। और वो आज हमें बता रही हैं कि आखिर वेल्थ मैनेजमेंट है क्या और वेल्थ एडवाइजर की या वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट की हमें ज़रूरत पड़ती क्यों है। सोनम, एक बात जो मैंने भी कार्यक्रम के पिछले हिस्से में भी कही थी कि पहले एक व्यवस्था थी कि लोग आमतौर पर जो सेविंग होती है, बचत होती है, उसको घर में रखते थे, पैसा संभाल के रख दिया। या बहुत सारे हमने किस्से ऐसे भी सुने हैं कि पैसे को घड़ों के अंदर बढ़ के दबा दिया, सोने के सिक्के दबा दिए, तो एक व्यवस्था चलती थी। लेकिन जब से बैंकिंग सिस्टम शुरू हुआ और अगर हम आज लेटेस्ट बात करें तो डिजिटल युग हमारा है, तो क्या ये जो व्यवस्था है वास्तव में वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइजरी, जिस प्रकार की आप जो आपका व्यवसाय जो प्रोफेशन है, वो किस प्रकार से देखता है इस बात को कि हमें ये पैसा जो इन्वेस्ट करना है वो कैसे हमारी देश की इकोनॉमी में हेल्प करता है। मतलब अगर हम सेविंग्स की बात करें तो सेविंग तो आपने पैसा बचा करके अपने पास रख लिया तो वो भी सेविंग है, और वो आपने बैंक में अपने अकाउंट में रख लिया वो भी सेविंग है। लेकिन यदि हम डिफरेंट डिफरेंट तरह की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वो कैसे हेल्प करता है हमारे देश की इकोनॉमी में।
1: देखिए, आपने जो कहा कि घर पे पैसा रखते हैं वो भी सेविंग है और जो बैंक में रखते हैं वो भी सेविंग है, एक्चुअली वो नहीं है। देखिए, सेविंग का मतलब ये नहीं है कि मैंने पैसा इकट्ठा कर लिया। सेविंग का मतलब बेसिकली यही है कि आगे चल के जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन जो हम कहते हैं, मेरा पैसा उसको बीट कर पाए। ठीक है, तो आज अगर सरल भाषा में बोलूँ तो इन्फ्लेशन अगर 3.5% 4% चल रही है तो मेरा पैसा एटलीस्ट उतना बढ़ना चाहिए, तब वो नॉर्मल पैसा कहलाया जाएगा। तब भी वो रिटर्न नहीं है, राइट? रिटर्न वो होगा जिसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद भी जो मैं पैसा कमा रही हूँ वो एक्स्ट्रा है,
0: जो उसकी ग्रोथ है वो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली थोड़ी ज्यादा हो।
1: एग्जैक्टली। अब आपने घर पे पैसा रखा, आपने साल 5 साल 6 साल रखा, उसने कोई रिटर्न नहीं दिया, लेकिन महंगाई तो बढ़ गई, तो आपकी जो वैल्यू थी मनी की वो कम हो गई। और सेम हिसाब चलता है जो आपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखा होगा, वो पैसा वैसे का वैसा ही है, जो ब्याज आता है थोड़ा बहुत वो आ गया, लेकिन इन्फ्लेशन उससे कई ज्यादा है। तो हुआ क्या, आपके जो पैसा है उसका वैल्यू कहीं ना कहीं कम हो गई। इसीलिए आप कहते हो कि आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो। देखिए, आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो ही इकोनॉमी चलेगी, राइट? ये पूरा एक सर्कल है। आप कंज्यूम करोगे तो कंजम्पशन बढ़ेगी हमारी देश की कंजम्पशन बढ़ेगी, तो जो कंपनियां वो प्रोडक्ट बनाती हैं वो चलेंगी, तब हमारा मार्केट चलेगा तो लोगों को रिटर्न मिलेगा। तो ये पूरा एक विशेष सर्कल है। अगर आपने कंज्यूम ही नहीं किया, आपने स्पेंडिंग नहीं करी, आपने पैसे बचाए नहीं, तो वो इकोनॉमी पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। बट थैंक्स टू डीमोनेटाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन, आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा अपने अकाउंट में रख रहे हैं और कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है।
0: तो अगर हम सीधी सीधी बात करें तो बचत करना अपने आप में पैसे को अपने पास रखना नहीं है, जब तक कि आप उसका इन्वेस्टमेंट ना कर दें। यानी हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे बैंक की बात

संतों की वाणी सुनने या पढ़ने से मन या मस्तिष्क का तनाव दूर होता है। असंतों के कलाम की यह विशेषता नहीं होती। कृपया बताएं कि इसका कारण क्या है। पूछा है फारूक खान ने। पहली बात, संतों की वाणी सिर्फ वाणी नहीं, वाणी ही हो तो खोल ही है, भीतर कुछ सार नहीं। शब्द ही है, भीतर कुछ सार नहीं। संतों की वाणी वाणी से कुछ ज्यादा है। वाणी तो केवल सहारा है उसे देने का, जो और किसी ढंग से दिया नहीं जा सकता। वाणी तो वाहन है, शब्दों पर चढ़ाकर, शब्दों के घोड़ों पर चढ़ाकर जो भेजा जा रहा है वो शब्द से बहुत पार है। उसकी ही वर्षा जब हो जाती है

पर्दे पर, तो शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, संतोष मिलेगा। असंतों की वाणी कोरी है, खाली है, जिसके मरा हुआ आदमी लाश पड़ी है, और यही आदमी जीवित था कल तक। शरीर अब भी वैसा ही है, लेकिन शरीर के भीतर से कोई चीज उड़ गई। अब तो पिंजड़ा पड़ा रह गया, पक्षी उड़ गया। असंतों की वाणी ऐसी है जैसे मरा हुआ आदमी। शब्द की देह तो है, लेकिन अनुभव की आत्मा नहीं। तो असंतों की वाणी से सुगंध तो मिलनी कठिन है, दुर्गंध ही मिलेगी। संतों की वाणी से संतोष मिलेगा, क्योंकि संतोष सत्य की छाया है। यह तो बात ठीक, लेकिन एक बात याद रखना, जिनकी वाणी से संतोष मिल जाए जरूरी नहीं कि वे संत ही हों, और जिनकी वाणी से तुम्हें संतोष न मिले जरूरी नहीं कि वे असंत ही हों। जहां तक संतों की तरफ से संबंध है, संतों की वाणी से संतोष मिलना चाहिए। जहां तक असंतों का संबंध है, असंतों की वाणी से संतोष नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जो मिलता है उसमें अकेला संत थोड़ी भागीदार है, तुम भी भागीदार हो। वर्षा होती हो और घड़ा उल्टा रखा हो तो गैर भरा रह जाएगा। तो संत की भी वाणी से हो सकता है संतोष न मिले, अगर तुम उसे ग्रहण ही ना करो, अगर तुम उसे भीतर ही ना जाने दो, या तुम्हारे पूर्व पक्षपात, तुम्हारी पहले की बनाई धारणाएं रुकावट बन जाए। तो ऐसा समझो कि जरूरी नहीं है कि संत की वाणी से संतोष मिले ही, तुम लोगे तो ही मिलेगा। और दूसरी बात भी संभव है, असंत की वाणी से भी संतोष मिल जाए अगर तुमने लेने की ही जिद कर रखी। तो जहां कुछ भी नहीं है वहां भी तुम कुछ देख लोगे, क्योंकि इस लेन देन में दो व्यक्ति सम्मिलित है, एक देने वाला और एक लेने वाला। इसलिए लेन देन की ये घटना दोनों पर निर्भर होगी। जैसे अगर कोई जैन किसी सूफी फकीर की वाणी पढ़े, उसे संतोष नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ये मान ही नहीं सकता कि मांसाहारी और ज्ञान को उपलब्ध हो जाए, ये बात ही संभव नहीं। सूफी संत की तो छोड़ दो, एक जैन मुनि मुझसे कहा कि आप रामकृष्ण परमहंस देव का उल्लेख करते, आपको पता है वो मछली खाते थे, तो मछली खाने वाला आदमी कैसे संत हो सकता है। अब इन जैन मुनि को रामकृष्ण की वाणी से संतोष नहीं मिलेगा। इससे ये मत समझ लेना कि जहां से संतोष नहीं मिलता वहां संत नहीं। बौद्धों को जैनों की वाणी में संतोष नहीं है, हिंदुओं को मुसलमानों की वाणी में संतोष नहीं है, मुसलमानों को ईसाइयों की वाणी में संतोष नहीं। तो इसका क्या अर्थ हुआ है? इसका अर्थ हुआ कि संतत्व की भी तुम्हारी धारणा है, उस धारणा के अनुकूल संत पड़ता हो तो तुम संतोष लोगे, उसके अनुकूल न पड़ता हो तो तुम्हें जरा भी संतोष न मिलेगा। फिर कभी यह भी हो सकता है कि असंत तुम्हारी धारणा के अनुकूल पड़ता हो। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन भूखा प्यासा एक गांव में आया, गांव में एक भी मुसलमान नहीं था, गांव शाकाहारियों का था, और गांव का जो साधु पुरुष था उसने सारा जीवन शाकाहार की ही सेवा में लगाया था, बस मांसाहार के ही विपरीत उसका सारा जीवन समर्पित था। मुल्ला उसकी सभा में गया, वो समझा रहा था कि मांसाहार बुरा है, पशु पक्षियों में भी आत्मा है। मुल्ला बीच में खड़ा हो गया, उसने कहा बिल्कुल ठीक कहते, एक बार एक मछली ने ही मेरे प्राण बचाए थे। साधु तो बहुत प्रसन्न हुआ, उसने कहा आओ भाई आओ, ये तो बड़ा प्रमाण मिला कि एक मुसलमान भी तैयार है गवाही देने को। उन्होंने उसे पास बिठाया, उसके भोजन का भी इंतजाम करवाया और कहा कि तुम यहीं रहो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, ये प्रमाण हो गया। और रोज साधु जब समझाता लोगों को, वो कहता कि पूछो इस मुसलमान भाई से, पूछो एक मछली नहीं इसके प्राण बचाए, मछलियों में भी आत्मा है, उनको खाओ मत। दो चार दिन के बाद एक दिन सांझ को दोनों साथ बैठे थे, वो फकीर साधु कहने लगा मुल्ला नसरुद्दीन को कि तुम तो करीब करीब मेरे गुरु, यद्यपि
मैंने जीवन भर शाकाहार की सेवा की, मांसाहार का विरोध किया, लेकिन अभी तक किसी पशु पक्षी ने ऐसा प्रमाण मुझे नहीं दिया जैसा तुम्हें दिया। तुम तो करीब करीब मेरे गुरु हो, अब विस्तार में मुझे कहो कि बात क्या थी, कैसे बचाए तुम्हारे प्राण। मुल्ला ने कहा, विस्तार न पूछे तो अच्छा, सब ठीक चल रहा है, विस्तार की क्या जरूरत। पर साधु जिद करने लगा कि नहीं, बताना ही पड़ेगा। साधु ने तो पैर पकड़ ली कि गुरुदेव बताना ही पड़ेगा। तो मुल्ला ने कहा, नहीं मानते तो ठीक है, लेकिन हमें जाना पड़ेगा। साधु ने कहा, बात क्या है, इतना रहस्य क्यों बना रहे हो। मुल्ला ने कहा, बात यह है कि मैं बहुत भूखा था और मछली को खाने से मेरे प्राण बचे। उसी रात, सुबह भी नहीं, उसी रात मुल्ला निकाला गया। अभी तक इसकी वाणी में बड़ा संतोष मिल रहा था, अब इसकी वाणी में कोई संतोष न रहा। तो तुम पूछते हो कि संतों की वाणी सुनने या पढ़ने से मन या मस्तिष्क का तनाव दूर होता है, सभी संतों की, तो तुम संत हो जाओगे, तब तो तुम्हारे संत होने में फिर कोई बाधा ना रहे, या किन्हीं किन्हीं संतों की। पूछने वाले मित्र मुसलमान है, तो तुमने और किन्हीं संतों की वाणी भी पढ़ी है जिनके विचार इस्लाम से अन्य हो, उनसे संतोष न मिलेगा। और इन्हीं मित्र ने दूसरा प्रश्न पूछा है, उससे जो मैं कह रहा हूं वो साफ हो जाएगा। इनने पूछा है, किसी व्यक्ति को भगवान की उपाधि देना या किसी को इस उपाधि का स्वीकार करना क्या उचित है। फिरौन का सबसे बड़ा अपराध यही तो था कि उसने अपने को खुदा होने का दावा कर रखा था। अब इन मित्र ने इजिप्ट के फिरौन का उल्लेख किया, लेकिन अल हिल्लाज मंसूर को छोड़ दिया। सच है ये बात कि इजिप्ट के सम्राट फिरौन ने घोषणा कर रखी थी कि मैं खुदा हूं, ये उसका अपराध था। लेकिन अपराध इसलिए नहीं था कि उसने घोषणा की थी कि मैं खुदा हूं, अपराध का कारण दूसरा था। अपराध का कारण यह था कि वो कहता था, मेरे सिवाय खुदा और कोई नहीं, मैं खुदा हूं, मेरे सिवाय और कोई खुदा नहीं। यही बात तो मंसूर ने भी कही थी, जिनको मुसलमानों ने सूली दी। और मैं समझता हूं कि फारूक खां भी राजी होंगे कि सूली ठीक दी। मंसूर ने भी यही कहा था कि मैं खुदा हूं, लेकिन बड़ा फर्क था उसके कहने में। उसके कहने का मतलब था, मैं खुदा हूं क्योंकि सभी खुदा हैं, खुदा के अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं। मंसूर ने जो कहा वो संत की वाणी थी, और फिरौन ने जो कहा वो संत की वाणी नहीं थी। यद्यपि वक्तव्य दोनों के एक जैसे, दोनों ने यही कहा था, मैं खुदा हूं, लेकिन फिरौन कहता था, मेरे अलावा कोई और खुदा नहीं। और मंसूर ने कहा कि मैं करूंगी क्या, खुदा होना ही पड़ेगा, उसके सिवा होने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि खुदा ही है। लेकिन मुसलमानों ने फिरौन को भी अपराधी साबित किया और मंसूर को भी सूली लगा दी। अब अगर मुसलमानों को उपनिषद के ऋषि मिल जाते जिन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, क्या करते तुम उनके साथ, फांसी लगाते ना, सूली लगाते। संत तो तुम्हें वो मालूम नहीं पड़ सकते थे, जो कहता है मैं ब्रह्म हूं वो कैसे संत हो सकता है। मुसलमान नाराज है जीसस पर, क्योंकि जीसस ने दावा किया कि मैं ईश्वर का बेटा हूं, ये भी कोई दावा है। हमारे मुल्क में लोग हैं जो कहते हैं हम ईश्वर हैं, बेटे का भी क्या दावा करना। मगर मुसलमान इससे नाराज हैं कि ईसा ने दावा किया कि मैं ईश्वर का बेटा हूं, नहीं ये बात ठीक नहीं। तो तुम बुद्ध को क्या कहोगे, महावीर को क्या कहोगे, कृष्ण को, राम को क्या कहोगे, ये सब तो अपराधी हो गए, ये तो संत ना रहे। तो मैं कहना चाहूंगा कि तुम्हारा ही दूसरा प्रश्न सबूत देता है कि संत का तुम्हारे मन में चार एक धारणा होगी, संत ऐसा होना चाहिए। धारणा तुम्हारी है, उस धारणा में बैठ जाएगा तो संत, नहीं बैठा तो असंत हो जाएगा। और कौन संत तुम्हारी छोटी मोटी धारणाओं में बैठ सकता है, जो बैठ जाए वो संत ही क्या खाक जो तुम्हारी खिड़की में बैठ जाए, तुम्हारे ढांचे के अनुकूल पड़ जाए वो कोई संत, नकल होगा। संत की नकल ढांचों में बैठ जाती, तुम बड़ा संतोष भी ले लोगे। तुम्हें संतोष इसलिए नहीं मिल रहा है कि संत की वाणी में कुछ सार, तुम्हें संतोष इसलिए मिल रहा है कि तुम्हारा अहंकार तृप्त हो रहा है कि देखो मेरी धारणा संत की कितनी सही है, ये प्रमाण मिल गया, ये आदमी प्रमाण है मेरे संतत्व की धारणा का। तुम अपनी ही धारणा के चरणों में सिर झुका रहे,
मैं एक घर में मेहमान था, एक जैन घर में। एक बूढ़े सज्जन मुझे मिलने आए, उम्र होगी कोई 80 साल की। कोई 40 साल से त्यागी का जीवन ही बिताते थे, यद्यपि घर में ही थे लेकिन न दुकान जाते न घर द्वार की बात करते, ज्यादातर सामायिक ध्यान उपवास इसमें ही समय लगाते थे। मैं गांव में आया हूं तो मुझे मिलने आए, अपने घर के बाहर भी नहीं जाते थे। तो उनके साथ 10-5 लोगों का गिरोह भी आया ये देखने कि वो कभी अपने घर के बाहर जाते नहीं, किसके दर्शन को जा रहे हैं। उन्होंने मेरी एक किताब पढ़ी थी साधना पत्र, और उससे वो बहुत प्रभावित थे। वो आके मेरे चरणों में झुके और उन्होंने कहा कि आप तो मेरे लिए तीर्थंकर हैं, आपने जो किताब लिख दी उससे मुझे जो मिला है वो किसी चीज से नहीं मिला, मेरा सारा जीवन उसने बदल डाला है। ऐसे उनसे बातें हो रही थी, तभी घर की गृहिणी ने आके मुझे कहा कि अब आप भोजन कर लें, सांझ हो गई। तो मैंने उनसे कहा कि ये वृद्ध सज्जन आए हैं, अभी बीच में बाधा ना डालो, थोड़ी देर बाद भोजन कर लूंगा। वो वृद्ध सज्जन तो बहुत चौंके, उन्होंने कहा क्या सूरज ढला जा रहा है, सूरज ढलने के बाद भोजन करेंगे। मैंने कहा आप इतनी दूर से चल के आए, बूढ़े हैं, आपके पास बैठना ज्यादा आनंदपूर्ण, भोजन तो घड़ी पर बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा आप समझे नहीं, उठ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा जिस आदमी को भी यही पता नहीं कि रात्रि भोजन पाप है उसको और क्या पता हो सकता है। आए थे तो मेरे चरण छुए थे, जाते वक्त मुझे उपदेश देके गए कि कम से कम इतना तो करो कि रात्रि भोजन छोड़ दो। अब मैं निश्चित जानता हूं घर जाके किताब उन्होंने जला दी होगी या फेंक दी होगी, किसी को दी होगी ये भी मैं नहीं मान सकता, क्योंकि ऐसे भ्रष्ट आदमी की किताब किसी को देके क्या भ्रष्ट करना है। आए थे तो मैं तीर्थंकर था, तीर्थंकर के गिरने में देर कितनी लगती है। तुम तीर्थंकर को इतनी स्वतंत्रता भी तो नहीं दे सकते कि वो सूरज ढलने के बाद भोजन कर ले। तुम्हारा तीर्थंकर तुम्हारा गुलाम, तुम्हारा संत तुम्हारा गुलाम, तो गुलाम ही तुम्हारे संत हो सकते जो अपने मालिक है। शायद उनसे तो तुम्हें संतोष नहीं मिलेगा, जो अपने मालिक है वो तो तुम्हें झकझोर देंगे, वो तो आएंगे एक तूफान की तरह, आंधी की तरह तुम्हें उखाड़ देंगे, तुम्हारी सारी धारणाओं को उखाड़ देंगे। वो तो आएंगे एक झंझावात की तरह और तुम्हारे बनाए हुए सारे भवनों को गिरा देंगे, तुम्हारा सारा तत्व ज्ञान धूल धूसरित हो जाएगा। असली संत के करीब तो पहले तुम्हारी धारणाएं टूटेंगी, और अगर धारणाएं टूटने में तुम घबराए ना परेशान न हुए, असली संत पहले तो तुम्हें मारेगा, अगर तुम मरने से न डरे तो जरूर संतोष आएगा, और संतोष ऐसा कि फिर जाने वाला नहीं। लेकिन एक ऐसा भी संतोष है जो तुम मान लेते हो, तुम जहां भी अपनी धारणा के अनुकूल किसी को देखते हो तुम्हें संतोष मिलता है। क्या संतोष मिलता है? कि तो मेरी धारणा ठीक है, देखो ये आदमी सबूत है। अगर अपनी धारणा का मैं सबूत नहीं हूं तो कम से कम ये आदमी सबूत है। इसलिए तुम पूछते हो कि किसी व्यक्ति को भगवान की उपाधि देना, तुम्हारे प्रश्न में भी तुम्हारी धारणा छिपी। भगवान कोई उपाधि नहीं है, भगवान कोई ऐसा नहीं कि किसी को पद्म भूषण बना दिया कि भारत रत्न बना दिया। भगवान कोई उपाधि नहीं है कि किसी विश्वविद्यालय की डिग्री है, और भगवान बनाना किसी के हाथ में नहीं है, भगवान होना हमारा स्वभाव है, ये उपाधि नहीं है। उपाधि तो बीमारी का नाम है। उपाधि के तो दो अर्थ होते हैं, डिग्री और बीमारी भी। भगवान कोई उपाधि नहीं है, भगवान तो अपने स्वभाव को पहचान लेना है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो और पहचान लेते हो कौन वहां विराजमान है, तब तुम पाओगे कि भगवान हो। भगवत्ता हमारा सामान्य धर्म है, जैसे आग का धर्म जलाना है, ऐसा आदमी का धर्म भगवान। और जब आदमी में तुम्हें भगवान दिखेगा तो धीरे धीरे तुम्हारी आंख और गहरी जाएगी, पशु पक्षियों में भी दिखेगा, फिर और आंख गहरी जाएगी और पौधों में भी दिखेगा, फिर और आंख गहरी जाएगी और चट्टानों में भी दिखेगा। और जिस दिन तुम्हें सब जगह दिखाई पड़ना शुरू हो जाए, कोई ऐसी जगह ना रहे जहां भगवान ना हो, तभी जानना कि तुम घर वापस लौटे। नानक मक्का गए तो सो गए रात, पैर करके पवित्र मंदिर की तरफ। पुरोहित नाराज हुए, उन्होंने आके कहा कि तुम्हें पैर पवित्र मंदिर की तरफ करके सोते लाज नहीं आती, और लोग कहते तुम संत।

जहां पैर करोगे वहीं भगवान है, सब और भगवान है। तो पहली तो बात तुम पूछते हो किसी व्यक्ति को भगवान की उपाधि देना, उपाधि दी तो बात गलत हो गई, ये उपाधि नहीं और कोई किसी को दे नहीं सकता। तुम जब अपने स्रोत में उतरते हो तो ये तुम्हारा अनुभव है, या किसी का इस उपाधि को स्वीकार करना, ये उपाधि ही नहीं है, स्वीकार अस्वीकार का सवाल नहीं है। जब तुम जानोगे और पाओगे कि ऐसा है तो फिर करोगे क्या? यही तो अलहिल्लाज मंसूर के साथ हुआ। जिस दिन मंसूर को बोध हुआ उसने घोषणा कर दी, अनल हक, मैं परमात्मा, मैं सत्य हूं, मैं ब्रह्म हूं। जिन गुरु के पास मंसूर रहता था, गुरु ने कहा भीतर रख, ये बात बाहर मत निकाल। सूफी ये सदा से जानते रहे मगर मुसलमानों के डर से कहते नहीं। गुरु ने कहा कि रख, भीतर रख, मुझे भी पता है, अब तुझे भी पता हो गया, मगर बाहर मत कह, नहीं तो झंझट खड़ी होगी। झंझट खड़ी हुई। मंसूर ने कहा जो भीतर है उसको बाहर क्यों ना बहने दे, रुकावट कैसे डालू? और फिर मैं थोड़ी कहता हूं, एक भाव दशा आती जब मेरे भीतर ये गुंजार उठता है अनल हक, मेरे भीतर ये घोषणा उठती कि मैं भगवान हूं। गुरु ने तो उनको विदा कर दिया। उन्होंने कहा अगर ये घोषणा करनी है तो तू कहीं और जा, कोई और गुरु चुन ले, किसी और गुरुकुल में रुक जा, यहां हम झंझट नहीं लेना चाहते। दूसरे गुरु के पास भी यही हुआ, तीसरे गुरु के पास भी यही हुआ, चौथे गुरु के पास। गुरु ने कहा कि हम तेरी तकलीफ समझते, जब होती है ये घटना तो कभी कभी ऐसा होता आदमी अपने वश में नहीं रह जाता, उद्घोषणा होने लगती, मगर इसे रोकना पड़ेगा अन्यथा झंझट आएगी, तू इसे रोक, नहीं तो मैं तुझसे कहता हूं तू फांसी पे चढ़ेगा। कहते हैं मंसूर ने कहा मैं उसी दिन फांसी पे चढ़ूंगा जिस दिन तुम अपना ये सूफी अंगरखा उतार दोगे, उसके पहले नहीं चढ़ूंगा। और कहानी कहती है कि दोनों की भविष्यवाणियां सच सिद्ध हुई। खलीफा ने खबर भेजी गुरु के पास कि तुम्हारे आश्रम में एक आदमी है जो कहता है मैं ईश्वर हूं, उसे निकाल बाहर कर दो, वो अपराध कर रहा है। लेकिन गुरु ने कोई ख्याल न दिया, बात चुपचाप रखे रहा। दोबारा खबर भेजी गई, तीसरी बार खबर भेजी गई। जब सातवीं बार खबर आई तो साथ में पुलिस के आदमी भी आए, नंगी तलवारें भी आईं, और उन्होंने कहा अब तुम्हें दस्तखत करके देना होगा कि यह आदमी अपराधी और इसको फांसी लगेगी। गुरु ने सोचा कि सूफी के कपड़े पहने हुए कैसे दस्तखत करूं, क्योंकि सूफी सभी जानते हैं इस बात को भीतर की ये बात सच, इसलिए अपना अंगरखा उतार के फेंक दिया। उनसे पाही ने कहा यह अंगरखा क्यों फेंक रहा है? उन्होंने कहा सूफी रहते हुए इस तरह की बात पर मैं दस्तखत नहीं कर सकता, यह अंगरखा मुझे उतार देने दो। और ठीक ही कहा था मंसूर ने कि अंगरखा तुम छोड़ोगे उसी दिन मुझे फांसी लगेगी। अंगरखा उतार के रख दिया और मौलवी के कपड़े पहन लिए, फिर दस्तखत कर दिए कि ठीक है ये आदमी अपराधी है और इसको जो भी सजा उचित हो दी जाए। तब मंसूर को सूली लगी। सूफी छिपाए रखे, क्योंकि मुसलमान देशों में सूफियों को प्रकट होने का उपाय नहीं था। इस देश में कोई अड़चन नहीं रही, इस देश में सूफी प्रकट होके बोले। जहां सूफी भी प्रकट होकर न बोल सके वहां धर्म का क्या उद्भाव होगा, जहां उनको भी छिपा के रखना पड़े, जहां सत्य की आखिरी ऊंचाई चोरों की भांति छिपा के रखनी पड़े, वैसा देश धार्मिक नहीं हो सकता। इस देश की दूसरी परंपरा है। इस देश में बड़ा मुक्त वातावरण रहा है। इस देश में जो तुम्हारे भीतर हो उसकी उद्घोषणा की आज्ञा है। जो तुम्हारे भीतर हो, कौन है दूसरा जो तुम्हें रोके? जो तुम्हारे भीतर हो उसकी उद्घोषणा होने दो। अगर परमात्मा ने यही चुना है तुम्हारे भीतर की घोषणा करे अनल हक अहम ब्रह्मास्मि, तो करने दो घोषणा। ये कोई उपाधि नहीं है, कोई किसी दूसरे को देता लेता नहीं, न कोई स्वीकार करता है अस्वीकार करता है। ये तो तुम्हारे अंतरतम का दिया जब जलता है तब तुम जानते हो कि ऐसा है। ये तो तथ्य का अनुभव है, ये तो सत्य की प्रतीति है, ये तो साक्षात्कार है। लेकिन तुम्हारी अड़चन मैं जानता हूं, मुसलमान परंपरा में पले हो, उसी ढंग से सोचा है,
इसलिए तुमने ये तो कहा कि फिरौन का सबसे बड़ा अपराध यही था कि उसने अपने को खुदा होने का दावा किया।

लेकिन तुम भी चालाकी कर गए प्रश्न पूछने में भी। फिरौन को घसीट के लाए, पुराना नाम भी लोग भूल गए फिरौन का, 5000 साल पुराना इजिप्ट का बादशाह, उसको घसीट के लाए। ज्यादा जिंदा नाम, ज्यादा जिंदा आदमी अलहिलाज मंसूर के संबंध में क्या ख्याल है? फारूक खान, मंसूर को क्यों छोड़ दिया? तुम भी डरे होगे कि इस सूफी को बीच में लाना ठीक नहीं, लेकिन तुम्हें बड़ी अड़चन होगी। अगर तुम बुद्ध को मिल जाओगे तो तुम बुद्ध को संत न मान सकोगे, अगर महावीर को मिल जाओगे तो तुम संत न मान सकोगे, राम को मिल जाओगे, कृष्ण को मिल जाओगे तो तुम संत न मान सकोगे, क्योंकि ये तो अपराधी है, इनकी वाणी से तुम्हें संतोष कैसे मिलेगा? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, संतों की वाणी में जरूर अमृत है, सुधा है, लेकिन तुम जाने दोगे अपने प्राणों तक तभी ना, और तुम तभी जाने दे सकते हो जब तुम्हारे द्वार दरवाजे खुले, तुम्हारे मन पर कोई धारणाओं का जाल ना हो, तुम्हारे मन पर कोई पूर्व पक्षपात ना हो, पूर्वाग्रह ना हो, तब जरूर संतों की वाणी में बड़ा सार है। उनका एक शब्द भी चेता सकता है, उनका एक इशारा जगा सकता है, मगर अगर तुम असहयोग करो तो संत भी सिर ठोंक ठोंक के मर जाएं, तो भी तुम्हारी नींद को नहीं तोड़ सकते। कितने तो संत हुए, तुम सोए हो तो सोए ही हो, कितने तो संत हुए सदियों सदियों में, तुम जहां हो वहीं के वहीं हो, तुम वहां से हटते नहीं। फूल खिलते हैं, विदा हो जाते हैं, पत्थर अपनी जगह पड़े पड़े ही रहते, वो फूलों की सुनते नहीं। सुनने का ना कारण, सुनने के पीछे कारण है, कारण यही है कि तुम्हारे कान पहले से भरे हुए हैं। अगर तुमने मुसलमान की तरह सोचा तो तुमने सोचा ही नहीं, अगर हिंदू की तरह सोचा तो सोचा ही नहीं, अगर जैन की तरह सोचा तो सोचा ही नहीं। सोचने वाला आदमी पहले तो ये सब लिबास उतार कर रख देता है, भूल ही जाता है कि मैं कौन हूं। अभी पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं, तो ये ऊपर ऊपर की बातें, किसी घर में पैदा हो गए, वो मुसलमान था, हिंदू था, ईसाई था, ये तो सब संयोग की बात है। उस घर में पैदा हो गए, उस घर के लोगों को जो मालूम था उन्होंने तुम्हें सिखा दिया, न उन्हें मालूम था न तुम्हें मालूम हो, उनके माँ बाप उन्हें सिखा गए थे, न उन्हें मालूम था। ऐसी सिखावन चलती जाती, संस्कार चलते जाते। बुद्ध का वचन है कि संस्कार में दुख है, ये संस्कार है। हिंदू होना, मुसलमान होना, जैन होना, ईसाई होना संस्कार, कंडीशनिंग। माँ बाप तुम्हारे सिर में भरना शुरू कर देते हैं कि तुम मुसलमान हो, कुरान तुम्हारी किताब है, मोहम्मद तुम्हारा पैगंबर है, कि तुम हिंदू हो कि वेद तुम्हारी किताब है, कि तुम ईसाई हो कि बाइबल तुम्हारी किताब है। ऐसा माँ बाप भरना शुरू कर देते, छोटा बच्चा कोमल चित्र, ये सारी बातें इकट्ठी होती चली जाती। सोच विचार पैदा होने के पहले ही मन पर खूब संस्कार और जमघट जम जाता, भीड़ पैदा हो जाती, फिर जीवन भर आदमी उन्हीं संस्कारों से देखता है। तो तुमसे मैं कहूंगा, रंग ऐसा भरो ना रंग नफरत का हो, ना रंग मजहब का हो, रंग ऐसा भरो जिसके छींटों में बस प्यार ही प्यार हो, दूरियां सब मिटे, पास इतने मिले, एक छाया बने, तन से तन भी मिले, मन से मन भी मिले, पांव ऐसे धरो, रंग ऐसा भरो जिसकी आहट में भी प्यार ही प्यार हो, सबकी आंखों में हो, सबकी सांसों में हो, सबकी साधों में हो, एक ही बस गगन, एक ही बस लगन, डोर ऐसी गहो जिसकी गांठों में बस प्यार ही प्यार हो, रंग ऐसा भरो न रंग नफरत का हो, न रंग मजहब का हो, रंग ऐसा भरो जिसके छींटों में बस प्यार ही प्यार हो, तो तुम देख पाओगे सत्य क्या है। संत का अर्थ होता है जहां सत्य अवतरित हुआ है, संत का अर्थ होता है जहां सत्य ने देह धरी, संत का अर्थ होता है जिस देह में सत्य सिंहासन पर विराजमान हुआ है। अगर तुम निष्पक्ष मन, कोरे मन, शून्य मन संत के पास जाओगे, परम संतोष होगा,
और संतोष ऐसा कि फिर मिटेगा नहीं। संतोष धारणा का नहीं, मान लिया ऐसा नहीं, सांत्वना जैसा नहीं, संतोष अनुभव का, सुख के अनुभव का। और वैसा संतोष तुम्हें भी संत बनाने लगेगा, रंगे जाने लगोगे, उस रंग में डूबने लगोगे। यहां ऐसे ही रंग को भरने की कोशिश चल रही, ऐसे ही रंग को रंगने की कोशिश चल रही है। पानी से धुल जाए ऐसे भी रंग क्या, एक उम्र रंग जाए ऐसा रंग डालो। जैसा था बचपन में, जैसा था यौवन में, माटी का रंग अभी वैसा ही है। पलकों के आसपास मंडराते दर्द गई, सपनों का रंग अभी वैसा ही है। थोड़े से हिस्से को रंगने से क्या होगा, एक शहर रंग जाए ऐसा रंग डालो। पानी से धुल जाए ऐसे भी रंग से क्या, एक उम्र रंग जाए ऐसा रंग डालो। रंगों के अंदर भी रंग हुआ करते, रंगों के भीतर जाकर के देखो, बिंबों के अंदर भी सांस हुआ करते। दर्पण के भीतर जाकर देखो, बासंती देहों को रंगना है कायरता। पतझर भी रंग जाए रंग ऐसा डालो, पानी से धुल जाए ऐसे भी रंग क्या, एक उम्र रंग जाए ऐसा रंग डालो। संत का अर्थ है सत्य को उंडेल दे तुम्हें, संत का अर्थ है जो उसे हुआ है उसमें रंग दे तुम्हें, संत का अर्थ है रंगरेज, संत का अर्थ है तुम्हें एक डुबकी लगवा दे उसमें जो अभी तुम्हारे सामर्थ्य के बाहर है। संत का अर्थ है जो उसने देखा है अपनी आंखों के पीछे तुम्हें खड़ा करके थोड़ा अपनी आंखें उधार दे दे, कहे कि जरा मेरी आंखों से देख लो, जो मुझे दिखता है वो देख लो। संत का अर्थ है कि थोड़ी देर को अपना हृदय तुम्हें दे दे, और अगर तुम राजी हो तो ये घट जाता है, इसमें देर नहीं लगती। यहां घट रहा है, तुम अगर राजी हो तो कभी भी किसी भी क्षण जहां राजीपन पूरा होता है अचानक तुम्हारे हृदय की जगह मेरा हृदय धड़केगा, तुम मेरी आंख से देखने लगोगे और तब सब चीजें और ही हो जाती, तब सब कुछ और ही ढंग से दिखाई पड़ने लगता है। संत को तुमने जानना सीखा, देखना सीखा, जब तुम्हें हिंदू का संत हो कि मुसलमान का कि ईसाई का कि बौद्ध का, सभी का संत पहचान में आने लगे, तब तुम समझे कि संत क्या है। और तब जो संतोष मिलेगा वो संक्रांति है, वो तुम्हें रूपांतरित कर जाएगी, वो तुम्हें नया कर जाएगी, वो तुम्हें द्विज बना देगी, एक नया जन्म देगी। निश्चित ही ये बात असंतों की वाणी में कैसे हो सकती, वाणी खाली कोरी, वहां कुछ प्राण कहां है, पिंजड़ा है पक्षी तो नहीं, तो पिंजड़ों के लिए तुम चलते रहो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लोग पिंजरों को लिए ही चलते रहते और मान के चलते कि पक्षी है, होना चाहिए क्योंकि बाप ने कहा, क्योंकि बाप के बाप ने कहा, होना चाहिए क्योंकि भीड़ कहती, समाज कहता, मौलवी कहता, पंडित कहता, होना चाहिए। अपनी तरफ से नहीं देखते कि है या नहीं, डरते भी हो कि कहीं ऐसा ना हो कि ना हो, इसलिए देखते ही नहीं, अपने पिंजड़े को खूब ढांक के रखते हो कि कहीं दिखाई ना पड़ जाए। तुम्हें भी कभी कभी शक तो आता होगा कि है या नहीं, लेकिन ये शक तुम टिकने नहीं देते, तुम कहते हो शक तो अच्छी बात नहीं, होना चाहिए ही। कोई माता पिता झूठ तो ना बोलेंगे, पंडित पुरोहित झूठ तो ना बोलेंगे, समाज परिवार झूठ तो ना बोलेगा, ये सब लोगों को झूठ बोलने में क्या रखा है, ये क्यों झूठ बोलेंगे सब, होना ही चाहिए। तो तुम कभी उठा के देखते भी नहीं पर्दा के पीछे कोई है, कि तुम खाली मंदिर की पूजा कर रहे हो, तुम्हारे 100 संतों में से 99 खाली मंदिर है जिनके भीतर कुछ भी नहीं, लेकिन उनकी पूजा चल रही। अक्सर तो ऐसा होता है कि जिनके भीतर कुछ है उनकी पूजा बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि जिनके भीतर कुछ है वो तुम्हारी धारणाएं तोड़ देते, जिनके भीतर कुछ है वो तुम्हारे गुलाम थोड़ी, वो तुम्हारी लीक पर थोड़ी चलते हैं। जिनमें कुछ नहीं है वही लीक पर चलते हैं। उधार वही होता है जिसके पास अपनी नगद संपदा नहीं है। उधारी ऊपर ऊपर से ठीक लगती हो, भीतर भीतर अर्थहीन होती। मैंने सुना एक बड़े धनपति यहूदी के घर के सामने यहूदी बैठा है,
अपने महल में। उसके दरवाजे पर लोहे के शीशों का बना दरवाजा है। एक फकीर, एक गरीब आदमी अपनी पीठ खुजला रहा है, दरवाजे के शीशों से अपनी पीठ खुजला रहा है। उस अमीर को बड़ी दया आई, उसने फकीर को भीतर बुलाया, अपने नौकरों को आज्ञा दी कि इसे खूब स्नान करवाओ, खूब धो धो के मालिश करो इसकी। उसको खूब धुलवाया गया, खूब स्नान करवाया गया, ऐसे साबुन जो उसने कभी देखे भी ना थे। पानी के फवारे के नीचे बिठाया गया, ठंडे गर्म पानी में नहलाया गया, इत्र फूले तेल से उसकी मालिश की गई, अच्छे कपड़े पहनाए गए, और जब वो आया तो उसे भोजन करवाया गया, और कुछ रुपयों को भी उस धनपति ने उसे दिया और कहा कि जाओ। ये बात तो गांव भर में फैल गई। दो आदमियों ने सोचा ये तो बड़े गजब की बात है। वो दोनों भी आके दरवाजे पर खड़े होकर पीठ खुजलाने लगे। धनपति ने देखा, उसने अपने आदमी भेजे, कहा कि दोनों को जंजीरें डाल के मेरे सामने ले आओ। वो दोनों को जंजीरें डाल के लाया गया। वो दोनों चिल्लाने लगे कि बात क्या है, क्योंकि अभी अभी तो व्यवहार कुछ और किया गया था। मेरे हाथों में जंजीरें, हमारे हाथों में जंजीरें क्यों डाली जा रही है? वो घसीट के लाए गए। और उस धनपति ने कहा कि यहां से भाग जाओ, कभी दोबारा यहां मत आना, क्योंकि वो अकेला था और अगर उसके पीठ में खुजान उठी थी तो वो खुजा भी नहीं सकता था। तुम तो दो हो, एक दूसरे की पीठ क्यों नहीं खुजला ले? तुम्हें इतनी तो अकल होनी चाहिए। अब भाग जाओ, कभी दोबारा इस तरफ मत आना। अक्सर ऐसा होता है। महावीर को ज्ञान हुआ, वो नग्न खड़े हो गए। बहुतों को लगा कि नग्न खड़े होने से ज्ञान हो जाता है, तो बहुत अभी तक दरवाजों पर पीठ खुजला रहे। वो नग्न खड़े हो गए। नग्न खड़े होने से ही जैन, दिगंबर जैन, दूसरा कोई नहीं, श्वेतांबर जैन भी नहीं, दिगंबर जैन पूछता है, क्योंकि वो मानता है नग्नता संत का लक्षण। महावीर नग्न हुए थे तो उसने संत की परिभाषा कर ली। जैसे महावीर पर संत की परिभाषा चुक जाती है, संत की परिभाषा चुकती ही नहीं, और संत कभी दो एक जैसे हुए नहीं और होंगे भी नहीं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति संतत्व के शिखर को उपलब्ध होता है तो अद्वितीय हो जाता है, अकेला बेजोड़, उस जैसा फिर कभी दोबारा दूसरा आदमी नहीं होगा। इसका यह अर्थ नहीं कि कोई संत ना होगा, संत होंगे लेकिन फिर अपने जैसे होंगे। सब संत अनूठे होते, बस एक संत एक बार एक जैसा होता, दोबारा फिर नहीं होता। तो हजारों लोग नग्न होकर खड़े, उनमें कुछ भी नहीं है, लेकिन दिगंबर उनको पूछेगा, क्योंकि उसके संतत्व की परिभाषा में नग्नता जुड़ गई। इसलिए दिगंबर जैन किसी और को नहीं पूछ सकता जो कपड़े पहने हो, क्योंकि कपड़े पहने हुए तो संत हो ही नहीं सकता। दिगंबर जैन के सामने तुम मोहम्मद को खड़ा करो, वो कहेगा कि हजरत अभी कपड़े पहने हुए, अभी तक कपड़े पहने हुए तो ज्ञान हुआ ही नहीं, क्योंकि महावीर को जब ज्ञान हुआ तो कपड़े छोड़ गए, आप अभी तक कपड़े पहने हुए। ये बात जैन को नहीं जचेगी, वो मोहम्मद को तो मान ही नहीं सकता। मेरी एक किताब एक जैन मुनि को भेंट की गई। जिन मित्र ने भेंट की, उन्होंने मुझे आके बताया कि बड़ी अजीब बात हो गई। उन्होंने किताब पलट के देखी, उन्होंने कहा और तो सब ठीक है, इसमें मोहम्मद का नाम कैसे आया? किताब फेंक दी, किताब महावीर पर थी, किताब फेंक दी क्योंकि इसमें मोहम्मद का नाम कैसे आया, कहां महावीर और कहां मोहम्मद। उनको ये बर्दाश्त के बाहर हो गया कि मोहम्मद का नाम महावीर के साथ आया, और मेरी तो आदत खराब है, मैं तो जोड़ ही देता हूं। उनको ये बात बिल्कुल जची नहीं। मोहम्मद सांसारिक आदमी, ग्रस्त। अब अगर तुम जैनी के हिसाब से सोचो तो लगेगा भी, कितनी पत्नी है मोहम्मद की। दिगंबर जैन तो महावीर की एक पत्नी थी, उसको भी इंकार करते। महावीर की सच में एक पत्नी थी और एक लड़की भी हुई और दमान भी था, ये ऐतिहासिक तथ्य है। लेकिन दिगंबर जैन अपनी किताबों में लिखते हैं कि उन्होंने कभी विवाह नहीं किया, क्योंकि ये बात ही उनको अखरती कि महावीर और विवाह करें। हालांकि अज्ञान की अवस्था में कर लें तो हर्ष क्या है, फिर ज्ञानी तो बाद में हुए, मगर वो मानते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। महावीर तो अज्ञान की अवस्था में भी इतनी ऊंचाई पर थे कि वो विवाह तो कर ही नहीं सकते, इसलिए हुए विवाह को भी इंकार कर दिया है। लड़की पैदा हुई ये तो मान ही नहीं सकते, क्योंकि लड़की पैदा हुई तो उसका मतलब वो उन्होंने संभोग किया होगा। महावीर और संभोग करें, जरा सोचो, ये बात जस्ती नहीं।
तो दिगंबर जैन ने ये बात ही जड़ से काट दी कि विवाह ही नहीं हुआ, न रहा बांस न बजेगी बांसुरी। अभी तक मोहम्मद ने 9 विवाह किए, ये बात जरा जस्ती नहीं। लेकिन मोहम्मद की तरफ से सोचो, मोहम्मद को सीधा सोचो, तो मोहम्मद ने 9 विवाह किए और इस किसी विवाह में कोई काम वासना नहीं। अरब देश लड़ाके देश थे, आदमी तो लड़ते और कट जाते और स्त्रियों की संख्या बढ़ती चली गई, पुरुष कम होते चले गए। जिस समाज में पुरुषों की संख्या कम हो जाए और स्त्रियों की संख्या ज्यादा हो जाए, उस समाज में बड़ा व्यभिचार फैल जाता है, फैल ही जाएगा, क्योंकि इतनी स्त्रियां कामातुर होकर भटकने लगेंगी और पुरुष तो कामातुर है ही। अब स्त्रियां इतनी उपलब्ध हो जाएंगी तो उपद्रव होने वाला है। तो मोहम्मद ने नियम बनाया कि हर मुसलमान कम से कम 4 विवाह करे। अब ये किसी दूसरे को जिस देश में कभी स्त्री पुरुषों की संख्या में इतना बड़ा अंतर नहीं पड़ा, ये बात बेहूदी लगेगी, लेकिन उस ऐतिहासिक क्षण में ये बात बड़ी सार्थक थी। इन 4 विवाह ने मुसलमान देशों की नैतिकता बचा ली, नहीं तो ये डूब जाते, ये नष्ट हो जाते। खुद मोहम्मद ने 9 विवाह किए, ठीक ही है, अगर शिष्यों से 4 विवाह करवाने हो तो गुरु को 9 करने पड़े, ये बात बिल्कुल तर्कयुक्त है, इसी भी गणित की है। मोहम्मद 2 कदम आगे गए तब तो कहीं तुम चलोगे थोड़ा बहुत, नहीं तो तुम चलोगे ही नहीं। आदमी एक ही पत्नी से काफी परेशान रहता है, 4 पत्नियां तुम सोचते हो कोई छोटी मोटी साधना? मैं तुमसे कहता हूं कि ब्रह्मचारी की साधना उतनी कठिन नहीं जितनी 4 पत्नियों वालों की साधना कठिन है। मुल्ला नसुद्दीन एक चोरी में पकड़ा गया, मजिस्ट्रेट ने उसने कहा कि तू भला आदमी है और पहली तरफ चोरी में पकड़ा गया, तू खुद ही बोल दे क्या सजा। मुल्ला ने कहा जो भी देना हो सजा दे दे, बस एक ही सजा मत देना, 2 विवाह करने की सजा मत देना। तो मजिस्ट्रेट बोला कि ये भी कोई सजा होती 2 विवाह करने की, बात क्या है तू इसको सार को खोल के कह। तो उसने कहा बात ये है, मैं पकड़ाते ही नहीं, इस आदमी की 2 औरतें 2 बजे रात इसके घर में घुसा, उधर मारपीट हो रही थी, एक औरत इसको ऊपर की तरफ खींच रही थी वो ऊपर रहती और एक औरत इसको नीचे की तरफ खींच रही थी वो नीचे रहती, एक इसकी टांगे पकड़ी थी एक इसके हाथ पकड़े थी, ये सीढ़ियों पे अटका था। इसकी ये घबराहट देख के और ये घर की हालत देख के मैं छिप के बैठ गया ये कोने में, कभी ये निपट जाए तो या तो मैं कुछ चोरी करूं या निकल भागूं, मगर ये निपटे ही नहीं। सुबह हो गई, मैं घर से निकल ना सका क्योंकि वो सीढ़ियां उतरने का एकमात्र रास्ता था, इसलिए मैं पकड़ा गया। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो सजा देनी हो दे देना, मगर 2 औरतों से विवाह करने की सजा मत देना। तुम सोचते हो कि ब्रह्मचर्य ही साधना है, तो तुम गलती सोचते हो, 4 स्त्रियों के साथ विवाह करना भी साधना ही है, बड़ी साधना हो सकती है। और मोहम्मद का विवाह तुम सोचते हो, मोहम्मद ने 1 विवाह किया, पहला विवाह तो अपनी से दुगनी उम्र की, पहले विवाह में तो जो स्त्री थी वो करीब करीब बूढ़ी हो रही थी और मोहम्मद अभी जवान थे, उससे विवाह किया। कोई पुरुष अपने से बड़ी उम्र की स्त्री से विवाह करना पसंद नहीं करता, बड़ी उम्र की तो तुम छोड़ दो, तुमसे अगर 1 इंच ऊंची औरत हो तो भी तुम उससे विवाह करना पसंद नहीं करते। अपने से किसी भी स्थिति में बड़ी स्त्री से कोई विवाह करना नहीं पसंद करता, तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो तुम पसंद नहीं करते, तुमसे ज्यादा अनुभवी हो तो पसंद नहीं करते, उम्र ज्यादा हो तो पसंद नहीं करते, क्योंकि कम उम्र की स्त्री ही काफी कब्जा जमा लेती, बड़ी उम्र का तो कहने ही क्या, 5-7 साल पीछे की स्त्री भी तुम्हें धकेल देती, तुम्हारी सब समझदारी रखी रह जाती। तो अगर बड़ी उम्र की स्त्री हुई, ज्यादा अनुभवी हुई, ज्यादा पढ़ी लिखी हुई, तो अड़चन आएगी, बहुत अड़चन आ जाएगी। यद्यपि वैज्ञानिक हिसाब से ज्यादा उम्र की स्त्री से ही विवाह होना चाहिए, क्यों कहता हूं वैज्ञानिक हिसाब से, क्योंकि सारे संसार के आंकड़े ये बात कहते हैं कि स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा जीती, 5 साल से 7 साल ज्यादा। तो अगर तुम 75 साल जियोगे तो तुम्हारी पत्नी 80 या 82 साल जिएगी। अब तुम 5-7 साल छोटी उम्र की स्त्री से विवाह करोगे तो तुम्हारे मरने में तुम्हारी पत्नी के मरने में 10 साल का फासला होगा, तुम 10 साल के लिए उसे विधवा छोड़ जाओगे, ये अवैज्ञानिक। अगर विज्ञान की बात समझो तो तुम्हें अपने से 5-7 साल उम्र बड़ी स्त्री से विवाह करना चाहिए, ताकि तुम दोनों करीब करीब संसार से विदा हो,
75 साल के तुम होगे, 80 की वो हो जाएगी, दोनों करीब करीब मरोगे, ज्यादा दुख नहीं होगा, ना तुम अकेले छूटोगे ना वो अकेली छूटेगी। मोहम्मद ने

मोहम्मद की कि अपने से बड़ी उम्र की स्त्री से विवाह कर लिया। मोहम्मद की परिस्थिति अलग, मोहम्मद के सोचने के ढंग अलग, मोहम्मद की बात अलग। फिर मोहम्मद जिन लोगों से बोल रहे थे वे लोग बिल्कुल ही खानाबदोश, एकदम गैर पढ़े लिखे लोग। उनको तो छुड़ाना था अभी मूर्ति से। अभी तो उनका सबसे बड़ा उपद्रव यही था कि वो मूर्तियों की पूजा में लगे थे, और एक दो मूर्ति की नहीं, 365 मूर्तियां बना रखी थी काबा में। एक दिन के लिए एक मूर्ति थी, हर दिन नई मूर्ति की पूजा चल रही थी। अभी तो वो बहुत नीचे धर्म में पड़े थे, उनको मूर्ति से किसी तरह छुटकारा दिलाना था। अभी उनसे ये घोषणा करनी कि अहम ब्रह्मास्मि हूँ बात ही पागलपन की होती, ये तो वो समझ ही नहीं पाते। ये तो पाठ बहुत आगे का है, ये तो भारत में संभव हो सका, क्योंकि ये पाठ के लिए काफी लंबी परंपरा चाहिए, हजारों साल की परंपरा चाहिए। ये तो धर्म के विश्वविद्यालय की आखिरी कक्षा है जहाँ घोषणा की जा सकती है अहम ब्रह्मास्मि, और लोग समझेंगे और नाराज ना हो जाएंगे। तो अलग परिस्थितियां, अलग व्यक्तित्व, अलग ढंग। जैन राजी नहीं होगा कि मोहम्मद ज्ञान को उपलब्ध हुए, और मुसलमान राजी नहीं होंगे कि महावीर ज्ञान को उपलब्ध हुए, नंगे खड़े हो गए। ये बात तो जस्ती नहीं, ये तो ठीक नहीं, ये तो अशिष्ट, ये तो असामाजिक। कोई किसी दूसरे के संत से तो राजी नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे संत की एक निश्चित धारणा है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, सब धारणा छोड़ के तुम शून्य भाव से, शांत भाव से, मौन भाव से देखो तो तुम चकित हो जाओगे। मोहम्मद भी उसी महिमा को उपलब्ध हुए जिसको महावीर, बुद्ध भी उसी को उपलब्ध हुए जिसको क्राइस्ट। ये अलग ढंग है, अलग ढंग होने ही चाहिए। और एक व्यक्ति एक ही बार होता है, दोबारा दोहराया नहीं जाता है। परमात्मा इस संसार में किसी को दोहराता नहीं। आदमियों की तो छोड़ दो, तुम एक कंकड़ उठा लो और सारी पृथ्वी खोज डालो तो भी वैसा ही दूसरा कंकड़ ना पा सकोगे। एक पत्ता तोड़ लो इस बगीचे का और सारे जंगल खोज डालो, ठीक वैसा ही दूसरा पत्ता ना पा सकोगे। परमात्मा कार्बन कॉपी बनाते ही नहीं, परमात्मा मूल बनाता, मौलिक। प्रत्येक वस्तु नई और अद्वितीय। तो जब छोटी छोटी चीजों के संबंध में ये सच है, तो क्राइस्ट या मोहम्मद या महावीर या बुद्ध जैसे व्यक्ति तो परम आखिरी है, ये तो अद्वितीय, इन जैसा दूसरा कोई होता नहीं। नकल में पढ़ना मत, किसी जैसे बनने की कोशिश करना मत। तुम ही बन सको तो ही तुम परमात्मा को उपलब्ध हो सकोगे, और जब तुम अपनी परिपूर्णता में स्वयं हो जाते हो तब तुम्हारे भीतर एक नाद उठने लगता है। वो नाद है अहम ब्रह्मास्मि अनल हक। फिर ओम गलत कहता था, क्योंकि उसने ये कहा कि मैं परमात्मा हूँ और कोई नहीं, और मंसूर ने ठीक कहा कि मैं परमात्मा हूँ क्योंकि सिर्फ परमात्मा है और तो कोई है ही नहीं, परमात्मा ही है। पत्थर भी परमात्मा है तो मैं भी परमात्मा हूँ। इन दोनों वक्तव्यों की समानता के साथ साथ इनके भीतर छिपा हुआ भेद भी ठीक से देख लेना। तीसरा प्रश्न, किसी बुद्ध पुरुष के वचनों के मार्मिक अर्थ को समझ पाना क्या ध्यान को उपलब्ध हुए बिना संभव है? क्या तत्व ज्ञान और ध्यान की स्थिति के बीच कोई गहरा नाता है? इस विषय पर प्रकाश डालने का अनुग्रह करें। किसी बुद्ध पुरुष के वचनों को पूरा पूरा समझना हो तो ध्यान के बिना कोई उपाय नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी झलक मिल सकती है ध्यान के बिना भी, थोड़ी थोड़ी भनक पड़ सकती है बिना ध्यान के भी। और अगर ये भनक न पड़ती होती तो फिर तुम चलोगे ही कैसे? तब तो तुम कहोगे जब ध्यान होगा तब समझ में आएगा, और जब तक समझ में नहीं आया तब तक चले कैसे? और जब तक चलोगे नहीं तब तक ध्यान कैसे होगा? तब तो तुम एक बड़े चक्कर में पड़ जाओगे, एक दुष्ट चक्कर में पड़ जाओगे। तो दो बातें ख्याल रखना, ना तो ये ही बात सच होती है कि जो बुद्ध पुरुष कहते हैं वो तुमने सिर्फ सुन लिया बुद्धि से और समझ में आ जाए, नहीं। अगर इतने से ही समझ में आ जाए तो फिर ध्यान की कोई जरूरत ही ना रहेगी। और ना ही दूसरी बात सच है कि जब ध्यान होगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि अगर ध्यान होगा तभी समझ में आएगा तो तुम ध्यान भी कैसे करोगे? क्योंकि बुद्ध पुरुषों में कुछ रस आने लगे तभी तो ध्यान में लगोगे ना। तो बुद्ध पुरुषों की वाणी सुनते समय पूरी तो समझ में नहीं आती, कभी नहीं आती। पूरी तो तभी समझ में आएगी जब तुम भी बुद्ध पुरुष हो जाओगे, जब तुम भी उन जैसे हो जाओगे तभी पूरा अनुभव होगा।
लेकिन अभी थोड़ी भनक तो पड़ सकती। जब छोटा बच्चा चलना शुरू करता है तभी दौड़ नहीं सकता है, ये बात सच है। लड़खड़ा तो सकता है, और अगर तुम कहो कि अभी लड़खड़ा भी नहीं सकता तो फिर कभी चल ही ना सकेगा। छोटा बच्चा जब पहले कदम उठाता है तो देखा कैसा डरा डरा सहारे की आकांक्षा रखता है, माँ हाथ पकड़ ले, माँ का हाथ पकड़ के हिम्मत करके दो कदम चल लेता है। छोटे बच्चे के पास पैर तो है, उसके शरीर को संभालने योग काफी पैर है। तुम्हारे बराबर पैर नहीं तो तुम्हारे बराबर शरीर भी नहीं, लेकिन अनुपात ठीक उतना ही है जितना तुम्हारा। तुम्हारे बड़े शरीर को संभालने के लिए बड़े पैर हैं, उसके छोटे शरीर को संभालने के लिए छोटे पैर, लेकिन उसके शरीर को संभालने के लिए पर्याप्त पैर है, मगर अभी अनुभव नहीं, उसे ये भरोसा नहीं कि मैं खड़ा हो सकूंगा, उसे ये आत्मविश्वास नहीं। तो माँ का हाथ पकड़ के चल लेता है। गुरु का हाथ पकड़ के चलने का इतना ही अर्थ होता है कि जहाँ तुम अभी नहीं चले हो, यद्यपि चल सकते हो लेकिन तुमने कभी प्रयास नहीं किया है, तो कोई जो चल चुका है, कोई जो चल रहा है, तुम उसका हाथ पकड़ लेते हो। फिर धीरे धीरे माँ अपना हाथ छुड़ाने लगती है, फिर उंगली ही पकड़ रखती है, फिर धीरे धीरे उंगली भी खींच लेती है। एक दिन बच्चा पाता है कि अरे वो तो खुद ही खड़ा होकर चल सकता है। जब पहली दफे बच्चे चलते हैं तो तुमने देखा वो रुकते ही नहीं, वो बैठते ही नहीं, तुम लाख उपाय करोगे, अब तू थक गए, अब तू बैठ जा, मगर वो चक्कर मार रहे हैं। इतना आनंद उनको अनुभव होता है कि एक अपूर्व घटना हाथ लग गई कि मैं भी चल सकता हूँ। ऐसी ही घटना ध्यान के मार्ग पर भी घटती। बुद्ध पुरुषों की वाणी पहले तो सिर्फ झलक देगी, जरा सी देर के लिए बिजली कौन जाएगी, एक किरण उतर जाएगी, मगर किरण तुम्हें प्यास से भर जाएगी और तुम्हें ये आश्वासन मिलने लगेगा, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इस व्यक्ति को हुआ है तो मुझे क्यों नहीं हो सकता, मुझ जैसे ही व्यक्ति को तो हुआ है, आखिर बुद्ध के हड्डी मांस मज्जा तुम्हारे जैसे ही है, कुछ भेद तो नहीं, तुम्हारे जैसे आंख कान नाक, तुम जैसा भूख लगते तो भोजन करते और तुम जैसे रात थक के सो भी जाते, तुम जैसे ही जवान हुए, तुम जैसे ही बूढ़े हुए, तुम जैसे ही एक दिन मर भी गए। तो बुद्ध पुरुष ठीक तुम जैसे बीमार भी होते, रुग्ण भी होते, स्वस्थ भी होते, बूढ़े हो गए तो बाल भी सफेद हो गए, बूढ़े हो गए तो हाथ पैर भी कपने लगे, ये सब तुम जैसा ही है, लेकिन तुम जैसे इस मनुष्य में भी कुछ घटा है जो तुम में लगता है अभी नहीं घटा। इससे हिम्मत बंधती है कि अगर मेरे जैसे व्यक्ति में ये हो सका है तो शायद मुझ में भी हो सके, शायद मैं भी एक संभावना अपने भीतर लिए चल रहा हूँ, एक बीज जिसको ठीक भूमि नहीं मिली, शायद मैं भी अपने भीतर एक संभावना लिए चल रहा हूँ जिस पे मैंने कभी प्रयोग नहीं किया और वास्तविक बनाने की चेष्टा नहीं की। किसी गायक को गीत गाते देख कर तुम्हें याद आ जाती अपने कंठ की कि कंठ तो मेरे पास भी है, और किसी नर्तक को नाचते देखकर तुम्हें याद आ जाती अपने पैरों की कि पैर तो मेरे पास भी हैं, चाहूं तो नाच तो मैं भी सकता हूं। किसी चित्रकार को चित्र बनाते देखकर तुम्हें भी याद आ जाती है कि चाहूं तो चित्र मैं भी बना सकता हूं। ऐसे ही किसी बुद्ध को देखकर तुम्हें याद आ जाती है कि चाहूं तो बुद्धत्व मैं भी पा सकता हूं। बस यही चाह, ये समझ नहीं है पूरी, प्यास शुरू हुई, उजाला सा बिखर जाता है, चाहे जैसा भी हो हर वक्त गुजर जाता है, बात रह जाती है पर ढेर बिखर जाता है। गम में वैसाख के सूरज की तपन होती है, ऐसे मौसम में समंदर भी उतर जाता है। रोज दिन भर तो अंधेरों में सफर करते हैं, शाम होते ही उजाला सा बिखर जाता है। टूट जाता है हर एक तसलसल यारो, कोई लम्हा कभी ऐसा भी गुजर जाता है। कोई उम्मीद किरण बन के चमक उठती, दिल से कुछ देर को हर बोझ उतर जाता है, उजाला सा बिखर जाता है। कोई उम्मीद किरण बन के चमक उठती। बुद्ध पुरुषों के पास, तीर्थंकरों के पास, सदगुरुओं के पास, परमहंसों के पास, सूफियों के पास कोई उम्मीद किरण बन के चमक उठती, दिल से कुछ देर को हर बोझ उतर जाता है। कुछ देर को ही, क्षण भर को ही सही, कोई पूरा सूरज नहीं उगता, लेकिन एक किरण चौंध जाती है।
लेकिन उस किरण में तुम्हें अपना भविष्य दिखाई पड़ जाता है कि ये हो सकता है। टूट जाता है हर एक तसलसल यारो, कोई लम्हा कभी ऐसा भी गुजर जाता है, कोई लम्हा एक क्षण भर को, एक पल भर को आंख खुल जाती फिर बंद हो जाती, लेकिन वो एक पल जीवन को बदल देने वाला पल सिद्ध होता है। पूछते हो किसी बुद्ध पुरुष के वचनों के मार्मिक अर्थ को समझ पाना क्या ध्यान को उपलब्ध हुए बिना संभव है? हां भी और नहीं भी। हां इस अर्थ में कि झलक मिलती है, एक किरण सी उतरती है, एक उमंग जग जाती, एक प्यास उठने लगती, एक अज्ञात खिंचाव पैदा हो जाता है। इसलिए हां और नहीं इसलिए कि सुन के ही कहीं पूरी बात थोड़ी हो जाती है। चलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। बहुत कूड़ा करकट है वो जला देना पड़ेगा, आग से गुजरना होगा ताकि सोना निखर जाए। बुद्ध पुरुषों की बात सुन के यात्रा शुरू होती, मंजिल नहीं आ जाती। मंजिल तो आएगी तभी जब ध्यान पूरा होगा, और जब ध्यान पूरा होगा तभी पूरी बात भी समझ में आएगी, क्योंकि पूरी बात समझने का एक ही अर्थ हो सकता है कि जो उनका अनुभव था वो मेरा भी अनुभव हो गया। जब अनुभव एक जैसे हो जाते हैं तभी बात समझ में आती। चौथा प्रश्न, भगवान जिस दिन मैं पालूंगा उस दिन कैसे आपको धन्यवाद दूंगा? अब अभी से व्यर्थ की फिक्र में मत पड़ो, जब पालने जैसी अपूर्व घटना घट जाएगी तो धन्यवाद भी खोज ही लोगे। ये तो छोटी सी बात रही, उतनी बड़ी बात हो जाएगी तो क्या तुम सोचते हो धन्यवाद देने का कोई ढंग न खोज पाओगे? भगवान को खोज लोगे और धन्यवाद देने का ढंग न खोज पाओगे? हो ही जाएगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। और अभी से कोई अभ्यास थोड़ी करना कि धन्यवाद का अभ्यास करोगे, अभ्यास करोगे तो झूठा होगा, और झूठा अभ्यास अगर रहा तो उस मौके पर भी शायद झूठे अभ्यास से ही धन्यवाद दोगे। उस धन्यवाद को तो कम से कम स्वस्फूर्त रहने दो, उसकी तो तैयारी मत करो, उसका तो रिहर्सल मत करो। मुल्ला नसुद्दीन एक दिन रेल यात्रा से वापस लौटा तो मुझसे कहने लगा कि रास्ते में एक टिकट चेकर उसे बड़े अजीब ढंग से घूर रहा था। तो मैंने पूछा, अजीब ढंग से क्या मतलब तुम्हारा नसुद्दीन? तो उसने कहा कि यानी वह ऐसे घूर रहा था जैसे मेरे पास टिकट हो ही नहीं। तो मैंने पूछा, फिर तुमने क्या किया नसुद्दीन? उसने कहा, मैं क्या करता, मैं भी उसे ऐसे घूरने लगा जैसे सचमुच मेरे पास टिकट हो। अब ऐसे अभ्यास चल रहे, टिकट चेकर तुम्हें घूर रहा है कि जैसे तुम्हारे पास टिकट ना हो, तुम ऐसे घूर रहे हो जैसे तुम्हारे पास टिकट हो। झूठे अभ्यासों में मत पड़ो, ये बात पूछो ही मत। धन्यवाद निकलेगा उस अनुभव से, सभ्य इसना अभी अभी नहाया हुआ ताजा, जैसे कोंपल फूटती नई, जैसे सुबह सूरज उगता नया, ऐसा धन्यवाद उगेगा। और उस धन्यवाद की बात ही कुछ और है।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक कथाओं और प्रसंगों के बारे में जिनसे बहुत सारा ज्ञान हमें प्राप्त होता है, और यही ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद है रागलेखा दासी जी, चरणासी त्युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: हरे कृष्ण
0: जी। श्रोताओं, हमने प्रारंभ कर दिया था महाभारत काव्य, जो ये ग्रंथ है इसके बारे में हमने चर्चा पिछले कई एपिसोड से शुरू कर दी थी, और पिछले एपिसोड में हमने रागलेखा दासी जी से एक कथा जानी जिसमें पक्षी राज जो गरुड़ हैं वो कैसे पक्षी राज बने और वो किस तरह से अमृत लेने पहुंच गए थे अपनी माता जी को दासत्व से मुक्त कराने के लिए, हमने ये कथा रागलेखा दासी जी से जानी। तो आज एक नई कथा, एक नया प्रसंग हम इस महाभारत की कथाओं के अंतर्गत जानते हैं रागलेखा दासी जी से। जी रागलेखा दासी जी,
1: अब शौनक आदि जो ऋषि थे उन्होंने पूछा है, सूत नंदन, जब सर्पों को ये बात मालूम हो गई कि माता कद्रु ने हमें शाप दे दिया, तब उन्होंने उसके निवारण के लिए क्या किया? तो उग्र श्रवाद जी कहते हैं, क्योंकि ये संवाद चल रहा है शौनक आदि ऋषि जो 88,000 है, और उग्र श्रवाद जी जो सूत गोस्वामी जी के पुत्र है, उग्र श्रवा सूत, तो उनके बीच में चल रहा है। तो उग्र श्रवाद जी कह रहे हैं कि उन सर्पों में से एक शेष नाग भी थे, उन्होंने कद्रु और अन्य सर्पों का साथ छोड़ के कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। ये केवल हवा पी कर रहते थे और अपने व्रत का पूर्ण पालन करते थे। ये अपनी इंद्रियों को वश करके गंध मादन, बद्रिकाश्रम, गोकर्ण, हिमालय आदि की तराई में एकांत वास करते और पवित्र तीर्थों और धामों की यात्रा भी करते। ब्रह्मा जी ने देखा शेषनाग के शरीर का मांस, त्वचा, नाड़ियां सब सूख गई है, क्योंकि उनका सच्चा धैर्य और तपस्या देखकर वे उनके पास आए और बोले, शेष, तुम अपनी तीव्र तपस्या से प्रजा को संतप्त क्यों कर रहे हो? इस घोर तपस्या का उद्देश्य क्या है? कोई प्रजा के हित का काम क्यों नहीं करते? बतलाओ तुम्हारी क्या इच्छा है? शेष जी ने कहा, भगवान, मेरे सब भाई मूर्ख हैं, इसलिए मैं उनके साथ नहीं रहना।

0: चाहता हूँ, आप मेरी इस इच्छा का अनुमोदन कीजिए। विनीता और उसके पुत्र गरुड़ और अरुण से द्वेष करते हैं, इसलिए मैं उनसे उब कर तपस्या कर रहा हूँ। विनीता नंदन गरुड़ निसंदेह हमारे भाई हैं। अब मैं तपस्या करके शरीर छोड़ दूंगा। मुझे चिंता है तो बस इस बात की कि मरने के बाद उन दुष्टों का संग ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष मुझसे तुम्हारे भाइयों की करतूत छुपी नहीं है, अब तुम उनकी चिंता छोड़कर अपने लिए जो चाहो वर मांग लो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ क्योंकि सौभाग्यवश तुम्हारी बुद्धि धर्म में अटल है, तुम्हारी बुद्धि सर्वदा ऐसी ही बनी रहे। शेष ने कहा, पितामह मैं यही वर चाहता हूँ कि मेरी बुद्धि धर्म तपस्या शांति में संलग्न रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष मैं तुम्हारे इंद्रियों और मन के संयम से बहुत प्रसन्न हूँ, मेरी आज्ञा से तुम प्रजा के हित के लिए काम करो। ये सारी पृथ्वी, पर्वत, वन, सागर, ग्राम, विहार, नगरों के साथ हिलती गुलती रहती है, तुम इसे इस प्रकार धारण करो कि इससे वह अचल हो जाए। शेष ने कहा, मैं इस पृथ्वी को इस प्रकार धारण करूंगा जिससे वह हिले डुले नहीं, आप इसको मेरे सिर पर रख दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष पृथ्वी तुम्हें मार्ग दे देगी, तुम उसके भीतर घुस जाओ, तुम पृथ्वी को धारण करके मेरा बड़ा प्रिय कार्य करोगे। आज्ञा अनुसार शेष ने भूविवर में प्रवेश करके नीचे चले गए और समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी को चारों ओर से पकड़कर सिर पर उठा लिया। तभी से स्थिर भाव में स्थित है। माता का श्राप सुन के वासुकी नाग को बड़ी चिंता हुई, वे सोचने लगे कि इस प्रकार श्राप का प्रतिकार क्या है। उन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और सबसे सलाह करने लगे। अचुकिन कहा, भाइयों विपत्ति आने से पहले हमें उपाय करने से काम बन सकता है। तब ठीक है कहकर सभी बुद्धिमान और चतुर सर विचार करने लगे। हम लोग ब्राह्मण बनकर जन्मे जय के इससे भिक्षा मांगे कि तुम यज्ञ मत करो। कुछ ने कहा, हम मंत्री बनकर ऐसी सलाह दे कि जिससे यज्ञ ही ना हो पाए। कुछ ने कहा कि हम बादल बनकर यज्ञ की आग बुझा देंगे। कुछ बोले, हम यज्ञ की सामग्री ही चुरा लेंगे। कुछ ने कहा, हम लाखों आज्ञा तो दस लेंगे। अंतरे सर्पों ने कहा, वासुके हम सब तो यही सोच सकते हैं, अब आपको जो अच्छा लगे आप उपाय शीघ्र कीजिए। वासुकी ने कहा, हमें तो तुम लोगों के विचार ठीक नहीं जच रहे हैं, इन विचारों में अव्यर्थता बहुत अधिक है। हम लोग अपने पिता महात्मा कश्यप जी को प्रसन्न करें, उनकी आज्ञा अनुसार काम करें, इस प्रकार हम लोग का हित हो वही काम करना है। मैं सबसे बड़ा हूँ, भलाई बुराई की जिम्मेदारी मेरे ही सिर पर होगी, इसलिए मैं बहुत चिंतित हो रहा हूँ। उनमें से एक इलापत्र नाम का एक नाग था, उसने सब सर्पों और वासुकी की सम्मति सुनकर कहा कि भाइयों उस यज्ञ का रुकना और अथवा जन्मेजय का मान जाना संभव नहीं है। जिस समय माता ने श्राप दिया था उस समय डरकर मैं उसी की गोदी में छिप गया था। मैं क्रूर श्राप सुनकर देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, भगवान कठोर हृदय का ध्रुव को छोड़कर ऐसा कौन स्त्री होगी जो अपने मुंह से अपनी संतान को श्राप दे डाले। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं इस समय जगत में सब बहुत बढ़ गए हैं, क्रोधी डरावने विषैले हैं, प्रजा के हित के लिए मैंने कद्रु को रोका नहीं और इस श्राप से शूद्र प्रापी जहरीले सांपों का ही नाश होगा, धर्मात्मा सर्प सुरक्षित रहेंगे। ये बात भी है कि जयावर वंश में जरतकारु नाम के एक ऋषि होंगे, उनके पुत्र का नाम होगा आस्तिक, वही जन्मेजय का सर्प यज्ञ बंद करा सकेंगे, तब जाकर धार्मिक सर्पों का छुटकारा होगा। जरतकारु की पत्नी का नाम भी जरतकारु ही होगा, वह सर्पराज वासुकी की बहन होगी, उसके घर से आस्तिक का जन्म होगा और वही सर्प उसको मुक्त करेगा। सर्पराज वासुकी, मेरे विचार से आपकी बहन जरतकारु का विवाह उस जरतकारु ऋषि से ही होना चाहिए और जिस समय भिक्षा के समान पत्नी की याचना करें उसी समय उन्हें आप अपनी बहन दे दें, यही इस विपत्ति से रक्षा का उपाय है। इलापत्र की बात सुनकर सभी सर्पों ने प्रसन्नचित से कहा, ठीक है। तभी से वासुकी नाग बड़े प्रेम से अपनी बहन की रक्षा करने लगे। उसके थोड़े दिनों बाद ही समुद्र मंथन हुआ जिसमें वासुकी नाग को नेती मतने वाली रस्सी बनाया गया। वासुकी ने सर्पों को जरतकारु ऋषि की खोज में नियुक्त कर दिया और उनसे कहा कि जिस समय जरतकारु ऋषि विवाह करना चाहे उसी समय शीघ्र से शीघ्र आकर मुझे सूचित कर लें, हम लोगों के कल्याण का यही सुनिश्चित उपाय है। शौनक ऋषि ने पूछा, सूत नंदन आपने जिन जरतकारु ऋषि का नाम लिया उनका जरतकारु नाम क्यों पड़ा? और उनके नाम का अर्थ क्या है और उनसे आस्तिक का जन्म कैसे हुआ। विश्ववास जी कहते हैं, जरा शब्द का अर्थ है क्षय, कारु का अर्थ है दारुण। तात्पर्य यह है कि उनका शरीर पहले बड़ा दारुण हट्टा कट्टा था, इसे उन्होंने तपस्या करके उसको जीर्ण शीर्ण कर दिया, इसी से उनका नाम जरत कारु पड़ा। वासुकी नाग की बहन भी पहले वैसी ही थी, उसने भी शरीर को तपस्या के द्वारा क्षीण कर लिया, इसलिए उसका नाम भी जरत कारु हुआ। अब आस्तिक के जन्म की कथा सुनिए। जरत कारु ऋषि बहुत दिनों तक ब्रह्मचर्य धारण करके तपस्या में संलग्न रहे। वे विवाह करना नहीं चाहते थे, जब तब स्वाध्याय में लगे रहते थे, निर्भय होकर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करते। उन दिनों परीक्षित का राजत्व काल था, राज्य था। जरत कारु का नियम था कि जहाँ सायकाल हो जाता वे वहीं ठहर जाते और पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करते और ऐसे कठोर नियमों का पालन करते जिनको पालना विषय लोलो पुरुषों के लिए असंभव है। ये केवल वायु पीकर निराहार रहते, इस प्रकार उनका शरीर सूख सा गया। एक दिन यात्रा करते समय उन्होंने देखा कि कुछ पितर नीचे की ओर मुंह करे हुए एक गड्ढे में लटक रहे हैं। वे एक खसका तिनका पकड़े हुए हैं और वे केवल वही केवल बच भी रहा था। उसी तिनके की जड़ को भी धीरे धीरे चूहा उतर रहा था। पितृगण निराहार थे, दुबले और दुखी थे। जरत कारु ने उनके पास जाकर पूछा, आप लोग जिस खसके तिनके का सहारा लेके लटक रहे हैं उसे एक चूहा को उतरता जा रहा है, आप लोग कौन हैं और अब इस खस की जड़ कट जाएगी तब आप लोग नीचे की ओर मुंह किए गड्ढे में गिर जाएंगे। आप लोग को इस अवस्था में देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप लोग मेरी तपस्या के चौथे तीसरे आधे भाग से चौपत्ती से बचे तो बताएं, और तो और क्या मैं अपनी सारी तपस्या का फल देकर भी आप लोग को बचाना चाहता हूँ, आप आज्ञा कीजिए। पितरों ने कहा, आप बूढ़े ब्रह्मचारी हैं, हमारी रक्षा करना चाहते हैं, किंतु हमारी विपत्ति तपस्या के बल से नहीं कर सकती। तपस्या का फल तो हमारे पास भी है, किंतु वंश परंपरा के नाश के कारण हम लोग घोर नरक में गिर रहे हैं। इसलिए हमारी बात सुनिए, हम लोग जजावर नाम के ऋषि हैं, वंश परंपरा क्षीण हो जाने से हम लोग पुण्य लोकों से नीचे गिर गए हैं। हमारे वंश में अब केवल एक ही व्यक्ति रह गया है, वह भी नहीं के बराबर है, वह तपस्वी हो गया है, उसका नाम जरत कारु है। वह वेद वेदांगों का विद्वान तो है ही, संयमी उदार और व्रतशील भी है। तपस्या के लोभ से हमें संकट में डाल दिया उसने, उसके कोई भाई बंधु अथवा पति पुत्र नहीं है, इसीलिए हम लोग बेहोश होकर अनाथ की तरह गड्ढे में लटक रहे हैं। यदि आपको कहीं मिले तो उसे इस प्रकार कहना, जरत कारु तुम्हारे पितर नीचे मुंह लटका कर गड्ढे में लटक रहे हैं, तुम विवाह करके संतान उत्पन्न करो, जब हमारे वंश की के तुम ही एक आश्रय हो। ब्रह्मचारी जी, ये जो आपने खस की जड़ देख रहे हैं यही हमारे वंश का सहारा है। हमारी वंश परंपरा के जो लोग नष्ट हो चुके हैं वही उसकी जड़ी कटी हुई जड़े हैं, ये अधकटी जड़ ही जरत कारु है। आप जो कुछ देख रहे हैं ये सब जरत कारु से कहिएगा और उससे कृपा करके ये बतलाइए कि आप कौन हैं और हमारे बंधु की तरह हमारे लिए क्यों शोक कर रहे हैं। जरत कारु ने पितरों से कहा कि आप लोग मेरे ही पिता और पितामह हैं, आप लोगों का अपराधी पुत्र जरत कारु हूँ मैं, आप लोग मुझे अपराधी को दंड दीजिए और मेरे करने योग्य काम बतलाइए। पितरों ने कहा, बेटा ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम संयोग वश यहाँ आ गए, मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करके स्वर्ग प्राप्त करूं। जरत कारु ने कहा, मेरा अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, परंतु आप लोगों को उल्टे लटकते देखकर मैंने अपना ब्रह्मचर्य का निश्चय पलट लिया, अब मैं आप लोगों के लिए निसंदेह विवाह करूंगा और यदि मुझे मेरे ही नाम की कन्या मिल जाएगी तो वह भी भिक्षा की तरह, तो मैं उस पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूंगा, परंतु उसके भरण पोषण का भार नहीं उठाऊंगा, ऐसी सुविधा मिलने पर ही विवाह करूंगा अन्यथा नहीं। आपके कल्याण के लिए मुझसे पुत्र होगा, वह आपको परलोक में सुख से रहने देगा। जरत कारु अपने पितरों से इस प्रकार कहकर पृथ्वी पर विचरने लगे, परंतु एक तो उन्हें बूढ़ा समझकर उन्हें कोई अपनी कन्या ब्याना नहीं चाहता था और दूसरे उनके अनुरूप कन्या मिलती भी नहीं थी। जरत कारु सोचने लगे, मैं पितरों का दुख उठाने के लिए उनकी प्रेरणा से कन्या की भीख मांग रहा हूँ, जिस कन्या का नाम मेरा ही हो, जो भिक्षा की तरह मुझे दी जाए और जिसके भरण पोषण का भार मुझ पर ना रहे, ऐसी कन्या मुझे प्रदान करो। वासुकी नाग के द्वारा नियुक्त शर्त जगतकारों की बात सुनकर नागराज के पास गए। उन्होंने चट चट अपनी बहन लाकर दीक्षा के रूप में जगतकारों ऋषि को समर्पित की। वासुकी से पूछा इसका क्या नाम है और साथ ही ये भी कहा कि मैं इसके भरण पोषण नहीं करूंगा। वासुकी नाग ने कहा मैं इसका भरण पोषण और रक्षण करूंगा। इसके अतिरिक्त एक शर्त ये है कि ये कभी मेरा अप्रिय कार्य ना करे, करेगी तो मैं इसे अवश्य छोड़ दूंगा। जगतकारु ऋषि अपनी पत्नी जगतकारु के साथ वासुकी नाग के श्रेष्ठ भवन में रहने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी को भी अपनी शर्त की सूचना दे दी कि मेरी रुचि के विरुद्ध ना हो, ना तो कुछ करना है और ना कहना, ऐसे करूंगी तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। उनकी पत्नी ने स्वीकार कर लिया और वह सावधान रह के उनकी सेवा करने लगी। समय पर उसे गर्भ रह गया और वह धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन की बात है, जगतकारु ऋषि कुछ खिन होकर अपनी पत्नी के गोद में सर रहकर सोए हुए थे। वे सो ही रहे थे कि सूर्यास्त का समय हो आया। ऋषि पत्नी ने बड़ी मधुर वाणी से कहा, महाबाग उठिए, सूर्यास्त हो गया है, आचमन करके संध्या कीजिए, ये अग्निहोत्र का समय है। ऋषि जगतकारु जगे, क्रोध के मारे उनका होंठ कांपने लगा। उन्होंने कहा, सर्पिनी तूने मेरा अपमान किया है, अब मैं तेरे पास नहीं रहूंगा, जहाँ से आया हूँ वही चला जाऊंगा। मेरे हृदय में दृढ़ निश्चय है कि मेरे सोते रहने पर सूर्यास्त नहीं हो सकता, अपमान के स्थान पर रहना अच्छा नहीं है, अब मैं जाऊंगा। अपने पति के हृदय में कपकपी पैदा करने वाली बात सुनकर ऋषि पत्नी ने कहा, भगवान मैंने अपमान करने के लिए आपको नहीं जगाया, आपके धर्म का लोप ना हो मेरी यही दृष्टि थी। जगतकारु ऋषि ने कहा, एक बार जो मुंह से निकल गया वह झूठा नहीं हो सकता। मेरे जाने के बाद अपने भाई से कहना कि वे चले गए और यह भी कहना कि मैं यहाँ बड़े सुख से रहा, मेरे जाने के बाद तुम किसी प्रकार की चिंता मत कर लो। ऋषि पत्नी शोकग्रस्त हो गई, मुंह सूख गया और वाणी गदगद हो गई।
1: और एक बहुत ही सुंदर प्रसंग हम अभी रागलेखा दासी जी से जान रहे थे, अभी बहुत प्यारा सा भजन सुना हमने, उसके बाद हम इस कथा को आगे जारी रखते हैं। जी रागलेखा दासी जी, कहानी आप पूरी कीजिए।
0: जी, तो ऋषि पत्नी जो थी, उसकी पत्नी जो थी जगतकारु की जो पत्नी थी, उसका नाम भी जगतकारु था, तो बोली कि हमारे जाति भाई कद्रु माता के श्राप से ग्रस्त है, आपसे एक संतान उत्पन्न होने की आवश्यकता है, उसी से हमारी जाति का कल्याण होगा। आपका और मेरे सहयोग निष्फल नहीं होना चाहिए, अभी आप मेरे घर से संतान भी तो नहीं हुई है। पत्नी की बात सुनकर ऋषि ने कहा, तुम्हारे पेट में अग्नि के समान तेजस्वी गर्भ है, वह बड़ा विद्वान और धर्मात्मा ऋषि होगा। ये कहकर जगतकारु ऋषि चले गए। समय आने पर वासुकी की बहन जगतकारु ने के गर्भ से एक दिव्य कुमार का जन्म हुआ। उसके जन्म से ही मातृवंश और पितृवंश दोनों का भय जाता रहा। तमशा बड़ा होने पर उसने चवन मुनि से वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। जब वे गर्भ में था तभी पिता ने उसके संबंध में अस्थि है पद का उच्चारण किया, इसलिए उसका नाम अस्तिक हो गया। उग्र शवादी ने कहा, राजा जन्मेजय ने अपने मंत्रियों से पूछा कि मेरे पिता के जीवन में कौन सी घटना घटित हुई, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई थी, मैं उनकी मृत्यु का वितान सुनकर वही करूंगा जिससे जगत का लाभ हो। क्योंकि परीक्षित महाराज की मृत्यु हो गई थी तो राजा जन्मेजय इनके पुत्र हैं, तो अब वो जानना चाहते हैं कि मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई। मंत्रियों ने कहा, महाराज आपके पिता बड़े धर्मात्मा, उदार और प्रजापालक थे, हम बहुत संक्षेप में उनके चरित्र को सुनाते हैं। वे सारी पृथ्वी की ही रक्षा करते थे, उनकी प्रजा हष्ट पुष्ट रहती थी। भगवान श्री कृष्ण आपके पिता के प्रति बड़ा प्रेम रखते थे। जन्मेजय ने कहा, मैं तो अपने पिता की मृत्यु का कारण जानना चाहता हूँ। मंत्रियों ने कहा कि उन्होंने एक बाण से एक हिरण को मारा और उसके भागने पर उसका पीछा किया। वे अकेले ही पैदल बहुत दूर तक वन में हिरण को ढूंढते हुए चले गए, परंतु उसे पा नहीं सके। वे 60 वर्ष के हो चुके थे, इसलिए थक गए और उन्हें भूख भी लग गई। उसी समय एक मुनि का दर्शन हुआ, वे मौनी था। उन्होंने उसी से प्रश्न किया परंतु वे कुछ नहीं बोले। उसी समय राजा भूखे और थके माने थे, इसलिए मुनि को कुछ ना बोलते देखकर उनका तिरस्कार करने के लिए धनुष की नोक से मरा हुआ सांप उठाकर उनके कंधे पर डाल दिया। मौनी ऋषि श्रमिक के पुत्र थे श्रृंगी। उन्होंने हाथ में जल लेकर आपके पिता को श्राप दिया जिसने मेरे निरपराध पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप डाल दिया। वह दुष्ट को तक्षक नाग क्रोध करके अपने विष से 7 दिन के भीतर ही जला देगा। श्रमिक मुनि ने ये सब सुनकर अच्छा नहीं समझा। तक्षक अपने विष से 7 दिन के भीतर ही आपको जला देगा, आपके पिता सावधान हो गए। 7वें दिन जब तक्षक आ रहा था, उसने कश्यप नामक एक ब्राह्मण को देखा। उसने पूछा, ब्राह्मण देवता आप इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं। और क्या करना चाहते हैं। कश्यप ने कहा, मैं

0: जैसे जितना धन लेना चाहते हो मुझसे ले लो और यहीं से लौट जाओ। ऐसा कहने पर कश्यप ब्राह्मण मुंह मांगा धन लेकर लौट गए। उसके बाद तक्षक स्थल से आया और उसने आपके महल में बैठे और सावधान धार्मिक पिता को विष के आग से भस्म कर दिया। तदनंतर आपका राज्य अभिषेक सम्पन्न हुआ। तक्षक ने आपके पिता को डसा है और उत्तंग ऋषि को भी बहुत परेशान किया है। अब जैसा उचित समझे करें। उनपियों ने कहा, महाराज तक्षक ने जिस वृक्ष को डसा था उस पर पहले से ही एक मनुष्य सूखी बस्तियों के लिए चढ़ा हुआ था। ये बात तक्षक और कश्यप दोनों के बीच दोनों में से किसी को मालूम न थी। तक्षक के डसने पर वृक्ष के साथ वह मनुष्य भी भस्म हो गया। कश्यप के मंत्र के प्रभाव से वृक्ष के साथ वह भी जीवित हो गया। तक्षक और कश्यप की बातचीत उसी से सुनी थी और वहां से आकर उसने हम लोगों को सूचित किया था। अपने पिता की मृत्यु का इतिहास सुनकर जन्मेजय को बड़ा दुख हुआ। वे क्रुद्ध होकर हाथ से हाथ मलने लगे। शोक के कारण उनकी लंबी और गर्म सांस चलने लगी। आंखें आंसू से भर गईं। वे दुख शोक और क्रोध में भरकर आंसू बहाते हुए हाथ में जल लेकर बोले, वे पिता किस प्रकार स्वर्गवासी हुए ये बात मैंने विस्तार के साथ सुन ली है। मेरे पिता की मृत्यु में सारा अपराध तक्षक का ही था, इसलिए मैं उससे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का संकल्प करता हूँ। देवताओं ने आपके लिए एक महायज्ञ निर्माण कर रखा है, ऋषिकों ने कहा। हमें इस यज्ञ की विधि मालूम है। राजा ने कहा ब्राह्मणों से, मैं वही यज्ञ करूंगा, आप लोग इसके लिए सामग्री संग्रह कीजिए। इसी समय एक विचित्र घटना घटित हुई। सूत जी ने कहा, जिस स्थान और समय में यज्ञ मंडप मापने की क्रिया प्रारंभ हुई उसे देखकर यह मालूम होता था कि किसी ब्राह्मण के कारण ये यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकेगा।
1: जी जी, बहुत ही सुंदर कथा। हम जान रहे हैं कि किस तरह से अब जन्मे जी जो हैं उन्होंने ये सोच लिया है कि वो उनके पिता की मृत्यु कैसे हुई पता चलने के बाद बदला लेंगे। और अब इस कथा में आगे क्या होगा ये हम जानेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त आपसे इजाजत लेने का हो चुका है। तो रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए।
0: हरे कृष्ण
1: जी। तो श्रोताओं, इस महाभारत काव्य और इस ग्रंथ के अंदर जितनी भी कथाएं हैं वो हम आपको बताते रहेंगे अपने एपिसोड्स में, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए रेडियो मनोरंजन 107.8 के साथ। और भी कार्यक्रम तो आप एंजॉय कर सकते हैं रेडियो मनोरंजन 107.8 FM के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए RMR 107.8। फील गुड, फील लाइव।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, मैं हूं आपकी कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला और हम आपके लिए लाए हैं शिव पुराण। दोस्तों, शिव पुराण सुनवाने का जो हमारा उद्देश्य है वह है भक्ति का प्रचार प्रसार करना और जन जन के दुखों का विनाश करना, उनका सरल से सरल उपाय ढूंढना। और वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो बताएगा हमें शिव पुराण। और शिव पुराण सुनाएंगी हमको डॉक्टर लीना सिन्हा जी। तो लीना सिन्हा जी आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। लीना जी, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: लीना जी, आपने पिछले एपिसोड में हमारे श्रोताओं को बहुत ही मनोरम दृश्य का वर्णन प्रसंग ऐसा सुनाया था कि मन अभी तक भी उन्हीं दृश्यों में खोया हुआ है। और बहुत से फ़ोन आए कि जो दृश्य शिव पुराण में भगवान शिव और माँ आदि शक्ति के विवाह का सुनाया गया, अभी तक भी हम उस पर चिंतन करते रहते हैं, उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। आपने बताया कि पहले तो मैं ना तैयार नहीं हो रही थी माँ पार्वती की माँ, लेकिन जब सब विष्णु जी ने समझाया और नारद जी ने शिव को कहा कि आप अपने वास्तविक रूप में आइए, तो मैं ना हैरान हो गई थी उनकी सुंदरता देखकर। तब रत्नों से सुशोभित संसार के देवता को अपने सामने पाकर मैं ना अचंभित सी हो गई थी। तब शिव ने भी, फिर उन दोनों ने, शिव और माँ पार्वती ने अंदर विवाह मंडप में प्रवेश किया। शिव ने भी शिवा को देखा। तब सभी देवताओं ने जो थे माँ आदि शक्ति की देखकर, उनकी सुंदरता देखकर, अनुपम छटा देखकर, उनके सामने नतमस्तक होकर सबने प्रणाम किया। और गर्ग ऋषि ने हिमालय से कहा कि अब आप भगवान शिव को पाणी ग्रह के लिए अपने घर में ले आइए। अब उनका विवाह शुरू होने वाला था कि अब मंत्रोच्चारण से, विधि विधान से। तो अब लीना जी हमें बताइए कि हिमालय राज भगवान शिव को पाणी ग्रह संस्कार के लिए अपने घर में ले आए, अब वहाँ क्या हो रहा है वो हम सुनना चाहते हैं
1: जी। अब रुद्र संहिता के पार्वती खंड का,
0: हाँ जी,
1: 47वां अध्याय है। और इस 47वें अध्याय में हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। कि कहते हैं कि बारात तो अंदर आ गई, शिव जी अंदर आ गए, सभी बड़े खुश, इतना खूबसूरत दूल्हा, इतना अप्रतिम वर और इतने अद्वितीय पति शिव जी बनने वाले थे पार्वती के। और पार्वती भी अनिद्य सुंदरी थी, यानी कि जो सर्वांग सुंदरी कहा जाए, आदिशक्ति हैं, सारा सौंदर्य ब्रह्मांड का जिनमें समाया हुआ है वो आदिशक्ति हैं और सदाशिव हैं। तो ऐसे सुंदर वर वधु का मिलन होने जा रहा था इस विवाह मंडप में, विवाह संस्कार में। और बाराती जो बन रहे थे वो गदगद हो रहे थे, वो धन्य हो रहे थे। धन्यता तो थी ही, क्योंकि ये जिस परमेश्वर को पाने के लिए ऋषि मुनि कितने काल तक तपस्या करते रहते हैं, साधना रत रहते हैं, उपासना में रत रहते हैं, कोई एक पैर पर खड़े रहते हैं क्योंकि ध्यान से उनको देखा जाता है, कोई निर्विकल्प समाधि में, कोई सविकल्प समाधि में जाते हैं परमेश्वर, लेकिन नजर तो आए। और उन परमेश्वर की शादी है, उन परमेश्वरी का विवाह है। तो ये अद्भुत दृश्य देखने के लिए हर कोई व्याकुल है, हर कोई लालायित है कि आखिर यह मनोरम दृश्य उनकी आंखों से ओझल ना हो जाए। तो इसके लिए सभी एक टक नज़र वहाँ डाले हुए हैं, निहार रहे हैं भगवान शिव की अप्रतिम छवि को और वधु की अप्रतिम छवि को। अब देखिए आगे क्या होता है कि सब